0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: दो लगाड़ों के साथ गुड न्यूज टुडे न्यूज रूम में पधारे बप्पा की हुई विदाई, अगले परस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। गुड न्यूज टुडे संग बनाइए उत्सव के रंग। अकोला में एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला बप्पा का भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के साथ चार धाम की अद्भुत झांकी, गजानन की 30 से 35 फीट प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। कन्नड़ एक्टर अनंता नाग को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करके दी बधाई। 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा अवार्ड। सेंसर बोर्ड का सरकार ने किया पुनर्गठन, नए बोर्ड के कुल 18 सदस्यों में अभिनेता पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली और पल्लवी जोशी समेत कई बड़े नाम शामिल। वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी, आकिब और नमन धीर को मिला मौका।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के एक और रंग की करेंगे। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर है। देश भर में गणपति पंडाल सजे हैं। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति की झांकी में सामाजिक एकता का संदेश है, तो कहीं नारी शक्ति को नमन का भाव है। अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किए गए आस्था के भाव भव्य प्रतिमाओं में ढल गए हैं। इनकी अनोखी कलाकारी देखने वालों को हैरान कर रही है। पुणे में 21,000 पानीपुरी से बप्पा की 13 फीट की अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की गई, तो वाशिम में सौंफ सुपारी और इलायची से बप्पा की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई। सूरत के तापी में गणेश भगवान को कृष्ण का रूप दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु बप्पा के इस अनुपम रूप के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी में मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर गणपति की प्रतिमा बनाई गई, तो ओडिशा में सिक्कों और चॉकलेट के बने अनोखे गणपति भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पूजा पंडालों में बप्पा के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। बप्पा की भक्ति के साथ क्रिएटिविटी का रंग भी खूब चढ़ा। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग अंदाज, लेकिन आस्था एक। बप्पा भी एक है लेकिन रूप अनेक, और इस समय तो अनगिनत। अलग अलग थीम पर सजे बप्पा के ये रूप इस उत्सव की भव्यता को बयां कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बप्पा के सबसे निराले रूप।

0: बाप्पा एक है, रूप अनेक है। देश में जगह जगह गणेशो उत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूपों में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बाप्पा शान से विराजे हैं। और पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ लगी है कि किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बाप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा। बाप्पा का एक ऐसा ही अनोखा रूप सजा है मुंबई में, जहां बाप्पा की भक्ति करने पंडाल में मार्वल और डीसी के सुपर हीरो भी उतर आए हैं। भक्तों के लिए तो गजानन स्वयं ही सबसे बड़े सुपर हीरो है, लेकिन गणपति पंडाल में अवेंजर्स को देखना भक्तों के लिए एक अलग ही एहसास है। स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्स, वुल्वरीन और इन सब के बीच हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा। अपने जोरदार एक्शन से दुनिया भर के फैंस को दीवाना बनाने वाले अवेंजर्स को बाप्पा के पंडाल में देखने के लिए बड़ी संख्या में बाप्पा के जूनियर भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल ने अपनी स्थापना के 50वें साल को खास बनाने के लिए ये खास झांकी सजाई है।
1: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल जी के, गणेश जी के दरबार में, और यहां पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
0: बाप्पा का एक और अद्भुत रूप सजा है गुजरात की सूरत में, जहाँ पंडाल में बाप्पा के साथ साथ भक्तों को द्वार का दर्शन भी हो रहे हैं। सूरत के नानपुरा में बनाए गए इस भव्य गणेश पंडाल को श्री कृष्ण की जलमग्न द्वारका नगरी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं को ऐसा आभास होता है कि मानो समंदर की गहराई में उतरकर वो प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन कर रहे हो। नागपुरा इलाके में बने इस पंडाल की सबसे खास बात है इसकी लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। नीली और हरी रोशनी श्रद्धालुओं को पानी की लहरों और समुद्र की गहराई में होने का आभास करवा रही है। ऐसी जलमग्न द्वारका के बीच भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई।
2: सूरत में एक मंडप ऐसा है जहां पर आप तस्वीर वगैरह देखेंगे, यहां पे जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है छवि के जरिए। आप देखेंगे यहां पर किस तरह से जो द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी वो किस तरह से जलमग्न है, इस यहां पर दिखाया गया है। गणेश पंडाल के अंदर ये पूरी आकृति बनाई गई है और जो जलमग्न द्वारका हो चुकी है उसे यहां पर दिखाया गया है। तो गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग थीम का आयोजन होता है, तो वैसे यहां पर जलमग्न द्वारका नगरी को दिखाया गया है। जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आतुरता से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और ये जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो रही होगी तो वो कैसी रही होगी उसे यहाँ समझाने का प्रयास जो मंडल के आयोजक हैं उनके द्वारा किया गया है।
0: यानी यूनिक थीम के चलते ये पंडाल गणेश भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है और बाप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर समुद्री हलचल और प्राचीन द्वारका के अवशेषों के बीच विराजमान बाप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही है।
3: बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि द्वारका नगरी के साक्षात दर्शन हो गए, बहुत मन प्रसन्न हो गया ये सब देख के।
2: इससे पहले कभी इसका चित्रण कभी माइंड में आया था?
3: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने मिलेगा, और बहुत ब्यूटीफुल है।
4: द्वारका तो कई बार हम लोग गए है, मगर हमें सूरत में द्वारका मिल रहा है वो सबसे बढ़िया है हमारे।
0: आप सबको लिए चलते हैं पुणे और दिखाते हैं बापा का वो स्वरूप जो अब से पहले शायद ही आपने कभी देखा हो। ये है पानी पूरी से बने बापा। तस्वीरें पुणे के FC रोड की है, जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बापा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर जुटे हुए हैं। दिलचस्प ये है कि इस पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। आयोजकों का कहना है कि 21,000 पानी पूरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने की जगह इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणपति। इस प्रतिमा को सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाया गया है। इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और 1 किलो के करीब लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। करीब 70 से 80 किलो वजन की इस गणेश प्रतिमा को बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इस बार भी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत बाल होसी गणेश मंडल ने ही बनाया है। अनोखे गणपति पंडालों की फेहरिस्त में अगला नंबर ओडिशा के गजपति के इस पंडाल का है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बापा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि सिक्कों और चॉकलेट से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार की गई है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। 3 मुख वाले बापा को इस प्रतिमा में 1 मुख सिक्कों से तैयार किया गया है, जबकि बाकी के 2 मुख चॉकलेट से तैयार किए गए हैं। सिक्कों से बनी होने के कारण ये प्रतिमा देखने में चांदी की तरह चमकदार नजर आती है। अब आपको दिखाते हैं वो पंडाल जहां सूरत में ब्रज तीर्थ समाया है, जहां तापी यमुना हो गई है, जहां माँ गौरी के लाल मैया यशोदा के बाल गोपाल बन गए हैं। ये ब्रज भूमि नहीं बल्कि सूरत है। सूरत में तापी नदी के ठीक बीच में गणपति की ये अनोखी झांकी तैयार की गई। इस झांकी में जन्म के बाद श्री कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल ले जाते वासुदेव की छवि नजर आती है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रज की जगह सूरत है। वासुदेव जी की टोकरी में शेषनाग के फन की छाव में कन्हैया रूप में गजानन विराजमान है। सूरत के मछुआरा समुदाय ने गणेश उत्सव में कृष्ण लीला को जीवंत कर दिया है।
2: इस वक्त हम आप एक नाव में बैठे हुए देख सकते हैं, पीछे जो हमारे आप नदी देख रहे हैं तापी नदी है, और तापी नदी के मध्य में हम इस वक्त एक नाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तो जो तापी नदी के मध्य में भगवान गणेश की स्थापना यहाँ पर की गई है गणेश उत्सव के दौरान। और आप देखेंगे जो थीम दिया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय का ये थीम दिया गया है। और जो कृष्ण भगवान जिस तरह से टोकरी मतलब सूप में वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए थे, उसी तरह से यहाँ पर आप देखें टोकरी के अंदर भगवान गणेश को कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है। और जो जो नाग है वो भी किस तरह से रक्षा कर रहा है शेष नाग, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे वासुदेव जी को दिखाया गया है। तो ये चित्र देखकर आपको जरूर भगवान कृष्ण के समय काल की जो छवियां हैं वो याद आ रही होंगी। तो गणेश उत्सव में ये अलग प्रकार से यहाँ पर स्थापना तापी नदी के मध्य में की गई है।
0: चलिए अब महाराष्ट्र के अकोला, जहाँ 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार सजा है। 15 फीट की गणपति प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। यहाँ बापा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। प्रतिमा के शानदार आभूषण, भव्य सजावट और पानी के फव्वारों ने पूरे पंडाल की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में भक्तों को बैम्बू से बने बाप्पा के दर्शन भी हो रहे हैं। बाप्पा का ये अनोखा रूप चिचपल्ली के बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तैयार किया गया है। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बांस से भगवान श्री गणेश की ये शानदार इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार कर अनूठी सामाजिक पहल की है। बैम्बूजू बाप्पा नाम की इस पहल के तहत तैयार की गई गणेश प्रतिमा की विधि विधान और भक्तिभाव के साथ स्थापना की गई। बांस से बनी 3 फीट ऊंची श्री गणेश की मूर्ति देखते ही बनती है। प्रतिमा में श्री गणेश का मुकुट, सून, हाथ, पांव, वस्त्र और यहाँ तक कि मूषक भी बांस से ही बनाया गया है। यहाँ सिर्फ मूर्ति ही बांस की नहीं है, पंडाल और पूरी सजावट भी बांस का इस्तेमाल करके ही की गई है। अब महाराष्ट्र से चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां बाप्पा एक नहीं बल्कि 101 रूपों में दर्शन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये पंडाल है जहां अब की बार 101 रूपों में गणपति बाप्पा विराजमान है। मंगल मूर्ति की 101 मूर्ति की पूजा अर्चना करने बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। जब इस पंडाल में एक साथ 101 मूर्तियों की आरती उतारी जाती है तो दृश्य देखने के लायक होता है। भिलाई के इस गणेश मंडल ने साल 1999 में 8 प्रतिमाओं से गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और अब की बार ये उत्सव बाप्पा की 101 प्रतिमाओं के साथ भव्य रूप ले चुका है। खास बात ये है कि यहाँ स्थापित की गई सभी 101 मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है। ये तस्वीरें प्रयागराज की गणपति पंडाल की है। प्रयागराज के इस पंडाल की ये मूर्ति बेहद खास है क्योंकि इस एक प्रतिमा में भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को दर्शाया गया है।
5: प्रयागराज के मोत्सिमगंज में है और यहाँ मोत्सिमगंज के राजा की जो तस्वीर है, एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। 3 स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर विष्णु जी की स्वरूप भी दिख रहा है और जगन्नाथ की प्रतिमा भी एक ही स्वरूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरे प्रयागराज में गणेश प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मोत्सिमगंज में 3 स्वरूप वाले गणेश जी देखने को मिल रहे हैं।
0: गणेश उत्सव के दौरान संगम नगरी की तरह ही धर्म नगरी हरिद्वार भी गणेशमय हो गई है। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की थीम पर बाप्पा की मूर्ति तैयार की गई। पौराणिक मान्यता है कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बाप्पा का स्वागत बेहद धूमधाम से किया गया। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्यम और समुद्र मंथन जैसे सनातन प्रसंग को भव्य झांकी के जरिए जीवंत किया गया।
6: आगामी वर्ष जो है बड़े धूमधाम से हम कुंभ मेला मनाने जा रहे हैं, कुंभ को मनाने जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये आज थीम दी गई है कि देखिए गणेश जी महाराज जो है आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेला प्रारंभ होगा और समुद्र मंथन का ये दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है कि जिस तरह से समुद्र मंथन से अमृत जो है निकला था, आज यही एक तरफ जो है देवता और एक तरफ दैत्यों का ये दृश्य दिखाया है और गणपति महाराज का आशीर्वाद है।
0: गणेश उत्सव की एक भव्य तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी आई है, जहां मुंबई के लाल बाग चार राजा की तर्ज पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। आलम ये है कि वाराणसी के शहरी इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
7: पिता शिव की नगरी में पुत्र गणेश के दर्शन पूजन की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है गणेश उत्सव पर्व के दौरान, और अगर आशीर्वाद मिले लाल बाग के राजा का तो गणेश भक्त खुद को कैसे पीछे रख सकते हैं। यही वजह है कि इस बार 18वां वर्ष लाल बाग के राजा की स्थापना का है, जो काशी मराठा समिति की तरफ से स्थापित कराया जाता है, और ये जो स्थापना है ये पूजा है वाराणसी के चौक क्षेत्र में होती चली आ रही है।
8: दरअसल लगभग 150 मराठी परिवार सभी महाराष्ट्र से आकर काशी के सर्राफा कारोबार से जुड़े थे। ये परिवार पिछले 18 वर्षों से लगातार मिलकर बापा की स्थापना करते हैं, ताकि जो लोग मुंबई जाकर लालबाग चौराजा के दर्शन नहीं कर सकते वो यहां आकर दर्शन कर ले। अगर लाल बागचा राजा मुंबई से काशी पहुंचे हैं तो चिंचपोकल की चिंतामणि का स्वरूप राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि मुंबई से विग्रहर्ता दिल्ली में मयूर विहार के राजा कहलाते हैं। मयूर विहार के राजा के पंडाल की सजावट शिवाजी महाराज की थीम पर की गई है। उनका सिंहासन भी राजसी है। दिल्ली के इस पंडाल में बापा के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बापा के उत्सव की एक और सुंदर तस्वीर दिल्ली से आई है, जहां एक कलाकार ने टू वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके गणपति बापा की बेहद खूबसूरत आर्ट तैयार की है। ये कलाकार स्ट्रॉ, इलेक्ट्रिक वायर्स, मिरर, चुंबक, जूट, फल सब्जियों के छिलके, पेड़ों से गिरे पत्ते, पुरानी मैगजीन के कागज और कतरन जैसे वेस्ट सामान से अब तक बापा की लगभग 4000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं।
9: आप ये गणेश जी देखिए, क्या लगता है आपको ये किस चीज से बने होंगे? ये जो मैगजीन आती है उस मैगजीन के पन्नों को रोल करके फिर इन गणेश जी को तैयार किया गया है। पूरी की पूरी ये गणेश की प्रतिमा मैगजीन के पन्नों से बनी है। उसके बाद आप इनको देखिए, ये बच्चों के जो पज़ल होते हैं उन पज़ल से गणेश जी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बात फिर से वही कि कड़कण में गणेश दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्ट्रॉ जो हम सब यूज़ करते हैं उन स्ट्रॉ से इनको बनाया गया है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी यहाँ पर सैकड़ों प्रतिमाएं हैं जो कि अलग अलग वेस्ट से तैयार की गई। तो सर, अब तक कितने अपनी चीज़ें यूज़ कर ली हैं वेस्ट की?
10: मैंने 300 से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके और लगभग अब संख्या 4000 गणेश जी अभी तक मैं बना चुका हूँ, 300 से अधिक वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके।
9: कुछ खास चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ आप दिखा दीजिए।
10: देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये घरों में हम जो सब्जियां यूज़ करते हैं, फल यूज़ करते हैं, उनके छिलके होते हैं, उन छिलकों से बनी है। ये अनार है, ये हरी मिर्च है, ये कुछ जो एप्पल है उसके छिलके हैं, हरी मिर्च के हैं, उन छिलकों से यूज़ करके इसको बनाया है।
9: क्या होता है इन पेंटिंग्स का, आप बेच देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं, क्या होता है इनका?
10: देखिए, अभी तो मेरी साधना है ये, ना मैं गिफ्ट करता हूँ ना मैं बेचता हूँ। एक मेरा संकल्प है कि जो हमारे सीमा पर प्रहरी, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो राहत कोष बना हुआ है, मैं एक ही बार इनको एग्जिबिट करके वहाँ पर इनकी सेल लगा करके उससे जो धन आएगा उसमें जो उनका कोष है उन बच्चों के शिक्षा के लिए उसमें मैं डोनेट कर दूंगा।
9: क्या बात है, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मिशन मन में सोच रखा है कि जो शहीदों के बच्चे हैं कभी उनके लिए ये पूरी पेंटिंग्स को बेचकर सारा पैसा उनके नाम कर देंगे, और एक मिशन जो देखे अनदेखी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कूड़े का पहाड़ है उसमें वेस्ट और कम पहुंच रहा है, क्योंकि जो वेस्ट है उसका इस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बच्चों को भी लगातार सिखा रहे हैं। लगभग 28,000 बच्चों को वो ये कला सिखा चुके हैं, ताकि जितने ज़्यादा हाथ होंगे कूड़े का पहाड़ उतना ही छोटा होता चला जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
11: बाहरी दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी बप्पा के एक ऐसे ही भव्य और अद्भुत पंडाल सजे हैं, अनोखे रूप में तैयार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर बप्पा से जुड़े ये वीडियो छाए हुए हैं, यानी बप्पा भले ही एक हैं पर इंटरनेट पर उनके रूप अनेक हैं। अब यूं समझिए कि सोशल मीडिया पर भी सुपर हिट हैं बप्पा मौर्या।

0: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: हो रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। किस राशि को सूर्य देंगे वरदान, किस राशि की समस्या का करेंगे समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। अकोला में चारधाम की थीम पर गणपति, वहीं पुणे के डगड़ूशेठ गणपति पंडाल में दिख रहा है बप्पा का मनोहारी रूप। उत्सव के रंग से सराबोर मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, महाकुंभाभिषेकम की तैयारी शुरू, भक्तों में भारी उत्साह। दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज, पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में पहली बार होगा दुर्गा पूजा का आयोजन, कोलकाता सनातनी संघ तैयारियों में जुटा। प्रधानमंत्री मोदी का आज 76वां जन्मदिन, उज्जैन, काशी, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कई जगह पर कार्यक्रम। पुरी में सैन आर्टिस्ट मानस साहू ने रेत पर उकेरी छवि। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 27 सितंबर से शुरू होगी सीरीज। वनडे में सिराज जडेजा की वापसी। भारत अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी T20 आज, भारत को 2-0 की अजेय बढ़त। 20 आज प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को मौका संभव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

सब देवता श्रृंगार कर रहे, बरात जाना है, तो सबसे ज्यादा श्रृंगार कर रहा है यमराज। एक तो उसे कहीं बुलाया नहीं जाता, बड़े कम बरातें मिली, ये स्पेशल बरात। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। अब यमराज लगा भैंसा को रगड़ने, लगा रगड़ने, एकदम रगड़े। अब भैंसा बेचारा बड़ा परेशान, बोले महाराज एक बात बताओ, आज इतनी रगड़ाई क्यों हो रही है? बोले आज तुझे काला से गोरा करें। क्यों? बरात जाना है। भैंसा बोला महाराज चाहे जितना रगड़ लो, खाल चाहे छिल जाएगी, पर हम गोरे ना हो पाएंगे, हमें ऐसे ही रहने दो, रगड़ाई ना करो महाराज, रहने दो ऐसे ही रहने। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे भगवान श्री विष्णु भगवान भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी श्रृंगार कर रहे, देवी देवता माता जी भी आए, देवी देवता सब श्रृंगार कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। अब आगे का जो श्रृंगार सब देवताओं का हो रहा वो बेहतर हो रहा। तो नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले कैसे श्रृंगार करें, कैसे करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले पहले तो इनकी जटाओं को ठीक करो, मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहां से लाएं? तो नंदी जी ने उपाय निकाला, दूल्हे के सिर पर मुकुट होता है। अब भोले बाबा का मुकुट क्या है?

0: कौन सा मुकुट?
1: जटाओं का मुकुट। तो जटाओं का मुकुट बना दिया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बना दिया, तो नंदी जी बोले भाई मुकुट हो गया, अब मोर चाहिए। ये मोर क्या है? बोले दूल्हा के आगे लंबा लंबा पतला पतला लटका रहता है, वो लटक जाए तो मोर हो जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार बेहतर हो जाएगा, मुख दिखे भी और दिखे भी ना, ऐसा हो उसे मोर कहते हैं। तो बोले भाई मोर कहां से मिलेगा? बोले मोर तो नहीं है। नंदी जी बोले रुको हम अभी लेकर आते हैं। नंदी जी भागे भागे गए और एक किनारे में कैलाश पर्वत पर जाकर पतले पतले छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, और सांपों को पकड़कर सांपों के मुंह में एक सांप की गांठ लगाई और भागे भागे आए, मुंह को फंसा दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने, बोले लो बढ़िया मोर बन गया है। तो भोले बाबा को भस्म राख, मुर्दे की राख से पाउडर बनाकर श्रृंगार किया गया। नंदी बोले बाबा का श्रृंगार अब भस्म का तो हो गया, पाउडर तो हो गया, अब भाई शेरवानी तो है नहीं, बाबा आपकी आज्ञा हो तो किसी का कोट नहीं तो कम से कम गमछा उधार मांग ले। बोले बाबा बोले नहीं ऐसे ही काम चलेगा। नंदी जी बोले महाराज जिस हिसाब से यहाँ बैठे हो, यहाँ तो हम लोग रहते हैं तो काम चल जाता है, वहाँ बारात वाला मामला है जिसके यहाँ पर लड़की लेने जाएंगे, शादी में जाएंगे, आपको देखेगा इस हाल में कौन विवाह कर देगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो इज्जत तो ढक लो, इज्जत तो ढक लो। अब कैसे ढके? तो नंदी बोले महाराज आप बुरा ना मानो तो थोड़ी देर खड़े हो। भोले बाबा खड़े हुए तो जिस मृग छाला पे बैठे थे उसी मृग छाला को कमर में लपेट दिया। बोले कम से कम इज्जत तो बची रहे। बोलो सीताराम भाई, शेरवानी नहीं पहननी पर कम से कम यही बांध लो। अच्छा शेरवानी नहीं पहननी तो मृग छाला बांध लो, पर मृग छाला में बटन थोड़ी थे जो रुक जाए। अब नंदी जी के सामने दूसरी दिक्कत, मृग छाला कमर तो मैं बांध तो दी पर ये रुके कैसे? तो किसी ने कहा एक सेवक की ड्यूटी लगाओ वो पकड़े रहे। नंदी जी बोले वाह, मान लो बारात के बीच में जब भांवर में सात भांवर पड़े उसी बीच में उसका हाथ दर्द करने लगे, वो हाथ पलटे और छूट जाए तो सब मामला ना गड़बड़ हो जाएगा है? इतनी बनी मनाई इज्जत सवा गड़बड़ हो जाए तो क्या किया जाए? नंदी जी बोले एक दूसरा उपाय। बोले क्या? बोले एक अभी रुको। नंदी जी भागे भागे गए, काला काला एक लंबा सांप पकड़ ले आए, और सांप पकड़ करके लाए और कमर में पहले मृग छाला बांधी और फिर ऊपर से सांप को बांधा, और सांप से बोले सुनो पृथ्वी पलट जाए पर तुम्हें नहीं खिसकना है, तुम्हें वहीं रहना है और पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर लगी है दाव। सांप बोला आप टेंशन ना लो, बाबा की आज्ञा है तो बस है, हम सेवा करेंगे। आहा बढ़िया, आप श्रृंगार पूरा हो ही गया, बढ़िया भस्म हो गई, मृग छाला हो गई, बढ़िया मुकुट हो गया, मोर हो गया, गंगा जी चंद्रमा चमक ही रहा, गंगा जी बह ही रही, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दिया। भोले बाबा मैंने पहली बार अपने रूप को ऐसा देखा। अरे भाई वाह, एक तो स्वयं कर्पूर की तरह धवल देह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऊपर से आज श्रृंगार हुआ और फिर बारात में जाना है। नंदी जी बोले बुरा ना माने तो हम आपको रथ ले आए। भोले बाबा बोले नहीं हम तो नंदी पर ही जाएंगे, जो आज्ञा प्रभु आपकी जो आज्ञा, सेवक तैयार है। भोले बाबा ने अपने स्वरूप को देखा, खुद के स्वरूप को देख करके ही खुश हो गए, सोई डमरू उठाई और डमरू बजाते हुए बाबा मस्त होकर के झूमने लगे। अच्छा बाबा को मस्त देखा तो फिर चेले कहां रहे? तो भोले बाबा मस्त, सुनंदी भृंगी श्रृंगी सब बाबा की मस्ती में आनंद से झूमने लगे, दमक दमक

0: अब ऐसे भी कथा की दक्षिणा तो लगती है, तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे माता जी, तो दक्षिणा में यही चढ़ा दें, जय बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आहा, तो सती जी चरणों की सेवा करने लगी। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माता जी, चाची जी और हमारी बहन जी की सासू माँ, वो भी माता जी देवराज से सब पूरा परिवार भागवत कथा सुनने के लिए आया हुआ है। और देवरा वाले पापा जी भी आए हैं, तो सब रिश्तेदार सहित, मतलब माता जी बैठी तो पीछे की तरफ उनके समधी भी बैठे हैं। आज बड़ा अद्भुत नज़ारा है ये। हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार देखा है, बड़ा अद्भुत नज़ारा है, बड़ी अद्भुत बात है, प्रसन्नता की बात है, बड़ा अभूतपूर्व नज़ारा है, तो हम भी बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, ये भगवान की अनुकंपा होती है, बारात में जाएंगे लोग हमें देखेंगे, वो आप कभी बारात का पूरा आंकलन निकालना तो आप पाओगे बारात में कोई किसी को नहीं देखता, हाँ सब अपने को ही देखते रहते। पूरी बारात का यदि आंकलन निकाला जाए तो बारात में सब श्रृंगार करके इसलिए जाते हैं कि जब बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, और सच ये है कोई किसी को नहीं देखता। देखो इसकी तो काली टी शर्ट है, हमारी तो लाल है, इनके तो ऐसे कपड़े, हमारे तो ऐसे हैं, सब आपस में यही बात मन में सोचते रहते। अच्छा, कई बार तो इतना श्रृंगार लोग कर लेते, इतना पाउडर लगा लेते कि शीशा दर्पण ही मना कर देता, भैया रहने दो, अब रहने दो रहने दो। तो आजकल तो उसका जमाना आ गया मेकअप का, सबसे ज्यादा तो ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगा। हाँ, सबसे ज्यादा श्राप यदि किसी बूटी पर, वो कब गोरे को काला और काले को गोरा, राम राम राम राम राम राम राम, क्या जमाना आ गया, हनुमान जी ही बचाएं, धन्य है बूटी पार्लर का जमाना। 5,000 की क्रीम, 10,000 की क्रीम, हे भगवान। और यहां से तो जो बच्चियां बच्चे जो जो जाते हैं बड़े ठीक ठाक दिखने में जाते हैं, वहां से ऐसे आते निकल करके आए, आओ आओ आओ आओ, अरे राम राम राम राम राम। हमारा एक चेला था चंगीलाल, उसकी घरवाली एकदम काली अमावस्या जैसी, देखने गया तो मेकअप में दिखा दिया, मेकअप में दिखाया तो गोरी दिखी। हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपकी कृपा से शादी तय हो गई। हमने कहा क्या नाम है, बोले मुन्नी बाई नाम है। हमने कहा बहुत बढ़िया, शादी करो बहुत अच्छा है, करो करो करो। लेकिन भगवान की कृपा, बोला देखो गुरुजी कभी ना कभी तो गृहस्थ में जाना ही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब जब वो शादी में दूल्हा बन के गया तो भगवान की उस पर विशेष कृपा थी, हमारा तो आशीर्वाद था ही, भगवान की कृपा। उस जमाने में वाटर प्रूफ नहीं चलता था, मेकअप नॉर्मली चलता था, अब तो वाटर प्रूफ आ गया, नॉर्मल चलता था। तो एकदम काली अमावस्या जैसी, लेकिन एकदम मेकअप में ऐसी लगे जैसे पूनम का चंद्रमा उदय होकर के आ गया। की बात, बारिश हो गई और टेंट के नीचे शादी, तो जो हाल हुआ, ज्यों ज्यों बूंदें गिरे त्यों त्यों रंग निखर कर बाहर आए, और एकदम भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम वरण बनते हुए आभा मंडल से प्रकट भए, और इसकी नजर होने वाली घरवाली पे गई। अरे बोले धोखा हो गया, भागा मंडप से ही। हमारे पास रात्रि में आया, हमका चेला था, आज तो तुम्हारी शादी है, इधर क्या कर रहे? अरे बोले गुरु बच गए। हमका हुआ क्या? अरे बोले इंद्र देवता ने बचा लिया, मेकअप के चक्कर में वो गोरी दिख रही थी महाराज, इतनी काली है कि छोटे छोटे जब बच्चे होंगे और उनको बिना मेकअप के दिखा दिया जाएगा तो डर जाएंगे। अरे हमका तो फिर ठीक है, तो मेकअप वाले बड़े, अब उनका भी खैर मेकअप की बुराई नहीं हम कर रहे, श्रृंगार तो करना चाहिए। श्रृंगार
1: हो रहा है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। किस राशि को सूर्य देंगे वरदान, किस राशि की समस्या का करेंगे समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने, आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजे, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
2: खबरें
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: देश भर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। उत्सव के रंग में रंगा मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, अंतिम दौर में महाकुंभाभिषेकम की तैयारियां, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज, एलन पार्क में पहली बार होगी दुर्गा पूजा, कोलकाता सनातनी संघ तैयारियों में जुटा। प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन, अहमदाबाद के उमीदा धाम में की गई महाआरती, पुरी के कलाकार ने भी खास अंदाज में दी प्रधानमंत्री को बधाई।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: गणपति बप्पा के दर्शन पूजन के साथ बप्पा के विसर्जन का सिलसिला भी शुरू, जेएनटी की टीम ने भी अपने गणपति को धूमधाम से किया विदा।
13: कलमूर्ति गणपति बप्पा। स्वास्थ्य गच्छत पुनराग।
11: गुड न्यूज टुडे के स्टाफ ने ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच बप्पा को किया विदा। अगले बरस तू जल्दी आ की कामना के साथ की गई बप्पा की विदाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घर में सजा आशा का अद्भुत संसार। बर्फीले पहाड़ों के बीच विराजे बप्पा। बल्लारपुर के चिंतावर परिवार के पंडाल में बप्पा की अनोखी भक्ति। बप्पा के साथ एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के हो रहे हैं दर्शन। पिछले 50 साल से अलग अलग धार्मिक झांकियां सजाता है ये परिवार। इस बार देशभर के ज्योतिर्लिंगों की लगाई गई प्रतिकृतियां। महाराष्ट्र के अकोला में लगा बप्पा का अनोखा दरबार। रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल के पंडाल में लगी चारों धामों की भव्य झांकी। एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बना विशाल पंडाल। पंडाल में बर्फीले पहाड़, हिमाली रास्तों के साथ चारों धामों का भी एहसास। गंगोत्री से बद्रीनाथ धाम तक के दर्शन। से 35 फीट की भव्य शिव बारात वाली गणपति की लगाई गई प्रतिमा। गजानन गणेश के साथ चारों धामों के दर्शन का आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु। गणपति पंडाल में तैयार किए गए चारों धामों के प्रतीकात्मक स्वरूप बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार की गई है चारों धामों की झांकी। चारधाम यात्रा ना कर पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा जैसा अनुभव देने की कोशिश। पंडाल में पहुंचकर चारधाम यात्रा जैसा अनुभव पा रहे हैं श्रद्धालु। गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबाग चाराजा दरबार में भक्तों की कतार। बप्पा दर्शन और चरण स्पर्श के लिए दूर दूर से पंडाल पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लालबाग चौराजा के दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी लगाई हाजिरी। पत्नी संग लिया बप्पा का आशीर्वाद। सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी किए लालबाग चौराजा के दर्शन। टेका मत्था लिया बप्पा का आशीर्वाद। अकोला में सजा 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार। 15 फीट की गणेश प्रतिमा विराजमान। लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किए गए पंडाल। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म से लेकर अष्टविनायक के दर्शन तक की कृपा की मिल रही है झलक। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई के वाशिम में भी अनोखे स्वरूप में भक्तों का दर्शन दे रहे हैं भगवान गणेश। सौंफ सुपारी और इलायची से बनाई गई है गणेश जी की आकर्षक मूर्ति। इसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग और इलायची का किया गया है इस्तेमाल। 80 किलो की इस मूर्ति को बनाने में लगे हैं करीब 20 दिन। इस पंडाल में हर साल बनाई जाती है पर्यावरण के अनुकूल गणपति मूर्ति। पिछले वर्ष दालों से बनाई गई थी गणपति प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर रचा गया नया कीर्तिमान। 10 फीट की है गणेश भगवान की मुख्य प्रतिमा। 1999 में अष्टविनायक के रूप में 8 प्रतिमाओं की स्थापना से शुरू हुई थी परंपरा। पंडाल की भव्य डिजिटल लाइटिंग और अनूठी कलाकृति को देखने दूर दूर से पहुंच रहे यहां श्रद्धालु। पुणे के फगरूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सबका ध्यान। 21,000 पानीपुरी शेल से बनी बप्पा की प्रतिमा 13 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है गणपति की मूर्ति। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं विघ्नहर्ता के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन। ओडिशा के गजपति जिले में भी दिखा गणपति का अनोखा स्वरूप। सिक्कों और चॉकलेट से बनाई गई बप्पा की मूर्त। त्रिमुखी गजानन की मूर्ति बनाने में भारी मात्रा में सिक्कों का किया गया इस्तेमाल। साइड के दोनों मुखों के निर्माण में चॉकलेट का किया गया इस्तेमाल। ये खास और इको फ्रेंडली मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। दूर दूर से दर्शन को आ रहे हैं भक्त। बच्चों में खासा उत्साह। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना चर्चा का विषय। जलमग्न द्वारिका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। पंडाल में प्रवेश करते ही नजर आता है समुद्र के भीतर की दुनिया जैसा वातावरण। बेहद कलात्मक तरीके से तैयार किए गए हैं प्राचीन महलों के अवशेष, विशाल खंभे, समुद्री चट्टानें और समुद्री जीवों के मॉडल। पंडाल की खूबसूरती को बढ़ा रही है पंडाल में की गई विशेष लाइटिंग और विजुअल इफेक्ट्स। पंडाल में प्रदर्शित झांकियों में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का संगम। नीली और हरी रोशनी के साथ पानी की लहरों और समुद्र की गहराई को तैयार किया गया है, दिया गया है इफेक्ट। जलमग्न द्वारका के बीच स्थापित की गई है भगवान गणेश की दिव्य प्रतिमा। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए बनाया गया है गणपति बप्पा का ये दरबार। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं तस्वीरें। मुंबई में एक्टर सोहेल खान के घर गणपति उत्सव, शामिल हुए कई सितारे, विसर्जन के दौरान जमकर किया डांस। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हुए उत्सव में शामिल, बप्पा के सामने टेका मत्था की आरती। गणपति उत्सव में हेलेन बहन अर्पिता का परिवार और अरबाज खान के बेटे भी आए नजर, सभी ने की गणपति से सुख समृद्धि की कामना। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर में किया मूर्ति विसर्जन, बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी रहे साथ। पूरे विधि विधान के साथ सचिन ने की गणपति की आराधना, पूजा पाठ में उनके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार भी हुए शामिल। हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी ने पूरे विधि विधान से गणपति आराधना की। बप्पा की पूजा के बाद विसर्जन के दौरान भी शिल्पा की आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिले।

0: मुंबई में सुनीता आहूजा ने भी किया गणपति विसर्जन, आख्या गोविंद और उनके बेटे हुए उत्सव में शामिल। देसी शाह ने भी किया गणेश विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते बप्पा को किया विदा। अंबानी परिवार ने भी किया मूर्ति।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। लखनऊ से श्वेता गुलाब ने अपने बप्पा की बेहद खूबसूरत तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के साथ शेयर की है। खूबसूरत सजावट के बीच मेटल वाले बड़े से बप्पा तो उनके आगे विराजित किए गए हैं छोटे गणेश। ये तस्वीरें बेशक दिल जीत रही हैं। विघ्नहर्ता की इन सुंदर प्रतिमाओं को अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर इनकी ये प्यारी सी वीडियो श्वेता ने हमें भेजी है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वहीं गणपति भगवान की दूसरी तस्वीर गुजरात के भुज से आई है, जिसे हमारे एक दर्शक धनसुख कापड़ी ने भेजा है। ये बेहद खूबसूरत वीडियो है जिसमें बप्पा का बेहद शांत स्वरूप नजर आ रहा है। आस्था भक्ति से भरपूर गजानन की ये वीडियो धनसुख जी ने भेजी है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन की और इसके प्रभाव की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के कन्या संक्रांति के बारे में, यानी सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। ये पूरी स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि सूर्य की बड़ी फेवरेबल राशि नहीं है, क्योंकि कन्या राशि से सूर्य की कमजोरी शुरू हो जाती है। तो सूर्य की स्थिति कन्या में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। अब सूर्य जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ हो जाएंगे और मंगल और शनि के

एक महीने तक बना रहेगा दुनिया के लिए और लोगों के लिए। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर होगा और अलग अलग राशियों के जीवन में ये परिवर्तन अगले एक महीने तक असर डालेगा। तो जैसा आपको बताया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। कैसा प्रभाव होगा? मेष राशि की अगर बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। राशि परिवर्तन शुभ है। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं, सतर्क रहें। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण पारिवारिक अशांति हो सकती है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। इस समय चोट चपेट से आपको सावधान रहना है, मिथुन वाले दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर के लिए अच्छा है। करियर की समस्या आपकी हल होगी, नया मौका नया अवसर मिल सकता है और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से परिवार में बेवजह का विवाद हो सकता है, शांत रहें और चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि इस समय आप चोट चपेट दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें दे सकता है और अगर लापरवाही करेंगे तो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कन्या वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपकी सेहत में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जरा भी लापरवाही इस समय मत करिएगा। सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखें बिगड़ सकती हैं। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। आपके तमाम रुके हुए काम

0: इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको संपत्ति का और धन का लाभ होगा, करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके करियर में बदलाव दिखा रहा है और आगे चल करके ये बदलाव फायदेमंद साबित होगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका स्थान परिवर्तन करा सकता है। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए ऑफिस के कार्यों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। पैरों में चोट चपेट लग सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन चोट चपेट दे सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। इस समय करियर के मामले में, विवाह के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें ला सकता है, करियर में समस्या आपके आ सकती है। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि पेट की दिक्कतें, लीवर की दिक्कतें और डाइजेशन की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। तो हमने आपको 12 राशियों के बारे में बताया कि किन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है और किन के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा खराब है। तो अगर राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। बड़े सारे मंत्र मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे, सरलता से आप जप सकें उस मंत्र का जप करिएगा। और सबसे सरल मंत्र आप जानते हैं, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पढ़िएगा। रोज सवेरे हरी सौंफ खाकर घर से निकलिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन का खराब प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, जिस किसी दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है उस दिन को सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। तो जिस दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए, संक्रांति वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन वाले दिन, तो इससे सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देशभर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन, शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। उत्सव के रंग बिरंगा, मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर अंतिम दौर में, महाकुंभाभिषेकम की तैयारियां, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज, एलन पार्क में पहली बार होगी दुर्गा पूजा, कोलकाता सनातनी संघ तैयारियों में जुटा। पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन, अहमदाबाद के उमिया धाम में की गई महाआरती, पुरी के कलाकार ने भी खास अंदाज में दी प्रधानमंत्री को बधाई। भारत अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी T20 आज, भारत को 2-0 की अजय बढ़त, प्लेइंग 11 में मिल सकता है वैभव सूर्यवंशी को मौका।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल। सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास द बेस्ट है।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। आज पंडित जी के साथ हमारी बातचीत होने वाली है सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो ये राशि परिवर्तन तमाम राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके क्या कुछ प्रभाव होंगे, आपके जीवन पर क्या कुछ दशा रहेगी और किस तरह का प्रभाव ये आपकी स्पेसिफिक राशि पर डालेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सूर्य का राशि परिवर्तन कौन सी राशि में होगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तमाम उपायों के बारे में बातचीत होगी, महा उपाय आपको बताएंगे, आपके सवाल भी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: देखिए, जिस किसी दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है उस दिन को सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। तो जिस दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए, संक्रांति वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन वाले दिन, तो इससे सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी।
4: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 17 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
0: दिनांक 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:47 तक, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र शाम के 7:53 तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, पंडित जी से आज विस्तार से हम जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल कि सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने का आखिर ये मामला क्या है, किस तरह से ये हम सबको प्रभावित करेगा पंडित जी?
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के कन्या संक्रांति के बारे में, यानी सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। ये पूरी स्थिति क्या है आइए समझते हैं। देखिए सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि सूर्य की बड़ी फेवरेबल राशि नहीं है, क्योंकि कन्या राशि से सूर्य की कमजोरी शुरू हो जाती है। तो सूर्य की स्थिति कन्या में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। अब सूर्य जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ हो जाएंगे और मंगल और शनि के प्रभाव में हो जाएंगे। सूर्य की ये जो स्थिति है, मंगल शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ेगा, ये स्थिति बहुत शुभ नहीं है। इसका प्रभाव लगभग 1 तक बना रहेगा, दुनिया के लिए और लोगों के लिए। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर होगा और अलग अलग राशियों के जीवन में ये परिवर्तन अगले 1 तक असर डालेगा।
4: चलिए इसी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो आगे जाकर पंडित जी से हम पूछने वाले हैं, उसके जवाब पंडित जी हमें देंगे। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर। पहली 3 राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का ये जो मामला है, इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर किस प्रकार का रहने वाला है वो जानते हैं।
0: तो जैसा आपको बताया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। कैसा प्रभाव होगा? मेष राशि की अगर बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। राशि परिवर्तन शुभ है। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं, सतर्क रहें। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण पारिवारिक अशांति हो सकती है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। इस समय चोट चपेट से आपको सावधान रहना है, मिथुन वाले दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर के लिए अच्छा है, करियर की समस्या आपकी हल होगी, नया मौका नया अवसर मिल सकता है और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से बन जाएंगे, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से परिवार में बेवजह का विवाद हो सकता है, शांत रहें और चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि इस समय आप चोट चपेट दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि,

0: आपको हो सकता है। कन्या वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपकी सेहत में काफी दिक्कतें आ सकती हैं।
1: चलिए अगली राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि उन पर कैसा रहेगा राशि परिवर्तन का सूर्य का ये असर, उसके बारे में विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन अब आते हैं राशिफल पर वापस और कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से विस्तार से जान लेते हैं।
0: कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना

0: चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ शामिल करते हैं आप सबके भेजे गए सवालों को इस शो में, जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले सूचित कर देते हैं, कोई भी प्रश्न है आपका, उसका जवाब आप जानना चाहते हैं, आप अपने तमाम सवाल, अपनी क्वेरीज, अपनी परेशानियां ईमेल आईडी के माध्यम से इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें अलका जी ने लिखा है और अलका जी हमें मेल लिखती हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 25 अप्रैल 1980। जन्म का समय शाम के 7:55। जन्म स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार मेरे साथ लगी हुई हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? अलका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपने डाइजेशन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ज्यादातर स्वास्थ्य की समस्याएं पेट से जुड़ी हुई होंगी, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। मार्च 2027 तक थोड़ी सावधानी रखिए, उसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है, मतलब दर्शकों का दूसरा सवाल। तो कौन से दर्शक ने भेजा है अपना अगला सवाल, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न राम प्रकाश जी ने हमें लिखा है और राम प्रकाश जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 8 नवंबर 1995। रात में 10:30। जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। राम प्रकाश जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय आने में थोड़ा सा विलंब है। ज्यादातर संभावना लगती है कि अप्रैल 2027 के बाद इनका विवाह होगा, साल 2027 के अंत तक। विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो काफी बेहतर रहेगा। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहनाएं और अपनी पुत्री से बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करे तो काफी बेहतर होगा।
1: चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि पहली 6 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया, अब सूर्य के राशि परिवर्तन का बाकी शेष 6 राशियों पर किस तरह का प्रभाव रहने वाला है वो जानते हैं विस्तार से।
0: तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जरा भी लापरवाही इस समय मत करिएगा, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखें बिगड़ सकती हैं, धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको संपत्ति का और धन का लाभ होगा, करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके करियर में बदलाव दिखा रहा है और आगे चल करके ये बदलाव फायदेमंद साबित होगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका स्थान परिवर्तन करा सकता है। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए ऑफिस के कार्यों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। पैरों में चोट चपेट लग सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन चोट चपेट दे सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। इस समय करियर के मामले में, विवाह के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें ला सकता है, करियर में समस्या आपके आ सकती है। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि पेट की दिक्कतें, लीवर की दिक्कतें और डाइजेशन की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं।
1: चलिए अब वापस आते हैं अपने राशिफल पर और तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों की बारी आ गई है, इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी से ही विस्तार से जान लेते हैं।
0: तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाइएगा, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी ये बताइए कि आपने किन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये राशि परिवर्तन, वो तो बता दिया। अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन अनुकूल ना हो तो उस कंडीशन में, उस हालात में क्या करना चाहिए?
0: तो हमने आपको 12 राशियों के बारे में बताया कि किन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है और किन के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा खराब है। तो अगर राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। बड़े सारे मंत्र मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे, सरलता से आप जप सकें उस मंत्र का जप करिएगा। और सबसे सरल मंत्र आप जानते हैं, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पढ़िएगा। रोज सवेरे हरी सौंफ खाकर घर से निकलिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन का खराब प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: और चलिए इसी के साथ राशिफल के अंत की तरफ हम पहुंच गए हैं। अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। इनके भाग्यफल में क्या लिखा है पंडित जी, आप बताएंगे।
0: मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त चला है आपका अगला सवाल इस शो में शामिल करने का। इससे पहले आगे बढ़ूं, एक बार फिर से आपको बता देती हूं, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवालों को इस शो में आप भेज सकते हैं। तो पंडित जी, अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है आपसे जानते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न विजय चौधरी जी ने हमें लिखा है, और विजय चौधरी जी हमें मुजफ्फरनगर से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र की कुंडली के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 21 जून 1978। जन्म का समय दोपहर में 1:50। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के मेरा एक मुकदमा काफी समय से चल रहा है, कब तक हल होगा, क्या मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल सकेगी। विजय कुमार जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगले साल इस मुकदमे का निपटारा होगा आपसी सुलह समझौते से, और आपकी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो आपको प्राप्त होगा अप्रैल 2027 के बाद। अगले साल ही इसका निपटारा हो जाएगा। आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, और हर मंगलवार को गुड़ का या लाल फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का, और कौन से दर्शक का है अंतिम सवाल इस शो में आज का, वो पंडित जी से जान लेते हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न पूजा ने हमें लिखा है, और पूजा हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1996। जन्म का समय रात में 9:45। जन्म स्थान है गुड़गांव। पूजा कह रही हैं कि मेरी एक शादी अभी तय हुई थी, वो टूट गई है एंगेजमेंट होकर के, क्या मेरी शादी उसी लड़के से दोबारा हो सकती है, वहीं पर मेरा रिश्ता हो सकता है, या उस रिश्ते को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी एंगेजमेंट होकर टूटी है उसके दोबारा जुड़ने की संभावना नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगी, कोई और रिश्ता आपको मिलेगा जहां पर आपका विवाह होगा। इस रिश्ते में दिमाग मत लगाइए क्योंकि यहां पर कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी। आगे आपका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 17 सितंबर को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: ज जिन लोगों का जन्मदिन 17 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर और धन की स्थिति मध्यम रहेगी। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए बारी आ गई है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में ज्ञान लेने की, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गणेश जी की पूजा से बुध ग्रह की समस्या हल होती है? देखिए, ज्यादातर लोग गणपति की पूजा बुधवार को करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि गणेश जी की पूजा से बुध की समस्या हल होगी, लेकिन वास्तव में बुध की समस्या को दूर करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। गणेश जी की उपासना से केतु नामक ग्रह की समस्या दूर होती है।
1: चलिए पंडित जी से जानते हैं 17 सितंबर 2026 यानी बृहस्पतिवार के शुभपहर के बारे में।
0: दिनांक 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे 17 सितंबर बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए पंडित जी आपको बताएंगे कि आज के शो की गुडलक राशि कौन सी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक राशि के बारे में पंडित जी आपको बताते हैं, तो कौन सी है आज की राशि वो आपको बता देते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पूजा करने के दौरान कौन सा काम जरूर करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मेष, एरीस। आपको पूजा में नियमित रूप से आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
1: चलिए तमाम उपायों के बारे में आज के शो से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां पंडित जी ने आप तक पहुंचा दी हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की, तो आज का खास उपाय क्या कहता है पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो तो क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए इसी के साथ आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गणपति का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। तो महाराष्ट्र के बल्लाशाह की गंगा जोरा ने अपने गणपति की सुंदर तस्वीरें हमसे शेयर की है। लाल चौकी पर विराजे गणपति बेहद सुंदर दिख रहे हैं। खास बात यह है कि बप्पा के साथ ही उनकी सवारी यानी मूषक की भी तस्वीर है। इस प्रतिमा में बुद्धिदाता और उनके मूषक को पुस्तक हाथ में लिए दिखाया गया है। तो वहीं दूसरा वीडियो हमें दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत ने भेजा है। इस तस्वीर में सुंदर मंदिर में विराजे बप्पा की छवि देखने लायक है। रंग बिरंगी रोशनी और झालर से मंदिर को सजाया सवारा गया है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें
7: बदल रही है। सूर्य देव की चाल किसकी बढ़ने वाली है, मुश्किलें कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मदुरई का ऐतिहासिक और भव्य मीनाक्षी अम्मन मंदिर एक बार फिर से आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक भव्यता के रंग में रंगने जा रहा है। मंदिर में होने वाले सबसे पवित्र और बड़े आयोजन में शुमार महाकुंभाभिषेकम की तैयारियां अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए किस तरह पूरे मंदिर परिसर को भव्य सजावट से संवारा जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी, आकर्षक सजावट और धार्मिक प्रतीकों से सजा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है, और ड्रोन से लिए ये शानदार विजुअल्स मंदिर की भव्यता को और भी ज्यादा खास बना रहे हैं। ऊपर से नजर डालें तो पूरा परिसर रोशनी और सजावट से जगमगाता नजर आता है। महाकुंभाभिषेकम को लेकर मंदिर प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस पावन आयोजन के लिए मंदिर परिसर को सजाने संवारने के साथ व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में मदुरई का यह ऐतिहासिक मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर की ये भव्य तस्वीरें श्रद्धा, संस्कृति और उत्सव तीनों का अद्भुत संगम दिखा रही हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के प्रसिद्ध उमिया धाम में महाआरती की शानदार तस्वीरें। विश्व प्रसिद्ध उमिया धाम में मां उमिया की महाआरती में कल हजारों लोग शामिल हुए। रात के 12 बजते ही हजारों दीयों से विश्व उमिया धाम जगमगा उठा। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मां उमिया की महाआरती की गई। इस दौरान भारत के नक्शे में आशीर्वाद दिया जगमगाया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मां उमिया की इस महाआरती में हिस्सा लिया। वहीं 150 से ज्यादा बालिकाओं सहित हजारों लोगों ने रात 12:39 पर इस अवसर पर वंदे मातरम का गान किया, साथ ही जय उमिया जय जय उमिया के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें झांसी की। झांसी में महिलाओं ने बीती रात 12 बजे केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन का जश्न मनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने मोदी और योगी सरकार के शासन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में गणपति उत्सव की झलक। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए अंबानी परिवार ने इस बार भी भव्य तैयारियां की हैं। बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां इस खास जश्न का हिस्सा बनी। एंटीलिया चाराजा के गणेश उत्सव की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एंटीलिया के अंदर का एक वीडियो सामने आया जिसमें नीता अंबानी गणपति बप्पा की भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। वहीं मुकेश अंबानी परिवार सहित गणपति की आराधना और आरती करते नजर आए। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा में है एंटीलिया गणेश उत्सव से नीता अंबानी का डांस वीडियो जो वायरल हो रहा है। पिंक साड़ी और मल्टीलेयर डायमंड हार पहने नीता अंबानी बप्पा की भक्ति में मग्न नजर आई। वीडियो

नीता अंबानी पूजा स्थल पर मेहमानों और पंडितों के बीच नजर आती हैं। आरती और भजन की धुन के बीच वो मुस्कुराते हुए ताली बजा रही हैं और बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती दिख रही हैं। पप्पा के स्वागत की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। नीता अंबानी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गणेश उत्सव के दौरान देश भर में अलग अलग स्थानों पर भगवान गणेश के भव्य पंडाल सजाए गए हैं। हर पंडाल में अपनी अलग थीम पर सजावट की गई है। सामाजिक और धार्मिक संदेश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुजरात में सूरत भटार इलाके में तैयार किया गया गणेश पंडाल श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में जहां एक ओर भगवान गणेश की भक्ति और आराधना का माहौल देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर देश में हुए विकास कार्यों की भी थीम के माध्यम से दर्शाने का इसको प्रयास किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए यहां पर वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में गेट तैयार किया गया है। पंडाल के भीतर विशेष डिस्प्ले और विजुअल इफेक्ट लगाए गए हैं, जिसके कारण रेल यात्रा जैसा माहौल महसूस होता है। वहीं आगे बढ़ते ही श्रद्धालुओं को भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। इस गणेश पंडाल के ठीक बगल में एक और पंडाल है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के सामने विशेष लेजर शो का आयोजन किया जाता है। लेजर शो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान किए गए विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं को दर्शाने वाली प्रस्तुति दिखाई जाती है। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें छत्तीसगढ़ में 41वें चक्रधर समारोह की। इस दौरान कलाकारों ने अपनी कला के शानदार रंग बिखेरे। चक्रधर समारोह जानकारी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध सांस्कृतिक महाकुंभ है। ये रायगढ़ रियासत के पूर्व राजा संगीत सम्राट और प्रख्यात नर्तक महाराज चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। इस समारोह में कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक कला और सूफी गान जैसी देश विदेश की विविध संस्कृति विधाओं का संगम देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें हरिद्वार की, जहां योग गुरु स्वामी रामदेव ने खेली कबड्डी। स्वामी रामदेव ने बच्चों के साथ कबड्डी खेली और उनको कबड्डी खेलना भी सिखाया। कबड्डी खेलते समय योग गुरु स्वामी रामदेव का उत्साह, चुस्ती फुर्ती और चपलता देखते ही बन रही थी। स्वामी रामदेव के आवासीय शिक्षण संस्थान आचार्य कुलम में कल देर शाम द्वितीय भारतीय शिक्षा बोर्ड खेलों का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर रामदेव खुद मैदान में उतरे और बच्चों के साथ उन्होंने कबड्डी खेली। हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन यात्रा के अंतिम दौर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। अब तक रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां मत्था टेकने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं मॉनसून की रफ्तार थमने के बाद अब चारधाम की नियमित यात्रा भी दोबारा शुरू हो गई है। ऐसे में चारधाम यात्रा मार्गों पर भी रौनक लौट आई है।

0: हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। यहां अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में पहली बार 3,24,000 से अधिक सिख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में हर साल देश विदेश से सिख संगत मत्था टेकने पहुंचती है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी होती है। इस समय हेमकुंड साहिब में जबरदस्त ठंड के बावजूद यहां श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। यात्रा का अभी 20 दिनों से अधिक का समय शेष है और 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन यात्रा के अंतिम चरण में भी श्रद्धालुओं में उत्साह कायम है।
1: हेमकुंड साहिब यात्रा का अब तीसरा चरण, अंतिम चरण जिसे कहते हैं, वो शुरू हो गया है। हालांकि इस बार मानसून और यात्रा काल में जबरदस्त यात्री हेमकुंड साहिब में पहुंचे। देश और विदेशों से जो सिख संगत हैं वो हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने पहुंचे, वहीं रिकॉर्ड तोड़ अब तक की जो सबसे अधिक संख्या है, आज तक की बात करें तो 3,24,000 जो सिख श्रद्धालु हैं वो मत्था टेकने हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं, जो अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं अब 20 दिनों से कुछ दिनों का अंतर शेष रह गया है, जब हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। वहीं अब अगले वर्ष की जो यात्रा की तैयारियां हैं वो भी इसी वर्ष शुरू हो गई है।
0: इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद अब गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट ने अगले साल की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। अगले यात्रा सीजन के लिए राशन और अन्य जरूरी सामग्री पहले से ही हेमकुंड साहिब और घांघरिया में पहुंचाकर स्टॉक किया जा रहा है।
2: लगभग 3,24,000 यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं और ये जो संख्या है ये पिछले सारे सालों का जो आंकलन करें तो इस साल सबसे अधिक यात्री श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। नेक्स्ट यात्रा के लिए, अगली साल की जो यात्रा शुरू होनी है उसके लिए भी हेमकुंड साहब है घाघरिया में राशन वगैरह जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया गया है। पूरी तेजी से घोड़े और लेबर लगी हुई है।
0: हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ ही चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की भी यात्रा शुरू हो गई है। बरसात के दौरान सड़क, पानी और बिजली से जुड़ी जो भी समस्याएं आ गई थी उन्हें प्रशासन द्वारा तेजी से ठीक किया जा रहा है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। यात्रा के दूसरे चरण में बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो रहा है और प्रतिदिन औसतन 4,000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 17,36,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। चटक धूप के बीच सड़कों पर गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। लगातार गाड़ियां बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की ओर बढ़ रही है।
1: इतनी कठिन ये यात्रा है इस बार मानसून के दौर में उतनी ही जबरदस्त चली है। पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ अब दूसरे चरण में यात्रा आगे को बढ़ रही है। ऐसे में इस वर्ष नए रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है, जहां अब रौनक एक बार फिर से लौट आई है यात्रा मार्गों पर। बद्रीनाथ धाम में, हेमकुंड साहिब में लगातार हर कोई उत्साहित है, चाहे व्यापारी हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो, हर किसी को दूसरे चरण की यात्रा, खासकर मानसून के बाद अब आने वाला समय जो होगा श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का, इसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, यात्री और अधिक बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे।
0: मानसून के दौरान श्रद्धालु चारधाम यात्रा से परहेज करते हैं, लेकिन मानसून खत्म होने के बाद एक बार फिर से यात्रा में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कमल ने एनसिलोडी, चमोली, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है मालामाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: देशभर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का आज चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, लाल बाग की राजा के साथ हो रहे हैं साईं बाबा के दर्शन, भक्तों की भारी भीड़। उत्सव के रंग में रंगा मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, विधि विधान से शुरू हुआ महाकुंभाभिषेकम, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज, एलएन पार्क में पहली बार होगी दुर्गा पूजा, कोलकाता सनातनी संघ तैयारियों में जुटा। प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन, अहमदाबाद के उमिया धाम में की गई महाआरती, काशी में 76 बटुकों ने की भव्य गंगा आरती। दिल्ली में पीएम मोदी आज करेंगे सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन, 52 देशों की कंपनियां शामिल होंगी, सहयोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है लक्ष्य। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर के काबुल गली में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: शुभ समाचार की शुरुआत गणेशोत्सव के साथ, मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में भव्य पंडाल सज चुके हैं, उनकी रौनक देखते ही बन रही है। एक तरफ श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति जी का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो दूसरी ओर पुणे में भी एक से बढ़कर एक गणपति पंडाल बनाए गए हैं।
5: गणपति पंडालों में ही अनोखी थीम भी देखने को मिल रही है, मुंबई के चेंबूर में स्थित सहाद्री क्रीड़ा मंडल का गणेश पंडाल भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहां पर एक अनूठी थीम एनिमेशन कैरेक्टर्स की वजह से चर्चा में है और यहां पर सुपर हीरोज भी दिखाए गए हैं, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
4: तो वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है, इस मौके पर देश भर में खास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, अहमदाबाद के उमिया धाम में भी महाआरती की गई, तो पुरी के सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी खास अंदाज में पीएम को बधाई दी, तो ये तस्वीरें भी थोड़ी देर में होंगी आपके सामने।
5: तो वहीं राजस्थान की रण में भारत और अमेरिका की सेनाओं का दम भी देखने को मिला, दरअसल यहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें सैन्य जाबाजों को जिम्मेदारियां, तोप की तैनाती की प्रक्रिया और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझाया गया। तो उन सेनाओं का ये अभ्यास राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ और क्या खास रहा आगे बताएंगे।
4: इसके अलावा सभी की निगाहें दिल्ली पर है जहां भारत अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा, भारत को यहां सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल है, चर्चा है कि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, तो टीम इंडिया की मैच के लिए और क्या है रणनीति आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
5: गणेशोत्सव का चौथा दिन देश भर में पूरे विधि विधान के साथ गजानन की पूजा अर्चना हो रही है, जिसमें भक्त घरों और मंदिरों में गणपति बापा को स्थापित कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। 10 दिवसीय त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पुणे के दगड़ूशेठ मंदिर में गणेशोत्सव को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ गया है। जहां दगड़ूशेठ की आरती के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, वहीं बप्पा के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बप्पा का दर्शन कर रहे हैं। गणेशोत्सव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक देखने को मिल रही है। जहां पर अकोला में चार धाम की थीम पर गणपति पंडाल बनाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। इसके लिए कोलकाता सनातनी संघ तैयारियों में जुट गया है। मदुरई का ऐतिहासिक और भव्य मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर इन दिनों पूरी तरह से उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। मंदिर में आगामी महाकुंभ अभिषेकम की तैयारियां आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों और दुनिया भर से आने वाले भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान के धौलपुर में देव छठ पर लगने वाले मचकुंड मेले का शुभारंभ हो गया है। इसका शुभारंभ संतों के शाही स्नान से हुआ। इस मौके पर कई जिलों से आए हुए संतों की सवारियां बैंड बाजों के साथ मंगल आरती मंदिर से शुरू होकर मचकुंड सरोवर पहुंची, जहां संतों ने सरोवर में शाही स्नान कर तीर्थराज मचकुंड मेले का शुभारंभ किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर विशेष आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों ने पीएम के जन्मदिन पर भारत के नक्शे में आशीर्वाद दिया जगमगाया और साथ ही 150 से ज्यादा बालिकाओं सहित हजारों लोगों ने रात 12:39 पर इस अवसर पर वंदे मातरम का गान किया। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास में M777 अल्ट्रालाइट और विल्टर्स तोप को लेकर विशेष गतिविधियां आयोजित की गई। इसमें सैन्य कर्मियों की जिम्मेदारियां, तोप की तैनाती की प्रक्रिया और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझाया गया। दोनों सेनाओं का यह अभ्यास राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। आज से जापान में एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत होने जा रही है और क्रिकेट इस बार एशियन गेम्स में चौथी बार शामिल हुआ है। ऐसे में भारतीय महिला टीम की नजर दूसरी बार भारत की झोली में गोल्ड लाने की होगी। भारत पिछली बार यानी 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुका है। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुषों से पहले शुरू होगी और इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी।

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत गणेश उत्सव के भव्य दिव्य रंग के साथ। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, जयपुर और कोलकाता तक शहर शहर बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। कहीं भव्य पंडालों में गणपति विराजे हैं तो कहीं बप्पा का दिव्य श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं तो वहीं श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति जी का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दूसरी ओर पुणे में भी एक से बढ़कर एक गणपति पंडाल बनाए गए हैं। गणपति पंडालों में ही अनोखी थीम भी देखने को मिल रही है। मुंबई के चेंबूर स्थित सहाद्री क्रीड़ा मंडल का गणेश पंडाल भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ एक अनूठी थीम एनिमेशन कैरेक्टर्स की वजह से चर्चा में है। यहाँ सुपर हीरोज भी दिखाए गए हैं।

प्रदेश भर में गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्य पंडाल यहाँ पर सजाया गया है, यहाँ पर किस तरह से आरती पूजन किया गया है वो तस्वीरें आप देखिए। जेएनटी के माध्यम से घर बैठे हम आपको दर्शन भी करवा रहे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं जो कि मुंबई में स्थित है। यहाँ पर सुबह सुबह आरती की गई है, गणेश चतुर्थी जारी है, देश भर में गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी पर्व पर कुछ इस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है जो दर्शन करने के लिए

0: महाराष्ट्र का कोना कोना बप्पा के रंग में रंगा हुआ है। गणेशोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा उमंग मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में नजर आ रही है। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरा इलाका गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज रहा है। तो ये तस्वीरें लालबाग के राजा की, आप देखिए कितनी हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है बप्पा के दर्शन के लिए, जिन्हें मन्नतों का बप्पा भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी आप बप्पा से यहाँ मांगते हैं उसकी पूर्ति होती है, और इसीलिए कई सालों से यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं बप्पा की एक झलक पाने के लिए।
1: तो देखिए देश भर में किस तरह से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, धनंजय हमारे साथ अकोला से बने हुए हैं, तो वहीं योगेश हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अकोला चलते हैं। धनंजय, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं?
2: जी दीपाली जी और गीतिका जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो मूर्ति है अकोला में जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो रिद्धि सिद्धि मंडल, जिसे एनआरपी का राजा भी कहा जाता है, ये बड़ोदरा से लाई गई है। और इस पूरी प्रतिमा में देखिए आपकी शिव बारात की जो झांकी है वो गणेश बप्पा के पूरी तरीके से यहाँ पर जो है झांकी यहाँ पर लाई गई है। लगभग 30 से 35 फीट की ये पूरी मूर्ति में जो है बप्पा की सुंदर सजाई मूर्ति जो है वो उसे ज्वेलरी से सजाया गया है। तो बप्पा की ये भव्य मूर्ति जो है अकोला के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। महस मूर्ति नहीं है तो इस परिसर में जो है वो पूरी तरीके से चार धाम का जो है यहाँ पर डेकोरेशन किया है, झांकी की गई है। और शिव बारात में ये जो पोस्टर्स लगे हैं ये तो महस इस गणपति बाप्पा के सामने के पंडाल के पोस्टर्स है, जहाँ पर शिव बारात की पूरी तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया है। उनके उस वक्त के जिस तरीके के शिव बारात और शिव लगन के वक्त के जो पूरे फोटोज है ये यहाँ पर लगाए गए हैं। और सबसे अहम बात ये है कि कार्यकर्ता जो है रात दिन मेहनत कर ये सभी जो है यहाँ पर बप्पा की पूजा आराधना साधना कर रहे हैं। हमारे साथ इस मंडल के अध्यक्ष है कुणाल जाजू, कुशल जाजू किस तरीके से कहेंगे कि बप्पा की आज ये भव्य मूर्ति, रात को बहुत देर हुई है लेकिन आज सुबह आरती के लिए आप तैयार हो गए हैं?
3: कल 3 बजे हम लोगों को आज सुबह हम लोग आ गए। ये स्पेशली हमने मूर्ति वडोदरा से गुजरात से लेके आई है। पहली बार अकोला के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मूर्ति महाराष्ट्र के बाहर से आई है। इस साल हमने चार धाम का पूरा सेटअप किया है अकोला वालों के लिए, ताकि जो लोग चार धाम जाके दर्शन ना कर सके वो यहीं पे आके चारों धाम के दर्शन कर सके।
2: क्या कहेंगे, कितना उत्साह है बप्पा की इस प्रतिमा को लेकर और उत्सव?
4: बहुत उत्साह है, दो तीन महीने से ऊपर की मेहनत है और बहुत बहुत बहुत मेहनत करके यह प्रयोग सफल हुआ है।
2: क्या कहेंगे, कितना उत्साह लग रहा है, 10 दिनों में किस तरीके से नियोजन है, आयोजन है, बप्पा को मोदक भी खिलाने हैं?
5: सर जितना उत्साह लोगों में है ये चार धाम की यात्रा का दर्शन करने के लिए, उतना ही उत्साह सब कार्यकर्ताओं में। ये लोगों की जो प्रतिक्रिया हमारे को मिल रही है दर्शन के बाद में, उस वही हमारी उत्साह इतना बढ़ा रहा है कि इस दर्शन को जब हमने चार धाम यहाँ पे साकार किया है और हमारे गणपति बापा को वडोदरा से यहाँ पे विराजमान किया है, उसका जो उत्साह हमारे को मिल रहा है, उसका जो प्रोत्साहन हमारे को मिल रहा है वो देखते ही बनता है। सर
2: देख, आप भाव विभोर हो गए, आपके आंखों में पानी दिख रहा है, कितनी मेहनत है ये?
5: सर ये हम 1.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं इसको साकार करने के लिए। हमने हमारी दुकान वगैरह जो भी हमारा बिजनेस है वो सब कुछ छोड़ दिया है और सिर्फ इसी इसमें लगे है कि हमारे बापा का जो महोत्सव है वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न और साकार हो जाए।
2: देखो भक्तों की जो है अपार श्रद्धा गणपति बाप्पा, क्योंकि गणपति बाप्पा जो है वो सुख करता है, मानो प्रथम पूजनीय है। और बाप्पा के इस 10 दिन के, इस वक्त तो 12 दिन के गणपति है गीतिका जी, तो 12 दिन में जो है 2 दिन और कार्यकर्ताओं को या भक्तों को जो है उत्साह के लिए मिले है, तो ऐसे में जो है भक्त है वो बेहद भाव विभोर भी हो रहे हैं और बेहद खुश हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने हमारा बिजनेस और हमारे कारोबार को थोड़ी से अलग रख दिया है, क्योंकि 10 दिन ये है ये साल में दोबारा नहीं आने वाले।
0: धनंजय जी, ये बप्पा की महिमा है और ये लोगों के भाव हैं। कहते हैं ना, भगवान जो है वो भाव का भूखा है और लोगों के भाव ही हैं जो इतना सुंदर पंडाल सजा गया है। और सबसे सुंदर बात इस पंडाल की ये है, यूनिकनेस इसकी ये है कि इसमें चारों धाम के दर्शन जो है वो भक्तों को हो रहे हैं एक साथ। और बहुत ही सुंदर पंडाल की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं धनंजय जी। लौटूंगी आपके पास, चलिए रुक कर लेते हैं पुणे का भी, जहां से योगेश हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है, किस तरह के रंग है वहां पे गणेशोत्सव को लेकर, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए।
6: जी, इस समय हम नागपुर में हैं, नागपुर के दक्षिणामूर्ति गणेश उत्सव पंडाल में इस समय हमारी मौजूदगी है। दरअसल ये नागपुर के सबसे पुराने गणेश उत्सव मंडल सार्वजनिक पंडालों में से एक है। 107 सालों से यहाँ पे भगवान गणेश जी की मूर्ति जो है वो बिठाई जाती है। हम देख सकते हैं अभी अभी आरती जो है वो संपन्न हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आरती के लिए पहुंचते हैं सुबह और शाम, प्रतिदिन दो दिन यहाँ आरती संपन्न होती है। गणेश जी की मूर्ति हम यहाँ देख सकते हैं, भव्य ऐसी मूर्ति है, सोने के आभूषणों के साथ गणपति बाप्पा को सजाया गया है। नागपुर के प्राचीन गणेश उत्सव सार्वजनिक पंडालों में से एक यह दक्षिणामूर्ति गणपति उत्सव मंडल है जहाँ हमारी मौजूदगी है। नागपुर में कई जगह पर सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडालों में अलग अलग प्रतिकृतियां इस समय बनाई गई है। ये दक्षिणामूर्ति गणेश पंडाल जो है, सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल, यहाँ पर पुणे के आलंद की जो प्रतिकृति है वो बनाई गई है, संत तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, और इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद मंडल के पदाधिकारी है, ये बताइए कितने साल आपके इस सार्वजनिक गणेश उत्सव को हुए है और किस तरीके से इसे सजाया गया है?
7: इस साल हमारा 107वां वर्ष मनाया जा रहा है। 1920 में जब लोकमान्य तिलक जी ने गणपति मंडल की स्थापना की थी, तब से ये गणपति बैठ रहा है और इस साल 107वां वर्ष है। इस साल का महत्व ऐसा है कि जो ज्ञानेश्वरी है, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने लिखी हुई भगवद गीता का जो भाव दीपिका है, उसको इस साल में 750 वर्ष पूरे हो गए। उसी निमित्त हमने ये मंदिर का निर्माण करने का प्रयत्न किया है कि जो आळंदी में जो मंदिर है उसी प्रकार का मंदिर यहाँ पर हमने प्रतिकृति बनाने का प्रयत्न किया है। सारे मना के श्लोक यहाँ पर लगाए गए हैं और सुबह जैसे मंदिर में सुबह काकड़ आरती होती है, उसी हिसाब से काकड़ आरती भी यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वहां पर भी हम प्रयत्न करते हैं कि उसी प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाए, ऐसा सारा देखावा यहाँ पर किया है। सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप कल हमारे यहाँ जो प्राचीन मंदिर के अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दादा पाटिल, उन्होंने भी यहाँ पर आके हमें उद्बोधन दिया है। जो यंग जनरेशन है उनके लिए ज्ञानेश्वरी का क्या अर्थ हो सकता है वो बताया गया।
6: जी, देखा आपने कि नागपुर के अलग अलग सार्वजनिक पंडालों में बड़े ही धूमधाम के साथ गणपति उत्सव मनाया जाता है, चाहे वो घरों में रहे या सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडालों में है।
1: जी बिल्कुल, यही खासियत है वहाँ की, बेहद शानदार तरीके से बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश महोत्सव मनाया जाता है। इसी बीच और भी कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हम दिखा देते हैं जरा। महाराष्ट्र के पुणे में भी गणेशोत्सव की अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। वहां पर शहर में कई गणपति पंडाल सजे हुए हैं, जिनमें से एक है श्रीमंत दगदू शेठ हलवाई गणपति का पंडाल, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर थीम पर पंडाल बनाया गया है, तस्वीरें देखिए।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश का मनोहारी स्वरूप और उस स्वरूप के दर्शन के लिए लगी है भक्तों की लंबी लंबी कतार। यह पुणे का सबसे प्रसिद्ध श्रीमंत दड्डू शेठ हलवाई गणपति का पंडाल, जो गणेशोत्सव के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग दूर दूर से न सिर्फ श्रीमंत दड्डू शेठ हलवाई गणपति के दर्शन और पूजन के लिए पहुँच रहे हैं, बल्कि इस खूबसूरत पंडाल को देखने के लिए भी दौड़े चले आ रहे हैं।
1: पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में है। इस बार इसे प्रेम मंदिर कहा जा रहा है। आप देख सकते हो भीड़ जुटी है भक्तों की, और गणपति मेरे महादेव का जो उनका मुकुट है वो पहने हुए हैं, गणेश जी है हाथ में मोदक है, और पुणे का सबसे बड़ा गणेशोत्सव यहाँ किया जाता है। पुणे में 5 मानाचे गणपति, यानी कि पहले 5 रेपुटेड गणपति है, उनके अलावा ये अहम गणेश है जहाँ भक्तों की भीड़ रहती है।
0: परंपरा के अनुसार इस साल भी गणपति पंडाल को थीम बेस्ड ही बनाया गया है। पंडाल की ये थीम वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित बताई जा रही है, इसलिए मंदिर की दरो दीवार पर राधा कृष्ण की लीलाओं को भी बेहद करीने से उकेरा गया है, जो इस पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ खींच ले रही है।
2: गणेश जी जो विराजमान हुए उनके द्वारा ये पूरा चैतन्यमय प्रेम मंदिर हो गया है, नहीं तो वो एक सेट हो सकता था, लेकिन गणेश जी के स्थापना से यहाँ चैतन्य
1: से जिंदा दिल बनाया गया है।
2: यहाँ चैतन्य की लकीर, ये भक्तों की श्रद्धा से
1: जी।
0: इस भव्य पंडाल को प्रेम मंदिर की तर्ज पर बनवाने के पीछे सिर्फ धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि एक खास उद्देश्य भी इससे जुड़ा हुआ है। दुनिया में मौजूदा परिस्थितियों के बीच प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश लोगों तक पहुंचाने की दरअसल कोशिश की गई है।
2: ये हमारा प्रेम मंदिर का कि दुनिया में भाईचारा बना रहे, बंधुभाव बना रहे
1: जी,
2: ताकि सब लोग मिलजुल के रहे, क्योंकि हमारे भारत की सोच है वसुधैव कुटुंबकम,
1: राइट,
2: इस सोच से हम चल रहे हैं। इसीलिए हमने ये गणेश उत्सव के माध्यम से जो 150 देशों में ये मनाया जाता है, इतनी बड़ी व्यापकता इस गणेश उत्सव की है, तो इसके माध्यम से ये संदेश हम देना चाहते हैं।
0: रोजाना श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत हैं। पुणे से ओमकार बाबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फेरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है, जो इन दिनों लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है, और इसे बनाने में 2 महीने से अधिक का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ तो मूर्ति के साथ फोटोज और सेल्फीज भी लेते दिखाई दिए।
4: पिछले हर साल अलग अलग कुछ अलग अलग हम बनाते हैं। अगली बार है ना शंख से बनाया हुआ था, ऐसे ही गणेश को शंख से हम बनाया था। सबने हमने मतलब वो उसका निवर्जन डेट होने के बाद उसको है ना सबको बांटा था पूरा गांव में। अभी ये पेन को भी वही किया जाएगा, सबको पूरा जो जो गणेश के भक्त होता है ना उन सबको बांटा जाएगा, सबको ये पेन सबको।
3: और गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं, और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर आगमन हुआ होगा। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें उन वीडियोज को स्क्रीन पर दिखाने का मौका दीजिए। नंबर व्हाट्सएप पर है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना वीडियो हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस या तस्वीरों को भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो शेयर करते हैं तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिख के भेजिए।

गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। जी हाँ, पुणे से PICT के छात्रों ने हमें गणपति पूजन का वीडियो भेजा है जिसमें स्टूडेंट्स बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं। गणेश पूजन के दौरान इन छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आरती के बाद ये स्टूडेंट्स बप्पा के साथ ग्रुप में फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर से आनंद कर्मा ने भेजी है। इस वीडियो में बप्पा को जनेऊ धारण कराया गया है। सफेद पुष्पों से बप्पा का आसन सजाया गया है। पीली पोशाक में बप्पा बेहद सुंदर लग रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए गणपति उत्सव के भव्य रंग।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो
1: बदल रही है। सूर्य देव की चाल किसकी बढ़ने वाली है, मुश्किलें कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: देशभर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का आज चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। महाराष्ट्र की चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, लालबाग के राजा के साथ हो रहे हैं साईं बाबा के दर्शन, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। उत्सव के रंग में रंगा मदुरई का मीनाक्षी अमन मंदिर, विधि विधान से शुरू हुआ महाकुंभाभिषेकम, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन, अहमदाबाद के उमिया धाम में की गई महाआरती, काशी में 76 बटुकों ने भव्य गंगा आरती की।
10: दिल्ली में पीएम मोदी आज करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन, 52 देशों की कंपनियां होंगी शामिल, सहयोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य।
9: पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर के काबुल गली में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर।

0: अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। गणेशोत्सव के दौरान पंडालों की थीम वाकई में देखने लायक है। मुंबई में तो ये मानिए कि थीम बेस्ड पंडालों में बेस्ट कौन है इसको लेकर जैसे होड़सी मच गई हो। भले ही भगवान गणेश को समर्पित इस पर्व को लेकर लोगों की आस्था अपार है, लेकिन थीम बेस्ड गणेश पंडाल मानो गणेशोत्सव की भव्यता में चार चांद लगा रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मुंबई के ही दो बड़े गणेश पंडालों में, जहां की चहल पहल और बप्पा के पंडाल की थीम भी देखने लायक है।
1: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक है, हर तरफ गूंज रहे बप्पा के जयकारों के बीच उत्साह है, उमंग है। बस ये मानिए कि परंपरा की सतरंगी छटा घर घर और गणेश पंडालों में बिखरी हुई है। इनमें गणेश पंडालों की चमक के तो कहने ही क्या। बप्पा का अद्भुत स्वरूप, जबरदस्त श्रृंगार और उनकी दिव्य छटा हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ऐसे में मुंबई के चेंबूर स्थित सह्याद्री क्रीड़ा मंडल का गणेश पंडाल भी अपनी एक अनूठी थीम एनिमेशन कैरेक्टर की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है।
2: यहाँ पर स्पेशली कार्टून्स रखे गए हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तस्वीरों में देखें कि वो सारे कार्टून यहाँ पर इस समय रखे गए हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जिसमें क्रिश फिल्म आई थी उनकी भी तस्वीरें हैं, साथ ही साथ छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, और वो तमाम जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और वाकई में इन्हें देखने के लिए बच्चे मुंबई के कोने कोने से यहाँ पर अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कुछ इस तरह की थीम सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में देखने को मिल रही है।
1: दरअसल इस साल सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल अपनी गोल्डन जुबली यानी 50वां साल सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस मौके पर बप्पा की आभा तो बेहद खूबसूरत है ही, साथ में पंडाल का थीम सुपर हीरोज दर्शाए गए हैं।
3: 15 अगस्त 1976 को कबड्डी क्लब के नाम से रजिस्टर हुआ सह्याद्री क्रीड़ा मंडल, और उस जमाने में जो यंग लोग थे उन्होंने गणेशोत्सव शुरू किया और आज 50 साल हो गए। तो बच्चों को फिर एक बार गणपति के मूड में लाने के लिए ये थीम बनाया गया है।
1: कभी 1977 से लगातार हर साल अपनी भव्य गणेश पंडाल और झांकियों के लिए मशहूर सह्याद्री क्रीड़ा मंडल इस बार भी मुंबई के प्रमुख गणपति स्थलों में शामिल है, जहां एनिमेटेड कैरेक्टर्स के साथ 12 दिन के लिए गणपति महाराज को विराजित किया गया है।
2: के लिए स्पेशली बच्चों के लिए इस बार 50वां साल जो है इस तरह के कार्टून रखे गए हैं, और स्पेशली सभी यहां पर आके बकायदा सेल्फीज ले रहे हैं, क्वालिटी टाइम अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, और फिर एक बार बप्पा का भी यहां पर आकर दर्शन कहते हैं। देखिए गणेश उत्सव है और इस बार 12 दिन बाद बप्पा का विसर्जन होने वाला है।
1: मुंबई के गणेश पंडालों में परेलचा राजा भी सबसे पुराने और ऐतिहासिक सार्वजनिक मंडलों में से एक है। बापा की ये प्रतिमा बेहद सुंदर और भव्य है, जिनके थीम संत वारकरी और पंढरपुर वारी पर आधारित है। साथ ही इस गणेश पंडाल में गरुड़ स्तंभ और चंद्रभागे के पवित्र जल का प्रतीक भी स्थापित किया गया है।
2: सोई नहीं, आंखें एकदम लाल है, मतलब 24 घंटे बप्पा की
4: सेवा हमारा इधर ही रहता है, पूरा बप्पा के इधर ही 24 घंटा रहता है। सुबह 6 बजे तले वापस नहा के वापस इधर ही आते हैं।
5: गणपति का फेस्टिवल में परल लालबाग की जो लाइफ रहती है वो अलग ही रहती है। महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र में परल लालबाग की जो लाइफ रहती है गणेश फेस्टिवल की, वो बहुत अलग ही रहती है।
2: गली में एक एक बप्पा,
5: बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। प्रसाद हो, भीड़ हो, गणेश भक्त हो, सब एक दूसरे को अच्छी तरह से ख्याल करके मनाते हैं।
1: परेलचा राजा के इस निराले रूप में भगवान विट्ठल की भक्ति और वारकरी परंपरा का मेल है। इसी परंपरा की सुंदरता को निहारने के लिए लोग काफी संख्या में पंडाल में पहुंच रहे हैं।
2: इन्होंने बताया 2 दिन भी कम पड़ेंगे, साउथ मुंबई में विराजमान हुए सभी उन बड़े बड़े गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए, लेकिन आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, फिर भी टॉप 10 गणपतियों का दर्शन कर सकते हैं, जिसमें से एक परेल के राजा का भी नाम आता है।
1: फिलहाल तो मुंबई के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा की एक से बढ़कर एक दिव्य प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को अभिभूत कर दे रही हैं। यानी अलग अलग शहरों में बप्पा का निराला अंदाज मगर आस्था का एक ही मिजाज, जो गणेशोत्सव की भव्यता में चार चांद लगा रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: तो गणेश उत्सव के दौरान देश भर में गणपति बप्पा की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। लेकिन इसी दौरान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता की दो अनूठी तस्वीरें सामने आई, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। कहीं पौधों से बप्पा को तैयार किया गया है, तो कहीं सौंफ, लौंग और सुपारी जैसी चीजों से ही विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाई गई है। जाहिर है, ऐसी रचनात्मक पहल न सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था को बनाए रखती है, बल्कि हमारी आबो हवा को सुरक्षित रखने का संदेश भी देती है और साथ ही ये साबित करती है कि त्योहारों की खुशी और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों एक साथ संभव है।

0: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक के बीच ये इको फ्रेंडली बप्पा भी खूब चर्चा में है, जो मिट्टी या दूसरी चीजों से नहीं बल्कि जीवित हरियाली का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं। 21,000 जीवित पौधों से बने ये गणेश भगवान पर्यावरण को बचाने का खास संदेश दे रहे हैं, जिसे आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में मूर्त रूप दिया गया। यहाँ के एक गांव सिरासापल्ली गांव में बने श्री चिंतामणि गणपति दत्ता क्षेत्रम में यह अनोखी सस्या गणपति प्रतिमा पंडाल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बेहद ध्यान से काटे गए 21,000 पौधे और अंकुरों को बप्पा के सिर, सूंड, कान और पूरे शरीर पर बेहद खूबसूरती के साथ लगाया गया है, जो प्राकृतिक हरियाली को बचाए रखने का खास संदेश दे रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ही लोगों को भक्ति के साथ पर्यावरण जागरूकता से जोड़ना है। ये पौधों वाली गणपति की प्रतिमा दर्शा रही है कि हमारा समाज अपने तीज त्योहारों को अनोखा आकर्षक बनाने के साथ हरियाली को भी अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा माने, ताकि इस गणेशोत्सव के जरिए कचरा कम पैदा हो और जीवन ज्यादा पनपे। वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में भी एक ऐसा ही अनोखा गणेश पंडाल सजा है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली खाने की चीजों से पप्पा तैयार हुए हैं। मूर्ति देखने में बेहद सुंदर होने के साथ साथ अपनी खास बनावट की वजह से भी अलग है, क्योंकि इसमें सुपारी, सौंफ, लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इन बप्पा के विसर्जन के समय डीजे का इस्तेमाल भी नहीं होता है।
1: हम लोग डीजे भी यूज नहीं करते हैं, तो उसे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। और जो हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो मतलब जो मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं, तो वो पानी में भी प्रदूषण नहीं फैलाता, क्योंकि उसमें रंग नहीं है। तो एक बार हम लोगों ने हल्दी कुमकुम से भी गणपति की स्थापना की थी।
0: दरअसल कारंजा शहर का श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल हर साल इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाता आ रहा है। ऐसे में इस बार भी पर्यावरण पूरक गणेश जी की ये प्यारी सी मूर्ति लोगों को लुभा रही है।
2: अभी आप देख रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है, लोग डीजे बजा रहे हैं और वायु प्रदूषण हो रहा है, तो इससे अपना पानी खराब हो रहा है प्लास्टर पर इसे। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे अच्छा कुछ अच्छा हो रहा है।
0: सौंफ, सुपारी, इलायची और लौंग से तैयार की गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति का वजन करीब 70 से 80 किलो है, जिसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और लगभग 1 किलो लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रतिमा को तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगा है। यानी मूर्ति की खास बात सिर्फ इसका अनोखा निर्माण ही नहीं, बल्कि इसे इको फ्रेंडली भी रखा गया है। बता दें कि श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल पिछले कई सालों से इसी तरह के कई अनूठे प्रयोग करता आ रहा है। पिछले साल तो मंडल ने डेली रूटीन में खाई जाने वाली दालों से ही गणेश मूर्ति बना डाली।
3: इससे पहले मंडल ने अनाज का गणपति बनाया, दिवनाली का गणपति बनाया, पिंसिल का गणपति बनाया, विविध प्रकार के जो वाद्य रहते उसका गणपति बनाया था, डायमंड का गणपति बनाया था, हर प्रकार ऐसा अलग अलग करीबन 15-16 साल से हम यह परंपरा कायम रखते हुए इस साल भी हमने इसी प्रकार की मूर्ति बनाई है।
0: फिलहाल तो इको फ्रेंडली मूर्तियों के इस दौर में गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और क्रिएटिविटी की एक से बढ़कर एक अनोखी मिसाल पेश कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली से अब्दुल और महाराष्ट्र के वाशिम से जाका बी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और मदुरई के श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में आज भव्य महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन चल रहा है। ये विशेष आयोजन 17 साल बाद हो रहा है। कुंभ अभिषेकम के अनुष्ठान के लिए मंदिर में भव्य आयोजन किए गए हैं। पूरे मंदिर की खास साज सज्जा की गई है। रात के वक्त मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हो रहा है। कुंभ अभिषेकम के अनुष्ठान सुबह से ही शुरू हो गए हैं। इस आयोजन के अनुष्ठान कई दिनों पहले से ही शुरू हो गए थे और आज कुंभ अभिषेकम की परंपरा निभाई जा रही है। इस पूजा में शामिल होने के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है।

0: पूजा का आयोजन कर रहा है। आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालया के अगले दिन एलन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। इस भव्य महोत्सव में बंगाल के लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आस्था भक्ति के रंग बिखेरेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
1: लाइटिंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के लिए बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों को, दुनिया में रहने वाले बंगाली और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं, बंगाल के रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं को ये पूजा समर्पित है। ये उनका पूजा है। आराम से 10 दिन आए, पूजा देखें और ये कह के जाएं कि अपन पूजा, ये हमारा पूजा।
0: आयोजकों का दावा है कि एलन पार्क में इस दुर्गा पूजा बंगाली सनातनी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और इस महाआयोजन को लेकर यहाँ के लोगों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं और इस मौके पर देश भर में खास आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है और इसी खास मौके पर कहीं केक काटा जा रहा है तो कहीं पीएम मोदी के लिए पूजा करवाई जा रही है। प्रयागराज और वाराणसी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर विशेष आयोजन किए गए, जहां लोगों ने पीएम के जन्मदिन पर भारत के नक्शे में आशीर्वाद दिया जगमगाया। साथ ही 150 से ज्यादा बालिकाओं सहित हजारों लोगों ने रात 12:39 पर इस अवसर पर वंदे मातरम का गान किया। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास आर्ट भी की गई। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने पीएम की तस्वीर बनाई और उन्हें बर्थडे की बधाई दी। वहीं पुरी में ही आर्टिस्ट मानस कुमार ने एनिमेशन से पीएम की तस्वीर बनाई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आज उनका 76वां जन्मदिन है और इसी मौके पर कुछ इस तरह से उन्हें बधाई दी गई है उनके जन्मदिन की। सैंड आर्टिस्ट की तस्वीर आप देखिए जो उन्होंने बनाई है, किस तरह से अपनी कलाकारी उन्होंने दिखाई है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बदल रही है सूर्य देव की चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, कौन होने वाला है माला माल, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: देश भर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, लालबाग के राजा के साथ हो रहे हैं साईं बाबा के दर्शन, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। उत्सव के रंग में रंगा मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, विधि विधान से शुरू हुआ महाकुंभ अभिषेक, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन, अहमदाबाद के उमिया धाम में की गई महाआरती, काशी में 76 बटुकों ने भव्य गंगा आरती की। दिल्ली में पीएम मोदी आज करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन, 52 देशों की कंपनियां होंगी शामिल, सहयोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है लक्ष्य। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर के काबुल गली में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन की और इसके प्रभाव की। इसके अलावा बताएंगे आपको 12 राशियों का दैनिक राशिफल और एक विशेष उपाय बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:47 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 7:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के कन्या संक्रांति के बारे में, यानी सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। ये पूरी स्थिति क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि सूर्य की बड़ी फेवरेबल राशि नहीं है, क्योंकि कन्या राशि से सूर्य की कमजोरी शुरू हो जाती है। तो सूर्य की स्थिति कन्या में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती। अब सूर्य जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ हो जाएंगे और मंगल और शनि के प्रभाव में हो जाएंगे। सूर्य की ये जो स्थिति है, मंगल शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ेगा, ये स्थिति बहुत शुभ नहीं है। इसका प्रभाव लगभग 1 तक बना रहेगा, दुनिया के लिए और लोगों के लिए। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर होगा और अलग अलग राशियों के जीवन में ये परिवर्तन अगले 1 तक असर डालेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो जैसा आपको बताया कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। कैसा प्रभाव होगा? मेष राशि की अगर बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। राशि परिवर्तन शुभ है। वृषभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं, सतर्क रहें। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण पारिवारिक अशांति हो सकती है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। इस समय चोट चपेट से आपको सावधान रहना है, मिथुन वाले दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कर्क राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर के लिए अच्छा है, करियर की समस्या आपकी हल होगी, नया मौका नया अवसर मिल सकता है और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से बन जाएंगे, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से परिवार में बेवजह का विवाद हो सकता है, शांत रहें और चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि इस समय आप चोट चपेट दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें दे सकता है और अगर लापरवाही करेंगे तो बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कन्या वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपकी सेहत में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा,
दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बताते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा। तुला राशि की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में जरा भी लापरवाही इस समय मत करिएगा, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी आंखें बिगड़ सकती हैं, धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको संपत्ति का और धन का लाभ होगा, करियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके करियर में बदलाव दिखा रहा है और आगे चल करके ये बदलाव फायदेमंद साबित होगा। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है, सूर्य का राशि परिवर्तन आपका स्थान परिवर्तन करा सकता है। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके ऑफिस में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए ऑफिस के कार्यों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। पैरों में चोट चपेट लग सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन चोट चपेट दे सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फीवर हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है। इस समय करियर के मामले में, विवाह के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, निर्णय गलत हो सकता है। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में दिक्कतें ला सकता है, करियर में समस्या आपके आ सकती है। खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि पेट की दिक्कतें, लिवर की दिक्कतें और डाइजेशन की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाइएगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि,
करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको 12 राशियों के बारे में बताया कि किन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है और किन के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा खराब है। तो अगर राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणहि सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः या जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। बड़े सारे मंत्र मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे, सरलता से आप जप सकें उस मंत्र का जप करिएगा। और सबसे सरल मंत्र आप जानते हैं, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पढ़िएगा। रोज सवेरे हरी सौंफ खाकर घर से निकलिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन का खराब प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, जिस किसी दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है उस दिन को सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। तो जिस दिन सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए, संक्रांति वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन वाले दिन, तो इससे सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए
और हर रविवार को किसी भी मंदिर में धर्म स्थान में जाकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

सब देवता श्रृंगार कर रहे, बराज जाना है, तो सबसे ज्यादा श्रृंगार कर रहा है यमराज। एक तो उसे कहीं बुलाया नहीं जाता, बड़े कम बराते मिली, ये स्पेशल बरात। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। अब यमराज लगा भैंसा को रगड़ने, लगा रगड़ने, एकदम रगड़े। अब भैंसा बेचारा बड़ा परेशान, बोले महाराज एक बात बताओ, आज इतनी रगड़ाई क्यों हो रही है? बोले आज तुझे काला से गोरा करें। क्यों? बरात जाना है। भैंसा बोला महाराज चाहे जितना रगड़ लो, खाल चाहे छिल जाएगी, पर हम गोरे ना हो पाएंगे, हमें ऐसे ही रहने दो, रगड़ाई ना करो महाराज, रहने दो ऐसे ही रहने। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे भगवान श्री विष्णु भगवान भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी श्रृंगार कर रहे, देवी देवता माता जी भी आए, देवी देवता सब श्रृंगार कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। अब आगे का जो श्रृंगार सब देवताओं का हो रहा वो बेहतर हो रहा। तो नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले कैसे श्रृंगार करें, कैसे करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले पहले तो इनकी जटाओं को ठीक करो, मुकुट चाहिए। अब मुकुट कहां से लाएं? तो नंदी जी ने उपाय निकाला, दूल्हे के सिर पर मुकुट होता है, अब भोले बाबा का मुकुट क्या है?

0: कौन सा मुकुट?
1: जटाओं का मुकुट। तो जटाओं का मुकुट बना दिया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बना दिया, तो नंदी जी बोले, भाई मुकुट हो गया, अब मोर चाहिए। ये मोर क्या है? बोले दूल्हा के आगे लंबा लंबा पतला पतला लटका रहता है, वो लटक जाए तो मोर हो जाएगा, दूल्हा का श्रृंगार बेहतर हो जाएगा, मुख दिखे भी और दिखे भी ना, ऐसा हो, उसे मोर कहते हैं। तो बोले भाई मोर कहाँ से मिलेगा? बोले मोर तो नहीं है। नंदी जी बोले रुको, हम अभी लेकर आते हैं। नंदी जी भागे भागे गए और एक किनारे में कैलाश पर्वत पर जाकर पतले पतले छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, और सांपों को पकड़कर सांपों के मुंह में एक सांप की गांठ लगाई और भागे भागे आए, मुंह को फंसा दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। बोले लो बढ़िया मोर बन गया है। तो भोले बाबा को भस्म, राख, मुर्दे की राख से पाउडर बनाकर श्रृंगार किया गया। नंदी बोले बाबा का श्रृंगार, अब भस्म का तो हो गया, पाउडर तो हो गया, अब भाई शेरवानी तो है नहीं। बाबा आपकी आज्ञा हो तो किसी का कोट नहीं तो कम से कम गमछा उधार मांग ले। बोले बाबा, बोले नहीं ऐसे ही काम चलेगा। नंदी जी बोले महाराज, जिस हिसाब से यहाँ बैठे हो, यहाँ तो हम लोग रहते हैं तो काम चल जाता है, वहाँ बारात वाला मामला है, जिसके यहाँ पर लड़की लेने जाएंगे, शादी में जाएंगे, आपको देखेगा इस हाल में कौन विवाह कर देगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो इज्जत तो ढक लो, इज्जत तो ढक लो। अब कैसे ढके? तो नंदी बोले महाराज, आप बुरा ना मानो तो थोड़ी देर खड़े हो। भोले बाबा खड़े हुए तो जिस मृग छाला पे बैठे थे उसी मृग छाला को कमर में लपेट दिया। बोले कम से कम इज्जत तो बची रहे। बोलो सीताराम। भाई शेरवानी नहीं पहननी पर कम से कम यही बांध लो। अच्छा शेरवानी नहीं पहननी तो मृग छाला बांध लो, पर मृग छाला में बटन थोड़ी थे जो रुक जाए। अब नंदी जी के सामने दूसरी दिक्कत कि मृग छाला कमर तो मैं बांध तो दी पर ये रुके कैसे? तो किसी ने कहा एक सेवक की ड्यूटी लगाओ, वो पकड़े रहे। नंदी जी बोले वाह, मान लो बारात के बीच में जब भांवर में सात भांवर पड़े उसी बीच में उसका हाथ दर्द करने लगे, वो हाथ पलटे और छूट जाए तो सब मामला ना गड़बड़ हो जाएगा है? इतनी बनी बनाई इज्जत सवा गड़बड़ हो जाए तो क्या किया जाए? नंदी जी बोले एक दूसरा उपाय। बोले क्या? बोले एक अभी रुको। नंदी जी भागे भागे गए, काला काला एक लंबा सांप पकड़ ले आए, और सांप पकड़ करके लाए और कमर में पहले मृग छाला बांधी और फिर ऊपर से सांप को बांधा और सांप से बोले सुनो, पृथ्वी पलट जाए पर तुम्हें नहीं खिसकना है, तुम्हें वहीं रहना है और पूरी इज्जत तुम्हारे ऊपर लगी है दाव। सांप बोला आप टेंशन ना लो, बाबा की आज्ञा है तो बस है, हम सेवा करेंगे। आहा, बढ़िया, आप श्रृंगार पूरा हो ही गया, बढ़िया भस्म हो गई, मृग छाला हो गई, बढ़िया मुकुट हो गया, मोर हो गया, गंगा जी चंद्रमा चमक ही रहा, गंगा जी बह ही रही, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दिया। भोले बाबा मैंने पहली बार अपने रूप को ऐसा देखा। अरे भाई वाह, एक तो स्वयं कर्पूर की तरह, कपूर की तरह धवल देह है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऊपर से आज श्रृंगार हुआ और फिर बारात में जाना है। नंदी जी बोले बुरा ना माने तो हम आपको रथ ले आए। भोले बाबा बोले नहीं, हम तो नंदी पर ही जाएंगे, जो आज्ञा प्रभु, आपकी जो आज्ञा, सेवक तैयार है। भोले बाबा ने अपने स्वरूप को देखा, खुद के स्वरूप को देख करके ही खुश हो गए, सोई डमरू उठाई और डमरू बजाते हुए बाबा मस्त होकर के झूमने लगे। अच्छा बाबा को मस्त देखा तो फिर चेले कहां रहे? तो भोले बाबा मस्त, सुनंदी भृंगी श्रृंगी सब बाबा की मस्ती में आनंद से झूमने लगे, दमक दमक।

अब ऐसे भी कथा की दक्षिणा तो लगती है, तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे माता जी, तो दक्षिणा में यही चढ़ा दें, जय बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आहा, तो सती जी चरणों की सेवा करने लगी। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी माता जी, चाची जी और हमारी बहन जी की सासू माँ, वो भी माता जी देवराज से, सब पूरा परिवार भागवत कथा सुनने के लिए आया हुआ है। और देवरा वाले पापा जी भी आए हैं, तो सब रिश्तेदार सहित, मतलब माता जी बैठी तो पीछे की तरफ उनके समधी भी बैठे हैं। आज बड़ा अद्भुत नज़ारा है ये। हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार देखा है, बड़ा अद्भुत नज़ारा है, बड़ी अद्भुत बात है, प्रसन्नता की बात है, बड़ा अभूतपूर्व नज़ारा है, तो हम भी बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा, ये भगवान की अनुकंपा होती है। बारात में जाएंगे, लोग हमें देखेंगे, वो आप कभी बारात का पूरा आंकलन निकालना तो आप पाओगे बारात में कोई किसी को नहीं देखता। हाँ, सब अपने को ही देखते रहते। पूरी बारात का यदि आंकलन निकाला जाए तो बारात में सब श्रृंगार करके इसलिए जाते हैं कि जब बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, और सच ये है कोई किसी को नहीं देखता। देखो इसकी तो काली टी शर्ट है, हमारी तो लाल है, इनके तो ऐसे कपड़े, हमारे तो ऐसे हैं, सब आपस में यही बात मन में सोचते रहते। अच्छा, कई बार तो इतना श्रृंगार लोग कर लेते, इतना पाउडर लगा लेते कि शीशा दर्पण ही मना कर देता, भैया रहने दो, अब रहने दो, रहने दो। आजकल तो उसका जमाना आ गया मेकअप का, सबसे ज्यादा तो ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगा। सबसे ज्यादा श्राप यदि किसी बूटी पर, वो कब गोरे को काला और काले को गोरा, राम राम राम राम राम राम राम, क्या जमाना आ गया, हनुमान जी ही बचाएं, धन्य है बूटी पार्लर का जमाना। 5,000 की क्रीम, 10,000 की क्रीम, हे भगवान। और यहां से तो जो बच्चियां बच्चे जो जो जाते हैं बड़े ठीक ठाक दिखने में जाते हैं, वहां से ऐसे आते निकल करके आए, आओ आओ आओ आओ, अरे राम राम राम राम राम। हमारा एक चेला था चंगीलाल, उसकी घरवाली एकदम काली अमावस्या जैसी, देखने गया तो मेकअप में दिखा दिया, मेकअप में दिखाया तो गोरी दिखी। हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपकी कृपा से शादी तय हो गई। हमने कहा क्या नाम है, बोले मुन्नी बाई नाम है। हमने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शादी करो बहुत अच्छा है, करो करो करो, करो। लेकिन भगवान की कृपा, बोला देखो गुरुजी कभी ना कभी तो गृहस्थ में जाना ही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब जब वो शादी में दूल्हा बन के गया तो भगवान की उस पर विशेष कृपा थी, हमारा तो आशीर्वाद था ही, भगवान की कृपा। उस जमाने में वाटर प्रूफ नहीं चलता था, मेकअप नॉर्मली चलता था, अब तो वाटर प्रूफ आ गया, नॉर्मल चलता था। तो एकदम काली अमावस्या जैसी, लेकिन एकदम मेकअप में ऐसी लगे जैसे पूनम का चंद्रमा उदय होकर के आ गया। की बात, बारिश हो गई और टेंट के नीचे शादी, तो जो हाल हुआ, ज्यों ज्यों बूंदें गिरे त्यों त्यों रंग निखर कर बाहर आए, और एकदम भगवान कृष्ण कन्हैया श्याम वरण बनते हुए आभा मंडल से प्रकट भए, और इसकी नजर होने वाली घरवाली पे गई। अरे बोले धोखा हो गया, भागा मंडप से ही। हमारे पास रात्रि में आया, हमका चेला था, आज तो तुम्हारी शादी है, इधर क्या कर रहे? अरे बोले गुरु बच गए। हमका हुआ क्या? अरे बोले इंद्र देवता ने बचा लिया, मेकअप के चक्कर में वो गोरी दिख रही थी महाराज, इतनी काली है कि छोटे छोटे जब बच्चे होंगे और उनको बिना मेकअप के दिखा दिया जाएगा तो डर जाएंगे। अरे हमका तो फिर ठीक है, तो मेकअप वाले बड़े, अब उनका भी खैर मेकअप की
बुराई नहीं हम कर रहे, श्रृंगार तो करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। फिर से सुनो, श्रृंगार करना चाहिए। अच्छा, बुंदेलखंड में श्रृंगार को सजना कहते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले सज रहे हैं, सजना हो रहा है, सजावट हो रही है। तो सजावट का ही अभ्रंश होकर के शब्द बना सजना। सजना तो चाहिए, पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। हाँ हाँ, सजना तो चाहिए पर संसार रूपी सजना के लिए नहीं सजना चाहिए, परमात्मा रूपी सजना के लिए सजना चाहिए। क्यों? संसार के लिए श्रृंगार पड़ करोगे तो काम में फंसोगे, और परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो राम में फंसोगे। दोनों, श्रृंगार का उद्देश्य क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार का उद्देश्य यदि भगवान को रिझाना है बहुत बढ़िया है, तब तो खूब बढ़िया श्रृंगार करके, नख सिख श्रृंगार कर भगवान के सन्मुख जाना चाहिए कि प्रभु अब हमारे पास गुण तो है नहीं है, रूप भी ठीक ठाक आपसे कभी हो ही नहीं सकता, जो है इसी को देखकर हंस लो, आप रीझ जाओ। इस भाव से यदि श्रृंगार है तो ठीक है, बाकी यदि श्रृंगार की दृष्टि से श्रृंगार है तो भगवान ही

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं।

0: सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
3: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
2: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
4: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने, इस उम्र में फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
5: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
6: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
7: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स

0: नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
1: 4G 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं 4G 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये 4G 360 जरूर ट्राई करें।
2: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने 4G 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये 4G 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये 4G 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक 4G 360 की।
0: 4G 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही 4G 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। 4G 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे 4G के बारे में देखा तो मैंने फोन करके 4G 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये 4G 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये 4G 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
6: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है 4G 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप 4G 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और 4G 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। 4G 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: 4G 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही 4G 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। 4G 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये 4G 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
17: देश भर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का आज चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। पीएम मोदी का आज 76वां जन्मदिन, अहमदाबाद के उम्मीधाम में की गई महाआरती, काशी में 76 बटुकों ने की भव्य गंगा आरती। इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, 52 देशों की कंपनियां होंगी शामिल। देशभर में मनाया जा रहा भगवान विश्वकर्मा का पूजन पर्व, गोरखपुर के विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। पहाड़ों पर बदला मौसम, जम्मू कश्मीर के काबुल गली में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
17: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी अद्भुत मिलन, सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश शुभ मंडल में मुंबई के लालबाग चौराजा के साथ शिरडी साई बाबा के दर्शन। इस अनोखे धार्मिक संगम को देखने के लिए उमड़ रही है श्रद्धालु की भारी भीड़, पंडाल में लालबाग के राजा की भव्य प्रकृति की गई है तैयार। बप्पा के साथ शिरडी के साई बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भी अपनी ओर खींच रही हैं श्रद्धालुओं का ध्यान। इन भव्य झांकियों के निर्माण में पिछले 3 महीनों से दिन रात जुटे थे कलाकार, भव्य सजावट, आकर्षक मूर्तिकला और धार्मिक झांकियां इसी मेहनत का प्रमाण। 46 वर्षों से प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की भव्य झांकियां प्रस्तुत करने के लिए मशहूर है ये पंडाल। चंद्रपुर वासियों को अपने ही शहर में विभिन्न तीर्थ स्थलों और धार्मिक परंपराओं की झलक दिखाना उद्देश्य। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का संदेश, वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बना अनोखा गणेश पंडाल। सूरत में ठाकुर सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है यह अनोखा गणेश पंडाल। पंडाल के बीच में स्थापित की गई है गणपति की विशाल और भव्य प्रतिमा। पंडाल में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैचू भी स्थापित किया गया है। वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में तैयार किया गया गेट है आकर्षण का केंद्र। इस पंडाल के बाहर लगाई गई है बड़ी एलईडी स्क्रीन जिस पर लगातार चलती रहती है भगवान गणेश के भक्ति गीत और धार्मिक प्रस्तुतियां। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खास उत्साह, बड़ी संख्या में लेजर शो देखने आते हैं लोग। गणेश उत्सव में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा का नजारा, 2 लाख से ज्यादा पेन से बनाई गई है बाबा की मूर्ति। 42 फीट ऊंची है भगवान गणेश की प्रतिमा, दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं लोग, बनी आकर्षण का केंद्र। अलग अलग रंगों के पेन से किया गया है त्रिमुखी गजानन स्वरूप का निर्माण, इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का एक बेहतरीन उदाहरण। अकोला में गणेश भक्त परिवार ने बनाई गणपति की एक अनोखी झांकी, घर के गणपति के साथ सजाई जेजुरी का खंडोबागढ़ की प्रतिकृति। महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है पुणे जिले के पुरंदर तालुका में स्थित जेजुरी। इस शानदार प्रकृति देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। महाराष्ट्र के अकोला में लगा बप्पा का अनोखा दरबार, रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल में पंडाल में लगी चारों धामों की भव्य झांकी। 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बना विशाल पंडाल, पंडाल में बर्फीले पहाड़, हिमालयी रास्तों के साथ चारों धामों का भी एहसास, गंगोत्री से बद्रीनाथ तक के दर्शन। 30 से 35 फीट की भव्य शिव बारात वाली गणपति की लगाई गई प्रतिमा, गजानन गणेश के साथ चारों धामों के दर्शन का आनंद ले रहे श्रद्धालु। गणपति पंडाल में तैयार किए गए चारों धामों के प्रतीकात्मक स्वरूप बेहद ही बारीकी और खूबसूरती से तैयार की गई है चारों धामों की झांकी। चारधाम यात्रा ना कर पाने वाले श्रद्धालु के लिए चारधाम यात्रा जैसा अनुभव देने की कोशिश, पंडाल में पहुंचकर चारधाम यात्रा जैसा अनुभव पा रहे हैं श्रद्धालु। ओडिशा दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देवगढ़ में गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों का किया गया दौरा। गणपति उत्सव में सेवा करते नजर आए धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धालुओं को विराजित किया गया भोग प्रसाद। आगरमालवा के पास बने सैकड़ों साल पुराने गणेश बलड़ा मंदिर में गणपति उत्सव की रौनक, स्वयंभू मंदिर के तौर पर इसकी पहचान। मंदिर के ऊपर ही भगवान गणेश के पिता भगवान शंकर की भी मूर्ति और शिवलिंग स्थापित, दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं भक्त। मंदिर के परिसर में सैकड़ों गाय की गौशाला मौजूद है। माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से यहां किसी भी परिस्थिति में गाय को नहीं होता है कोई भी कष्ट। तमिलनाडु के कुडालोर में विनायक चतुर्थी के समापन पर बंगाल की खाड़ी में हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए भक्त। रामेश्वरम में गणपति मूर्ति विसर्जन पारंपरिक उत्साह और ढोल नगाड़ों के बीच, बप्पा से अगले साल जल्द ही आने की प्रार्थना। तटीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के हुबली में भी गणपति विसर्जन जुलूस संपन्न हुआ, भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ किया मूर्ति विसर्जन। ढोल नगाड़ों के बीच निकला बप्पा का शानदार जुलूस, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। बप्पा से अगले साल जल्द ही आने की प्रार्थना के साथ दी गई विदाई, भारी संख्या में लोग जुलूस में हुए शामिल। दिल्ली में कलाकार की क्रिएटिविटी का कमाल, बेकार समझी जाने वाली चीजों से बनाई गई गणपति बप्पा की कमाल की कलाकृतियां। कलाकार राजेश कुमार ने वेस्ट मटेरियल से बनाए गणपति बप्पा की अलग अलग रूप वाली बेहद आकर्षक कलाकृतियां। एक कला प्रदर्शनी में गणपति बप्पा की 500 से ज्यादा पेंटिंग्स प्रदर्शित कर चुके हैं आर्टिस्ट राजेश कुमार। दुनिया के 9 देश में बप्पा को पहुंचा चुके हैं राजेश। कलाकार राजेश का दावा, वेस्ट मटेरियल से अब तक बनाई 4000 से ज्यादा कलाकृतियां, अब तक 28000 से ज्यादा बच्चों को सिखाया गया होना। राजेश की क्रिएटिविटी में धार्मिक आस्था के साथ साथ रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश, पेंटिंग्स बेचकर पैसे शहीदों के बच्चों को देना चाहते हैं राजेश। तमिलनाडु के मदुरई में उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभाभिषेक का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में सुबह से जारी अनेक धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर की पवित्र यज्ञशाला में विशेष पूजा जारी। 17 साल के अंतराल के बाद हो रहा है मीनाक्षी अमन मंदिर में भव्य महाकुंभाभिषेक, देश भर के भक्तों में भारी उत्साह। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर रंग बिरंगी और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है पूरा मंदिर परिसर, देखते ही बन रही है इस धार्मिक आयोजन की भव्यता। हिंदू मंदिरों में होने वाला एक पवित्र जीर्णोद्धार और शुद्धिकरण अनुष्ठान है कुंभाभिषेक, जिसमें वेद और मंत्रोच्चार के बीच किया जाता है देवताओं का आहार। 76 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों में आयोजन की तैयारी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आशीर्वाद का दिया का विशेष थीम पर सॉन्ग लॉन्च, संगीतकार अमन पंत द्वारा तैयार किया गया है गीत। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे रवाना। पीएम के संसदीय क्षेत्र और धार्मिक नगरी काशी में बटुक ब्राह्मणों का किया गया विशेष गंगा पूजन, उन्होंने प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। श्री अन्नपूर्णा त्रिशुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 76 बटुक ब्राह्मणों ने 76 लीटर जल और दूध से किया मां गंगा का अभिषेक, डमरू वादन से आध्यात्मिक हुआ माहौल। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 108 कुंडीय हवन में हुई शामिल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में अनोखा नजारा, विश्व उमिया धाम में की गई महाआरती, हजारों लोगों ने महाआरती में हिस्सा लिया, जगमगाए हजारों दिए, दिखा भारत के नक्शे का आकार। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रेत से बनाई खास कलाकृति, दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। झांसी में रात 12 बजे महिलाओं ने काटा पीएम मोदी के जन्मदिन का केक, बोली मोदी योगी सरकार में मिली ऐसी सुरक्षा जो कि पहले कभी नहीं मिली।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
18: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: देश भर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम मोदी को दी बधाई, प्रयागराज में भव्य आरती। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, 52 देशों की कंपनियां होंगी शामिल। देश भर में मनाया जा रहा भगवान विश्वकर्मा का पूजन पर्व, गोरखपुर के विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मनाली में हो रही जमकर बर्फबारी, सैलानी ले रहे खुशनुमा मौसम का आनंद।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल शो में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और शहर शहर पंडालों में गणपति पूजा की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि आज गणपति उत्सव का चौथा दिन है। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में और तमाम जगहों पर सजाए गए पंडालों में गजानन विराजे थे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि 10 दिनों तक पूजा आराधना के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें भावभीनी विदाई दी जाएगी, यानी कि उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। आपको ये बता दें कि जिस तरह से देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की जाती है, उसके लिए संपूर्ण अनुष्ठान होता है, उसी तरह उनके विसर्जन का भी अपना विधान है और उसके पीछे खास विज्ञान भी है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे अपने इस स्पेशल शो में।

0: भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को विधिवत स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा, फिर दसवें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को शास्त्रीय विधि और लोक परंपरा के अनुसार विसर्जन। ये सिलसिला है गणेशोत्सव का, जो अनादिकाल से ही किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं और सनातन परंपरा के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा अनुष्ठान के साथ गणपति बाप्पा का आह्वान किया जाता है। इसके लिए अलौकिक देवता के लौकिक स्वरूप के रूप में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है और उस मूर्ति में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही मूर्ति व्यापक चेतनामय हो जाती है। श्रद्धालु उस मूर्ति में साक्षात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन करते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर मनवांछित फल पाते हैं। अब सवाल ये है कि जिस विग्रह में मंत्रों के प्रभाव से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसके विसर्जन की परंपरा क्यों चल पड़ी? जिस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, दसवें दिन उस सजीव मूर्ति को जल समाधि क्यों दे देते हैं? दरअसल इसमें सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की जनहितकारी लोक कल्याणकारी भावना छिपी हुई है। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में शरीर को विनाशी और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य की गवाही देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के मुताबिक भी एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, जिसका मतलब ये है कि उसका क्षय नहीं हो सकता, बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, उस प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम गणपति बापा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है, वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है, वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है। यही वजह है कि बापा का विसर्जन हमेशा बहते पानी के स्रोत में किया जाता है, ताकि विघ्नहर्ता की कल्याणकारी चेतना बहते पानी के माध्यम से जन जन तक पहुँचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके। साफ है कि गणपति बापा के विसर्जन की परंपरा गीता के उसी ज्ञान की मुनादी है, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि शरीर या पिंड विनाशी है, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। साफ है कि बापा के विसर्जन की परंपरा में व्यापक जन कल्याण की भावना समाहित है। इसमें जन कल्याण का एक और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जिस नदी, समंदर या बहते पानी में गणपति की आत्मचेतना को प्रवाहित किया जाता है, उसके जन जन तक पहुंचने की एक सीमा है, लेकिन यही बहता पानी जब इवेपोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है, तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुँच जाती है। ऐसी भावना हमारे मनुष्यों ने अपनी सतत साधना और सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर सदियों से की है। कुल मिलाकर भावना ये है कि हम गणपति की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, स्वयं गणपति का नहीं। गणपति विसर्जन के पीछे एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल विसर्जन के माध्यम से माया मोह के जाल में फंसे मनुष्यों को बापा ये संदेश देते हैं कि संसार में जो भी स्थूल है, चाहे वो शरीर हो या कोई और वस्तु, सबका नाश तय है। गण नायक विनायक अपने भक्तों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि शरीर साधन है अमूर्त चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का। शरीर साध्य नहीं है, साध्य तो सूक्ष्म चेतना है, जो अपनी अलौकिक स्थिति के अनुरूप लौकिक शरीर धारण करता है। बापा स्वयं के विग्रह के विसर्जन की परंपरा के माध्यम से ये सत्य उद्घाटित करते हैं कि जब मेरा लौकिक स्वरूप भी नाशवान है, तो फिर पंच महाभूत से बना इंसान का शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है। चूंकि गणेश चतुर्थी के दिन बापा के आह्वान और उनकी मूर्ति की स्थापना के 9 दिन तक वातावरण में अद्भुत अलौकिक रौनक घुल जाती है, इसलिए विसर्जन के दिन लौकिक दृष्टि से उस जगह पर थोड़ा सूनापन हो जाता है और कई श्रद्धालु तो उदास भी हो जाते हैं। वैसे भक्तों के मन की शांति के लिए विसर्जन से पहले बापा को फल मिष्ठान आदि से प्रसन्न करने का विधान किया गया है। इस परंपरा से मन में ये भाव प्रबल हो जाता है कि हमने बापा को हर विधि से प्रसन्न कर उनकी विदाई की है। कहने की जरूरत नहीं कि गणपति की स्थापना और 9 दिन के बाद उनके विसर्जन के पीछे बेहद गूढ़ पारलौकिक कारण है। अगर हम इन आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड कर गणपति की स्थापना और उनका विसर्जन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वांछित फल मिलेगा। भगवान गणेश वैसे भी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। जाहिर उनकी चेतना के साथ स्वयं को एकाकार करने से हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी और मन में ज्ञान का संचार होगा। जिस इंसान की बुद्धि कुशाग्र है और जिसकी चेतना जागृत है, वो इंसान देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। इसीलिए प्रथम पूज्य की चेतना को आत्मसात करके ही उनके विग्रह का विसर्जन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: एक तरफ जहां भव्य पंडालों और घरों में गणपति की पूजा अर्चना की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ बप्पा के विसर्जन का दौर भी शुरू हो चुका है। अंबानी परिवार से लेकर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी जैसे सेलेब्स ने पूरे विधि विधान के साथ बप्पा को भावुक विदाई दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार 10 दिनों से पहले यानी डेढ़, तीन या फिर पांच दिनों में विसर्जन का क्या धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है? क्यों घरों में गणपति स्थापना करने वाले लोग विघ्नहर्ता को 10 दिन से पहले विदा कर देते हैं? देखिए,
2: गजानन, लंबोदर, सिद्धि विनायक और विघ्नहर्ता, जितने नाम उतनी ही महिमा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर संपूर्ण सृष्टि अपने आराध्य प्रथम पूज्य श्री गणेश की भक्ति में सराबोर है। गली मोहल्ले, भव्य पंडाल और घरांगन, इस समय पूरा देश आस्था और भक्ति के एक रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ ये महा उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर को भी मजबूती देता है। एक तरफ गणेश उत्सव की रौनक है तो दूसरी तरफ घरों में स्थापित बापा की विदाई भी जारी है। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जयकारों के बीच अंबानी परिवार ने पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ गणपति जी को विदा किया। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार जुटा। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी बापा की भक्ति में जमकर झूमे, तो ईशा अंबानी और श्लोका मेहता ने भी उत्सव में खूब रंग जमाया। नीता अंबानी गणपति बापा मोरिया के जयकारे लगाती रही। एंटीलिया से बापा को जिस अंदाज में विदाई दी गई, वो भी अपने आप में खास थी। भगवान गणेश की प्रतिमा को खूबसूरती से सजाए गए रथनुमा फ्लोट पर विराजमान किया गया। फूलों और सजावट से सजे इस फ्लोट के साथ सिर्फ अंबानी परिवार ने ही बापा को विदा नहीं किया, बल्कि मुंबई में कई नामी हस्तियों ने अगले बरस लौटकर आने के वादे के साथ बापा को विदा कर दिया। सलमान खान, भाई सोहेल खान के घर पर गणपति विसर्जन के लिए पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। बहन अर्पिता, अलवीरा, माँ हेलन समेत परिवार के बच्चे इस उत्सव में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। हर किसी पर गणपति बापा की भक्ति का रंग चढ़ा नजर आया। सलमान खान, सोहेल खान, अर्पिता शर्मा समेत सभी श्रद्धालुओं ने बारी बारी से बापा की आरती की। हर साल की तरह शिल्पा शेट्टी के घर भी बापा पधारे थे। शिल्पा ने भी एक दिन पहले बापा का विसर्जन किया। विसर्जन के दौरान शिल्पा पीली साड़ी में नजर आईं। उनके साथ परिवार के लोग भी मौजूद रहे। शिल्पा ने पूरे भक्तिभाव के साथ बापा की पूजा की और उन्हें विदाई दी। इस दौरान उनका जोश और उत्साह देखने लायक था। हालांकि शास्त्रों में 10 दिनों तक गणेश पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन गृहस्थ जीवन में जो लोग पूरे 10 दिनों तक शुचिता के कठिन नियमों का पालन नहीं कर पाते, वे अल्पकालिक आतिथ्य स्वरूप 1.5 दिन में उत्तर पूजा करके बाबा को विदाई देते हैं, जबकि कुछ लोग 3 दिन का पूजन करते हैं, जो सत, रज और तम इन त्रिगुणों के संतुलन का प्रतीक है। वहीं पांच दिन का पूजन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। गणेश विसर्जन का मूल आध्यात्मिक संदेश ये है, जो मिट्टी से निर्मित है उसे अंततः मिट्टी में ही लीन होना है। विसर्जन का समय चाहे 1.5 दिन हो, 3 दिन हो या 5 दिन हो, मुख्य बात पूर्ण निष्ठा और नियमों का पालन है। जितनी अवधि के लिए भगवान को घर में स्थापित किया जाए, उतने दिन उनका पूरे सेवा भाव से ध्यान रखना आवश्यक होता है। विसर्जन का ये विधान जीवन के चक्र और मोह माया से परे ईश्वर में लीन होने का संदेश देता है। नम आँखों और अगले वर्ष जल्दी आने की कामना के साथ भक्त अपने आराध्य को विदाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: महाराष्ट्र के पुणे में भी गणेश उत्सव की अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। शहर में कई गणपति पंडाल सजे हैं, जिनमें एक है श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का पंडाल, जो कि सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर थीम पर पंडाल बनाया गया है।

0: विघ्नहर्ता भगवान गणेश का मनोहारी स्वरूप और उस स्वरूप के दर्शन के लिए लगी है भक्तों की लंबी लंबी कतार। यह पुणे का सबसे प्रसिद्ध श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति का पंडाल, जो गणेशोत्सव के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग दूर दूर से न सिर्फ श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति के दर्शन और पूजन के लिए पहुँच रहे हैं, बल्कि इस खूबसूरत पंडाल को देखने के लिए भी दौड़े चले आ रहे हैं।
1: पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में है। इस बार इसे प्रेम मंदिर कहा जा रहा है। आप देख सकते हो भीड़ जुटी है भक्तों की, और गणपति मेरे महादेव का जो उनका मुकुट है वो पहने हुए हैं, गणेश जी है हाथ में मोदक है, और पुणे का सबसे बड़ा गणेशोत्सव यहाँ किया जाता है। पुणे में 5 मानाचे गणपति, यानी कि पहले 5 रेपुटेड गणपति है, उनके अलावा ये अहम गणेश है जहाँ भक्तों की भीड़ रहती है।
0: परंपरा के अनुसार इस साल भी गणपति पंडाल को थीम बेस्ड ही बनाया गया है। पंडाल की ये थीम वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित बताई जा रही है, इसलिए मंदिर की दरो दीवार पर राधा कृष्ण की लीलाओं को भी बेहद करीने से उकेरा गया है, जो इस पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ खींच ले रही है।
2: गणेश जी जो विराजमान हुए उनके द्वारा ये पूरा चैतन्यमय प्रेम मंदिर हो गया है, नहीं तो वो एक सेट हो सकता था, लेकिन गणेश जी के स्थापना से यहाँ चैतन्य
1: से जिंदा दिल बनाया गया
2: जी, यहाँ चैतन्य की लकीर ये भक्तों की श्रद्धा से जी।
0: इस भव्य पंडाल को प्रेम मंदिर की तर्ज पर बनवाने के पीछे सिर्फ धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि एक खास उद्देश्य भी इससे जुड़ा हुआ है। दुनिया में मौजूदा परिस्थितियों के बीच प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश लोगों तक पहुंचाने की दरअसल कोशिश की गई है।
2: हमारा प्रेम मंदिर का कि दुनिया में भाईचारा बना रहे, बंधुभाव बना रहे
1: जी,
2: ताकि सब लोग मिलजुल के रहे, क्योंकि हमारे भारत की सोच है वसुधैव कुटुंबकम,
1: राइट,
2: इस सोच से हम चल रहे हैं। इसलिए हमने ये गणेश उत्सव के माध्यम से जो 150 देशों में ये मनाया जाता है, इतनी बड़ी व्यापकता इस गणेशोत्सव की है, तो इसके माध्यम से ये संदेश हम देना चाहते हैं।
0: रोजाना श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति के दरबार में सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो इस खूबसूरत कारीगरी को देख अभिभूत हैं। पुणे से ओमकार वाबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गणेश उत्सव के दौरान देश भर में गणपति बप्पा की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन इसी दौरान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता की दो अनूठी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनकी काफी ज्यादा चर्चा

0: चीजों से नहीं बल्कि जीवित हरियाली का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं। 21,000 जीवित पौधों से बने ये गणेश भगवान पर्यावरण को बचाने का खास संदेश दे रहे हैं, जिसे आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में मूर्त रूप दिया गया। यहाँ के एक गांव सिरासापल्ली गांव में बने श्री चिंतामणि गणपति दत्ता क्षेत्रम में यह अनोखी सस्या गणपति प्रतिमा पंडाल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बेहद ध्यान से काटे गए 21,000 पौधे और अंकुरों को बप्पा के सिर, सूंड, कान और पूरे शरीर पर बेहद खूबसूरती के साथ लगाया गया है, जो प्राकृतिक हरियाली को बचाए रखने का खास संदेश दे रहे हैं। आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ही लोगों को भक्ति के साथ पर्यावरण जागरूकता से जोड़ना है। ये पौधों वाली गणपति की प्रतिमा दर्शा रही है कि हमारा समाज अपने तीज त्योहारों को अनोखा आकर्षक बनाने के साथ हरियाली को भी अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा माने, ताकि इस गणेशोत्सव के जरिए कचरा कम पैदा हो और जीवन ज्यादा पनपे। वहीं महाराष्ट्र के वाशिम में भी एक ऐसा ही अनोखा गणेश पंडाल सजा है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली खाने की चीजों से पप्पा तैयार हुए हैं। मूर्ति देखने में बेहद सुंदर होने के साथ साथ अपनी खास बनावट की वजह से भी अलग है, क्योंकि इसमें सुपारी, सौंफ, लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इन बप्पा के विसर्जन के समय डीजे का इस्तेमाल भी नहीं होता है।
1: हम लोग डीजे भी यूज नहीं करते हैं, तो उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। और जो हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो मतलब जो मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं, तो वो पानी में भी प्रदूषण नहीं फैलाता, क्योंकि उसमें रंग नहीं है। तो एक बार हम लोगों ने हल्दी कुमकुम से भी गणपति की स्थापना की थी।
0: दरअसल कारंजा शहर का श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल हर साल इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनाता आ रहा है। ऐसे में इस बार भी पर्यावरण पूरक गणेश जी की ये प्यारी सी मूर्ति लोगों को लुभा रही है।
2: अभी आप देख रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है, लोग डीजे बजा रहे हैं और वायु प्रदूषण हो रहा है, तो इससे अपना पानी खराब हो रहा है प्लास्टर पर इसे। तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे अच्छा कुछ अच्छा हो रहा है।
0: सौंफ, सुपारी, इलायची और लौंग से तैयार की गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति का वजन करीब 70 से 80 किलो है, जिसमें 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और लगभग 1 किलो लौंग और इलायची का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रतिमा को तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगा है। यानी मूर्ति की खास बात सिर्फ इसका अनोखा निर्माण ही नहीं, बल्कि इसे इको फ्रेंडली भी रखा गया है। बता दें कि श्रीमंत बाल हौसी गणेश मंडल पिछले कई सालों से इसी तरह के कई अनूठे प्रयोग करता आ रहा है। पिछले साल तो मंडल ने डेली रूटीन में खाई जाने वाली दालों से ही गणेश मूर्ति बना डाली।
3: इससे पहले मंडल ने अनाज का गणपति बनाया, दिवनाली का गणपति बनाया, पिंसिल का गणपति बनाया, विविध प्रकार के जो वाद्य रहते उसका गणपति बनाया था, डायमंड का गणपति बनाया था, हर प्रकार ऐसा अलग अलग करीबन 15-16 साल से हम यह परंपरा कायम रखते हुए इस साल भी हमने इसी प्रकार की मूर्ति बनाई है।
0: फिलहाल तो इको फ्रेंडली मूर्तियों के इस दौर में गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रतिमाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और क्रिएटिविटी की एक से बढ़कर एक अनोखी मिसाल पेश कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली से अब्दुल और महाराष्ट्र के वाशिम से जाका बी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GNT।
5: तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है, और पीएम मोदी के बर्थडे को खास बनाने के लिए म्यूजिक कंपोजर अमन पंत ने उन्हें डेडिकेट करते हुए आशीर्वाद का दिया नाम से एक सॉन्ग तैयार किया है, देखिए।
7: आज मोहल्ले में सब दिए क्यों जला रहे हैं?
8: आशीर्वाद दे बेको।
7: किसे?
8: वो को जिसने हमारी जिंदगी से अंधियारों मिटा दियो।
7: लाइक तो इलेक्ट्रिशियन भैया लगाते हैं।
8: बाबरी जे रोशनी ना आए, वो रोशनी जिससे सर पे पक्की छत आई, घर में पानी आ गयो, गैस आ गई, तोरे बाबा की दवाई आई, और तोरी ये खिलखिलाते हुई हंसी, वो कुलानी जी आशीष का दिया है।
7: आशीष का दिया मैं भी चलाऊंगी।

0: है आशीर्वाद हमारा। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर शाम 6 से 7 बजे अपने घर, मोहल्ले या कॉलोनी में एक दीप जलाएं और अपने आशीष और शुभकामनाओं से इस अवसर को यादगार बनाएं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: देश भर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का आज चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक देखी जा सकती है।
10: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम को दी बधाई, प्रयागराज में भव्य आरती।
9: दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत, 52 देशों की कंपनियां होंगी शामिल।
10: देश भर में मनाया जा रहा भगवान विश्वकर्मा का पूजन पर्व, गोरखपुर के विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान से की पूजा अर्चना।
9: हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मनाली में हो रही जमकर बर्फबारी, सैलानी ले रहे खुशनुमा मौसम का मजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
9: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं जो है वो नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी में अद्भुत मिलन, सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लाल बादशाह राजा के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन हुए। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का संदेश, वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बना अनोखा गणेश पंडाल। गणेशोत्सव में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा का नजारा, 2 लाख से ज्यादा पेन से बनाई गई बप्पा की मूर्त। तमिलनाडु के मदुरै में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभाभिषेकम का आयोजन किया गया। देश भर में मनाया जा रहा भगवान विश्वकर्मा का पूजन पर्व। गोरखपुर के विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान के साथ की यहां पर पूजा अर्चना।
10: छिहत्तर साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देशभर में कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी। पीएम मोदी आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उन्होंने किया उद्घाटन। इस कार्यक्रम में 52 देशों के 600 से अधिक कंपनियां ले रही हिस्सा। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 76 बटुक ब्राह्मणों ने 76 लीटर जल और दूध से किया मां गंगा का अभिषेक। डमरू वादन से आध्यात्मिक माहौल हुआ। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू, रामलला और हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। लेह में शानदार शरद मेला 2026 का हुआ आयोजन। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया इसका उद्घाटन।
9: दिल्ली में कलाकार की क्रिएटिविटी का कमाल। बेकार समझी जाने वाली चीजों से बनाई गणपति बप्पा की कमाल की कलाकृतियां। चित्रकूट में किसानों की प्राकृतिक खेती अपनाने का असर। कम लागत वाली ऑर्गेनिक खेती से बढ़ी किसानों की आमदनी। देश भर के 51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। कैबिनेट ने ईपीएफओ वेतन की ऊपरी सीमा 15,000 से 25,000 करने को मंजूरी दी। बांदीपोरा जिले के गुरेज में तुलाइल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मनाली में हो रही जमकर बर्फबारी, सैलानी ले रहे इस मौसम का मजा।
10: आज से जापान में एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन के साथ कई खेलों में पदक की दावेदारी पेश करेगा भारत। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 आज सीरीज में पहले ही 2-0 के अजेय बढ़त बना चुके हैं टीम इंडिया। राष्ट्रीय 200 टी20 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने से 4 विकेट दूर। ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनेंगे राष्ट्रीय। फिलहाल 117 मैचों में 196 विकेट उनके नाम। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी। टी20 रैंकिंग में पहले दो पायदान पर भारतीय बल्लेबाजों का जलवा। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पछाड़कर नंबर 2 पर। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन नंबर 1 स्पॉट पर काबिज।

0: आज करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा हो रही रिलीज, इसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। कुणाल खेमू की फिल्म वाइब भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगी कमाल। फिल्म में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, दिनेश लाल यादव जैसे स्टार्स। लव स्टोरीज का तीसरा सीजन भी रिलीज पर है। इसमें चार अलग अलग कहानियां हैं जो प्यार नजदीकी आधुनिक रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाती है। भारत में रेलवे टिकट के एक बड़े घोटाले पर आधारित वेटिंग है नाम की सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। अभिनेता देवेंदु शर्मा अहम भूमिका में नजर आएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन शुरू होने की घोषणा हो गई है। 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा पांचवा सीजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: चलिए बच्चों, से अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से,
0: तो चलिए आपको दिखाते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज।
2: देशभर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की दिखी रही रौनक।
0: दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत, 52 देशों की कंपनियां होंगी इसमें शामिल।
2: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम को दी बधाई, प्रयागराज में भव्य आरती।
0: देश भर में मनाया जा रहा भगवान विश्वकर्मा का पूजन पर्व, गोरखपुर के विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना।
2: हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मनाली में हो रही जमकर बर्फबारी, सैलानी ले रहे खुशनुमा मौसम का आनंद।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए महाराष्ट्र समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में आपको ऐसे ही रंग नजर आएंगे। देश भर में गणपति उत्सव का उल्लास नजर आ रहा है। गली गली शहर शहर गणपति बप्पा की गूंज है। कहीं अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त की जा रही भव्य प्रतिमाएं भक्तों को अपनी तरफ खींच रही हैं, तो कहीं अनोखी कलाकारी ने सबको हैरान कर दिया है। हर पंडाल में अलग अलग थीम नजर आएंगे, सजावट है, सामाजिक या धार्मिक संदेश देखने को मिल रहा है। सूरत में वंदे भारत थीम पर पंडाल तैयार किया गया है। जैसे ही श्रद्धालु वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में तैयार किए गए गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें ऐसा अनुभव कराने की कोशिश की गई है मानो वो स्वयं ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हों। हैदराबाद में अंतरिक्ष की तर्ज पर बना भव्य पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। इसी पंडाल के जरिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की विकास गाथा दिखाने की कोशिश की गई है।
1: वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में श्रद्धालुओं को एक ऐसे ही पंडाल में गणपति बप्पा के साथ साथ साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य भी मिल रहा है। अकोला की बात करें तो अकोला में चार धाम की थीम पर बने पंडाल को देखने लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मुंबई के चेंबूर स्थित सह्याद्री क्रीड़ा मंडल का गणेश पंडाल भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ एक अनूठी थीम एनिमेशन कैरेक्टर्स की वजह से चर्चा में है। यहाँ सुपर हीरोज भी दिखाए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 2,11,000 पेन से बनी बप्पा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

0: तो देखिए, गणपति एक है लेकिन उनके जो रूप हैं वो अनेक हैं। अलग अलग थीम पर बने पंडालों में अलग अलग स्वरूप में विराजमान गणपति कोई ना कोई संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आजकल बप्पा की प्रतिमा और पंडाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता का संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है।
1: और देखिए, तस्वीरें अलग अलग हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में 21,000 जीवित पौधों से बने इको फ्रेंडली गणेश भगवान पर्यावरण को बचाने का खास संदेश दे रहे हैं। ये पौधों वाले गणपति की प्रतिमा ये दर्शा रही है कि हमारा समाज अपने तीज त्योहारों को अनोखा आकर्षक बनाने के साथ हरियाली को अपनी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा मानकर चले। तो वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बांस के इको फ्रेंडली पंडाल और बांस के ही गणपति यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसी रचनात्मक पहल न केवल हमारी धार्मिक आस्था को बनाए रखती है बल्कि हमारी आबोहवा को सुरक्षित रखने का संदेश भी देती है।

0: चलिए तस्वीरें तो लगातार आपको दिखा रहे हैं। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र हैं मुंबई से और धनंजय साबले हैं अकोला से। सबसे पहले मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए मुंबई में जब कहते हैं ना कि गणपति उत्सव आ गया है, गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार है, रौनक रंग इस तरह के कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। धर्मेंद्र इस वक्त कौन से पंडाल में मौजूद हैं, कौन सा ये हिस्सा है मुंबई का, बताइए कैसी रौनक है और गणेश चतुर्थी का पर्व कैसे आगे बढ़ रहा है?
1: बिल्कुल, देखिए इस लाइव की शुरुआत जब तक इस गूंज के साथ ना हो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के घाटकोपर इलाके के भावेश्वर गणेश उत्सव मंडल में, जहाँ पर सूर्य नारायण जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा भव्य और देखने लायक बन रही है। यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु इस समय इस पंडाल में बप्पा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें बहुत ही रेयर मिलती हैं। मूर्तिकार की वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, किस तरीके से उन्होंने गणपति बप्पा को ऐसा आकार दिया है। सूर्य नारायण का ये पूरा का पूरा आकार है और ये जो बप्पा के पीछे आप वाइट कलर का, सफेद कलर का पूरा माहौल देख रहे हैं, ये पूरा का जो माहौल है इस पर ब्रह्मांड दिखाई देता है। हालांकि इस समय इसे शुरुआत नहीं किया गया है, शाम को ये चलचित्र शुरू हो जाता है और कुछ इस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हर कोई यहाँ पर आकर के बप्पा के समीप पहुंचना चाहता है, अपनी मनोकामनाएं देखना चाहता है। थोड़ा सा और भी सुंदरता दिखाते हैं बप्पा की। बप्पा तो सूर्यनारायण के अवतार में है ही, लेकिन आसपास की भी जो छलकियां हैं वो भी वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर इस समय यहाँ नजर आ रही हैं। और भी क्या ज्यादा खासियत है ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ मौजूद इस पंडाल के पदाधिकारियों के साथ। कैसे क्या कुछ हो रहा है ये भी हम जानेंगे। प्लीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आए और थोड़ा बताएं कि इस बार कितना साल आपने मना लिया अपने पप्पा का और सूर्य नारायण ही इस बार क्यों?
2: इस साल हमारा मंडल का 52वां साल है और हमने इस साल वेदों उपनिषद में कहा गया है कि वायुस्तम सूर्यस्तम ब्रह्मास्तम विष्णुस्तम, तो वेदों में सूर्य नारायण जी का भी अवतार बताया गया गणपति जी का, तो गणपति जी सूर्य नारायण के अवतार में है और बाकी के ग्रहों को प्रकाशित कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, वो थीम हम लोग ने इस साल सब भक्तों के लिए बनाई है। और हमारा ये जो शो अप होता है रात को डिजिटल के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का व्यू होता है,
1: दिखाते हैं आप,
2: पूरा ब्रह्मांड है उसमें सीनरी है, उसमें सब मिल्की वे सबका दिखा दे इसमें।
1: अच्छा ये बताइए कि और क्या व्यवस्था होती है यहाँ पर आने वाले सारे श्रद्धालु?
3: श्रद्धालुओं के लिए हम लोग ने खास व्यवस्था रखी है, यहाँ पे एसी डूम बनाया है, कोई भी श्रद्धालु आते हैं जो थक गए रहते हैं उनको पंडाल में आराम से स्नान करने के लिए रखा है, भोजन ग्रह भी रखा है, महाप्रसाद का भी सुविधा रखा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे भावेश्वर राजा में दर्शन करने के लिए आते उनको पूरी सुविधा हम लोग दे जाती है।
1: अच्छा, एफडीए की तरफ से तुकाराम साहब ने ये कहा है कि भाई जब भी प्रसाद खिलाया जाएगा तो एक बेहतरीन जगह से ही अनाज वगैरह लाएंगे, आप सब उनका पालन कर रहे हैं?
3: पालन कर रहे हैं हम लोग, जो तुकाराम मुंडे जी ने जो एफडीआई का रूल्स दिया है वो रूल्स के हिसाब से हम लोग भावेश्वर राजा प्रसाद ग्रहण का मंडप के पूरी सुविधा रखी है हम लोग ने।
1: अच्छा साहब, आप बताइए कि कितना ज्यादा गणेश उत्सव आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है?
4: हमारे लाइफ में तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, 52 ईयर से हम लोग दिखते आ रहे हैं गणेश जी का और ये 50वां साल से हमारा जो प्रसिद्ध हुआ है उसमें तो हम लोग सब पागल ही हो गए हैं।
1: भावेश्वर नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये गुजराती पूरा मंडल।
3: भावेश्वर चा राजा हम लोग के जो पिताजी लोग थे, जो पूर्वज, वो लोग को स्टार्ट किया था मंडल, तो अभी ये वो परंपरा हम लोग ने संभाली है।
1: क्या बात है, तो इस तरीके से देखें आप, बताएं कि इन्होंने बताया कि पूरी तरह से एयर कंडीशन में ये जो पंडाल है इसको तब्दील किया गया है ताकि जो लोग भी थक जाते हैं वो यहाँ पर आके बकायदा आराम कर सकते हैं। थोड़ा तस्वीर में देखे भी बकायदा बप्पा के समक्ष लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फोटोज निकाल रहे हैं, सेल्फीज हैं और
5: बिल्कुल धर्मेंद्र खास तैयारियां यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। और सूर्य नारायण अवतार वाकई अवतार है, बहुत ही दिव्य दर्शन जो है जीएनटी के दर्शकों को आपने करवाए हैं। हमारे साथ धनंजय साबले भी जुड़े हुए हैं अकोला से, उनके पास यहाँ पे चलते हैं। तो धर्मेंद्र ने हमें दिखाया धनंजय बड़ी खास अंदाज में बप्पा जो है वो मुंबई में नजर आ रहे हैं, लेकिन अकोला में किस थीम पर जो पंडाल है उसे सजाया गया है, हम देख रहे हैं कहीं पे गोलगप्पे के शेल से बप्पा के पंडाल को खास तौर पे सजाया गया है, बड़ी रचनात्मकता देखने को मिल रही है इस बार। आप दर्शन करवाएं बप्पा के हमारे दर्शकों को सबसे पहले।
6: बिल्कुल आयशा जी, मैं आपको भगवान के गणपति बप्पा के दर्शन करवा देता हूँ। देखिए अर्जुन समाज की ये भव्य जो मूर्ति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर इस वक्त जो है इस पंडाल में जो है वो जगन्नाथ पुरी की पूरी तरीके से थीम यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हो कि जो विष्णु भगवान ऊपर है वहां पर जो है जगन्नाथ जी है, और उसके बाद में जो बलभद्र और सुभद्रा जी का यहाँ पर पुतला, और ये भव्य लगभग 15 फीट की जो मूर्ति है, और ये जो पंडाल है ये लगभग 90 साल पुराना पंडाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पंडाल है पूरी तरीके से जो है जगन्नाथपुरी के तर्ज पर यहाँ पर सजा गया है। आप देख सकते हो कि इस ओर जो है जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ महाराज के बलभद्र और सुभद्रा जी के जो षडचित्र है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, मानो ये पंडाल जो है अर्जुन समाज का जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जगन्नाथपुरी मय हो गया है। और अकोला में जहाँ पर जो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं उन्हें इस पंडाल में आकर जो है जगन्नाथपुरी की पूरी दृश्य जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं, पूरा अवतर गया है यहाँ पर। आप हमारे साथ है पंडाल के पदाधिकारी चौरसिया जी, मुझे बोलिए गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा मोरिया तो गूंज अभी 10 दिन से लगी रही है, मुझे बोलिए कि ये थीम और कितने साल पुराना पंडाल है आपका?
7: 1937 में पंडाल की स्थापना की गई थी, समाज के सभी वर्ग और लगातार 90 वर्षों से यहाँ पर लोगों को हम यहाँ पर जो विविध गणपति होते हैं यहाँ पर दर्शाए जाते हैं। अनुदर ये सबसे पहले यहाँ पर विविध प्रकार के यहाँ पर जो सामाजिक प्रोग्राम और धार्मिक
0: जी। धनंजय बहुत ही सुंदर तस्वीरें और भव्य दर्शन आपने करवाए हैं हमें और हमारे दर्शकों को। धनंजय बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। इन दिनों देखिए भक्ति का एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसने श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींच लिया है। एक ही पंडाल में मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन आपको हो जाएंगे।
5: एक तरफ गणपति बप्पा का भव्य दरबार तो दूसरी तरफ साईं बाबा के जीवन और संदेशों को दर्शाती मनमोहक झांकियां। चंद्रपुर का ये पंडाल श्रद्धा और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम बन गया है।

0: गणपति बाप्पा के जयकारे, साईं बाबा के भजनों की गूंज और दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। ये नजारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां एक ही पंडाल में भक्तों को लालबाग के राजा और साईं बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त बाबा के दर्शन के साथ साथ साईं बाबा का भी दर्शन कर रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु दोनों भगवान के दरबार में माथा टेक रहे हैं।
1: इस वक्त हम इसी मंडल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस साईं बाबा का जो है पूरा मंदिर यहाँ पे साकार आ गया है। शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया है, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे। और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है। बेहद यहाँ से आगे जाने के बाद में हमें लालबाग के राजा के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर में अब लालबाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं, क्योंकि इस मंडल में लालबाग के राजा के रूप में यहाँ पर बाप्पा पधारे हैं।
0: चंद्रपुर के सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने इस बार मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। आकर्षक सजावट और भव्य दरबार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस गणपति पंडाल की खासियत भव्य स्वरूप में विराजमान बाप्पा तो हैं ही, यहाँ शिरडी के साईं बाबा की भी अद्भुत झांकियां सजाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं को शिरडी की याद दिला रहा है। साथ ही द्वारका माई की झांकी भी सजाई गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन को उमड़ रहे हैं।
2: अच्छा लगा शिरडी के साईं बाबा के दर्शन, ये लालबाग का राजा हनुमान जी साईं बाबा जी का दर्शन, तो सेम वैसा ही डेकोरेशन वहाँ पे मंडल वाले ने सबने किया है मिलके।
0: सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी प्रेम और मानवता का संदेश देती ये झांकियाँ सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी दे रही हैं।
3: पिछले कुछ सालों से हम कुछ अच्छे अच्छे दिखावे सादर कर रहे हैं चंद्रपुर की जनता के लिए, और इसके पहले भी हमने केदारनाथ मंदिर, रायगढ़, पंढरपुर, साढ़े तीन शक्तिपीठ, और इस बार हम शिरडी साईं बाबा लेकर।
0: खास बात यह है कि सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल पिछले 46 साल से चंद्रपुर में अलग अलग धार्मिक स्थलों की भव्य झांकियां साकार करता आ रहा है। इस बार की झांकियों और सजावट को अंतिम रूप देने में कार्यकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक दिन रात मेहनत की। मुंबई जाकर लालबाग के राजा के दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्तों को चंद्रपुर में ही वही भव्य अनुभव मिल रहा है, तो साईं बाबा की झांकियां उन्हें शिरडी की आध्यात्मिक अनुभूति करा रही हैं। चंद्रपुर का ये पंडाल बता रहा है कि भक्ति की राह अलग हो सकती है, लेकिन आस्था का भाव एक ही होता है। चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक से एक बढ़कर गणपति पंडाल और बप्पा की अनोखी मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। वहां भक्तों को बैम्बू यानी कि बांस से बने बप्पा के भी दर्शन हो रहे हैं, और बप्पा का ये अनोखा रूप चिचपल्ली के बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तैयार किया गया है। वहीं चंद्रपुर के एक ही परिवार ने अपने घर में ऐसा शानदार गणेश पंडाल सजाया है, जहां विघ्नहर्ता के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए जा सकते हैं।

0: जैसे जैसे गणेशोत्सव का ये पर्व आगे बढ़ रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में आस्था और भक्ति की एक से बढ़कर एक अनोखी और खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर चंद्रपुर के चिंतावर परिवार में देखने को मिली है। इस परिवार ने अपने घर में बप्पा का शानदार पंडाल सजाया है, जहां विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग की रेप्लिका भी बनाई गई है। पहाड़ों का वातावरण, धार्मिक स्थलों की मनमोहक रेप्लिका और आकर्षक रोशनी मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल तैयार करती हैं, मानो घर बैठे ही एक साथ कई तीर्थ स्थलों के दर्शन हो गए हों।
1: 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु इस झांकी को अपने घर में सजाया है और हमें बहुत आनंद मिलता है ये सब करने में, कि इस बहाने से सभी लोगों के का एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं।
0: चिंतावर परिवार में हर साल गणेशोत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। परिवार के सदस्य मिलकर अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर झांकियां तैयार करते हैं, जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है और गणेश जी के आगमन के साथ पूरा परिवार ही भक्ति के रंग में रंग जाता है। ये परिवार पिछले 50 सालों से ऐसे ही अलग अलग थीम पर बाप्पा की झांकियां अपने घर में सजाता है।
1: एक तो पारिवारिक गणेश स्थापना करी हुई है, इसकी अभी करीब करीब हम 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और हर साल एक नया थीम लेकर हम इस गणेश उत्सव को मनाते हैं।
0: वही चंद्रपुर का बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी इन दिनों बाप्पा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस केंद्र में भक्तों को बैम्बू यानी बांस से बने बाप्पा के दर्शन हो रहे हैं। गणेशोत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र वन विभाग के इस केंद्र में पढ़ने वाले छात्रों ने बांस से भगवान श्री गणेश की ये शानदार इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार की है। साथ ही मुकुट, सूंड, हाथ पांव, वस्त्र और यहाँ तक की मूषक भी बांस से ही बनाया गया है। इतना ही नहीं, पंडाल और पूरी सजावट भी बांस का इस्तेमाल करके ही की गई है।
2: हमको क्लास में बताया गया था कि हम इस साल गणेश जी में बेम्बू के गणेश जी बनाएंगे, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। मैं तुरंत हाँ बोला और मैं परमिशन लिया कि मैं करना चाहता हूँ, और मैं अपने कुछ साथियों को सिलेक्ट किया और फिर हमने काम शुरू किया। ये अनुभव था कि मिट्टी से कैसे बना सकते हैं गणेश जी, वो तो मैं बनाया भी हूँ पहले, पर बेम्बू में ऐसा कैसे करे थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी शुरू किया। शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करें, पर शुरू में सोचा था कि स्लाइवर्स से करेंगे, ऐसे पटकियाँ निकाल के उनको फोल्ड करके, लेकिन वो भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। फिर हमने बेम्बू के छोटे टुकड़े कट कर करके ऐसा थोड़ा जोड़ के देखा, फिर वैसे शुरू किया, फिर जोड़ते गए, फिर आगे ऐसे जोड़ जोड़ के अब फिर गणेश जी कम्प्लीट किए।
0: बांस से साकार किए गए बप्पा के दर्शन के लिए आने वाला हर व्यक्ति विद्यार्थियों की कला, मेहनत और तकनीक कौशल की सराहना कर रहा है। भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा ने जहां भक्तों का मन मोह लिया है, तो वहीं इस अनोखे प्रयोग ने भी पर्यावरण संरक्षण की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है। चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: वैसे देखिए, इन तस्वीरों को देखकर एक बात कहनी बनती है कि क्रिएटिविटी एट पीक है लोगों की गणेश चतुर्थी को लेकर। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं सूरत के एक अनोखे पंडाल और इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। सूरत के भटार इलाके में तैयार किया गया गणेश पंडाल श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस पंडाल में जहां एक तरफ भगवान गणेश की भक्ति और आराधना का माहौल देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में हुए विकास कार्यों को भी थीम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। श्रद्धालुओं के लिए यहां पर वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में गेट तैयार किया गया। पंडाल के भीतर विशेष डिस्प्ले और विजुअल इफेक्ट्स लगाए गए हैं, जो ट्रेन यात्रा जैसा माहौल तैयार करते हैं। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खासा उत्साह नजर आता है।
4: गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग गणेश पंडालों में अलग अलग थीम पर भगवान गणेश के दर्शन भक्त कर रहे हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत के एक गणेश पंडाल में और यह तस्वीरों के जरिए हम पहले आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसकी थीम पर यहाँ पर गेट बनाया गया है और ये वंदे भारत अंदर का जो पूरा नजारा है हमने कैमरे में कैद किया, वो पूरी तरह से जिस तरह से ट्रेन चल रही हो ऐसा डिस्प्ले पे आभास होता है ऐसे जो भी यहाँ से अंदर से प्रवेश करते हैं। तो ये एक वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट बनाया हुआ है। इसके पीछे साइड में हम देखेंगे तो गणेश पंडाल है, मतलब जहाँ पर भगवान गणेश की लोग पूजा पाठ और आराधना करते हैं। तो अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो चलिए ये देखेंगे आप, ऐसे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है लेकिन ये गणेश पंडाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है और यहाँ के अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा एक बनाया गया है किस तरह से ट्रेन का इंजन होता है, किस तरह से चलता है और जो डिस्प्ले में यहाँ लगाया गया है इधर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ट्रेन चल रही है और ये पूरा नजारा बाहर का दिख रहा है। तो भक्त लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और इसके ठीक बगल में आगे हम ले जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे जो भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आगे इसी गेट से जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि स्टेशन लिखा गया है और यहाँ के बाद आप देखेंगे तो सीधा गणेश पंडाल आ जाता है। यहाँ पर भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है तो भक्त यहाँ पर भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सूरत में ये तस्वीरें हैं, सूरत के भटारी इलाके में भगवान गणेश की स्थापना हुई है। गणेश पंडाल जो यहाँ पर बनाया, जहाँ भगवान गणेश विराजमान है, जहाँ भगवान के लोग दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करने पहुंचते हैं और ये जो वंदे भारत का एक ट्रेन का जो गेट बनाया गया है यहाँ पर लोग आकर के दर्शन करते हैं और यहाँ से प्रवेश करते हैं। तो सूरत में अलग प्रकार की थीम यहाँ पर देखने को मिल रही है। संजय सिंह राठौर, गुड न्यूज टुडे, सूरत।
3: तो देखिए, गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और देखिए, नंबर है हमारा 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है बल्कि ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, अपना शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं। देहरादून से निधि नेगी ने हमें गणपति पूजन का वीडियो भेजा है, जिसमें निधि ने अपने हाथों से बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई है। इको फ्रेंडली मूर्ति में जब आस्था के रंग भरे गए तो नजारा बेहद शानदार दिखा, जिसमें गजानन के साथ साथ उनकी सवारी चूहा भी नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीधी से आई है, जिसे कृष्ण नामदेव ने हमें भेजा है। वीडियो में बप्पा की दो प्रतिमाएं नजर आ रही हैं। फूलों से सजे बप्पा की मूर्ति बेहद आकर्षक लग रही है। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गणपति बप्पा की 25 तस्वीरें।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: देशभर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक।
8: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम को दी बधाई, प्रयागराज में भव्य आरती।
7: दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, 52 देशों की कंपनियां होंगी शामिल।
8: पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जमावड़ा, पूजा पाठ कर पीएम की लंबी उम्र की कामना, सीएम योगी ने की मेहमानों की अगवानी।
7: उत्तराखंड के औली में अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास 2026, ड्रोन शक्ति के साथ साथ रोबोटिक डॉग्स की नुमाइश, आतंकवाद से निपटने की तैयारियों को परखा गया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

तो गणपति उत्सव का चौथा दिन है। आज भी सुबह से ही मुंबई में लालबागचा राजा के पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बप्पा के दर्शन के लिए पंडाल में लंबी कतारें लगी हैं। मुंबई में बड़ी संख्या में लोग बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और खुलकर दान कर रहे हैं। इस साल लालबागचा राजा के पंडाल में पूजा का 93वां वर्ष मनाया जा रहा है।

गणेश उत्सव के चौथे दिन मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह मंदिर में गणपति की शानदार आरती भी की गई। सिद्धिविनायक मंदिर की ओर से गणपति के लाइव दर्शन की भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।

देश भर में गणेशोत्सव की रौनक है। हर तरफ गूंज रहे बप्पा के जयकारों के बीच उत्साह है, उमंग है। बस ये मानिए कि परंपरा की सतरंगी छटा घर घर और गणेश पंडालों में बिखरी है। ऐसे में मुंबई के चेंबूर स्थित सह्याद्री क्रीड़ा मंडल का गणेश पंडाल अपनी एक अनूठी थीम एनिमेशन कैरेक्टर्स की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस साल सह्याद्री क्रीड़ा गणेश मंडल अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। बप्पा की आभा तो बेहद खूबसूरत है ही, साथ में पंडाल का थीम सुपर हीरोज दर्शाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर मुंबई में परेलचा राजा की। मुंबई के गणेश पंडालों में परेलचा राजा भी सबसे पुराने और ऐतिहासिक सार्वजनिक मंडलों में से एक है। यहाँ पर बप्पा की ये प्रतिमा बेहद सुंदर और भव्य है, जिसकी थीम संत वारकरी और पंडरपुर वारी पर आधारित है। साथ ही इस गणेश पंडाल में गरुड़ स्तंभ और चंद्रभागा के पवित्र जल का प्रतीक स्थापित किया गया है। ये मंडल इस बार अपनी 80वीं वर्षगांठ बना रहा है। और देखिए, खास बात ये है कि महाराष्ट्र के पंडरपुर मंदिर के समीप बहने वाली नदी चंद्रभागा के पानी से ही यहाँ बप्पा की मूर्ति भी बनाई गई है।

अब आपको दिखाते हैं मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में गणपति उत्सव की झलक। एंटीलिया चाराजा के गणेश उत्सव की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी बीच एंटीलिया के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नीता अंबानी गणपति बप्पा की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। वहीं मुकेश अंबानी परिवार समेत गणपति की आराधना आरती करते हैं।

अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें नागपुर की। शहर के प्रसिद्ध दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने इस साल भक्तों के लिए पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। संता नगरी नागपुर के भक्त अब स्थानीय स्तर पर ही आलंदी तीर्थ स्थल के दर्शन और बप्पा की आराधना एक साथ करें। नागपुर के महल परिसर स्थित दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक पंडल में आस्था और कला का अद्भुत संगम भी देखने को मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं पुणे में गणेशोत्सव की एक तस्वीर। यह तस्वीर है पुणे के साने गुरुजी तरुण मित्र मंडल के पंडाल की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पंडाल में गणपति के दर्शन आराधना करने पहुंचे और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की।

शहर शहर गणेश उत्सव की धूम है। तमाम लोगों के घर गणपति जो है वो विराज चुके हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के घर भी गणपति की स्थापना की गई है और उनके यहाँ तमाम लोग विनायक के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं मुंबई में लालबाग चौराहे के पंडाल की तस्वीरें। खास बात यह है कि पंडाल में तमाम आम और खास लोग लालबाग चौराहे के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लालबाग चौराहे के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वही तस्वीरें।

अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक पंडाल की तस्वीरें। शहर के सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में इस बार मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन एक साथ ही हो रहे हैं और यही वजह है कि इस अनोखे धार्मिक संगम को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है। यहाँ पर लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की गई है, वहीं दूसरी ओर शिरडी के साईं बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में चंद्रपुर के बल्लारपुर में गणेश उत्सव की एक और खास तस्वीर। यहाँ चिंतावार परिवार ने अपने घर में ऐसा गणेश पंडाल सजाया। यहाँ श्रद्धालुओं को एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने बेहद खूबसूरती और मेहनत के साथ देश भर में स्थित ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियाँ तैयार की। और देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है ये अकोला से सामने आई है। अकोला में एक परिवार ने अपने घर में गणपति बप्पा के साथ पूरे खंडोबा मंदिर की झांकी बनाई। इसमें खास बात यह है कि इसे बनाने में परिवार के हर सदस्य ने अपनी भूमिका निभाई है। किसी ने वेस्ट मटेरियल से केले की मीनार तैयार की है, तो किसी ने रंग रोगन किया है, किसी ने खंडोबा की प्रतिमा को सजाया है, तो किसी ने घर के ही कपड़ों से भगवान के लिए पोशाक तैयार की है।

0: चलिए अब आपको दिखाते हैं अकोला की एक और तस्वीर। महाराष्ट्र के अकोला में एक भव्य गणेश पंडाल ने भक्तों को आस्था के साथ चारधाम की यात्रा का अनुभव करवाने की कोशिश की है। रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल ने यहां गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की भव्य झांकी तैयार की। करीब एक एकड़ से ज्यादा जगह में बनी इस झांकी में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेकर बर्फ से ढके रास्तों तक ऐसा माहौल बनाया गया कि पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को चार धाम पहुंचने जैसा अनुभव हो रहा है। अकोला में गणेश उत्सव की एक और शानदार तस्वीर नजर आ रही है। अकोला के 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ गणपति बापा की करीब 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। बापा का दरबार इस बार लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल में भगवान गणेश के जन्म की कथा से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की झलक भक्तों को देखने को मिल रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें सूरत के एक अनोखे पंडाल की। सूरत के भटार इलाके में तैयार किया गया गणेश पंडाल श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस पंडाल में जहां एक तरफ भगवान गणेश की भक्ति और आराधना का माहौल देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ देश में हुए विकास कार्यों को भी थीम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। श्रद्धालुओं के लिए यहां पर वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में गेट तैयार किया गया। इस गणेश पंडाल के ठीक बगल में एक और पंडाल है जहां पीएम मोदी की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के सामने विशेष लेजर शो का आयोजन किया जाता है।
1: और अब देखिए तस्वीरें आगर मालवा के पास बने गणेश बल्डा मंदिर की। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर स्वयंभू मंदिर माना जाता है। यहाँ स्थित भगवान गणेश की महिमा प्रदेश भर के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। कहा जाता है कि वर्षों पहले बंजारा समुदाय के लोग इस तरह से व्यापार करने के लिए निकला करते थे, तब यहाँ पहाड़ी पर गणेश प्रतिमा देख उन्होंने मंदिर की स्थापना की और स्थान को अपना पड़ाव भी बना लिया। मंदिर के ऊपर ही गणेश भगवान के पिता भगवान शंकर की भी मूर्ति और शिवलिंग को स्थापित किया गया है।
0: अब देखिए तस्वीरें छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव की। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक ऐसा गणेश मंदिर है जहां भगवान गणेश को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था मान्यताएं इसे खास बनाती हैं। पेंड्रा विलासपुर मार्ग पर कारियाम में स्थित स्वयंभू गणेश दादा मंदिर इन दिनों भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ गणपति सिंदूरी रंग में है।
1: अब आपको दिखाते हैं गणपति के प्रति श्रद्धा की शानदार तस्वीरें। गणपति बापा की भक्ति में आपने मिट्टी, प्लास्टर और अलग अलग धातुओं से बनी प्रतिमाएं तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी घर की बेकार समझी जाने वाली चीजों से बने गणेश जी देखे हैं? दिल्ली के कलाकार राजेश कुमार ने ऐसे ही बेकार समझे जाने वाली चीजों से ये खास प्रतिमा तैयार की है।

0: मल हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु इसे देखने के लिए आ रहे हैं।
1: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक के बीच ऐसे इको फ्रेंडली बप्पा ही खूब चर्चा में है, जो मिट्टी या दूसरी चीजों से नहीं बल्कि जीवित हरियाली का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं और ये मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं।
0: अब ये तस्वीरें देखिए गणपति की विदाई की। तमिलनाडु के कुड्डालूर में गणपति की विशाल प्रतिमाओं का समुद्र में विसर्जन किया गया। शहर में कई जगहों पर गणेश उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव के तीसरे दिन यहां धूम नजर आई।
1: और देखिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें तमिलनाडु के मंडपम की। यहाँ पर धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकालकर विनायक को विदाई दी गई। बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए और कई घंटे तक शोभा यात्रा निकालने के बाद समुद्र में बप्पा को विदाई दी गई।
0: अब देख लीजिए तस्वीरें कर्नाटक के हुबली की। वहां भी बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर गणपति को विदाई दी गई। बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा में शानदार झांकियां निकली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति की विदाई के समारोह में शामिल हुए।
1: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें केरलम में गणपति उत्सव की। केरलम के तिरुवनंतपुरम में पझाव नगड़ी महागणपति मंदिर में गणेश उत्सव के सिलसिले में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शानदार झांकियां भी निकली और केरलम की सांस्कृतिक लोक परंपरा की शानदार झलक देखने को मिली।
0: चलिए ये तस्वीर मुंबई में अभिनेता सलमान खान के भाई सोहेल खान के घर पर हुए गणेश चतुर्थी उत्सव की है। गणपति विसर्जन का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सलमान खान और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। सोहेल खान के घर पप्पा को भावभीनी विदाई दी गई।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आप

0: अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर देश भर में खास आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है और इसी खास मौके पर कहीं केक काटा गया तो कहीं पीएम मोदी के लिए पूजा करवाई गई। प्रयागराज और वाराणसी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं।
4: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में उत्साह और आध्यात्मिकता के साथ पीएम के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। अहिल्याबाई घाट पर बटुक ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा का पूजन किया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 76 बटुक ब्राह्मणों ने 76 लीटर केसर जल और दूध से मां गंगा का अभिषेक किया। डमरू वादन के बीच शंखनाद कर आशीर्वाद दिया गया।
3: तो पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी देशभर में जोर शोर से मना रही है और इस खास मौके पर पीएम के पैतृक नगर वडनगर में शर्मिष्ठा तालाब पर गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष पूजा अर्चना की और आरती भी की। अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि पीएम ने 25 साल का बेदाग सार्वजनिक जीवन जिया है। पीएम मोदी देश कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है।
5: मोदी के दीर्घायु के लिए आज शर्मिष्ठा तालाब जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री ने अपना बचपन बिताया था वहाँ पे एक महाआरती की गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ सभी महानुभाव जो यहाँ पे जुड़े थे उन्होंने जो है यहाँ पे महाआरती की और प्रधानमंत्री के लंबे आयु के लिए प्रार्थना करी है। यहीं से जल लेकर जो बाइक यात्रा निकली है वाराणसी के लिए वो बाइक यात्रा जो है यहीं से जल लेकर पहुंचेगी और वहां पे काशी विश्वनाथ को जो है वो जल चढ़ाया जाएगा और पूरी तरह से ये जल सेवा संकल्प जो सेवा संकल्प अभियान है उसके तहत ये जो बाइक यात्रा निकली है और ये बाइक यात्रा के साथ प्रधानमंत्री की कर्मभूमि और जन्मभूमि को जोड़ा गया है। एक बड़ा मैसेज राजकीय संदेश देने के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों के साथ साथ लोगों में दिया गया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जनता के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री और ऐसा नेता देश को मिलना बहुत ही मुश्किल है। आने वाले भविष्य में भी ये बहुत मुश्किल रहेगा कि जब एक ऐसा नेता जो अपने परिवार को छोड़कर देश को परिवार मानता है और देश के लिए 24 घंटे काम करता है। वडनगर से कैमरा सैलम के साथ विजय जोशी।
3: तो चलिए इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही
4: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोग।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का 4th दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम को बधाई दी, प्रयागराज में भव्य आरती। दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने शिरकत की, 52 देशों की कंपनियां शामिल होंगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जमावड़ा लगा, पूजा पाठ कर पीएम की लंबी उम्र की कामना की, सीएम योगी ने की मेहमानों की अगवानी। उत्तराखंड के औली में अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास 2026, ड्रोन शक्ति के साथ साथ रोबोटिक डॉग्स की नुमाइश, आतंकवाद से निपटने की तैयारियों को परखा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
3: मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान परेल के राजा का दिखा अनोखा स्वरूप, वारकरी रूप धारण किए हुए नजर आए बप्पा। महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा और विठल भक्ति को समर्पित है बप्पा का ये रूप। दर्शनों के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्रन सादा फेटा यानी महाराष्ट्र की संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक माने जाने वाली विशिष्ट प्रकार की पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं गणपति। वारकरी रूप में हाथ में सजा है मृदंग। 24 फीट ऊंची है जगानन की ये प्रतिमा, गजानन की प्रतिमा। तो वहीं पूजा अर्चना के लिए गणपति की एक छोटी मूर्त भी मौजूद है। इस बार अपना 80 साल मना रहे हैं ये मंडल। हर साल गजानन को अलग अलग स्वरूपों में स्थापित करने के लिए मशहूर है परेल का ये गणेश मंडल। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति बापा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। गणेशोत्सव पर तैयार की गई है वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट ऊंची है प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट है लंबाई और 90 फीट चौड़ा है ये भव्य पंडाल। मंदिर की दर्शनीय हिस्सों में बनाई गई है राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं। अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिली। मशहूर दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया है। पुणे के आलंदी की संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर। दीवारों से लेकर मंदिर के गुंबद तक शानदार नक्काशी बेहद खूबसूरती से ढाली गई है। हर बारी की पंडाल में देखने के लिए मिल रहा है आस्था और कला का अद्भुत संगम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी अद्भुत मिलन। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लालबाग चौराजा के साथ शिरडी साई बाबा के दर्शन। इस अनोखे धार्मिक संगम को देखने के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पंडाल में लाल बाग चके राजा के भव्य प्रतिकृति तैयार की गई है। बाबा के साथ शिरडी के साईं बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भी अपनी ओर खींच रही हैं श्रद्धालुओं का ध्यान। इन भव्य झांकियों के निर्माण से पिछले 3 महीनों से दिन रात जुटे थे कलाकार। भव्य सजावट, आकर्षक मूर्तिकला और धार्मिक झांकियां ऐसी मेहनत का प्रमाण है। 40 सालों से प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की भव्य झांकियां प्रस्तुत करने के लिए मशहूर हैं ये पंडाल। चंद्रपुर वासियों को अपने ही शहर में अलग अलग तीर्थ स्थलों और धार्मिक परंपराओं की झलक दिखाना है उद्देश्य। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का अनोखा संदेश। वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बना अनोखा गणेश पंडाल। सूरत में ठाकुर सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है यह अनोखा गणेश पंडाल। पंडाल के बीच में स्थापित की गई है गणपति की विशाल और भव्य प्रतिमा। पंडाल में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैचू भी स्थापित किया गया है। वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में तैयार किया गया है। गेट है आकर्षण का केंद्र। इस पंडाल के बाहर लगाई गई है बड़ी LED स्क्रीन जिस पर लगातार चलती रहती है भगवान गणेश के भक्ति गीत और धार्मिक प्रस्तुतियां। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में लेजर शो देखने आते हैं लोग। गणेशोत्सव में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा। 2 लाख से ज्यादा पेन से बनाई गई है बप्पा की मूर्त। 42 फीट ऊंची है भगवान गणेश की प्रतिमा। दूर दूर से दर्शनों के लिए आ रहे हैं लोग। मनी आकर्षण का केंद्र। अलग अलग रंगों से के पेन से किया गया है त्रिमुखी गजानन का स्वरूप का निर्माण। इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का एक बेहतरीन उदाहरण। अकोला में गणेश भक्त परिवार ने बनाई गणपति की अनोखी झांकी। घर के बाहर गणपति के साथ सजाई ज्वेलरी का खंडोबा गढ़ की प्रतिकृति। महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा की प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। पुणे जिले के पुरंदर तालुका में स्थित जेजुरी इस शानदार प्रतिकृति को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। महाराष्ट्र के अकोला में लगा बापा का अनोखा दरबार। रिद्धि सिद्धि गणपति पंडाल मंडल के पंडाल में लगी चारों धामों की भव्य झांकी। 1 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बना विशाल पंडाल। पंडाल में बर्फीले पहाड़, हिमालयी रास्तों के साथ चारों धामों का भी एहसास। गंगोत्री से बद्रीनाथ तक के दर्शन। 30 से 35 फीट की भव्य शिव बारात वाली गणपति की लगाई गई प्रतिमा गजानन गणेश के साथ चारों धामों के दर्शन का आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु। गणपति पंडाल के लिए तैयार किए गए चारों धामों के प्रतीकात्मक स्वरूप बेहद बारीकी और खूबसूरती से तैयार की गई है चारों धामों की झांकी। चार धाम यात्रा ना कर पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा जैसा अनुभव देने की कोशिश, पंडाल में पहुंचकर चार धाम यात्रा जैसा अनुभव पा रहे हैं श्रद्धालु। ओडिशा के दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देवगढ़ में गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों का किया दौरा। गणपति उत्सव में सेवा करते हुए नजर आए धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धालुओं को वितरित किया भोग प्रसाद। आगरमालवा के पास बने सैकड़ों साल पुराने गणेश बलडा मंदिर में गणपति उत्सव की रौनक, स्वयंभू मंदिर के तौर पर है इसकी पहचान। मंदिर के ऊपर ही गणेश भगवान के पिता भगवान शंकर की भी मूर्ति और शिवलिंग स्थापित, दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं भक्त। मंदिर के परिसर में ही सैकड़ों गायों की गौशाला मौजूद माना जाता है। भगवान गणेश की कृपा से यहाँ किसी भी परिस्थिति में गायों को नहीं होता है कोई कष्ट। तमिलनाडु के कुडालोर में विनायक चतुर्थी के समापन पर बंगाल की खाड़ी में हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए भक्त। रामेश्वरम में गणपति मूर्ति विसर्जन, पारंपरिक उत्साह और ढोल नगाड़ों के बीच पापा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना। तटीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के हुबली में भी गणपति विसर्जन जुलूस संपन्न हुआ, भक्तों ने पूरे उत्साह से किया मूर्ति का विसर्जन। ढोल नगाड़ों के बीच निकला बापा का शानदार जुलूस, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बापा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना के साथ ही विदाई की गई, भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। तमिलनाडु के मदुरई में उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभ अभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही जारी है अनेक धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर की पवित्र यज्ञशाला में विशेष पूजा अर्चना जारी। 17 साल के अंतराल के बाद हो रहा है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभ अभिषेक, देश भर के भक्तों में भारी उत्साह। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर रंग बिरंगी और आकर्षक रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर, देखते ही बन रही है धार्मिक आयोजन की भव्यता। हिंदू मंदिरों में होने वाला एक पवित्र जीवनोद्धार और शुद्धिकरण अनुष्ठान है कुंभ अभिषेक, जिसमें वेदों और मंत्रोच्चार के बीच किया जाता है देवताओं का आवाहन। दिल्ली में ग्लोबल इवेंट सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन पीएम मोदी ने किया है उद्घाटन। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में, 52 देशों की 600 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस एग्जीबिशन में 6 देशों की पवेलियन और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन शामिल हैं। स्टार्टअप पवेलियन में लगभग 40 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे। सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम रखा गया है सेमिकॉन इंडिया 2026 का थीम, 3 दिन चलेगा इवेंट। भारत में सहयोग इन्वेस्टमेंट प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना सेमिकॉन इंडिया 2026 का लक्ष्य है, 50,000 विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद है। 76 साल के हुए पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन और जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर आशीर्वाद का दिया की विशेष थीम पर सॉन्ग लॉन्च, संगीतकार अमन पंत द्वारा तैयार किया गया है गीत। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रवाना। पीएम के संसदीय क्षेत्र और धार्मिक नगरी काशी में बट ब्राह्मणों का किया गया विशेष गंगा पूजन, उन्होंने किया प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना भी की। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 76 बटुक ब्राह्मणों ने 76 लीटर जल और दूध से किया मां गंगा का अभिषेक, डमरू वादन से आध्यात्मिक माहौल हुआ। सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने अपने अंदाज में पीएम का जन्मदिन मनाया, मोदी स्टाइल के पहनावे में नजर आए बच्चे, मुखौटे भी लगाए। चंदौली में पीएम के जन्मदिन का अनोखा जश्न देखने को मिला, बांटी गई 76 किलो मिठाई। संगम नगरी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष प्रार्थना और गंगा आरती का आयोजन किया गया, उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिल्ली में नितिन नवीन ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर खुद भी रक्तदान किया। लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मरीजों को फल बांटे और पीएम नरेंद्र ब्लड बैंक का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 108 कुंडीय हवन में शामिल हुई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में अनोखा नजारा दिखा, विश्व उमिया धाम में की गई महाआरती, हजारों लोगों ने महाआरती में हिस्सा लिया, जगमगाए हजारों दिए, दिखी भारत के नक्शे के आकार। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर के अवसर पर रेत से बनाई खास कलाकृति, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झांसी में रात 12 बजे महिलाओं ने काटा पीएम मोदी के जन्मदिन का केक, बोली मोदी योगी सरकार में मिली ऐसी सुरक्षा जो पहले कभी नहीं मिली। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते हुए दिखे। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की परेशानी, जल्द मदद का आश्वासन भी दिया। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के अजय तरनजीत सिंह संधू, रामलला और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। लेह में शानदार शरद मेला 2026 का आयोजन किया गया, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया। कई महिला स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों और कारीगरों ने मेले में हिस्सा लिया, अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है ये मेला। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई, बेहद मनमोहक दिखा तीर्थ स्थल का नजारा। बांदीपुरा जिले के कुरेज में तुलाइल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मनाली में हो रही है जमकर बर्फबारी, सैलानी खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे हैं। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, बारालचा दर्रे से घेपन पीक तक बिछी सफेद चादर, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बारिश और गिरते तापमान ने लाहौल स्पीति के मौसम का रंग पूरी तरह से बदल दिया, निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। आज करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा रिलीज हो रही है, इसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। कुणाल खेमू की फिल्म वाइब भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगी अपना कमाल, फिल्म में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, दिनेश लाल यादव जैसे स्टार्स हैं। लास्ट स्टोरीज का तीसरा सीजन भी रिलीज, तो वहीं इसमें चार अलग अलग कहानियां हैं जो प्यार, नजदीकी और आधुनिक रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाती है। भारत में रेलवे टिकट के एक बड़े घोटाले पर आधारित वेटिंग है नाम की सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, अभिनेता देवेंदु शर्मा अहम भूमिका में नजर आएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का नया सीजन शुरू होने की हुई घोषणा, 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा शो का पांचवा सीजन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर JNT में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें वो तस्वीरें जो दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी JNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बने, आप अपने अपने घर पधारे हुए गजानन का वीडियो बनाए और हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो या तस्वीरों को भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजते हैं तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखकर भेजें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी JNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे हुए गजानन का वीडियो बनाकर हमें शेयर करना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं, आप भी देखिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नीतू मिश्रा ने हमें गणपति पूजन का वीडियो भेजा है, जिन्होंने पूरे पारंपरिक अंदाज में गौरी पुत्र गणेश को अपने घर में स्थापित किया। चाहे बप्पा की पोशाक हो या फिर भव्य सजावट, दोनों ही बेहतरीन नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के धुले से आई है, जहां पर जगराव गोविंद भट्ट ने हमें इसे भेजा है। कई स्वरूप में बप्पा विराजे हैं, बप्पा के आसन से लेकर पूरी सजावट बेहद आकर्षक दिख रही है। खास बात यह है कि फूलों के साथ साथ बप्पा को सजाए मोर पंखों का भी इस्तेमाल किया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: देश भर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन शहर शहर बापा के अनोखे पंडालों की रौनक। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न का माहौल, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम को बधाई दी, प्रयागराज में भव्य आरती। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने शिरकत की, 52 देशों की कंपनियां शामिल होंगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जमावड़ा, पूजा पाठ कर पीएम की लंबी उम्र की कामना की, सीएम योगी ने मेहमानों की अगवानी की। उत्तराखंड के औली में अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास 2026, ड्रोन शक्ति के साथ साथ रोबोटिक डॉग्स की नुमाइश, आतंकवाद से निपटने की तैयारियों को परखा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
8: हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी भाभी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, जहां आपको मिलता है सीरियल, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, ईशा का शुरू होगा ताई जी की शादी मिशन, मनाएगी घर वालों को। पापा बेटी के बीच आएगी दरार, कबीर की वजह से होगी मायरा और अरमान में लड़ाई।
10: और अब भी हम उस कबीर को चूज करके हमारे इंसल्ट कर रहे हो।
11: आप भी तो अपनी जिद को चूज कर रहे हो पापा।
10: जब तक ये कबीर से ब्रेकअप करने के लिए रेडी नहीं होती, मैं इससे बात नहीं करूंगा।
11: और जब तक आप मेरे आगे ये फिल्मी शर्तें रखना बंद नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं।
9: बिगड़ेगी राध्या की तबीयत, तो क्या आ गई है गुड न्यूज़?

के ट्रेलर लॉन्च पर। फिर एक बार दिखेगी एकता और प्रेरणा की कसौटी, साथ ही नजर आएंगे बाकी के सितारे। और गणेश उत्सव के खास मौके पर दिखेगी सितारों की बाप बाप भक्ति, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा ताई जी की दूसरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ऐसे में ईशा जुट गई है घर वालों को मनाने में। अब ईशा की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं और क्या वो घर वालों को मना पाती है, चलिए देखते हैं।
1: एक बार ये शादी हो गई ना, फिर आप इस घर की मुखिया बन जाएंगी। जिस घर में आपको रील्स देखने की इजाजत नहीं है, आप पूरी आजादी से रील्स बना भी पाएंगी और तो और आप उस पे हुकुम भी कर पाएंगी।
2: झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक।
3: ईशा का मिशन ताई जी की शादी,
2: यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक।
3: घर वालों को मनाने की कोशिशें, मोनिका पर चला ईशा का जादू,
2: गलती से मिस्टेक बेटा।
3: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा जिद पर अड़ी है कि उसे ताई जी की शादी करवानी है, लेकिन घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं है। तभी तो वो एक एक कर सबको मनाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले ईशा पहुंच गई है मोनिका के पास। भाई मोनिका अपना पेडिक्योर और स्किन केयर कराने में बिजी है और इसी का फायदा उठाकर ईशा मोनिका से ताई जी की शादी की बात कर रही है और उन्हें लालच भी दे रही है। क्या है वो लालच, आइए जानते हैं।
1: एक बार ये शादी हो गई ना, फिर आप इस घर की मुखिया बन जाएंगी। जिस घर में आपको रील्स देखने की इजाजत नहीं है, आप पूरी आजादी से रील्स बना भी पाएंगी और तो और आप उस पे हुकुम भी कर
2: पाएंगी। जाना है
3: भाई, लगता है कि मोनिका ईशा की बातों में आ गई है। तभी तो वो सपने सजा रही है और सपनों के साथ साथ खुद भी आज सज धज रही है। मिशन तो अभी अधूरा है क्योंकि ईशा को बाकी घर वालों को भी मनाना है। तभी तो आज वो ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आई है मोनिका, पूरन और रिया के लिए। जहां मोनिका तो मान गई है, लेकिन रिया और पूरन इस शादी के लिए तैयार नहीं है और वो गिफ्ट्स भी नहीं लेते। नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन मोनिका भाभी ने जिम्मेदारी उठाई है इन दोनों को मनाने की।
1: कोई कहीं नहीं जाएगा।
4: छुईमुई जी, बिल्कुल सही किया आपने।
1: ये क्या किया छुईमुई जी आपने? ये तुम्हारी गिफ्ट है, तुम बहुत अच्छे लगे। देखो,
5: थैंक यू भाभी।
6: ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ।
1: जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बाबू को अपने तरीके से मना लूंगी।
3: तो भाई रिया और पूरन को मोनिका मना ही लेगी। अब बचे हैं पति ब्रह्मचारी यानी कि सूरज, और सूरज को मनाना इतना आसान नहीं। लेकिन ईशा कुछ भी कर गुजरेगी, उसे ताई जी की शादी जो करवानी है।
1: बाबू, बाबू, हम तो चंद्र सिद्धि अबू को दिखाने जाएंगे। उसे मेरे लिए लाए हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे, पत्नी उसकी जबरदस्ती करना होगा।
3: तो भाई अब देखना होगा कि क्या सूरज मानते हैं और ताई जी की शादी हो पाती है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: सॉरी सॉरी, मैं अपनी ताई माँ के हाथों में उस चंदू के नाम की मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं लगने दे सकता।
1: टाइल्स को चिपकाने वाला मजबूत ग्लू, मुझे पता था तुम ऐसी हरकत जरूर करो, फंक्शन तो होके रहेगा
7: और मैं इसे रोक कर रहूंगा।
0: हम लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट शोज के सारे हाइलाइट्स एक साथ, तो हो जाइए आप भी सास बहू और बेटियां की एयरलाइंस पर सवार और करते हैं सीरियल्स की दुनिया की सैर।
3: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में इन दिनों प्रथम अंतरा का बखूबी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जल्द ही वो प्रथम और राध्या के बच्चे की माँ जो बनने वाली है। ऐसे में देख लीजिए कैसे प्रथम ने घर में डॉक्टर को बुलाया है ताकि वो अंतरा का चेकअप कर सके, क्योंकि अंतरा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताती है कि अंतरा अब ठीक है, लेकिन उसका ख्याल ज्यादा रखना होगा। ऐसे में वह अंतरा पूरी कोशिश कर रही है प्रथम को अपनी तरफ खींचने की और उसे रिझाने की, और ये बात राध्या कहीं न कहीं समझने लगी है। हालांकि प्रथम डॉक्टर से निवेदन भी करता है कि वो राध्या का भी चेकअप कर ले, क्योंकि इन दिनों राध्या की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी कारणवश डॉक्टर को वहां से जाना पड़ता है। अंतरा तो कोशिश कर रही है कि प्रथम की जिंदगी से राध्या का नाम मिटाकर अपनी हथेली में प्रथम का नाम सजा ले।

वहीं दूसरी ओर राधे की तबीयत इतनी खराब है कि दादी इन दिनों राधे का ख्याल रखने लगी है कि भी कहीं न कहीं लगता है राधे की भी गुड न्यूज आने वाली है, जिसे राधे खुद अनजान है, लेकिन दादी सब जानती है। इसीलिए दादी बार बार राधे के इर्द गिर्द ही रहना चाहती है ताकि वो राधे पर पूरी निगरानी रख सके। वही दूसरी ओर प्रथम भी परेशान है राधे की तबीयत को लेकर। ऐसे में राधे उसकी ओर जाने की कोशिश करती है, उसे बात करना चाहती है, लेकिन अचानक उसे कदम लड़खड़ा जाते हैं। बस फिर क्या, प्रथम आकर उसे संभाल लेता है। संभालने के साथ साथ उसे चेतावनी भी देता है कि वो संभल कर चले। इतना ही नहीं, वो उसका ख्याल भी रख रहा है और तो और राधे से वादा भी कर रहा है कि उसके अलावा प्रथम की जिंदगी में कोई और आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो तो राधे की परेशानी को दूर करने के लिए राधे को गले भी लगाता है, उस पर प्यार भी जताता है।

0: जी टीवी पर जल्द ही आने वाला है सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा, जिसका हुआ लॉन्च और लॉन्च के मौके पर वहां पर मौजूद रहे सारे गामा पा के होस्ट श्रेयस तलपड़े। इसी के साथ नजर आए इस शो के जजेस यानी कि शंकर महादेवन, जावेद और नीति मोहन भी, जो ज्यादा एक्साइटेड हैं इस सीजन को लेकर। असल में इस बार सारेगामा पा बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देश के हर कोने से आएंगे संगीतकार। इतना ही नहीं, देश के हर कोने से म्यूजिक भी आएगा, यानी इस बार सिंगिंग के मंच पर सिर्फ बॉलीवुड का रंग नहीं जमेगा, बल्कि देश की हर संस्कृति का रंग जमेगा, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प।
1: इतने सालों की लेगेसी है सारेगामा पा की। इट इज द फर्स्ट एवर इंडियन सिंगिंग रियलिटी शो, और आज जिस स्केल पे ये शो हो रहा है और जिस तरीके का टैलेंट आप अभी देखेंगे आने वाले हफ्तों में, यू नो इट इज फिनोमिनल। सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज म्यूजिकल शो विच इज as authentic as it can get. जैसे शंकर सर ने कहा कि you know live musicians है, live chorus band है, और उसके साथ ये बेहतरीन हमारे सारा जो talent यहाँ पे आपको दिख रहा है वो जब perform करते हैं तो वो एक अद्भुत नज़ारा भी होता है और आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। So I think ये सब के बीच में मैं अगर हमारा show ख़त्म होने तक अगर थोड़ा भी गाना मैंने सीख लिया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा, और हमारे गुरु है ही, वो थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहे हैं।
2: आएगा आएगा आएगा आएगा,
1: है ना।
2: सारेगामा पा के मंच पर हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट्स होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। कभी भी कोई भी गाना आप देखेंगे कि वो एज इट इज नहीं गाया जाता, उस गाने के साथ में कोई ना कोई कोलैब किया जाता है, कुछ ना कुछ एड ऑन किया जाता है। तो ये एक यूनिक चीज़ है सारेगामा पा की, और आप जब परफॉर्मेंसेस देखेंगे, जब आप टीवी पे इसका टेलीकास्ट देखेंगे, तो उसमें हर गाने के साथ कुछ एक तड़का लगाया है, और वो तड़का क्या है वो जब आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
3: तो ये जो मंच है सारेगामा पा का मंच, जो ये विश्व भर में देखा जाता है, सो इस बार जो खास जो होने जा रहा है दैट इज A cultural amalgamation of our country. हमारे देश में जो cultures हैं, whether it is कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो various cultures हैं, उड़िया कहिए, पंजाबी कहिए, MP कहिए, साउथ कहिए, केरला कहिए, मद्रास कहिए, सबके जो cultures को in that authentic form with artists from that particular region लेके आके हमारे जो एक कलाकार के साथ You know, doing a fantastic collaboration on stage. आप देखेंगे, आप हम लोग देख के हैरान हो गए हैं। So this is happening very beautifully, very musically. At the same time, not destroying the sanctity of our music.
4: हमारा हिंदुस्तान का म्यूजिक, हमारा कल्चर इज सो लार्जर देन लाइफ। आई थिंक हमारा म्यूजिक सेलिब्रेट होना ही चाहिए उतना लार्जर देन लाइफ। सो दिस टाइम वी हैव 100 म्यूजिशियंस ऑन सेट, वी हैव कोरस सिंगर्स, एंड वी हैव कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहले भी रियलिटी शोज़ किए हैं, एंड मैं बहुत पसंद करती हूँ कि नए टैलेंट को प्रमोट किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दे, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे अगर नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे नए टैलेंट को, जो हमारे देश में कूट कूट के भरा है, उसे प्रमोट किया जाए। और एक्साइटमेंट यही है कि ये जो आप देखेंगे और सुनेंगे, आप बस आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि जेन्युइनली देर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट पुट इन। जो आप देखेंगे, बहुत मेहनत की जा रही है, और इतनी रिहर्सल्स बैक टू बैक, और फिर उनमें से जस्ट वन टेक मिलेगा फॉर और एवरी सिंगर एंड म्यूजिशियन टू डू दिस परफॉर्मेंस। सो हम लोग तो बस स्टैंडिंग ओवेशन ही देती रहती हूँ मैं, बिकॉज मुझे लगता है कि द एफर्ट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल।
5: ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी होती है सीरियल्स की दुनिया, और किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना होगा काफी मजेदार। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
6: अनुपमा,
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा इन दिनों बेहद परेशान चल रही है और ये बात दिग्विजय प्रेम और राही बखूबी समझते हैं। तभी तो तीनों मिलकर अनुपमा का ख्याल रख रहे हैं। दौड़ती भागती अनुपमा की परेशानी हो या फिर उसका खाना खाने का समय, ऐसे में दिग्विजय खुद अनुपमा को आदेश देता है खाना खाने के लिए और अनुपमा दोस्ती की खातिर उसे बैठना ही पड़ता है, लेकिन इतनी आसानी से वो हार मानेगी नहीं। तभी तो देखिए कैसे अपनी कमर कसकर वो पहुंच जाती है रसोई में उन लोगों के लिए खाना बनाने के लिए जो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे धरना दे रहे हैं।
6: तू रहे मंजिल तो क्या है, जिंदगी मुश्किल तो क्या, हम फिर भी चलते जाएंगे। सामने चट्टान तो क्या, पर्वत से भी टकराएंगे, हम फिर भी चलते जाएंगे। रात गहरी हो गई तो दीप बन जल जाएंगे, टकराएंगे सागर से भी, फिर ना मिले साहिल तो क्या। दूर है मंजिल तो क्या, जिंदगी मुश्किल तो क्या, हम फिर भी चलते जाएंगे, हम फिर भी चलते जाएंगे। थई जैसे
0: अनुपमा की इस हिम्मत की तो प्रेम और राही भी दाद दे रहे हैं। ऐसे में वो दोनों भी पहुंच जाते हैं अनुपमा पर ना सिर्फ प्यार जताने बल्कि उसका सहारा बनने और तो और उसका हाथ बटाने। तभी तो देखिए कैसे अनुपमा के साथ प्रेम और राही भी जुट जाते हैं खाना बनाने में और अनुपमा उनकी नजर भी उतारती है और फटाफट खाना बनाकर ले जाती है उन सभी लोगों के लिए जो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं और तो और सभी को खाना भी बांटती है। इसी बीच एक आदमी फुट फुट कर रोने लगता है क्योंकि उसके पास जितने पैसे थे वो डूब चुके हैं। ऐसे में अनुपमा न सिर्फ उस आदमी का सहारा बनती है बल्कि सभी का हौसला भी बढ़ाती है और सभी अनुपमा का साथ देने का वादा भी करते हैं।
7: कैसे चलेगा, इस कमजोर वक्त में हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, एक दूसरे को हिम्मत देनी होगी, एकजुट बन के सबको साथ खड़े होना पड़ेगा और ये हक की लड़ाई लड़नी होगी, अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। रास्ता आसान नहीं होने वाला है लेकिन जब पांचों उंगलियां एक साथ मिल जाती है ना तो मजबूत मुट्ठी बन जाती है, बस उसी मुट्ठी की तरह हम सबको साथ रहना है और हम सब साथ होंगे तो कोई हमें नहीं हरा पाएगा। तो आप सब मेरे साथ लड़ेंगे ने?
8: हाँ अनुपमा जी, हम आपका साथ देंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे।
9: हाँ हम लड़ेंगे, जरूर
10: Sons.

कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में पूरे परिवार ने तय कर लिया है कि धीरज और रज्जी को एक करके ही रहेंगे। ऐसे में उन लोगों ने मिलकर रज्जी और धीरज को बिना बताए ही उनके लिए रोमांटिक डेट की प्लानिंग कर ली है। इस बात से अनजान रज्जी अपना श्रृंगार कर रही है, तैयार हो रही है धीरज के साथ जाने के लिए। इसी बीच वहाँ पर धीरज भी आ जाता है। जरा देखिए कैसे धीरज, वो तो रज्जी का दीवाना है। रज्जी को तैयार होता देख वो भी पहुँच जाता है रज्जी के साथ श्रृंगार में मदद करने। और तो और अपने हाथों से वो न सिर्फ रज्जी का साज श्रृंगार करता है बल्कि बार बार उसे ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो रज्जी से प्यार करने लगा है। हालांकि रज्जी उसकी बातें समझने को राजी नहीं है।

भाई धीरज का इस तरह से रज्जी को निहारना समझ में आता है, लेकिन रज्जी उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर धीरज का ये बदला बदला अंदाज क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि धीरज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि रज्जी इशारों ही इशारों में समझ जाए, लेकिन रज्जी वो तो धीरज को धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है और धीरज वो दीवानों की तरह रज्जी का पल्लू पकड़े उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और ये नजारा महादेव और विद्या दोनों देखकर हैरान हैं, और तो और धीरज का मजाक भी बना रहे हैं।

0: बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे।
1: मैम नर्मदा भाभी कहाँ है?
0: वो नर्मदा और केतन तो निकल गए। हाँ
1: क्यों निकल गए?
0: पहले ही निकल गए।
1: पहले क्यों निकल गए? साथ जाने वाले थे ना हम तो।
0: हाँ वो लेकिन निकल गए।
2: भैया रोमांटिक डेट के लिए तो पूरी परिवार की उम्मीद भरा है। रजनी पहुंच तो जाती है और धीरज का इंतजार भी करती है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि कोई तो है जो अब रजनी को परेशान करेगा और रजनी और धीरज के बीच फिर से मुश्किलें आएंगी।
3: आज बहुत खास रात है।
1: ऐसा क्या खास है?
3: हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं।
4: आज करेंगे हम लोग पार्टी, वो भी इस बैडी के साथ।
3: रजी
5: तुम देना साथ मेरा।
2: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में आज है अपराजिता की पहली रसोई। ऐसे में देखिए अपराजिता सभी घर वालों के लिए रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही है कि तभी रक्षित का कॉल आ जाता है, जो अपराजिता को देता है सरप्राइज, क्योंकि उसने लिस्ट बनाकर रखी है भारद्वाज परिवार के हर व्यक्ति के दिल में जाने की। ऐसे में अपराजिता वो लिस्ट पढ़कर खुश होती है और सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाने की कोशिश भी करती है।

0: वैसे आप रक्षित हैं या रक्षिता?
1: मतलब?
2: मतलब क्या?
0: सर्व गुण संपन्न है। मुझे तो लग रहा है कि मैं पति हूँ और आप पत्नी। वैसे मैं आपको ब्याह के लाती ना, परफेक्ट बीवी बनते आप।
3: इसलिए तो समझा रही हो सखी, पति को खुश रखना है तो रक्षिता बहन से सीखो।
4: चलो हंसना बंद करो और काम शुरू करो।
1: लिस्ट में मेरा फेवरेट खाना भी है,
4: वो जरूर पढ़ना।
0: लेकिन आप तो यहाँ नहीं है।
1: बार बार भूल जाती हूँ क्या पटुका?
4: कहा था ना
1: पास नहीं हूँ पर साथ हूँ।
0: अच्छा ठीक है,
1: ऑल द बेस्ट।
5: दी क्या कर रहे हो?
0: पहली रसोई के लिए खाना बना रही
6: हूँ। भाई आराध्या तो अपनी बहन को यूँ काम करता देख खुश तो हो रही है, लेकिन वो भी तैयारी कर रही है कि सभी घर वालों के सामने अपराजिता को और भी नीचा गिरा सके। तभी तो देखिए कैसे अपराजिता खुद ही अकेली रसोई में काम कर रही है और आराध्या जा चुकी है। खैर अपराजिता का तो पहला मकसद है सभी का फेवरेट खाना बनाना, जिसमें वो लगी पड़ी है। लेकिन उसकी ये मेहनत रंग नहीं लाएगी, क्योंकि जैसे ही अपराजिता की सासू माँ को ये बात पता चली है कि ये सारा खाना अपराजिता ने बनाया है, उनका मुंह बन गया है।
7: खाना मैंने नहीं बनाया।
8: वो किसने बनाया?
9: अप्पू जी ने।
7: मम्मी जी मैंने तो उनको मना किया था कि मत बनाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि सब मैं ही बना देती हूँ। अब वो किसी की सुनती कहाँ है? अगर बड़ी बहन होती ना तो मैं लड़ भी लेती, पर अब तो मेरी जेठानी भी है।
0: आ गए आप सब, मैं खाना परोस देते।
10: मुझे भूख नहीं, नहीं, नहीं।
11: मुझे भी
0: प्लीज। बहुत मन से बनाया, आपकी पसंद की चीजें हैं सब।
11: समझ में नहीं आता?
10: नहीं मतलब नहीं।
11: चल सुधा।
0: अरे तू खा।
7: दी मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन अब सासू माँ के सामने होने के बाद कैसे काटूं? I'm sorry।
6: भाई आराध्या तो एक एक कर अपनी चाली चल रही है अपनी बहन के खिलाफ जाने की। देखना होगा कि कैसे रक्षित अपराजिता का साथ देगा और अपराजिता धीरे धीरे सभी घर वालों के दिल में बसेगी।
4: सॉरी ये तो मेरा है, मेरी दुल्हन पहली रसोई बनाए
1: और मैं ना खाऊं, ऐसा हो सकता है?
12: गणेशोत्सव की धूम इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रही है और हमारे छोटे पर्दे के सितारे भी इस जश्न में पूरी तरह डूबे हुए हैं। कई कलाकारों ने अपने घरों में गणपति बप्पा का स्वागत किया है। हर कोई इस पावन मौके को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा है। तो चलते हैं सितारों के घर और करते हैं बप्पा के दर्शन।

पापा आए खुशियाँ लाए। त्योहार का मजा सबके साथ, देखी सितारों की आस्था। गणेशोत्सव का त्योहार है, ऐसे में चारों ओर विघ्नहर्ता की भक्ति फैली हुई है। सितारे भी अपने घर पर बप्पा को लेकर आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक्ट्रेस मेघा प्रसाद के घर पर, जो हर साल की तरह इस साल भी अपने घर पर बप्पा को लेकर आई हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत से साज सजावट की है, तो आइए मेघा से ही जानते हैं इस बार क्या थीम है और कितने खास है इनके ये बप्पा।

0: मैं कैसी हूँ, एकदम हसीन, क्यूट, ग्लैमरस, हमेशा वेल डेक्ड रहती हूँ. तो हमारे पप्पा भी हमेशा वेल डेक्ड रहने चाहिए कि नहीं? इसीलिए हमारे पप्पा के सुंदर सुंदर लैशेस भी है. देखो हम ना कोई नहीं होते उन्हें चुनने वाले, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वही हमें चुनते हैं. और मैं जब भी जाती हूँ मूर्ति सिलेक्शन के लिए, मैं पूरा ऐसे चलती हूँ और जब तक मुझे लगे नहीं कि मैं एक कनेक्शन फील कर रही हूँ एक स्पेसिफिक मूर्ति के साथ, तब तक मैं चलते रहती हूँ. बट वो फील हो जाता है. अगर आप भक्त हैं तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि आपको मूर्ति को देख के समझ आ जाएगा कि हाँ वो कुछ तो, इनकी आँखें, इनकी आँखें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही बात करती हैं और एक अलग ही चमक है इनकी आँखों में. तो आपको वो कनेक्शन इंस्टेंटली फील हो जाता है इटफुल. और इस बार तो सारी डेकोरेशन सब कुछ मेरी सारी लड़कियों ने किया है. मतलब मेरी लाइक ऑल माई फ्रेंड्स, सारी लड़कियाँ मिलके हमने सब कुछ अरेंज किया है. ये डेकोरेशन बोलो, सामग्री बोलो, जितनी भी लड़कियाँ थी, मतलब जितने भी लोग थे ये पूरे अरेंजमेंट में, सारे लड़कियाँ थी. चाहे पापा को जाके लाना हो, 5 लड़कियां मिलके गए थे हम लाने के लिए. आप देखेंगे ये जो हमारी सारी औरतें हैं, हमारी सारी लड़कियां हैं, ये सब ने मिलके ये डेकोर किया है. एंड ये जेनेसा है, वो हमारी सबसे हसीन फीमेल, सबसे क्वीन बिहेवियर वाली कुकी, दैट्स अनामिका. एंड उनके बाजू में जो मेरी माँ लगती नहीं है बट फॉर्चुनेटली मेरी माँ है वो, That's Isha. There are 2 Ishas. One with I, and this is my childhood best friend Isha. And this is our Lakshmi Didi, जो हमारी सही में लक्ष्मी है घर की. और ये दोनों अन्नपूर्णा और लक्ष्मी ने मिलके खाना बनाया है. और ये सारी जो हमारी लड़कियां, I'm very blessed that girl power. मतलब हम पप्पा को लाने से लेके डेकोर तक, खाना तक, सब कुछ सारी लड़कियों ने मिलके किया है यहाँ पे. I'm very blessed to have all of them. यहाँ पे बदलाव अगर मैं बोलूँगी तो आई लैश बदलाव है इस साल. हमारे गन्नू पप्पा की लैशेज बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है क्योंकि वो इतने प्यारे लग रहे हैं. बाकी एज इन बदलाव, पप्पा और बड़े हो गए हैं हर साल के साथ. हम पप्पा को और बड़ा करते जाते हैं, उनके मूर्ति के साइज़ को बड़ा करते जाते हैं. इस साल पप्पा 2 feet के हो गए. हमने शुरू बाल गणेश जी के साथ किया था और अब देखो पप्पा हमारे इतने बड़े हो गए.
1: शालिनी कपूर के घर धूम है भाई. सुखकर्ता तो बिराजे हैं ही, साथ ही साथ आए हैं ढेर सारे मेहमान, इनके को-स्टार्स भाई. यही तो मौके होते हैं जब सभी एकजुट होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं. इस त्योहार के बहाने ही सबको एक साथ मिलने का मौका मिलता है, ढेर सारी बातें होती है और घर में आती है खुशियाँ.
2: परिवार आ चुका है, ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी बातें और ढेर सारा खाना. मैं क्या कहूँ, आई थिंक सब लोग इसी वक्त का इंतजार करते हैं कि कैसे सारे दोस्त इकट्ठा हो और कोई बहाना
3: मिल. मतलब मुंबई में लोगों को जो नेक्स्ट डोर नेबर कौन है उसके बारे में भी नहीं पता होता, तो ऐसे में जब बॉम्बे में गणपति जी का आगमन होता है तो इतने सारे फ्रेंड्स, सारे कोस्टार्स जब इकट्ठे अंडर वन रूफ होते हैं और सब प्यार ही है, जो दूर दूर से, कोई अंधेरी से, कोई जुहू से, कहीं सांता क्रूज से आते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि बप्पा का दरबार सजा है और सब इतने, मतलब खाना पीना हो रहा है, गॉसिप हो रही है, सब कुछ हो रहा है. आइए हम पहले अपने सबसे प्यारे मेंबर सुरेंद्र जी.
4: यंगेस्ट चाइल्ड इन द हाउस.
5: आज हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है, गणपति जी के हम दर्शन करने भी आए हैं और गणपति जी का आशीर्वाद लेने भी. आज हम दो बहुत ही प्यारे कपल, रोहित और शालिनी जी, जिन्होंने हमें आज इनवाइट किया यहाँ आने के लिए. और
4: आज नहीं, आप हमेशा इनवाइट,
5: हमेशा
4: मैं
5: हमेशा ही आता रहा हूँ. और ऐसा नहीं है, कभी कभी थोड़ा ही सा लेट हुआ हूँ, ज्यादा लेट नहीं होता हूँ, लेकिन आता जरूर हूँ. और सौभाग्य है हमारा कि बप्पा जी के हमें आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पर. और एक उत्सव का माहौल है यहाँ पर. बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं. गुंजन जी बैठी हुई हैं, श्वेता जी बैठी हुई हैं, ये सब हमारे टेलीविजन के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार से जो आज हमारे साथ हैं. और शरहान सिंह हैं, आशमा जी हैं और बहुत सारे और भी कलाकार अभी आ रहे हैं बहुत सारे.
2: एक्चुअली ऑनेस्टली ये औरत हमें खाना कम खिलाती है. हमको आना पड़ता है गणपति के टाइम पे, तभी हमको खाना फीड करती है. क्योंकि उसके अलावा ये जो हमारी प्यारी सी शल्लो रानी है, जो मैं कहती हूँ इसे, ये हमें मिलती कम है. मतलब इतने पास रह के भी नहीं मिलती है ना.
6: हाँ एक्चुअली ये कंप्लेंट तो मेरी भी है शालू से. वो इतनी पति प्रेम में इतनी बिजी हो जाती है ना कि वो दोस्तों को भूल जाती है. तो एनीवेज बापा के मौके पर आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं एंड गणपति बापा हम सबको ब्लेसिंग्स दे. हर साल हम लोग शालू से मिलते हैं, इसी बहाने तो मिल ही लेते हैं, बीच में भी मिल लेते हैं, लेकिन ये एक बहाना होता है मिलने का सबसे. और बहुत खुशी हुई. और उसने जो बनाया है वो तो अमेजिंग बनाया है. जस्ट ये इसे स्टार्टर है, ये स्टार्टर है. आई होप शालिनी ने अभी और भी कुछ बनाया.
2: चीजें और बनाई होगी. हम खाएंगे बट वो ऑफ कैमरा.
3: बॉम्बे के घर थोड़े से छोटे ही होते हैं, सबको पता ही है. मतलब ऑडियंस से क्या ही छुपा हुआ है. तो बॉम्बे का ये 3 BHK भी अब कम पड़ता है. और मैंने सब आए हैं, मैंने सबको बोला है कि भाई अब सब बप्पा से अर्जी लगा के जाओ कि अगले साल जब बप्पा आए तो बड़े से बड़ा घर हो, विला हो विला.
2: अभी मैं और श्वेता बिल्कुल साथ में आए, हम पास में रहते हैं. मेरे मुंह से एक्चुअली यही निकला कि शालिनी थोड़ा सा दूर हो गई है. मैं उसको कहूंगी कि मैं ये विश कर रही हूँ कि प्लीज बाय अ वेरी वेरी बिग हाउस एंड कम नियर टू बोथ ऑफ अस. एंड उसने अभी यही बात कह दी. सो आई मीन आई एम होपिंग बप्पा यर्स एंड बहुत बड़ा घर ले वो, बहुत बहुत बड़ा.

0: हेलो जी, हेलो जी, गणपति बाप्पा मौर्य।
1: थैंक यू,
0: आ गई हमारी एक और एंट्री, हो गई हमारी
1: गणपति बाप्पा मौर्य। मुझे अपने बच्चे को एक मिनट।
2: हाँ, सो नीलू जी एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड सो मच। मतलब हम लोगों ने पता नहीं, वी ऑल्सो कम, जब पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे चैनल्स हुआ करते थे, तब से लेके अभी तक।
1: सो
2: एंड आई कॉल्ड हर परजाई जी। शी इज लाइक माई भाभी। सो आई, वेन एवर आई मीट हर, आई डोंट से एनीथिंग, आई से परजाई जी।
1: बहुत काम से ज्यादा एक्चुअली दिल मिल गए।
3: yes.
1: और एक बार दिल मिल जाते हैं फिर और कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये हमारा रो है, रो के साथ भी मैंने बहुत काम किया है।
4: इन्होंने मेरी भाभी प्ले किया है, मेरी वाइफ प्ले किया है, मेरी बहन प्ले
1: किया। या या या, यस,
5: जस्ट लाइक ऑलवेज, इट्स लाइक रियली नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग घर पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत, इट रियली लिफ्ट्स द मूड, यू नो, व्हेन पीपल कम होम एंड दे मीट, बहुत सारा मजा आता है।
6: गणपति बाप्पा।

0: तेरी जय जयकार, पाँच छः सात आठ गणपति तेरी क्या बात।
1: सास बहू और बेटियां पहुंच गया है हर्षिता के घर पर, जहां आए हैं गणू पापा और साथ ही है टीम झल्ली। जी हां, झल्ली में हर्षिता निभा रही थी रमणी का किरदार और आज टीम झल्ली का रीयूनियन हुआ है। वह यहाँ रीयूनियन के साथ साथ त्योहार भी मनाया जा रहा है, बातें हो रही है, खाना पीना हो रहा है और है भक्ति भरा माहौल।

0: हमारे ये बप्पा है, इनका स्वरूप आई थिंक डगरू सेठ ऐसे बोलते हैं ना, ये उनका है। एंड बहुत सारे, और ये लैशेस मेरी बहन ने लगाया है सो दैट कि इनकी आंखें और प्यारी लगे। एंड सबसे क्यूटू सी चीज ना, क्योंकि हमारे बप्पू इतने क्यूटू से दिखते हैं, इनके हाथ में इतना बड़ा मोदक आता नहीं, तो हमने इनके लिए स्पेशल मोदक मंगवाया है जो ऑब्वियसली इनकी भूख को शांत तो डेफिनेटली कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेकोर। ये सब लाइक अब झल्ली के टीम से हैं तो झल्ली वाले ही स्टाइल में किया है, बहुत परफेक्ट नहीं है बट ये हम सब ने सारे सिबलिंग्स ने मिलकर, फैमिली ने मिलकर के अच्छे से किया है, ट्राई किया है। लेट्स सी, क्यूट तो लग रहे हैं बप्पा हमारे। बप्पा हमारे यहाँ हमेशा पूरे टाइम के लिए आते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाह रही थी कि कुछ दिन अगर इनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो ये रुक जाए, बट ये 11 दिन में चले जाएंगे। और हमारे यहाँ तो बप्पा जितने पंडाल में टाइम लगाते हैं उतने टाइम हमारे पास रहते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड श्रृंगार में बप्पा ने कि जो ये मुकुट पहना है हाँ ये आर्टिफिशियल है, बट कोई ना, दिल तो हमारा बिल प्योर डायमंड है ना। तो इनका ये जो मुकुट है, मुकुट बहुत क्यूट सा है। एंड इनकी जो इस बड़ी इयररिंग्स है उसमें जो कॉम्बिनेशन हमने करवाया था, इट वाज लाइक हमारा थीम इस बार ये रेड गोल्ड एंड ग्रीन का था। ग्रीन रेड एंड गोल्ड, दैट इज़ लाइक, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ हमें पसंद था इसलिए किया था। और बैकड्रॉप भी हमने उसी हिसाब से रखा कि गोल्ड ग्रीन इस तरीके से हम मैच कर सकते, बप्पा के वाइब को मैच करने की कोशिश की। एंड अब सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो जी हाँ, ये है हमारा सरप्राइज फैक्टर, हमारी टीम झल्ली। और ये रही हमारी मिस झल्ली। और फाइनली ये इतनी झल्ली नहीं है, शी इज वेरी सोबर, बड़ी हो गई है ये।
1: जैसे कि हमें हर्षिता दी ने इनवाइट किया और हमें वापस से सबको एक साथ मिलने का मौका मिला, विच इज लाइक हम बहुत खुश हैं। और ये तो हमारा मतलब फेवरेट फेस्टिवल होता है, क्योंकि मुंबई में ये कुछ अलग ही धूमधाम से मनाया जाता है। इंडिया में कहीं से भी कंपेयर कर लो बट मुंबई में बहुत अच्छा होता है विसर्जन। और जब भी जितने दिन के लिए पापा आते हैं हमारे साथ, इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं, मतलब अभी बोलते हो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मेरा ये फेवरेट फेस्टिवल है। और जब हम हर्षिता दी के घर आए तो हम सब मिले आफ्टर सो लॉन्ग, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सेट पे भी हम इतने मस्ती करते थे और आज भी मिलने के बाद ऐसे गॉसिप्स ये वो इतना मजा आ रहा है मिलके। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको?
2: आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो गणेश चतुर्थी पे, कि जब आप अलग अलग पंडाल्स में जाते हो या अलग अलग घरों में जाते हो तो हर फैमिली, हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने प्यार के हिसाब से और अपनी इंटेंट के हिसाब से बप्पा को रेडी करते हैं। और अब तक मैंने जितने भी जगहों पे विजिट किए हैं वहाँ, मतलब यू कैन नॉट कंपेयर, हर बार उनको देखो एक नए रूप में, एक नई जगह पे, तो वो खूबसूरत ही लगते हैं। डेकोरेशन बहुत सुंदर हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ वेरी ब्लिंगी। एंड हर्षिता को आप देखिए, वो खुद भी इतनी ब्लिंगी बनी हुई है आज। सो यस, बप्पा इज़ लुकिंग लाइक ऑल ग्लिटरी एंड ब्लिंगी। बहुत ज़्यादा कीमती लग रहे हैं बप्पा, क्योंकि बहुत अच्छे से एकदम पूरे उनकी सूंड पे, उनके मुकुट, उनके इयररिंग्स, हर चीज़ इतनी सुंदर तरीके से डेकोरेट की हुई है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू दीज टू सिस्टर्स, हर्षिता एंड शांभवी।
0: ओके, खाने पीने में तो बहुत सारी चीज़ें, अब दिल्ली वाले लोग का अपना खाना अलग होता है, लेकिन भाई नाउ वी आर मुंबई कर, क्योंकि बहुत टाइम गुजार लिया मैंने मुंबई में, तो हाँ हमारे पास मुंबई का वड़ा पाव है। अब थोड़े से डाइट कॉन्शियस है तो पाव हटा दिया हमने, सिर्फ वड़ा रखा है। एंड गुजरातियों के लिए खांडवी है, खांडवी कहते हैं ना, हाँ। एंड भजिया, अगेन इसे हमने पाव हटा लिया है, सिर्फ भजिया है। समोसे है और जलेबी है। सो ये प्रॉपर मुंबई का जो लोकल फूड होता है ना, लोकल स्नैक, वो हमने रखा है। तो चटपटी बातों के साथ चटपटा स्नैक्स है हमारे पास।

हर साल की तरह इस साल भी काजल पिसल अपने घर पर पापा को लेकर आई हैं और माहौल काफी पॉजिटिव है।

0: It's always special. First of all, welcome मेरे घर पर आए हो आप and happy गणेश चतुर्थी आप सभी को. मेरे इस साल इट्स द 15th ईयर, 15 साल हो चुके हैं एंड एवरी ईयर इट इज़ वेरी स्पेशल. ऐसा नहीं कि एक कोई साल होता है बहुत स्पेशल होते हैं. राइट फ्रॉम सिलेक्टिंग द मूर्ति, लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कोई बप्पा नहीं सिलेक्ट करती, बप्पा सिलेक्ट्स मी कि भैया मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ. सो इस बार के बप्पा मैंने स्पेशली गोल्डन वाले लाइक उनके वस्त्र मैंने चूज किए थे कि आई वॉन्टेड माई बप्पा टू वेयर golden outfit because this year is my daughter's 18th birthday and it's a very special year. जैसे हम बोलते हैं it's a golden year for her. तो पापा के भी वस्त्र मैंने golden करवाए हैं. उसी के accordingly मैंने theme plan किया था that I will have red and yellow and because it is very viral on Instagram, ये मेरे feed पर इतने बार आ चुका है ये decor कि मुझे लगा कि नहीं यार इस बार तो मुझे यही करना है. ये तो स्टैंड मिलता है आपको, देन यू हैव टू रैप दिस अप और उसको बनाने में इट इज लाइक ऐसा लगता है अरे ये इतना ही बस, बट देन यू हैव टू लिटरली रैप एवरीथिंग. हर एक बेल्ट को रैप अप किया है मैंने एंड लाइट्स फिट किए हैं मोर बिकॉज कृष्ण जी का कुछ ना कुछ होना चाहिए मेरे बप्पा में, सम काइंड ऑफ यू नो एक कृष्ण की तरफ से भी होना चाहिए. सो आई ऑलवेज हैव दिस मोर पंख का एंड हम हमेशा ऐसा कुछ करते हैं कि पगड़ी हैज टू बी वेरी एलैबोरेटेड बिकॉज आपकी सबसे पहली नज़र भगवान की आंखों पर उनके मुख पर जाती है. तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि भगवान की आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए एंड थैंकफुली मूर्तिकार है. हर साल आई थिंक ही बहुत कुछ ज़्यादा स्पेशल करके देते हैं मुझे. ये मैं कोई क्रेडिट नहीं लूँगी, पापा ने मुझे पसंद किया है कि मैं इनके घर जाना चाहता हूँ. एंड हमने बहुत सालों से हम ला रहे तो गणपति वी हैव स्पेशल थिंग्स फॉर पापा, जैसे चांदी के मोदक है, उनका चांदी का दुर्वा है, फूल है उनका, पान है, दिस सुपारी और एक छोटे से मूषक राजा है जो बहुत ही स्पेशल है. बहुत सालों से हम ये ला के यू नो वी बीन यू रीयूजिंग दिस ऑल थिंग्स.
1: एक्ट्रेस शांति प्रिया लेकर आई है नवरंग स्टूडियो में गणु बापा. भाई ये साल इनके लिए बेहद खास है क्योंकि नवरंग स्टूडियो को 125 साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में है डबल सेलिब्रेशन, एक तो गणेशोत्सव और दूसरा 125 इयर्स का सेलिब्रेशन. इस खास मौके पर वी शांताराम को भी ट्रिब्यूट दिया गया. साथ ही बात करें गणपति बापा की मूर्ति की तो ये वही मूर्ति है जो कई साल पहले आई थी, दोबारा इसे रिक्रिएट किया गया है.

0: ऐसे में सितारे पहुँचे हैं बापा का आशीर्वाद लेने के लिए। इस खास मौके पर यहाँ नजर आए खुद शांति प्रिया, इसके अलावा मधु, मनजोत सिंह, सुधा चंद्रन और कई और सितारे जो इस खास मौके पर हुए शामिल। इतना ही नहीं, इन्होंने बापा का आशीर्वाद भी लिया। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं इन खास पलों के बारे में।
1: Yes, we are so privileged to be associated with Rajkamal, that's Papa, and we are very, very happy to take this legacy forward and even the next generation, हमारे बाद के generation भी बहुत interested है, उनको और भी करना चाहते हैं. So yes, so we have to, right? So yes, for them and for the audience, because somewhere there is which legacy he has left for us, we want to bring that out again. This year, Dr. V. Shantaram will be completing 125th birth anniversary, or we wanted to celebrate and throw out the visual what you're seeing out for the generations to know about his pioneer things what he has done for the industry. And so then we thought, when can we do? Should we do it on November 18th, which is his birth and birth date? Then we said, then before November 18th, Ganpati has come, and Ganpati is something he's very close to, and he is the one who started 18 feet Ganpati in whole of Maharashtra. The first Ganpati what we have named right now, Navrang, again is because of him. Navrang Ganpati is so famous, 18 feet Ganpati. That is the reason we said, okay, Ganpati ka se shuru karenge unka legacy ko jo karna chahte, and 25 years. This is something very, very close to my heart. It has lot of emotional, sad emotionals also to it. This sari is being given by my brother, because in March I lost my mother, and when we lose pe wo 13va sab rehta hai, so that time that bhai ben log ko dete hai, so that's how I got this sari from my brother, and I said this is the good occasion, I want to be keep mom with me, so I said yes.
2: I am out and out a cinema girl, and I feel I totally belong jahan film logon ki gathering hoti hai ya celebration hota hai, I feel my soul belongs there. And at the same time, I'm also quite religious, I'm also very spiritual, so I'm also into all kind of prayers. I've been visiting all different pandals, so this is so divine, it's feeling. Halanki it's such a big public event, फिर भी जो शांति और calmness जो मैं यहाँ experience कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So celebrating 125 years of this film company, it's beautiful. And just now I was remembering that song, आधा है चंद्रमा रात आधी. So back in the day when we had black and white TVs or just a new color TV, और हम लोग बचपन में दूरदर्शन में फिल्म देखते थे every Sunday, I remember this song from that time. So it takes me back in time, and somebody told me that this is the same Ganesh that they had so many years ago, so they've recreated that. So it's kind of legacy, tradition, culture, cinema. So we are celebrating everything today. We are celebrating life, and I'm feeling very happy to be a part of this celebration. Thank you to Shanti ji for having me here.
3: हम जब अपनी आंखें खोले और हमने इंडस्ट्री को जाना है तो 175 तो आप खुद ही बोल रहे हो, सोचो हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है. तीन जन्म लेने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं. सो बहुत सारी यादें हैं, हर चीज़ जब हमने देखी है, समझी है, फिर अगर हमें कनेक्शन पता चला है कि कौन किसके हस्बैंड टू किसके फादर टू, ऐसा लगता है ओ माय गॉड कि क्या लेगेसी चल रही है इनकी. एंड यहाँ आकर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. बोलूँ ना, सिंपल और स्वीट बहुत अच्छा लगता है. तो जैसे मैंने एंटर किया, मैंने वाइट कलर का बापा जी देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक मोतियों से बनाया हुआ, यू नो, इट्स वेरी प्योर एंड इट्स वेरी सिंपल. आपने खुद ऑफकोर्स डेकोरेशन देखा है, तो बहुत सिंपल और स्वीट है.
4: सबसे पहली बात यह है कि राजकमल स्टूडियो में कदम रखना ही मेरे लिए एक, मतलब मैं धन्य हो गई हूँ सच में, बिकॉज जिनके बदौलत आज हम ये मेकअप लगा के जिस सिनेमा में हम आए हैं, वी ओव इट टू वी शांताराम सर. सिर्फ दुख इस बात की है कि मैं कभी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट आज वो एक जो एक दिल में एक जो बात रह गई थी ना, आज वो संपूर्ण हो गई, और बप्पा के आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ आई हूँ. थैंक्स टू शांति प्रिया, बिकॉज उसका इन्विटेशन मेरे पास आया. एंड नॉर्मली मैं बहुत सोचती हूँ आऊं नहीं आऊं, बट पता नहीं क्यों द मोमेंट शी सेंट एन इनवाइट आई सेड यस आई एम गोइंग टू बी देयर.

0: दोनों दोनों ड्रीम्स पूरे हो गए मेरे, यहाँ पे आना, ऊपर से बापा जी के दर्शन हो रहे हैं, तो इट्स लाइक आपको और क्या चाहिए यार. और बीइंग फ्रॉम अ फिल्म इंडस्ट्री एंड मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, सो मेरे लिए इट्स एन ऑनर फॉर मी. ऑनेस्टली मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं, बट जब मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत पता किया, मतलब जो भी उनका एक राय है स्टैचर, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके. प्लस बापा जी के दर्शन भी हो रहे हैं, उनका एनिवर्सरी भी है 125th, तो ऑल मैं बस उनको जहाँ पे भी हैं वो, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहें और आपने बहुत कुछ दिया है इस संसार में.
1: तो देखा आपने, आपके चहेते सितारे धूमधाम से गणेशोत्सव का ये त्योहार मना रहे हैं और ले रहे हैं बापा का आशीर्वाद. मुंबई से पायल रूपानी, शीतल कावा और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.

0: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कबीर को लेकर हो गई है अरमान और मायारा के बीच तीखी बहस। अब ऐसे में अरमान मायारा को कैसे समझाता है और बाप बेटी के रिश्ते में आई खटास कैसे दूर होती है, देखना दिलचस्प होगा।
1: हम आपके पेरेंट्स हैं और आप पेरेंट्स की तरह ही बात करेंगे। आप आज कबीर से अपना वो सो-कॉल्ड रिश्ता तोड़ने वाले हैं।
2: शुरू हुई पापा और बेटी के बीच बहसबाजी,
1: और अब भी हम उस कबीर को चूज करके हमारे इंसल्ट कर रहे हो।
3: आप भी तो अपनी जिद को चूज कर रहे हो पापा।
2: प्यार को लेकर मायरा और अरमान के बीच जंग।
1: जब तक ये कबीर से ब्रेकअप करने के लिए रेडी नहीं हो जाती, मैं इससे बात नहीं करूंगा।
3: और जब तक आप मेरे आगे ये फिल्मी शर्तें रखना बंद नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं।
2: शर्तों से परेशान अभीरा, के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान को पता चल गया है मायरा और कबीर के रिश्ते के बारे में। ऐसे में अभीरा और अरमान दोनों ही मायरा पर नाराज हो रहे हैं। अभीरा तो मायरा को समझाने की कोशिश में लगी है, लेकिन मायरा समझने को तैयार नहीं है। उसे तो आज भी यही लग रहा है कि कबीर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अरमान ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि कबीर दमानी है।
1: आप आज कभी से अपना वो सो-कॉल्ड रिश्ता तोड़ने वाले। अगर आप हमारी शर्तें मंजूर है तो आप सब कुछ भूल के नॉर्मली बात करें।
4: तो सबको पता चल गया है कि कबीर मायरा का बॉयफ्रेंड है, एंड उस फैमिली को भी पता चल गया और पदार्स को भी पता चल गया है कि इन दोनों का चल रहा है कुछ तो। एंड बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए ही कि एक तो फैमिली का आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। पहले तो ये बहुत शॉकिंग था पापा के लिए कि मायरा का कोई बॉयफ्रेंड है, फिर कबीर दमानी है, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा सब हैरान हैं। और मम्मा पापा और मायरा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मायरा को लग रहा था कि मम्मा पापा बात करेंगे आएंगे, और उन्हें लग रहा है कि मायरा आएगी। तो मतलब पूरी रात ना वो कुछ खा रहे हैं, ना हम कुछ खा, मैं कुछ खा रही हूँ, ना मैं सो रही हूँ, ना वो सो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं सब लोग, एंड फाइनली अब फेस टू फेस आए हैं बात करने।
2: अरमान ने तो तय कर लिया है और अपना फैसला मायरा को सुना दिया है, लेकिन आज मायरा भी बगावत पर उतर आई है। उसने तो अपने पापा की बात मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो तो कबीर के साथ रिश्ता बरकरार रखना चाहती है। ये सुनकर अभीरा और अरमान दोनों ही हैरान हैं।
1: तो हमारी नसीहत, हमारी सलाह कुछ भी मंजूर नहीं है ना, तो फिर हमें बुलाया क्यों था अपना फैसला सुनाने के लिए? आपने मम्मा से कहा कि वो मुझे बिना बताए सीक्रेट किस लड़के से मिले, और आपको लगा कि मैं तो ओवर रिएक्ट ही करूंगा। आपने मुझे जज किया और मम्मा को ग्रांटेड दिया, व्हाट द हेल। और अब भी हम उस कबीर को चूज करके हमारे इंसल्ट कर रहे हो।
3: आप भी तो अपनी जिद को चूज कर रहे हो पापा।
1: मेरा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसा नहीं था।
3: आप कबीर को एक और चांस देने के लिए रेडी नहीं हो, आप उसके बारे में जजमेंट सुना रहे हो, आप मेरे आगे शर्तें रख रहे हो। मेरी बिल्ली भी ऐसी नहीं थी। दोनों क्या बोले जा रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ।
1: इसने अपना मन बना लिया अपना। जब तक ये कबीर से ब्रेकअप करने के लिए रेडी नहीं हो जाती, मैं इससे बात नहीं करूंगा।
3: और जब तक आप मेरे आगे ये फिल्मी शर्तें रखना बंद नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं।
1: आपको हमारा नजरिया, हमारी सलाह कुछ भी मंजूर नहीं, तो फिर बुलाए अपना फैसला सुनाने के लिए? आपने मम्मा से कहा कि मुझे बिना बताया उस लड़के से सीक्रेट नहीं गए, क्योंकि आपको लगा था कि मैं तो ओवर रिएक्ट नहीं कर दूँ। फिर जज किया और मम्मा को गाइड, बोलता है, और आप अभी भी कबीर को चूज करके हमारी इज्जत कर रहे हो।
4: ये सिचुएशन ही ऐसी है कि जो मतलब मायरा वर्सेस पेरेंट्स हो रहा है अभी, तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू अपने उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मायरा का पॉइंट ऑफ व्यू अपने पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेरेंट्स के लिए क्योंकि फैमिली, पहली बात तो फैमिली से ही आपस में इतनी नहीं बनती हैं, और मम्मा को और पापा को लगता है कि कबीर जो है वो अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि मम्मा ने कुछ बातें सुन ली थी कबीर की, जो अपने वो दोस्त के बारे में अपने दोस्त को बता रहा था कि मेरे दोस्त ने ऐसा ऐसा किया किसी के साथ वगैरह वगैरह, तो मम्मा को लगता है कि वो कबीर मेरे बारे में बात कर रहा है, बट वो सच नहीं है। और मेरे को पता है कि कबीर अच्छा है, तो मेरे लिए मायरा ये चाहती है कि मतलब उसके पेरेंट्स जो है कबीर को एक चांस दे, और पेरेंट्स को लगता है कि कबीर एक अच्छा लड़का है ही नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा जो POVs क्लैश हो रहे हैं एक दूसरे से, उसी की वजह से सारा ड्रामा होगा। बट दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मायरा का भी अपनी जगह सही है, पेरेंट्स का भी अपनी जगह सही है, बट भिड़ रहे हैं जो। तो
2: अब मायरा हो या फिर अरमान, दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, और अभीरा पापा और बेटी के इस रिश्ते को लेकर परेशान हो रही है। इसी बीच अभीरा को याद आता है कि आज मायरा का रिजल्ट आएगा, और देखिए कैसे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट जानने के लिए सभी घर वाले बेचैन हो उठते हैं, लेकिन उनकी ये बेचैनी ड्रामे में जल्द ही तब्दील होने वाली है। घर वालों को तो नहीं, लेकिन अभीरा को पता चल गया है कि मायरा ने एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं है। अब देखना होगा कि मायरा अपनी मम्मी का ये गुस्सा कैसे झेलेगी और कैसे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सीरियल तू ही रे में आ गया है नया मोड, जहाँ कविता को अब वृंदा और स्वाति पर शक होने लगा है। कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब सामने आएगा घूंघट का असली सच। तो क्या खुलने वाला है घूंघट का राज?
2: कविता का शक, सामने आया घूंघट का सच। वृंदा और स्वाति का डर, जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज स्वाति अस्पताल में अपने आंसू बहा रही है। उसे रोना आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उसे संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसी बीच आ जाती है स्वाति की सीनियर, जो स्वाति को समझाने की कोशिश करती है।
5: तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी पहली सर्जरी सक्सेसफुल रही। यू सेव अ लाइफ। क्या हुआ? हम डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी ही होती है। हाश पूजा में सोया ना, कल पति का बर्थडे, शादी की एनिवर्सरी, फिर बच्चों का एडमिशन, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हम डॉक्टर्स को लाइफ में बहुत कुछ बहुत बार मिस करना पड़ता है, क्योंकि ये सब किसी की जिंदगी से ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना? God bless you. Take care.
2: वही घर में जो पूजा हो रही है उसमें स्वाति शामिल नहीं हो पाई, इसलिए स्वाति अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शादी से पहले ये उसकी पहली पूजा थी। वहीं दूसरी ओर घर में कविता को शक हो गया है। तभी तो देखिए कैसे कविता पहुंच गई है कमरे में, ये जानने के लिए कि पूजा में आखिर कौन था जो घूंघट ओढ़े संजय के साथ आरती कर रहा था। ऐसे में वो घूंघट उठाने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है घूंघट के पीछे स्वाति है या अमू।
6: घूंघट को खोल, शक्ल पर दिखा
3: क्यों?
7: मुझे लगा था संजू सबसे पहले मुझे पल्लू उठा के देखेगा, अपने उठा दिया। बाप ने तुम्हारा प्लान ही फेल कर दिया। वो
6: इतनी जल्दी साड़ी बदल ली?
7: मतलब साड़ी तो सुबह बदल ली थी ना मैंने।
6: ओके, तो तुम्हारे हिसाब से तुम नीचे?
7: ऑफ कोर्स वो नीचे थी।
6: पूजा?
7: हाँ पूजा में।
6: अच्छा डॉक्टर स्वाति आप हॉस्पिटल में थी, रूम कर सकती हूँ मैं?
8: पहले तो ये कि मेरे लिए शॉकिंग है स्वाति घूंघट में आ गई है पूजा में, जो पटेल्स का क्लास है वो मेंटेन नहीं कर रही है, तो पहला गुस्सा वो है। और फिर पूजा के बीच में ही गौतम ने बता दिया है कि स्वाति तो हॉस्पिटल में है, तो कविता को इतना तो पता चल गया है कि स्वाति की जगह पे कोई और है, और स्वाति को तैयार कर रही थी अम्मू, डेफिनेटली वो अम्मू होगी। उस कॉन्फिडेंस से कविता आई है कि अब तो मैं अम्मू को पकड़ के ही रहूंगी।
2: अब कविता को तो पता है कि स्वाति अस्पताल में ऑपरेशन करने गई थी और घर में उसकी जगह अम्मू थी, यही बात वो स्वाति के मुंह से उगलवाना चाहती है, लेकिन स्वाति भी अपनी बात पर डटी हुई है। तभी तो देखिए कैसे कविता सवाल पर सवाल कर रही है और स्वाति सबका करारा जवाब दे रही है, लेकिन कविता उसे अब भी स्वाति पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन स्वाति भी अड़ी हुई है।
6: So you have all the reasons to hide it. Because Pooja bhi tum nahi thi.
9: Swati?
7: I'm up. I need to.
6: Swat? Are you really saas pe?
7: Mujhe saari change karke jaane.
6: Nahi ji, tum hi ne bola na. Saari mein ghoonghat खोलने के बाद में सबसे पहले संजू ने तुम्हें देखना है, उसे कहाँ पता चलेगा मैंने देख लिया, तुम जाओ।
7: हाँ बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो चेंज करके जाओ। कैन आई चेंज?
6: हॉस्पिटल में थी, उसका सबूत भी तुम्हें दूंगी वेरी सून।
8: जी घूंघट में निकलती है स्वाति, जो है दोस्त की बेटी, उस पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकती पर ये बेवकूफ़ी सह भी नहीं सकती। तो सवाल जवाब चल रहे हैं और कविता तो बता देती है उसको कि भाई मुझे पता है तुम हॉस्पिटल में थी, बस प्रूफ ढूंढना बाकी है।
2: भाई कविता के जाने के बाद स्वाति चैन की सांस तो लेती है, लेकिन तभी कमरे में छिपी हुई अम्मू स्वाति के सामने आती है, जो फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने अपने गणपति बापा को धोखा दिया है। ऐसे में स्वाति उसे समझाती है क्योंकि उसी के चलते स्वाति किसी की जान बचा पाई है।
7: बहुत बहुत बड़ा पाप किया मैंने यार, इन सबके साथ साथ भगवान से भी झूठ बोला यार।
3: वो मेरी बात सुनो, तुमने कोई झूठ नहीं बोला है। तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं संभाल पाती ना तो मैं वहां पे कुछ नहीं कर पाती। अगर मैं किसी की जान बचा पाई ना तो तुम्हारी वजह से। तुम सॉरी मत बोलो, आई एम सॉरी। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला मैंने तुम्हें, सॉरी। नहीं अब सॉरी मत बोलो ना, मत बोलो ना सॉरी।
7: तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुम अगर यहाँ पे सब कुछ ना संभालती तो मैं वहां पे कैसे किसी की जान बचा? मैं अगर किसी की जान बचा पाऊँ तो वो तुम्हारी वजह से।
9: आई एम सॉरी.
7: इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला मैंने तुम्हें.
10: आरती परफॉर्म करती हूँ, बट वही गिल्ट होता है ना कि जहाँ पे स्वाति दीदी को होना चाहिए, जो उनका राइट है, वहाँ पे मैं हूँ और उनके पति के साथ में, तो वो गिल्ट रहता है मुझे. और मैं उन्हें सॉरी बोलती हूँ. और बहुत ही स्वाति वृंदा वाला सीन था जहाँ पे स्वाति की समझदारी, मैच्योरिटी और मेरा वो नादानी, गिल्ट में जाना, एकदम बच्चे जैसा रोना, वो वाला सीन था जहाँ पे वो मुझे समझाते हैं कि जो तुमने झूठ बोला वो किसी की जान बचाने के लिए बोला, किसी के अच्छे के लिए बोला है, और तुमने तो भगवान के सामने ये सब करा है, भगवान की आरती करी, तो भगवान जी को तो, पापा को तो पता ही है ना कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. बट कविता फुई को शक हो चुका है, तो अब पता नहीं हम कैसे मैनेज करेंगे.
2: भाई स्वाति ने तो बड़े ही प्यार से अमू को समझा दिया है और अमू भी कहीं ना कहीं समझ गई है. लेकिन तभी स्वाति की नज़र पड़ती है अमू की कलाई पर बंधी उस राखी पर जो खुद स्वाति ने बांधी थी. ऐसे में स्वाति उसे सवाल भी करती है कि आखिर वो उसे उतार कर उस पूजा में शामिल क्यों नहीं हुई. उस पर अमू ने जवाब दे दिया है कि वो जिंदगी में कभी भी अपनी बहन की राखी नहीं उतारेगी. ये सुनकर दो बहनों का अटूट बंधन नजर तो आ रहा है, लेकिन जल्द ही सच आने के बाद कहीं न कहीं इनके बीच दूरियां जरूर आएंगी. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
0: हाल ही में हुआ फिल्म दवन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट का ट्रेलर लॉन्च, जिसमें नजर आए कई सितारे. तो आइए देखते हैं इस ट्रेलर लॉन्च के नजारे.
11: भुतक के इस वन की काली शक्ति रात के साय से भी काले, तूफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमें नहीं बचा सकती. और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती.
12: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास है. चोट लगती है और मैं अपना होश खो बैठता हूँ. कुछ अजीब सा महसूस होता है.
13: ओ मेरे करण अर्जुन, मुझे ऐसे 200 मीटर आगे का नहीं दिख रहा और तू पास्ट में घूम क्या रहा
12: है? शायद देवी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है.
2: फिल्म वन का ट्रेलर लॉन्च. सितारों का मेला. देखा एकता और प्रेरणा का कसौटी वाला कनेक्शन. बीती शाम हुआ वन का ट्रेलर लॉन्च, जिसमें नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, श्वेता तिवारी, अनूप सोनी, मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर, और साथ हैं सोप क्वीन एकता कपूर. भाई आज इन सभी की सच धज देखने लायक है. स्पेशल स्क्रीनिंग पर है स्पेशल इनका लुक, लेकिन यहाँ पर टीवी का एक कनेक्शन जुड़ गया, जहाँ पर एकता को याद आई उनकी प्रेरणा, यानी फिर एक बार प्रेरणा नजर आने वाली है एकता कपूर के साथ.
14: हमेशा हम सुनते हैं कि हम सब जानते हैं, बिलीव करते हैं कि भगवान कोई चमत्कार करते हैं. हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं, शक्ति है जो कोई चमत्कार करती है और हमारे फेवर में करती है. जैसे हवा चलती है हमें दिखती नहीं है, वैसे ही चमत्कार हमें दिखते नहीं है जो भगवान करते हैं. अगर हमारे ब्रेन में हम चमत्कार होते हुए जो खुद रियलाइज करते हैं, अगर वो किसी ने सिनेमा या टीवी पे लाया है तो वो आई थिंक एकता है. शी इज द वन हु एक्चुअली क्रिएटेड. जो जब भगवान चमत्कार करते हैं तो वो दिखता कैसा होगा? वो जो क्रिएशन हैज बीन डन बाय हर. हाँ, हमने पहले देखा है कि आज खुश तो बहुत होंगे आप, इस तरह की चीजें देखी हैं हमने, लेकिन होता क्या है उसके बाद? दैट वॉज ओनली हर. सो ये जो अभी तमन्ना जो
15: हमारी प्रेरणा है.
14: सो अभी जो तमन्ना ने कहा कि सब मिलके बात कर रहे हैं, वैसे हम किसी को जानते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया आफ्टर दिस सॉन्ग, व्हेन दिस छठ मैया सॉन्ग रिलीज्ड, एंड देन शी कॉल्ड मी एंड शी सेड हम इतने खुश हैं ना कि हमारा छठी पर्व जो है वो दिख रहा है, हम पूरा बिहार इतना खुश लग रहा है, हमारे यहाँ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. और कहीं ना कहीं हमें पता था कि अगर ये कभी पर्दे पे आया तो वो एकता ही लेकर आएगी. ये बात मुझे बोलना बहुत जरूरी था.
2: तो आइए बाकी सितारों से भी जानते हैं कि इस फिल्म में क्या क्या खास होने वाला है और कैसा होगा इनका किरदार.
15: इनकी जो कहानी है ना, मिट्टी से जुड़ी होती है. और हमारे देश का प्रॉब्लम है कि हम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एटलीस्ट दिस साइड ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रियली, जो थोड़ा हम जुड़ना बंद कर दिया हमने, हम देश से जुड़ना बंद कर दिया हमने, हम अपने आप को उससे ऊपर समझते हैं. दैट कैन नॉट हैपन. आप देश से जुड़ोगे तो आपसे देश जुड़ेगा. आप नहीं जुड़ोगे, आप अपने आप को ऊपर समझोगे तो आपको गिरा देगा. तो वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी रूटेड एंड बिकॉज TVF मेक्स रूटेड स्टोरीज. और मैं और अरुण अब दोस्त बन गए. फिर उसके बाद हम दोनों का मंदिर और वी बिकेम मंदिर फ्रेंड्स. बॉम्बे में बहुत कम लोग हमारे जो सर्कल में मंदिर जाते हैं, ये और मैं जाते हैं. तो हमारा जो फेथ था वो हमें जोड़कर, हमें हमारे फेथ ने जोड़ा. और तो फिर जब एक बार अरुण अब ने मुझे एक कहानी सुनाई कि ये बिहार की कहानी है और ये एक ऐसी कहानी है, एक वन देवी की कहानी है, तो हमारी बातें हुई.
9: फिल्म बनाई है, हम सब जाके देखेंगे. छठ का महत्व जैसे भी हमने दर्शाया है. एंड ही वॉज ऑल्सो नोटिसिंग ऑल द डिटेल्स दैट वर मेड एंड दे वर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ ऑल द डिटेल्स. एंड मैं ऑल्सो सुबह आज जब यहाँ आ रही थी तो जो मेरे वॉचमैन है जो मेरे बिल्डिंग में, वो भी बोला कि आप छठ पे फिल्म बना रहे हैं. तो मैं बोला नहीं, हम फिल्म वन देवी पे बना रहे हैं, बट छठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आई थिंक छठ एक्चुअली एक फेस्टिवल नहीं है, वो इट्स एन इमोशन.
16: जलते हैं ये लोग. आप
17: क्या बात है जी, बिल्कुल. जैसा कि तमन्ना ने कहा, एक्चुअली सभी कास्ट ने जो कहा है, अगर हम इस हमारे किरदार की बात करें, ये मोबाइल शूटिंग मुझे लगा, आई थिंक तमन्ना सच एन इंस्टिंक्टिव एक्ट्रेस कि वो यू नो सेट पे आके, एक तो इनको लकली ये बात थी कि ये भी खुद मानती है इस भक्ति भाव में, उस आस्था में जैसा कि इनका किरदार है. और हम प्ले कर रहे थे, हम इस पिक्चर में मिल नहीं रहे पहली बार, हम इस पिक्चर में एक एज अ कपल प्ले कर रहे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. तो वो एक कंफर्ट दिखाना था एक यंग कपल का जो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में है. तो वो बहुत ही इंस्टिंक्टिव और बहुत ही एक आई वुड से वार्म एनवायरनमेंट में बहुत खूबसूरती से, ऑल थैंक्स टू तमन्ना जो कि हम कर पाए उसको. एंड आई थिंक कितना कुछ है इनके थ्रू हमारे में. अगर रिलेशनशिप में देखें तो इनकी जो आस्था है और मेरा जो थोड़ा उस पर जो आई वुड से आई एम द डाउटफुल वन स्लाइटली विद इन द रिलेशनशिप, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक्स रहे. अगेन मैंने ऐसा रिलेशनशिप नहीं प्ले किया है बड़े पर्दे पे, तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों को दिखे. और हमारी ये सारी जो खूबसूरत कास्ट है यहाँ पे, इन सब के साथ जिस तरह के हमने सीन्स गए हैं, आई थिंक कोई भी ऐसे टिपिकल सीन नहीं है, चाहे वो इसका ह्यूमर हो, अब चाहे वो हमारे इनके जो इंटेंस और इंटरेस्टिंग सीन्स हो, चाहे वो श्वेता मैम, अनूप सर का मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली जिस बात की जिक्र कर रहे थे, हम सब जानते हैं कि कितने अच्छे ट्रेन्ड एक्टर हैं ये. तो मैंने बहुत साल पहले जब मैं स्ट्रगल कर रहा था बॉम्बे में, मैंने इनकी एक एक्टिंग वर्कशॉप या वर्कशॉप्स अटेंड करी हुई हैं. सर को हम तब से जानते हैं और सर मानते हैं, और आज इतने सालों बाद हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगा. एंड फिर हमारे दीपक मिश्रा जी, हमारे डायरेक्टर साहब, जो कि आई थिंक कॉन्स्टेंटली जो आपको देखेंगे मॉनिटर के पीछे अपनी दाढ़ी खुजालते हुए 90% ऑफ टाइम की सोच रहे हैं, और वो कॉन्स्टेंटली अपने जहन में सोचे जा रहे हैं कि इसको मैं कैसे बेटर और कैसा करूं. तो इनकी एक दिन मैं इनको शेव करना चाहता हूं. तो
14: ये जो कैरेक्टर है ना, शायद मेरे लिए कैरेक्टर नया हो, लेकिन ऐसा कैरेक्टर इस देश में किसी के लिए नया नहीं है. ऐसा कैरेक्टर आपको अपने घर में मिल ही जाता है. आपकी माँ, आपकी भाभी, वो औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी घर वालों का ध्यान रखने में लगा दिया है और भगवान से कनेक्शन बनाने में लगा दिया है. आपके घर में है ऐसी माँ, है ऐसी औरत, जब जिसको हम कभी नहीं समझते, लेकिन जब भी परेशानी आती है ना, कोई दिक्कत आती है, तो हम माँ का हाथ पकड़ के कहते हैं, यार माँ ये हो गया यार, आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग. और वो माँ बिना तुम्हें कुछ कहे वो भगवान से एक जैक लगाती है और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है.
18: तो हो जाइए तैयार फिल्म वन के लिए, क्योंकि इसमें है एंटरटेनमेंट भरपूर. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
0: चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको मनोरंजन जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज. तो पेश है आज की रॉकिंग खबरें.
18: पेश फ्रेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं बिग बॉस की। सामने आया है नया प्रोमो जहां कंटेस्टेंट्स को मिली है एक नई पावर और अब गेम में कई और मोड़ आने वाले हैं। आप भी डाल लीजिए इस खास झलक पर एक नजर।
11: तो आज एक खेल खेलते हैं दावेदार, विकल्प यानी चॉइसेस का खेल। आप 2x रूम में तभी आएंगे अगर आप किसी की लाइफ छीनना चाहते हैं।
7: उनकी जो गेम है वो मुझे सामने नहीं दिख रही है, उनके व्यू पॉइंट्स क्लियर नजर नहीं आते।
16: अगर भीड़ चाली करनी है तो अपने घर जाके करे, यहाँ खेलना है तो छाती ठोक के खेले, सामने से खेले।
19: If you are indifferent towards me, then you don't exist for me.
18: इसी के साथ बिग बॉस में हाल ही में अरिश्वा

0: एक्स्ट्रा करेगी मैं फाड़ दूंगा।
1: गणेश उत्सव की धूम चारों ओर है, ऐसे में निमृत कौर पहुंच गई है जीएसपी गणपति दर्शन के लिए। साथ ही निमृत कौर अहलूवालिया पहुंची है लालबाग चौराहा बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए।

पुरोहित ने शेयर की हैं ये तस्वीरें, जहां उन्होंने अपने बेटे आरुष का पहला जन्मदिन मनाया। देख लीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन के ये नज़ारे।

करें अनुपमा की तो खबरें आ रही हैं कि सीरियल अनुपमा में जल्द होने वाली है ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर रोमित राज की एंट्री जो कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएंगे।

0: स्टार सेलिब्रिटीज का ईगो क्लैश, नीचे ट्रैश और ऊपर न्यूज फ्लैश।
1: पॉलिटिक्स का शेर रणनीति मेरे खून में है।
2: जल्द आने वाला है राइज एंड फॉल का सीजन 2। ऐसे में सामने आई है इसकी खास झलक, जिसके होस्ट हैं वीरेंद्र सहवाग। इसी के साथ कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आ गई है। इस सीजन में नजर आएंगे स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, प्रियंका चहर चौधरी और करण पटेल, जो इस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरें तो ये भी है, राइज एंड फॉल सीजन 2 के कंटेस्टेंट्स बन सकते हैं रोहित रॉय, रोनित रॉय और गौतमी कपूर, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।
3: मार्क में चल रहा है कि हम ये स्टंट कंप्लीट करने का है और जल्दी कंप्लीट करने
4: और जीतने का है।
3: जीतने का है।
5: एंड 3, 2, 1 गो हरी।
6: वंडर,
7: वेरी नाइस।
8: हरी, मैं मर जाऊंगी।
5: हरी वो पुश कर रहे हैं, प्लास्टिक को पुश कर रहे हैं।
2: नजर डालीजिए खतरों के खिलाड़ी के इस नए प्रोमो पर एक नजर, जहां पर खतरनाक टास्क करते नजर आए ओरी और जैस्मिन।
9: मुझे निकालो यहाँ से।
5: गौरव एंड रुबीना ने स्टंट कंप्लीट किया है 16 मिनट और 20 सेकंड में। जैस्मिन एंड ओरी, आप दोनों ने ये खत्म किया है स्टंट 7 मिनट और 30 सेकंड।
10: ओरी कॉकरोच के साथ मजा आई?
11: कॉकरोच ने ओरी को मसाज करी।
12: सीजन 5 आ गया, चलो शुरू करो भाई।

0: जल्द आने वाला है द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 5। ऐसे में हो गई है इसकी अनाउंसमेंट, जहां बिहाइंड द सीन नजारों के साथ साथ दिखी ये खास झलक।
1: इतने सारे त्योहार एक साथ।

0: बीती शाम हुआ 3 दिन के गणपति बापा का विसर्जन। झुकिया अर्जुन बिजलानी में देखिए कैसे वो बापा को विदा कर रहे हैं।
1: आस बहू और बेटियां में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: देश भर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम को दी बधाई, प्रयागराज में भव्य आरती। दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, 52 देशों की कंपनियां शामिल। भारत में चीता प्रोजेक्ट के 4 साल हुए पूरे, देश में 52 हुई चीतों की तादाद, पूनो नेशनल पार्क में चीतों में दिखा खास बॉन्ड, बढ़कर 49वीं संख्या, गांधी सागर में भी 3 चीते मौजूद। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, चमेली के हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी, हिमाचल के चंबा में श्री मणि महेश यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान परेल के राजा का दिखा अनोखा स्वरूप, वारकरी रूप धारण किए नजर आए बप्पा। महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा और विठ्ठल भक्ति को समर्पित है बप्पा का ये रूप, दर्शनों के लिए उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्र सादा फेटा यानी महाराष्ट्र की संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक मानी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की पगड़ी पहने नजर आ रहे गणपति, वारकरी रूप में हाथ में सजा है मृदंग। 24 फीट ऊंची है गजानन की प्रतिमा, पूजा अर्चना के लिए गणपति की एक छोटी मूर्त भी मौजूद। इस बार अपना 80 साल मना रहा है ये मंडल, हर साल गजानन को अलग अलग स्वरूपों में स्थापित करने के लिए मशहूर है परेल का ये गणेश पंडाल। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डगरू शेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़, गणेश उत्सव पर तैयार की गई है वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट ऊंची है प्रेम मंदिर की प्रतिकृति, करीब 120 फीट की है लंबाई और 90 फीट चौड़ा है ये भव्य पंडाल। मंदिर के दर्शनीय हिस्सों पर बनाई गई है राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं, विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें भी इसमें खास तौर पर उकेरी गई हैं। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम, मशहूर दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया। पुणे के आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर। दीवारों से लेकर मंदिर के गुंबद तक शानदार नक्काशी बेहद खूबसूरती से ढाली गई है। हर बारी के पंडाल में देखने को मिल रहा है आस्था और कला का अद्भुत संगम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी का अद्भुत मिलन। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लालबाग चौराहा के साथ शिरडी साई बाबा के दर्शन। इस अनोखे धार्मिक संगम को देखने के लिए उमड़ रही है श्रद्धालु की भारी भीड़। पंडाल में लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की गई। बप्पा के साथ शिरडी के साईं बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भी अपनी ओर सभी को आकर्षित कर रही हैं। इन भव्य झांकियों के निर्माण में पिछले 3 महीनों से दिन रात जुटे थे कलाकार। भव्य सजावट, आकर्षण मूर्तिकला और धार्मिक झांकियां ऐसी मेहनत का प्रमाण। 46 वर्षों से प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के भव्य झांकियां प्रस्तुत करने के लिए मशहूर है ये पंडाल। चंद्रपुर वासियों को अपने ही शहर में विभिन्न तीर्थ स्थलों और धार्मिक परंपराओं की झलक दिखाना इसका उद्देश्य। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का संदेश। वंदे भारत ट्रेन की थीम पे बना अनोखा गणेश पंडाल। सूरत में ठाकुर सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है अनोखा गणेश पंडाल। पंडाल के बीच में स्थापित की गई है गणपति की विशाल और भव्य प्रतिमा। पंडाल में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैचू भी किया गया है स्थापित। वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में तैयार किया गया है गेट बना है मुख्य आकर्षण का गेट। इस पंडाल के बाहर लगाई गई है बड़ी LED स्क्रीन जिस पर लगातार चलती रहती है भगवान गणेश के भक्ति गीत और धार्मिक प्रस्तुतियां। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह। बड़ी संख्या में लेजर शो देखने आते हैं लोग। गणेश उत्सव में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा। 2 लाख से ज्यादा पेन से बनाए गए बप्पा की मूर्ति। 42 फीट ऊंची है भगवान गणेश की प्रतिमा। दूर दूर से दर्शनों को आ रहे हैं लोग, बनी आकर्षण का केंद्र। अलग अलग रंगों के पेन से किया गया है त्रिमुखी गजानन स्वरूप का निर्माण। इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का एक बेहतरीन उदाहरण। अकोला में गणेश भक्त परिवार ने बनाई गणपति की अनोखी झांकी। घर के गणपति के साथ सजाई जेजरी का खंडोबागढ़ की प्रतिकृति। महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। पुणे जिले के पुरंदर तालुका में स्थित जेजुरी शानदार प्रतिकृति को देखने के लिए लोगों की लंबी भीड़ लग गई। मुंबई में इजराइल के कंसुल जनरल यानेव रिवाच ने लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए बप्पा का आशीर्वाद। पुणे में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया गणपति उत्सव। कॉलेज के आखिरी साल को यादगार बनाने के लिए बिठाई बप्पा। पिछले 3 सालों से एक ही बैचलर फ्लैट में रह रहे सभी छात्र एक साथ कर रहे हैं पढ़ाई। गणपति की भक्ति में रंगा तिरुवनंतपुरम पजमंगड़ी महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव समारोह। विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान महागणपति की होती है विशेष पूजा अर्चना। लगाया जाता है अप्पम मोदक और गणपति होमम का भोग। ओडिशा दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देवबन में गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों का दौरा किया। गणपति उत्सव में सेवा करते नजर आए धर्मेंद्र प्रधान ने श्रद्धालुओं को वितरित किया भोग प्रसाद। आगर मालवा के पास बने सैकड़ों साल पुराने गणेश बलड़ा मंदिर में गणपति उत्सव की दिखी रौनक। स्वयंभू मंदिर के तौर पर है इसकी पहचान। मंदिर के ऊपर ही गणेश भगवान के पिता भगवान शंकर की भी मूर्ति और शिवलिंग स्थापित किया गया है। दूर दूर से दर्शन के लिए आते भक्त। मंदिर के परिसर में ही सैकड़ों गायों की गौशाला मौजूद है। माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से यहाँ किसी भी परिस्थिति में गायों को कोई भी कष्ट नहीं होता है। तमिलनाडु के कुडालोर में विनायक चतुर्थी के समापन पर बंगाल की खाड़ी में हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। रामेश्वरम में गणपति मूर्ति का हुआ विसर्जन पारंपरिक उत्साह। ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा से अगले साल जल्दी आने की गई प्रार्थना। कर्नाटक के हुबली में भी गणपति विसर्जन जुलूस से संपन्न, भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ मूर्ति विसर्जन किया। ढोल नगाड़ों के बीच निकला बप्पा का शानदार जुलूस, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। बप्पा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना के साथ उन्हें दी गई विदाई, भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। तमिलनाडु के मदुरई में उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभ अभिषेकम का हुआ आयोजन। मंदिर परिसर में सुबह से जारी है अनेक धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर के पवित्र यज्ञशाला में विशेष पूजा जारी। 17 साल के अंतराल के बाद हो रहा है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभ अभिषेकम, देश भर के भक्तों में भारी उत्साह। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर रंग बिरंगे और आकर्षक रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर, देखते ही बन रहे इस धार्मिक आयोजन की भव्यता। हिंदू मंदिरों में होने वाला एक पवित्र जीर्णोद्वार और शुद्धिकरण अनुष्ठान है कुंभ अभिषेकम, जिससे वेदों मंत्रोच्चार के बीच किया जाता है देवताओं का आह्वान। दिल्ली में ग्लोबल इवेंट सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन, पीएम मोदी ने किया इसका उद्घाटन। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल हुए, इस कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। इस एग्जीबिशन में 6 देशों के पवेलियन और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन शामिल हैं। स्टार्टअप पवेलियन में लगभग 40 स्टार्टअप किए जाएंगे। सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम रखा गया है सेमीकॉन इंडिया 2026 का थीम, 3 दिन चलेगा ये इवेंट। भारत में सहयोग इन्वेस्टमेंट प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्देश्य, 50,000 विजिटर्स भी पहुंचने की उम्मीद।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: चीजों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: देश भर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की दिख रही रौनक। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, दरभंगा में बच्चों ने खास अंदाज में पीएम को दी बधाई, प्रयागराज में भव्य आरती। दिल्ली में सेमी कॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, 52 देशों की कंपनियां शामिल। भारत में चीता प्रोजेक्ट के 4 साल हुए पूरे, देश में 52 हुई चीतों की तादाद, कूनो नेशनल पार्क में चीतों में दिखा खास बॉन्ड, बढ़कर 49वीं संख्या, गांधी सागर में भी 3 चीते मौजूद। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, चमेली के हिमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी, हिमाचल के चंबा में श्री मणिमहेश यात्रा स्थायी रूप से रोकी गई।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज हम आपको भगवान श्री गणेश के अद्भुत यंत्र की महिमा के बारे में बताएंगे। माना जाता है कि जहां पर भी श्री गणेश यंत्र की छाया होती है वहां ईश्वरीय कृपा का वरदान बरसता है। आज हम आपको श्री गणेश यंत्र की चमत्कारी शक्तियों से परिचित कराने वाले हैं। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि बड़ा ही दिव्य और अद्वितीय शक्तियों वाला है गणपति का ये यंत्र। तो आइए जानते हैं इस परम शक्तिशाली यंत्र के प्रयोग से कैसे आएगी आपके जीवन में शुभता, संपन्नता और समृद्धि।

0: एक यंत्र जिसमें समाई है गणपति की शक्ति, एक यंत्र जो दिलाएगा विपत्तियों से मुक्ति, जो है सबसे शुभ फलदायी और कल्याणकारी यंत्र, जीवन से विघ्नों को दूर करेगा श्री गणेश यंत्र। खुशहाली और समृद्धि लाएगा गणपति का ये यंत्र। जिनके नाम से होता है हर शुभ कार्य का आरंभ, जिनकी कृपा से होता है कष्टों का अंत।
1: किसी भी लक्ष्य के बढ़ने के लिए हमें किसी दिशाओं और किसी दशाओं में ही चलना पड़ता है, और इनके स्वामी भगवान श्री गणेश ही हैं। इनको इसलिए गणाध्यक्ष कहते हैं। और जो गणेश जी की पूजा करते हैं तो भगवान के बाकी गण और बाकी देवगण भी उनके पीछे पीछे ही चलते हैं, तो आशीर्वाद देने के लिए और आपका कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं विवश हो जाते हैं।
0: वो है रिद्धि सिद्धि की स्वामी, विघ्न विनाशक, संकट हर्ता, अंतर्यामी। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे श्री गणेश यंत्र की महिमा। जैसे श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की शक्ति समाई है, वैसे ही श्री गणेश यंत्र में समाया है गणपति का आशीर्वाद। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश का ये परम शक्तिशाली यंत्र है, जिसके शुभ प्रभाव से जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। माना जाता है कि जिसके भी घर में श्री गणेश यंत्र स्थापित होता है, उसके घर में सदा के लिए रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है।
1: श्री गणेश जी का नाम ही पर्याप्त है, और यंत्र स्थापित करने के पश्चात यदि पूजन करते हैं विधिवत पूर्वक, तो गणेश जी का आगमन सुनिश्चित आपके घर में रहता है। और गणेश जी अकेले नहीं आते, गणेश जी के साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ भी आपके घर में वास करने लगते हैं।
0: माना जाता है कि ये यंत्र जितना शक्तिशाली है उतना ही चमत्कारी भी। कहते हैं जिस इंसान के पास श्री गणेश यंत्र होता है, उसके जीवन में कुछ भी अनिष्ट या अशुभ नहीं होने पाता, क्योंकि जीवन के हर विघ्न का विनाश करते हैं विनायक। तो आइए जानते हैं श्री गणेश यंत्र क्यों है इतना शुभ फलदायी। मंत्रों का भौतिक स्वरूप है यंत्र। यंत्र में आकृति, रेखाओं और बिंदुओं का विशेष प्रयोग होता है। देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं यंत्र। यंत्र में चमत्कारी शक्तियों का निवास होता है। किसी भी लक्ष्य को जल्दी पाने के लिए सबसे सरल विधि है यंत्र साधना। अपार शुभता और संपन्नता का प्रतीक है श्री गणेश यंत्र। जहाँ श्री गणेश यंत्र होता है, वहाँ कभी विघ्न बाधाएं नहीं आती। श्री गणेश यंत्र रखने से जीवन में सुख संपत्ति और वैभव का आगमन होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये यंत्र इतना फलकारी है कि इसके होने मात्र से रोग बाधा का नाश हो जाता है। साथ ही घर की महिलाओं के लिए भी ये उत्तम फल प्रदान करने वाला माना गया है।
1: उस घर की स्त्रियां सौभाग्यशाली रहती हैं, चाहे वो धर्मपत्नी हो चाहे वो पुत्री हो, हर प्रकार से उनका कल्याण होने लगता है, व्यक्ति रोग मुक्त होने लगता है। और इसका उत्तम प्रभाव इस प्रकार से कहा गया कि जो चांदी में बनवा के यंत्र गले में भी धारण कर ले तो वो सभा में गणेश जी के समान पूजा जाता है, ऐसा वर्णन आता है।
0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं। संसार में ऐसा कोई शुभ कर्म नहीं है जो गणपति के आशीर्वाद के बिना संपन्न हो जाए। गणपति की इन्हीं शक्तियों का प्रतिरूप है श्री गणेश यंत्र। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस यंत्र का लाभ पाने के लिए इसकी विधिवत पूजा करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें इस दिव्य कहे जा रहे श्री गणेश यंत्र की पूजा। आज हम आपको इस अद्भुत यंत्र की पूजा का सबसे प्रभावी तरीका बताएंगे। गौर से देखिए।
1: सबसे पहले तो उसको गंगाजल आदि से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, पश्चात शुद्धोदक स्नान करके केसर से उसका तिलक करना चाहिए। और जो पंचामृत और केसर युक्त जो जल है, अगर कोई गर्भवती स्त्री है घर में तो उसको दे, नहीं तो उस विद्यार्थियों को विशेष तौर पे उसका आचमन करके 5 बार लेके पीना चाहिए गणेश जी का मंत्र बोलते हुए। तो आप निश्चित समझिए आपको विद्या, बुद्धि, संतति, संपत्ति, ऐसा चतुर्दिक लाभ आपको मिलते हैं।
0: सबसे पहले यंत्र को गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध करें। श्री गणेश यंत्र की धूप, दीप, पुष्प, दुर्वा, मोदक अर्पित करें। फिर यंत्र के सामने धूप बत्ती दिखाकर श्री गणेश मंत्र का जाप करें। श्री गणेश यंत्र की पूजा रोजाना विधि विधान से करना विशेष शुभ होता है। इस यंत्र के सामने संकट नाशक गणेश स्त्रोत का पाठ करना सबसे उत्तम होता है। गणपति के मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जप या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आप परेशानियों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो श्री गणेश यंत्र आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। इन तरीकों से बहुत जल्द आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि इस यंत्र से बरसती है समृद्धि। गौर से देखिए, श्री गणेश यंत्र की स्थापना ईशान कोण में करें। श्री गणेश यंत्र की स्थापना इस प्रकार करें कि यंत्र का मुख पश्चिम की ओर रहे। श्री गणेश यंत्र की स्थापना करने के बाद उसके सामने सुबह शाम दीपक जलाएं, यंत्र के सामने आरती करें और भोग भी लगाएं। श्री गणेश यंत्र के सामने गाय के घी से मिश्रित अन्न की आहुति दें। ऐसा करने से जीवन में अपार समृद्धि आती है। श्री गणेश यंत्र के सामने रोजाना अर्ष द्रव्यों से आहुति देने से व्यक्ति धनवान होता है। इस यंत्र के सामने रोजाना गणेश मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से गणपति प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। माना जाता है कि जिस घर में गणेश यंत्र की प्रतिदिन विधि विधान से पूजा होती है उस घर में हमेशा शुभ और लाभ बने रहते हैं और व्यक्ति के यश, कीर्ति और वैभव में वृद्धि होती है, साथ ही मिलती है सफलता।
1: संतान प्राप्त होना, विजयश्री प्राप्त होना, नौकरी लगना और विद्या में जैसी सम्मति है, जैसी संपत्ति है, उस प्रकार से उसको प्राप्त होना गणेश जी की कृपा से मिलता है। गणेश यंत्र जिस व्यक्ति के घर में हो उसके घर में लक्ष्मी सदैव चिर रूप में स्थिर रहती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्री गणेश यंत्र के नियमित पूजन से बहुत जल्द मिलती है बप्पा की कृपा। फिर मंगल मूर्ति अपने भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो आप भी इस गणेशोत्सव में कभी भी किसी जानकार से अपने घर में करवा सकते हैं श्री गणेश यंत्र की स्थापना, जिससे आपका भी जीवन शुभ और मंगलमय हो सके। आगे हम आपको बताएंगे श्री यंत्र से जुड़े विशेष प्रयोग। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश। इनकी भक्ति किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इनकी शरण में जो भी भक्त आता है हर सुख और दुख में उसके साथ होते हैं बप्पा। और इन्हीं की शक्तियों से भरा है श्री गणेश यंत्र। जिसने ये यंत्र अपने घर में स्थापित कर लिया उसे जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। कैसे, खुद ही देख लीजिए।

विद्या और विवेक को बढ़ाने वाला है श्री गणेश यंत्र। यश वैभव और उन्नति करवाने वाला है यह मंत्र। विघ्नहर्ता और सुखकर्ता भगवान श्री गणेश जी की तो उनकी पूजा से जुड़ा गणेश यंत्र अत्यंत ही शुभ और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि दैवीय शक्तियों वाला है मंगल मूर्ति श्री गणेश का ये यंत्र। माना जाता है कि इसकी पूजा साधना करने से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जानकार ये दावा करते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से निःसंतान दंपत्ति को संतान का सुख मिल सकता है। आप भी देखिए क्या कहते हैं इस पर ज्योतिषाचार्य।
1: यदि व्यक्ति के घर में कुछ संतान के रूप में प्राप्त न हो पा रहा हो तब भी गणेश जी का यंत्र घर में धारण करने से चांदी के ऊपर बनवाते और उसको पंचामृत से स्नान करके और वो पंचामृत अपनी गर्भवती स्त्री को पिलाएं तो उनको गणेश जी की कृपा विशेष प्राप्त हो सकती है।
0: दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस चमत्कारी यंत्र में संसार की हर पीड़ा का नाश करने की शक्ति है। मान्यता है कि अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जिसका हल नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए सबसे उत्तम समाधान है श्री गणेश यंत्र। तो आइए जानते हैं कि किन बाधाओं से पार पाने के लिए सर्वोत्तम है श्री गणेश यंत्र। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस यंत्र का प्रयोग प्रतियोगिता में विजय पाने के लिए, लाइलाज बीमारियों से निजात पाने के लिए, किसी बड़ी विपत्ति या संकट से छुटकारा पाने के लिए, नवग्रहों के दोष से मुक्ति पाने के लिए, धन समृद्धि और वैभव पाने के लिए भी किया जाता है। जानकार बताते हैं कि अगर आप गणेशोत्सव की चतुर्थी पर श्री गणेश यंत्र की स्थापना करते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हर माह में आने वाली चतुर्थी तिथि पर विधिवत श्री गणेश यंत्र की स्थापना करके इसकी शुभता पा सकते हैं।
1: गणेश जी की विशेष गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करना विशेष रहता है। गणेश जी के पूरे दिन में उनका पूजन करके अपने घर में उनका स्थान बनाएं और उसको स्थापित करें, या तो किसी है ना लाल रंग के वस्त्र को बिछा के उसके ऊपर स्थापित करते हैं और प्रतिदिन उसका धूप दीप से पूजन करते हैं तो वो गणेश यंत्र आपको सुफलित हो जाता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गणपति की उपासना से ही ग्रहों की बाधा का अंत हो जाता है। माना जाता है कि श्री गणेश यंत्र के प्रयोग से कुंडली का केतु भी शुभ फल देने लगता है।
1: यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सफलताएं न मिल रही हो या केतु ग्रह विशेष अनिष्टकारी पड़ा हुआ हो तो श्री गणेश जी का यंत्र व्यक्ति को चांदी पे उत्कीर्णित कराकर धारण करना या घर की पूजा में रखना, उसका प्रतिदिन धूप दीप आदि उचित ब्राह्मण से उसका प्राण प्रतिष्ठित कराने के बाद करने से बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं।
0: हर काम में सफलता दिलाएगा श्री गणेश यंत्र। धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर दिया था गणपति को प्रथम पूज्य का दर्जा, क्योंकि शुभकर्ता और मंगलकारी हैं पार्वती नंदन। इसलिए श्री गणेश यंत्र के रूप में इनकी उपासना करने से व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलने की मान्यता है। सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा श्री गणेश यंत्र। विघ्नहर्ता है गणेश, अपने भक्तों का हर कष्ट हर लेते हैं गणपति। इसलिए श्री गणेश यंत्र के प्रयोग से व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। जो भी व्यक्ति श्री गणेश यंत्र को घर लाता है उसके जीवन में शुभता और अपार सुख का आगमन होने लगता है। चलिए आपको बताते हैं कि किस विधि से धारण करने से श्री गणेश यंत्र करेगा आपका कल्याण।
1: किसी व्यक्ति को गणेश जी का लाभ लेना हो तो गणेश यंत्र चांदी में बनवा के अथवा भोजपत्र पर अष्टगंध से बनवाकर धारण करें तो सभा में विजय श्री प्राप्त करता है, और चांदी में बनाकर उसको स्नान करा के उस पंचामृत को गर्भवती स्त्री को दिया जाए तो उसको संतानहीनता से मुक्ति होकर संतान अवश्य प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अपने घर में गणेश यंत्र का पूजन करना शुरू करे और गणेश जी के पाठ करे उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से, स्वास्थ्य सुंदर रूप से और कृपा भगवान की अनंत रूप से प्राप्त होने लगती है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने का उत्तम माध्यम है श्री गणेश यंत्र। कहते हैं कि यंत्र के रूप में भगवान गणेश का पूजन करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। मनोकामना पूरी करेगा श्री गणेश यंत्र। पूजा या कारोबार के स्थान पर श्री गणेश यंत्र की स्थापना करें। जहां श्री गणेश यंत्र की स्थापना करें वहां हमेशा पवित्रता बनाए रखें। स्थापना के बाद गणेश यंत्र पर दुर्वा और ताजे फूल अर्पित करें। रोजाना ओम गम गणपतये नमः मंत्र से तर्पण करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है तो श्री गणेश यंत्र का प्रयोग आपके लिए वरदान जैसा है। आगे हम आपको श्री गणेश यंत्र के प्रयोग से धन की कामना पूर्ण होने के ज्योतिषीय महाउपाय बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गणपति ही सुखकर्ता हैं, गणपति ही दुखहर्ता हैं। इनके पवित्र यंत्र और मंत्र की चमत्कारी शक्तियां आपको अपार धन और समृद्धि का स्वामी बना सकती है। तो आइए हम आपको बताते हैं गणपति का वो परम प्रतापी मंत्र जिसके जाप से आपके पास कुबेर के समान धन और संपदा आ सकती है। गौर से देखिए।
0: गणपति के कृपा दिलाने वाला है सबसे मंगलकारी यंत्र। श्री गणेश का सबसे संकटहारी और तारणहारी है यंत्र। श्री कुबेर का महामंत्र आपको कर सकता है मालामाल। सुख संपत्ति और वैभव से आप हो जाएंगे निहार। वैसे तो धन का देवता कुबेर को माना जाता है जबकि धन की देवी है माँ महालक्ष्मी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिस पर इन दोनों भगवानों की कृपा होती है उसे संसार का सारा वैभव मिल जाता है। किसी भौतिक संसाधन की कमी नहीं रहती। लेकिन आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बता रहे हैं गणपति से वरदान पाने वाले एक शुभकारी यंत्र की महिमा के बारे में जिसके उपासना से प्रसन्न होंगे बप्पा और दूर कर देंगे जीवन के सारे दुख दर्द। माना जाता है कि गणपति के पूजन में श्री गणेश यंत्र के साथ ही उनके प्रिय वस्तु और प्रिय मंत्र को समर्पित कर दिया जाए तो साधक की सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं।
1: तो गणेश जी का मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति और गणेश जी के बीज मंत्रों का पाठ करके गणेश जी को दुर्वा पान सुपारी अर्पण करने वाला व्यक्ति धनवान न बने ऐसा संभव ही नहीं। फिर भी यदि परिवार में किसी प्रकार की कमी आ रही हो तो गणेश जी को हमेशा दुर्वा अर्पण करते रहे। बुधवार विशेष तौर पर, गणेश चतुर्थी विशेष तौर पर भगवान का उपवास रखें और भगवान चंद्रमा के दर्शन करके ही, एक कलंक चतुर्थी के अतिरिक्त दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करें। आप निश्चित जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं आपके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगी।
0: ये तो आपने जाना कि श्री गणेश को प्रसन्न करने का क्या उपाय है। लेकिन अब हम आपको वो महा उपाय बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग से आपके जीवन में भगवान कुबेर

0: संकट नहीं रहता। रोजाना इस मंत्र के जाप से भाग्य प्रबल होता है और धन के आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। यही नहीं, इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कर्ज की समस्या नहीं रहती। तो आप भी गणेश कुबेर मंत्र का प्रयोग करके देखिए, साथ ही इसके सामने बैठकर गणपति के मंत्रों का जाप करने से जीवन में संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। आज हमने आपको श्री गणेश यंत्र के बारे में बताया, जिसके जाप से आपको जीवन में समृद्धि और संपन्नता का आगमन होने लगेगा। विघ्नहर्ता गणेश आपके सुख की राह में आने वाले हर विघ्न को दूर कर देंगे।
1: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं क्या? अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं क्या? है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर आना हुआ होगा। ऐसे में हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने ये वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा नंबर है 7303409922। आपको बता दें कि ये जो नंबर है ये कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो हमें भेज रहे हैं तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर मेंशन कर दें। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोज जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
8: कहते हैं भक्ति के लिए ना बड़े बड़े इंतजाम चाहिए ना पैसों की जरूरत, बस दिल में सच्ची आस्था होनी चाहिए। इन बच्चों की भक्ति को देखकर

0: ये बात सच होती नजर आती है। बच्चों ने अपने हाथों से गणपति की प्रतिमा बनाई, अपने हिसाब से पंडाल सजाया और पूरे प्रेम से बापा को विराजमान किया। इनके पास साधन भले कम हो लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं। बच्चों ने साबित कर दिया कि बप्पा तक पहुंचने का रास्ता दिल से होकर जाता है। हाथों में बप्पा की प्रतिमा, आगे बच्चों वाला छोटा सा ढोल और उसके पीछे नाचते गाते नन्हे भक्त। ये नजारा भले ही छोटा हो लेकिन बप्पा के प्रति इन बच्चों का प्रेम बेहद बड़ा है। खुशी ऐसी कि कदम खुद ब खुद थिरक रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है और दिल में बप्पा के लिए अपार श्रद्धा। अपने प्यारे गणपति को विदाई देने निकले ये बच्चे नाचते गाते विसर्जन के लिए जा रहे हैं, मानो हर कदम के साथ बप्पा से अपना रिश्ता और गहरा कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच खुला आसमान और बच्चों के चेहरे पर जन्मदिन की चमक। यह बर्थडे पार्टी किसी बड़े होटल में नहीं बल्कि प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच मनाई जा रही है। नन्हे बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर जन्मदिन की खुशियां बांट रहे हैं। केक काटा गया, तालियां बजी और फिर शुरू हुआ केक खिलाने का सिलसिला। मासूमियत से भरे इन पलों ने हर किसी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर भी लोग बच्चों की इस प्यारी दोस्ती और प्यार को खूब पसंद कर रहे हैं। देखने में ये खेल जितना आसान लगता है खेलने में उतना ही मुश्किल है। पहिए के आकार के इस गोल चक्कर को अपनी तय लाइन में ही घूमना है। जरा सा संतुलन बिगड़ा, जरा सा पहिया लाइन से बाहर हुआ और खिलाड़ी सीधे गेम से बाहर। यही वजह है कि इस खेल में ताकत से ज्यादा जरूरी है संतुलन, फोकस और सही टाइमिंग। प्रतिभागी पूरी एकाग्रता के साथ इस चुनौती को पूरा करने में जुटे हैं। खेल का रोमांच ऐसा है कि देखने वालों की नजरें भी टिकी रह जाती हैं।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: देश भर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का आज चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, सेवा संकल्प के तहत वडनगर में गृह मंत्री ने 250 बाइक को दिखाई हरी झंडी, वाराणसी से रक्षा मंत्री और सीएम ने 500 बाइक रवाना की। पीएम के जन्मदिन पर मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में चढ़ाए गए 176 किलो लड्डू, विशेष हवन पूजन, उज्जैन में आज शाम 25 लाख दीप से होगा दीपोत्सव। सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की, 52 देशों की कंपनियां शामिल। भारत में चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे, देश में 52 हुई चीतों की तादाद, कुनू नेशनल पार्क में बढ़कर 49 हुई संख्या। मौसम का मिजाज, चमोली के हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी, हिमाचल के चंबा में श्री मणि महेश यात्रा स्थायी रूप से रोकी गई।

0: शंकराचार्य सूर्य बुध देंगे शौर्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावे। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव अग्निहोत्री जी आ चुके हैं, इसी पर आज हम करेंगे बात। दरअसल आज कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है, जहां पर पहले से ही बुध है। और तो और शुक्रवार को बुध ग्रह उच्च राशि यानी कि कन्या में उदित हो रहे हैं, यानी कि सूर्य और बुध का मिलन कन्या में। ये ऐसा समय है जब गणपति उत्सव भी चल रहा है, तो गणेश उत्सव में ग्रहों का आज नया मिजाज। सूर्य की बदली चाल कैसा राशियों का हाल, और बुध का कन्या में डेरा होगा नया सवेरा, इसी पर होगी चर्चा। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो गणेश उत्सव पर बुध आदित्य योग बना है और ये एक महासंयोग भी है। दरअसल गणेश चतुर्थी सोमवार को शुरू हुई, 14 से 25 सितंबर तक यानी कि 12 दिन का ये पूरा आयोजन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ये पर्व शुरू हुआ है। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन होगा और गणेश उत्सव में बुध आदित्य योग भी बना है। सूर्य बुध की महायुति हुई है। दरअसल आज कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है। सूर्य अब तक अपनी राशि सिंह में थे, कन्या राशि में पहले से बुध विराजमान है। साथ ही साथ शुक्रवार को उच्च राशि कन्या में बुध उदित होंगे, तो ऐसे में बुध की शक्ति फल देने की क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी और इस बदलाव से कई राशियों का फायदा भी होगा, जिस पर आगे बात करेंगे। ये बुध आदित्य योग 26 सितंबर तक रहेगा और बुध 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य और बुध का खास मेल हुआ है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे साथ में परिचय करा चुके हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस युति के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से राज मिश्रा जी समझाइए।
1: ये युति एक अपने आप में बहुत सुंदर है। मैं एक बात नवजोत जी कह दूं, मुझे लगता है कि इस बार भगवान गणेश उच्च परिस्थिति में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए लेकर के आए। बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जिनको मैंने बार बार कहा है कि श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर हो प्रसन्न पूर्वों सकल मंज मनोरथ मोर। बुध वो प्लैनेट है जो मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। जब भी बुध की कोई परिस्थिति की बात आती है तो हम कहते हैं कि भगवान गणेश जी की आराधना करो और गणपति जी के जन्म दिवस पर बुध का एग्जॉल्टेड होना। एक्चुअली बुध ऑलरेडी उदय हो चुके हैं 11 सितंबर को, एक्चुअली में बुध ऑलरेडी उदय हो चुके हैं, बुध इस टाइम पर उदय हैं और उसके साथ भी काल पुरुष के छठे भाव के अंतर्गत ज्योतिष ये कहती है कि छठे भाव के अंदर बुध जो है वो विवेक पैदा करते हैं, ज्ञान उत्पन्न करते हैं और शत्रुहंता योग उत्पन्न करते हैं। अगर सूर्य छठे भाव के अंतर्गत आ जाए, दोनों प्लैनेट का पोजीशन जो कॉम्बिनेशन है छठे भाव के अंतर्गत जो बन रहा है, ये वास्तविकता में और वो भी गणेश जी के जन्मोत्सव के समय वाक्य में जो गणेश जी को कहा जाता है कि बुद्धि को प्रदान करने वाले देवता हैं, विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, क्या सही है क्या गलत है उसको बताने वाले जो देवता हैं, जो श्री राम चरित मानस का वो जो सुंदर अध्याय बताता है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो सुमृत सिद्ध हो गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन, जिनके स्मरण से बुद्धि जागृत हो जाती है, जिनके स्मरण से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, यदि इस प्रकार का संयोग भी उस समय पर बन जाए तो वास्तविकता में गणेश जी की आराधना आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली हो जाती है। तो जो इस समय ये कॉम्बिनेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ये वो अमृत काल है सभी के लिए, जब अपने बुद्धि को जागृत किया जा सके और अपने जो शत्रु वास्तविकता में है, चाहे वो मैं इंटरनल आत्म शत्रु की बात करूं, जब आप एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, जब आप ओवरथिंकिंग से गुजर रहे होते हैं, जब आप फोबिया से गुजर रहे होते हैं, जहां आत्मा को समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरे लिए सही क्या है मेरे लिए गलत क्या है, तो जो आत्मा को सही डायरेक्शन देने का समय है भगवान गणेश जी की कृपा से, वो ये समय नवजोत जी मुझे लगता है प्राप्त हुआ है। ये कॉम्बिनेशन इस समय पर बहुत सुंदर।
0: इसी कॉम्बिनेशन को लेकर डॉक्टर निशा आपसे भी जानना चाहूंगी। देखिए अभी बप्पा भी विराजमान है और हर कोई बप्पा की कृपा पाना चाहता है। अनंत चतुर्दशी 25 तारीख को है, उससे पहले पहले हर कोई दर्शन कर रहा है। पूरे देश में अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार हमें आ भी रही, कैसे बप्पा की आराधना में लीन है तमाम भक्त। ऐसे में कैसे ये युति, ये संयोग अति फलदायी हो जाता है सबके लिए।
2: थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को गणेश जी की महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी का ये महोत्सव पूरा पूरा दिन हम जीएनटी पे देखते हैं रोज बैठकर, और ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन होते हैं जहां पर हम जाने की सोच भी नहीं पाते। इतने सुंदर दर्शन, क्या भोग लग रहा है, कैसे सजाया जा रहा है, पूरा दिन हमें देखने को मिलता है। तो जीएनटी को तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जीएनटी हमारे हर त्योहार को पूर्ण कर रहा है। जैसे कि आपने युति की बात की, मंगल और बुध और सूर्य की युति की बात हो रही है, बुध आदित्य राजयोग की बात हो रही है, और बुध देव की उत्पत्ति बुधवार वाले दिन हुई और उन्होंने सबसे पहले अपने इष्ट गणपति जी का ध्यान किया। ऐसा कहा गया है कि गणपति जी ने उनके साथ विशेष योगदान दिया और उनके साथ खड़े रहे, इसलिए उनके इष्ट देव गणेश भगवान बनते हैं। बुध को बुद्धि का देवता कहा गया है, ज्ञान का, तर्क शक्ति का देवता कहा गया है, और भगवान गणेश को वाणी, तर्क शक्ति, बुद्धि, विवेक से ही जोड़ा भी गया है। तो बुध और सूर्य जब काल पुरुष कुंडली में छठे भाव से गोचर करते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर प्राकर्मेश भी होते हैं और षष्टेश भी होते हैं। षष्टेश यानी रोग, ऋण, शत्रु, हंता का योग बनाते हैं, और यहाँ पे पंचमेश सूर्य एक स्ट्रॉन्ग युति की स्थापना करते हैं कि यहाँ पर जो भी हम अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी बौद्धिक तर्क शक्ति के द्वारा, अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान के द्वारा हम अपने शत्रुओं का डैमेज कर सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से हटा सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, एफर्ट्स, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीति हो या आपकी जॉब हो या आपके व्यवसाय हो, बुध और सूर्य की युति छठे भाव में आपको एक अच्छा योगदान देती है आगे बढ़ने के लिए। और भगवान गणेश की स्थिति, भगवान गणेश का आशीर्वाद और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ मंगल और गुरु भी कर्क राशि में इकट्ठे होने वाले हैं, जहां पे मंगल नीच के रहेंगे और गुरु उच्च के रहेंगे, और ये परसों ही हो रहा है यानी 19 को। तो ये जो स्थितियां बनने जा रही है ये बहुत स्पेशल है। इस समय जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ बच्चा है, प्रमोशन चाहते हैं, व्यवसाय को अच्छा करना चाहते हैं, वो सब लोग गणेश जी को प्रसन्न करके अपनी सभी मनोस्थिति को मजबूत करते हुए अपनी व्यवसाय में, अपनी जॉब में, अपनी शिक्षा में, अपनी प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आगे बढ़ सकते हैं, उत्तीर्ण रह सकते हैं। एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी नवजोत जी, गणेश जी के सामने सुपारी, इलायची, लौंग चढ़ाएं, और उसके बाद वो लौंग, इलायची और सुपारी अपनी जेब में रखें, आपकी व्यवसाय, आपके जॉब में जो प्रमोशंस, जो कार्य रुके हुए हैं, और साथ ही साथ जो आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई में विघ्न आ रहे हैं, मैं हायर स्टडी के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि छठा भाव आपकी ब्लॉकेजेस को भी खोलता है, और छठा भाव कंपटीशन का भी है, तो कंपटीशन में आपको आगे ले जाता है। और गणपति बप्पा का आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पे वो हमारे साथ पृथ्वी लोक पर है, तो उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। जी
0: बिल्कुल, संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिये बप्पा के उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, बहुत से लोग हैं जो घरों में, जिनके घरों में बप्पा खुद आते हैं, बैठते हैं, विराजमान होते हैं, कई जगह पर चाहे पंडाल हो या फिर दूसरी जगह, लोग 10 दिन तक बप्पा को बिठाते हैं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से कोई 1.5 दिन का, फिर 5 दिन का, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन इस दौरान पूरे 10 दिन कहते हैं कि बप्पा सृष्टि का कल्याण करने के लिए धरती पर आते हैं, और उस समय में अगर इस तरह के शुभ योग बन रहे हों तो ये कितना शुभ समय बन जाता है।
3: ये बहुत

0: विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। समस्त विघ्नों को हरण करने वाले भगवान विनायक हैं, गणेश जी हैं, इसलिए उनका नाम है विघ्नेश्वर। समस्त विघ्नों का हरण करने वाले विघ्नों के ईश्वर हैं। और ऐसे भगवान गणेश जी का जो भी लोग स्मरण करते हैं, उनका जप करते हैं, बहुत छोटा सा मंत्र गणेश जी का है लेकिन बड़ा पावरफुल है, आप जपें गंग गणपतये नमः, ये भी नहीं आता तो श्री गणेशाय नमः, बड़ा सरल मंत्र है, इसको जपें। यदि आप ये जो 10 दिन जो गणेश जी के जो आपको मिले हैं, जिसमें विगत ये 3 दिन निकल गए, आज भी अभी तो ये दिन बाकी है, आप इसका जाप करें, आपके जीवन में चमत्कार होगा। और जो बालक विद्या, क्योंकि गणेश जी विघ्नेश्वर है और विद्या वारिधि है, तो विद्या को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गणेश जी के लिए यदि आप पूजा करते हैं तो आपको सद्बुद्धि भगवान गणेश जी प्रदान निश्चित करते हैं। और बुधादित्य योग की चर्चा चल रही है, बुधादित्य योग एक सबसे टिकाऊ योग है, सबसे ज्यादा समय तक रहता है। और जहां तक प्रायशः कभी कभी बुध अलग होता है, पर प्रायः सूर्य के साथ में ही बुध रहता है तो बुधादित्य योग होता है, फिर भी बड़े बड़े भाग्यशालियों की कुंडली में ही बुधादित्य योग देखने को पाया जाता है। मैं चर्चा कर देता हूँ, पंचम में बुधादित्य योग होने के कारण हमारे सभी ज्योतिषीगण विराजमान है हमारे GNT न्यूज पर, और भी देश के ज्योतिषीगण सुने, आज बहुत बड़ी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। पंचम में बुधादित्य योग होने का क्या महत्व है, ये महत्व होता है भगवान बृहस्पति से दृष्ट है, तो इसका महत्व ये बड़ा कि साहब जो श्लोक किसी ने बोला उसको याद कर लिया जाता था, सुन के ही याद कर, ये महत्व बुधादित्य योग का। और ये मेरे साथ ऐसा घटा, ये भगवान की कृपा है, बिना कृपा के कुछ भी संसार में संभव नहीं है। तो भगवान गणेश जी को दूर्वांकुर से जो है, यो दूर्वांकुरई यजति, जो दूर्वांकुरों से भगवान गणेश जी का यजन पूजन करता है तो उसके जीवन में बहुत मंगल होता है और भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय है, या ऐसे ही भगवान विष्णु कृष्ण राम को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तो मेरे गणेश जी को यदि आप दूर्वा दल चढ़ाते और श्री गणेशाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः और सुमुखाय नमः, दुर्मुखाय नमः, ये नाम लेकर के अगर आप चढ़ाते हो और दूर्वा का जो मुख हो वो आपकी तरफ हो, गणेश जी की तरफ, जड़ की तरफ से इसे चढ़ाएं, तो इससे आपको बड़ा ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और निश्चित रूप से गणेश जी को विशेषार्घ प्रदान किया जाता है और वो विशेषार्घ आपके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब कुछ प्रदान करता है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक के रक्षका भक्ता नाम अभयम करता त्राता भवभारणवात द्वय मातु कृपा सिंधु शाण मातुरग्रज प्रभु वरदस्त्वं परम देहि वांछितं वांछितार्थदः अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम। अगर इस तरह से ये सुपाड़ी रख के या फिर सूखा नारियल रख के जल भर के उसमें कुमकुम चंदन और चावल लगा करके अगर दूर्वा रख के हम विशेषार्घ इस तरह से देते हैं तो भगवान गणेश जी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपको निर्विघ्न बना देते हैं।
1: बिल्कुल, तमाम चर्चा जब बप्पा की होती है, उनसे कृपा पाने की होती है, तो सी बात है कि उनके अलग अलग अवतार अलग अलग रूपों की चर्चा होना भी बहुत जरूरी है। डीपी शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या संदेश वो देते हैं?
2: देखिए, मैं गोवा के पावन भूमि से ऋषि परशुराम और ऋषि अगस्त की तपो जप स्थली से गणपति पूजन से मैं पूरे देश को आपके दर्शकों को मंगलमय कामना साधुवाद भी देना चाहता हूँ। विश्वस्म बाधुम दुंडिम दंड पाणी च भैरव वंदे काशीम गोन गंगा भवानी मणिकाणिकाम। आज भूतादित्य योग के साथ गज केसरी योग भी है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है, दो प्रबल योग ज्योतिष में बना है, भूतादित्य योग गज केसरी योग। ये योग ज्योतिष में अच्छे कार्य करने के लिए व्यापार कारोबार धन यश वैभव पूजा पाठ एक अनुष्ठान जमीन जायदाद लेन देन करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और बीच में भगवती राधिका का हम राधा अष्टमी भी मनाने जा रहे हैं, इसी योग में अष्टमी तिथि भी प्राप्त हो जाएगी जो भक्ति स्वरूपा संसार में हम सबको आनंद प्रदान करती है। गणपति के पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए, गणपति का कभी विसर्जन नहीं होता है। गणपति आपके बुद्धि है, चित्त है, ध्यान है, हर व्यक्ति के जीवन में बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। स्थिर बुद्धि जब व्यक्ति के रहता है तो ही जीवन में धन धान्य की उन्नति करता है, यश कीर्ति का उन्नति करता है, समाज में अपने नाम को कमाता है, नौकरी में हो या प्रशासन में हो, नेता हो अभिनेता हो या व्यापारी हो, हर व्यक्ति के जीवन में गणपति कृपा होती है। गणेश जी के बड़े लंबे लंबे कान है, सबके सुनना चाहिए, अपने विचार के काम करना चाहिए। भगवान गणपति को लंबोदर कहा गया है। आप गणपति उत्सव में धान का खील, मखाना या पंचमेवा भगवान को भोग लगाएं, ये सर्वोपरि भगवान को प्रिय है। ध्रुवा के चर्चा मेरे छोटे भाई साहब कर रहे हैं, ध्रुवा भगवान को बड़ी प्रिय है। भगवान को प्रिय भक्ति है। अब अपने विचार को, मन को शांत चित करके सत्य को पालन करते हुए भगवान को अगर उत्सव आप मनाते हैं तो आपके जीवन में बराबर उत्सव ही उत्सव रहेगा, क्योंकि गणपति रिद्धि सिद्धि के दातार है। रिद्धि दो, सिद्धि दो, वंश में वृद्धि दो, बागवानी, हृदय में स्थान दो, चित्त में ध्यान दो, अभय वरदान दो, संपूरानी, हमारा दुख दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर, लक्ष्मी रानी, जंगों में जीत दे, कुटुंबों से प्रीत दे, सजनों से हित दे, जी भवानी, रिति सिद्धि रानी, रिति सिद्धि के दातार है। कुबेर हमारे धन के मालिक है। गणेश पंचायतन के रोज हम पूजा करते हैं। गणेश पंचायतन में भगवान विष्णु, सूर्य, गणपति, भगवती सबके आराधना किया जाता है
1: जी।
2: ये महाउत्सव मनाया जा रहा है। हम सब लोग मिलके पूरे विश्व में एक शांति के लिए भगवान गणपति से मंगल कामना करें कि सब बुद्धिमान बने, कीर्तिमान बने, धनवान बने, यथासंभव भगवान गणपति के सहस्त्र नाम का जप करें।
1: बिल्कुल शास्त्री जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार आचार्य राजमिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो ग्रहों की चाल बदली है, बहुत जरूरी ये हो जाता है, हम कह तो रहे हैं, और इस बीच देखिए बप्पा का उत्सव भी चल रहा है, हर जगह रौनक है, हर जगह भक्तिमय माहौल है, तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लेकिन ऐसे में ये जो बदली ग्रहों की चाल है, इनका राशियों पर असर कितना होगा ये भी बताते चले, पहली तीन राशियों का जिक्र करेंगे।
3: बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सत्य है कि जब कोई ग्रह अपनी दिशा को बदलता है तो मनुष्यों की दशा को, मनुष्यों के जीवन की दशा को बदल देता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमेशा आपके साथ जीएनटी पर बैठ करके, और ये सौभाग्य प्राप्त होता है, और दशकों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि हर एक परिस्थिति का ज्ञान, चाहे वो धर्म से संबंधित हो या ग्रह से संबंधित हो, आप सबके माध्यम से समाज तक पहुंचता है। इसलिए मैं हमेशा जीएनटी को मंदिर कहता हूं, मुझे लगता है मंदिर है। चलिए, तो ग्रह की क्या परिस्थिति, क्या राशियों पर, मेष राशि के लिए सबसे सुंदर प्रभाव दिख रहा है, शत्रुओं पर सफलता प्राप्त होगी, चाहे वो आपके इंटरनल शत्रु हैं, जिसको मैं भय कह सकता हूं, डर कह सकता हूं, एंजाइटी फोबिया कह सकता हूं, या फिर किसी प्रकार से कानूनी रूप से आपको कोई परेशान करने का प्रयास कर रहा है, तो कानूनी चीजों में सफलता प्राप्त होगी, व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, लेकिन गणेश जी को कुछ चढ़ाना जरूर होगा, और वो क्या है, एक हरी इलायची ले जाकर के या पांच हरी इलायची ले जाकर के कोशिश कीजिए कि आज ही रात्रि को चढ़ा दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो विसर्जन के दिन चढ़ा देना सबसे फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि वृष को लेकर के क्या रहेगा। भगवान गणेश जी इस योग के माध्यम से आपको तुरंत धन प्रदान करना चाहते हैं। अब धन कैसे मिलेगा, उसके लिए भगवान गणेश जी के शरण में जाना होगा। शरण में क्या, एक हरा फल लेकर के श्रद्धा पूर्वक जाइए और उसके साथ भगवान गणेश जी को अर्पण कीजिए, गंगड़ पते नमः मंत्र का जप कीजिए। भगवान गणेश जी आपका जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका तो मुनाफा करा ही देंगे, और अचानक जो आगे भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें अचानक आपको बड़ा सुंदर लाभ प्रदान कर देंगे, तो भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। राशि मिथुन की जब बात करते हैं तो यहां पर गणेश जी कह रहे हैं कि भाई जो योग इस टाइम बना है, अगर आपके जीवन में संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, आर्थिक परिस्थितियों में दिक्कत हो रही है, तो आइए ना मेरी शरण में, मैं आपको इन सभी भय से मुक्त करके आपको सफलता देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ मेरी शरण तक आने का प्रयास तो कीजिए। लेकिन खाली हाथ भगवान के पास आपको नहीं जाना है। क्या करेंगे, 21 दुर्वा जो 12 अंगुल लंबी हो, 3 ग्रंथियां हो, वो ले जाकर के जाइए और भगवान गणेश जी को अर्पण करके अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। प्रभु सब आपकी कृपा से हो रहा है, भगवान कृपा करेंगे, निश्चित रूप से बेहतर होगा। जी नौजो जी,
1: चलिए डॉक्टर नितिशा मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ राज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। जाहिर सी बात है कि प्रभु से कुछ मांगने जा रहे हैं तो खाली हाथ क्यों जाना। इसी के साथ साथ देखिए बप्पा का स्वागत तो हम सबने किया, बप्पा सबके घरों में पंडालों में विराजमान है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो विसर्जन की तैयारियां भी कर रहे हों। हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, इसके लिए हम क्या अर्पित कर सकते हैं बप्पा को, ये भी बताते जाइए। और अगर आप राशि के हिसाब से पहली तीन राशियों को बता देंगी तो और अच्छा होगा।
4: जी थैंक यू नवजोत जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा कि हम राशि वाइज अगर बप्पा को विदाई दें तो ये बेहद शुभ बात है। लेकिन उससे पहले मैं सभी ऑडियंस से ये बोलना चाहूंगी, सभी व्यूअर्स से, कि जो हम उनकी मूर्तियों को नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे ऐसे ही छोड़ आते हैं, कृपया ये मत करें। ये हम उनका सम्मान के साथ साथ, प्यार के साथ साथ उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा बीच में जाए तभी उनका विसर्जन करें। और अगर आप अपने घर में किसी गमले में विसर्जन करते हैं तो इससे हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा। तो गमला लीजिए, उसमें विसर्जन करिए जल भर के, और उसके ऊपर एक तुलसी का या एक बिल्व पत्र का या शमी वृक्ष छोटा सा लगा दीजिए। ये आपके घर में वास्तु दोष को भी दूर करेगा और साथ ही साथ आपके घर में जो विसर्जन हुआ है गणेश जी का, वो उनका आशीर्वाद भी रहेगा और उनका सम्मान और प्यार भी रहेगा। क्योंकि नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे हम देखते हैं कि मूर्तियां टूटी हुई पड़ी रहती हैं, कभी पैरों में आती है, और उसके साथ बहुत सारा सामान जो प्रदूषण को फैला रहा होता है वो भी होता है। तो कृपया मैं जीएनटी के दर्शकों को ये जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जीएनटी के दर्शक बहुत ज्यादा धार्मिक और प्रभु परमात्मा में लीन होने वाले और उनमें विश्वास रखने वाले, तो कम से कम वो ऐसी गलती कृपया ना करें। अब मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि जिस समय गणेश भगवान को विसर्जन करने जाए तो उनकी पोटली में लाल रंग की पोटली को तैयार करें। उसमें दूर्वा तो रहेगी, एक सुपारी रहेगा, एक जनेऊ रहेगा, लेकिन एक गुड़ साथ में जरूर रखें, या गुड़ से बने मोदक अगर रख देते हैं। देखिए मोदक के अंदर मिठास होती है, उसके ऊपरी लेयर में मिठास नहीं होती। मोदक हमें बताता है कि ज्ञान भी ऐसा ही है, ऊपर से हमें कम फीका दिख सकता है या कम मीठा दिख सकता है, लेकिन उसकी जो ज्ञान की जो मिठास है वो जितना हम अंदर जाते जाएंगे उतना वो फैलाता जाएगा। और मोदक भगवान गणेश को बेहद प्रिय है, इसलिए मोदक जरूर उनके पोटली में रखें। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के लिए जो पोटली रहेगी वो क्रीम कलर की पोटली रहेगी, उसमें सफेद बर्फी या दूध से बनी मिठाइयां रहेंगी, और साथ ही साथ अगर आप उसमें सफेद फूल रखते हैं, कुछ सिक्के रख देते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। मिथुन राशि के लिए तो मैं कहना चाहूंगी 21 दूर्वा जरूर होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर दूर्वा के साथ आप हरी इलायचियां उनके पोटली में उनके विसर्जन करते समय उसमें रख देते हैं, मोदक है, फूल है, उसमें हरी इलायचियां, तो बेहद शुभ रहेगा। गणपति बप्पा आपके घर में धन की स्थितियों को भी मजबूत करेंगे, और वैसे भी मिथुन राशि के लिए ये समय बेहद शुभ चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अभी संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर नितिशा ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए गुड न्यूज टुडे भी हमेशा ये संदेश देता है कि आप कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार मनाए, आपने हमेशा देखा होगा हर त्योहार पर हम लोग ये संदेश देते हैं कि प्लीज प्रकृति का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे पर्व होते हैं जिसके बाद सामग्री को विसर्जित किया जाता है। तो ऐसे में ये ख्याल रखिए कि हमारी नदियां कहीं दूषित प्रदूषित ना हो, इसके लिए बार बार ये कहा जाता है कि इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अब संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। ऐसे बहुत से घरों में और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की परंपरा भी है कि लोग विसर्जन नहीं करते हैं बप्पा की मूर्ति, अगर वो ले आए तो वो एक साल तक एक सांकेतिक छोटा सा विसर्जन हो जाता है वो घर पर ही, लेकिन उसको अपने घर पर विराजमान कर लेते हैं। उसके लिए क्या नियम है ये भी बताते चलिए, और उससे क्या हम घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं।
0: देखिए मैंने कई बार कहा है कि जीएनटी न्यूज हमारा एक ऐसा चैनल है, धार्मिक चैनल है, देश के लिए कल्याण करने वाला चैनल है, हर खबर आप तक बहुत ही उत्तमता से पहुंचाता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी टीम को, आपको सबको। देखिए मैं एक बड़ी कड़वी बात कहूंगा साहब, कई बार मुझे लगता है कि सभी आचार्यों से हटकर मेरी बात होती है तो लोगों को हो सकता है बुरा लगे, ना माने, हम पहले ही क्षमा चाहते हैं। गणेश जी का कभी भी विसर्जन नहीं होता है, पर क्योंकि अब ये परंपरा महाराष्ट्र से चल चुकी है और ये पूरे देश में हो चुकी है, गणेश जी ऐसे लाएं एक बार चांदी के, सोने के या फिर किसी भी धातु में, अष्ट धातु में, और उनको हमेशा अपने घर पर विराजमान रखें, तिजोरी में या जहां भी अपने घर में रखें, सुरक्षित रखें उनका विसर्जन बार बार, क्योंकि हम लोग यज्ञ अनुष्ठान बड़े बड़े कर्मकांड कराते हैं तो उनमें कभी भी हम लोग बाकी सभी देवी देवताओं का विसर्जन कराते हैं, लेकिन कभी गणेश, गौरी, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ और इनका, लक्ष्मी जी का, इनका कभी भी विसर्जन नहीं होता। ऐसा बोलते हैं यजमान से कि आपके कुल देवी देवता यहाँ रहे, फिर भी ये अगर ये परंपरा चल रही है तो इसके लिए हमारे घर के गमले हैं या हमारे घर में कोई ड्रम है उसमें हम लोग उनको विसर्जन करें, और उसमें जब वो हो जाए तो पौधों में हमारे जो वृक्षावली है, जो सघन वृक्षावली है, जिस वृक्षावली के लिए आप जो जल अर्पित करते हैं तो आपके द्वारा पल्लवित होती है और वही वृक्षावली आपको छाया देती है, फल देती है, बहुत कुछ प्रदान करती है। मानवता से भी श्रेष्ठ ये वृक्ष एतावत् जन्म साफल्यम प्राणिनाम हे देशु, ये संसार का सभी फल फलदार वृक्ष आदि कल्याण करते हैं। तो इस तरह सावधानी से करें और कहीं ज्यादा नदियों में जैसे अब गंगा जी या यमुना जी में अगर इतने लोग गणेश जी रखते हैं और सभी विसर्जन करें तो मैंने सुना कि हमारे दिल्ली में अब रोक लगी हुई है, तो इस तरह से बहुत सावधानी रखें और कहीं गलत जगह विसर्जन न करें, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह कर दें जिसका हम लोग पुण्य कमाते हैं, तो पुण्य की जगह
1: वही बात है ना, क्योंकि हम बहुत पूरी निष्ठा आस्था के साथ प्रभु को रखते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी प्रकृति का भी उतना ही ख्याल रखें, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जहां पर भी आप विसर्जन करें ख्याल रखें कि सब इको फ्रेंडली हो और कोई भी नदी नाला जहां भी आप जा रहे हैं वो दूषित ना हो पाए। डीपी शास्त्री जी एक बार आपके पास आना चाहूंगी, क्या विधान है अगर कोई घर पर ही बप्पा को रखना चाहे तो?
2: अरे भगवान गणपति आपके मन में है, गणपति आपके धन के कुबेर के रक्षक के रूप में है, वो कहीं नहीं जाते, उस प्रतिमा को विग्रह को अपने घर के छतों पे या बालकोनी में बड़ा सा प्लास्टिक का, तांबे का हो, स्टील का हो या कास्ता का हो, कोई बर्तन शुद्ध बर्तन नया बर्तन हो उसमें जल इत्यादि भर के मूर्ति कोसी में छोड़ दें, 18-20-24 घंटे में वो बिल्कुल मूर्ति शांत हो जाएगी। उस जल को जो है अपने पौधे में घर के नॉर्थ वेस्ट में साउथ वेस्ट में गमला में रख दीजिए, वो आपके लिए बराबर एक आनंद मूर्ति के रूप में औषधि प्रदान करता रहेगा। हम गणपति से बार बार यही कामना करते हैं, हे गणेश जी महाराज आप देवताओं के अग्रणी हैं, तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगुस्मरानी, जो हर कार्य में आगे है, नक्षत्र बल में, तारा बल में, योग बल में, सब बल में गणपति को सर्वोपरि माना गया है, उनको हम कौन विसर्जन करने वाले हैं। गणपति उत्तर भारत में रहते हैं, दक्षिण भारत में अपने भैया के घर गए, कार्तिक के घर में 10 दिन उत्सव मनाया गया, ये दक्षिण भारत के लोग मनाते थे कर्नाटका इत्यादि, उसके बाद हम उत्तर भारत में मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। खूब बढ़िया से भगवान को पर्व मनाइए, पूजा कीजिए, बल्कि विसर्जन के शब्द को आप प्रयोग ना करें, आपके घर में गणेश जी रहेंगे। हम
1: बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि हम घर पर भी बप्पा को रख सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी रह गया है, राज मिश्रा जी और नितिशा जी मौजूद है, उनसे ब्रेक के बाद लूंगी कि इससे कैसे हम घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी राशियों की बात इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: संकट हरेंगे सूर्य बुध देंगे शौर्य, इसी को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। राशि परिवर्तन भी हुआ है और साथ ही साथ देखिए बप्पा के इस उत्सव को हम मना रहे हैं। चर्चा लगातार हमारी जारी है, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले राज मिश्रा जी आपको अगली 3 राशियां बतानी है। हमने मेष वृषभ मिथुन राशि की बात की थी, कर्क सिंह कन्या, लेकिन उससे पहले छोटा सा जवाब, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी राशियां हैं, छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहूंगी। अगर हम घर पर रखना चाहें 10 दिन के बाद बप्पा को, तो उसका विधान पहली बात क्या है, दूसरा कैसे इससे वास्तु दोष घर का ठीक होता है।
6: देखिए एक बात ध्यान रखिएगा नवजोत जी, श्रीराम चरित मानस के अंतर्गत जब भगवान का जन्म होता है तो लिखा है नखत गेद नखत वेद गयवार तिथि सकल भये अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हो जाता है यदि परमात्मा आपके जीवन में या आपके घर में होते हैं तब। तो अगर भगवान गणपति आपके घर में विराजमान है तो फिर दशाएं तो अपने आप अनुकूल हो जाएंगी ना, वास्तु अपने आप अनुकूल हो जाएगा। शास्त्र कहता है ग्रह किसके अधीन है, ग्रह परमात्मा के अधीन है, और अगर भगवान गणेश जी जो कि सदैव सारे विघ्नों को हरण करने वाले देवता हैं और वह आपके घर में आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो घर का कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती है, चाहे वो वास्तु हो चाहे वो नजर हो चाहे किसी भी परिवार का कोई भी ग्रह प्रतिकूल हो, ये सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। भाई अगर माता जानकी को भगवान राम से विवाह करना है तो गणेश जी से प्रार्थना करती है, और उसके साथ अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को श्रीरामचरितमानस लिखना है तो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहला शब्द लिखते हैं वर्णानाम संघानाम रसानाम चंद्र सामती मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको, जो समस्त मंगल को प्रदान करने वाले हैं, जो देवताओं के भी अध्यक्ष हैं, तो अगर अध्यक्ष आपके घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगता है और कोई परेशान करेगा? आप विचार कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर आपके घर के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या ऐसा संभव है कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति आकर के आपको परेशान करे? तो इसलिए गणेश जी की स्थापना से निश्चित रूप से परिस्थितियां बेहतर होती है। ये बात कर लेते हैं कर्क को लेकर, बुद्धादित्य योग गणेश जी के जन्म उत्सव में बना, वो ये योग आपको भौतिक सुख प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपके जीवन में अगर आप ये सोच रहे थे कि अब तक लाइफ में कुछ नहीं मिल पाया, अभी तक मेरी लाइफ स्ट्रगलिंग बनी हुई है, तो गणेश जी उस स्ट्रगल से बाहर निकलने की कृपा आपको प्रदान करने जा रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अगर बदलाव चाहते थे तो भगवान गणेश जी वो आशीर्वाद देने जा रहे हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो जाए, लेकिन आपको क्या करना होगा, पंचामृत बनाइए, दूध दही शहद गंगा जल घी लीजिए और ले जाकर के गणेश जी को अर्पण कीजिए और उनसे आशीर्वाद लेकर के थोड़ा सा उसको खुद भी पान कीजिए, आशीर्वाद के रूप में लीजिए, भगवान कृपा करेंगे चेंज हो जाएगा। राशि सिंह की अगर बात कर लेते हैं, भगवान गणेश जी कह रहे हैं कि भाई इस समय पर मेरी आराधना कर लो, मैं आपके आर्थिक परिस्थिति को सुंदर बना दूंगा, ये धन को लेकर के, कर्जे को लेकर के जो चिंता से आप ग्रसित थे वो आपके जीवन में मैं बदल दूंगा, आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा बदलाव ले आऊंगा, वो आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा। और वो क्या करना है, पीला सिंदूर ले जाकर के भगवान गणेश जी को श्रद्धा से अर्पण कर देना है और थोड़ा उसको वापस ले आइए, ये सिंदूर भगवान गणपति का आशीर्वाद होगा जो आपके इन विघ्नों को दूर कर देगा जो आपके आर्थिक मामलों को लेकर के आ रहे हैं या कारोबार को लेकर के आ रहे हैं। अगर मैं कन्या राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, भगवान गणेश कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, इस समय पर श्रद्धा पूर्वक आ जा, निर्मल भावना से आ जा, मैं निर्णय लेने की क्षमता जो है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है जिसके अंदर बार बार प्रॉब्लम आती है, मैं उसको बेहतर कर दूंगा, मैं एंजाइटी फोबिया इत्यादि से बाहर निकाल दूंगा, व्यापार के अंदर जो बड़े बड़े कार्य में रुकावट उत्पन्न हो रहा है मैं उस रुकावट को दूर कर दूंगा। लेकिन कैसे आना होगा, जो व्यापार में बड़े रुकावट आ रहे हैं मैं उसको दूर कर दूंगा, लेकिन कैसे आना होगा, निर्मल मन से मेरे सामने आकर के मेरे नाम को 108 बार उच्चारित कर ले। तो गणेश जी के पास जाइए, ओम गंगणपते नमः मंत्र 108 बार बैठकर स्मरण कर लीजिए। मैं सत्य कहता हूँ गणेश जी, आपके जीवन को बदल देगी। जी नजर।
0: और जब हम इन्हीं तीन राशियों की बात करते हैं, जब आप विसर्जन के समय जा रहे हैं, तो नितिशा जी क्या उपाय आप इन तीनों के लिए बताएंगी संक्षेप में?
7: जी नवजोत जी, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारे घर के मंदिर में तीन गणेश कभी नहीं होने चाहिए, तो एक लक्ष्मी गणेश जो हम दिवाली पे लाते हैं उनकी तो हम पूजा करते ही हैं, एक और आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, अगर आपका उनके साथ लगाव है, प्रेम हो चुका है, जुड़ चुके हैं आपके साथ, तो रखिए, लेकिन तीन गणेश किसी भी घर के मंदिर में नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद कर्क राशि की बात कर लेते हैं कि जब गणेश जी का विसर्जन करने जाएं तो उसके साथ, क्योंकि चंद्रमा की राशि और चंद्रमा की राशि की चीजों से गणेश जी को बहुत ज्यादा स्नेह नहीं है, इसलिए जो भी आप बना रहे हैं, मोदक है या लड्डू है या खीर है, उसमें अगर आप केसर डाल देते हैं, क्योंकि कर्क राशि के भाग्य के देवता बृहस्पति बन जाते हैं, तो अगर केसर डाल के मिठाई का प्रयोग करते हैं तो ये गणेश जी के विसर्जन में रखी जा सकती है। यानी कर्क राशि वाले इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपने मोदक केसर युक्त लेने हैं, और साथ ही साथ अगर आपने खीर बनानी है तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल के अपने भाग्य को उदय कर देना है। कर्क राशि के बाद बात कर लेते हैं हमारी सिंह राशि की। सिंह राशि सिंदूर गणेश जी को बेहद प्रिय है, इसलिए विसर्जन के समय उन्हें सिंदूर पूरी तरह से लगाना, उनको प्रेम से पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएं, उनको सजाएं, उसके बाद विसर्जन करें, और साथ में साथ गुड़ की मिठाई बना के जरूर रखें।
0: बिल्कुल।
7: कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले इलायची और दूर्वा घास और साथ ही साथ हरे मूंग की दाल, अगर बच्चे हैं तो हरे मूंग की दाल जरूर रखें, इससे आपकी बुद्धि विवेक भी बढ़ेगी और शिक्षा में प्रतियोगिता में आपको सफलता भी मिलेगी। जी
0: बिल्कुल। अब जरा तुला वृश्चिक धनु राशि जल्दी से राज मिश्रा जी संक्षेप में बताइएगा।
6: जी बिल्कुल। अगर भगवान गणेश कारोबार में आपके आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, लाभ देने के लिए तैयार हैं, कानूनी मामलों में भी कृपा करने के लिए तैयार हैं, हरा वस्त्र भगवान गणेश जी को श्रद्धा से जाइए अर्पण कर दीजिए और अपने जीवन के अंदर चमत्कार देख लीजिए। अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, जितने भी कार्य आपके अटके हुए हैं और जो कार्य नहीं बढ़ रहा है, या प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी में प्रमोशन इत्यादि नहीं हो रहा, फाइनेंशियली परेशान है, तो भगवान गणेश जी सभी विघ्नों के हरण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन कैसे, पीले वस्त्र पर 5 हल्दी की गांठ और 5 फूल ले जाकर के भगवान गणेश जी को अर्पण कर दीजिए, ये सारी समस्याओं से आप निजात देखेंगे और पूरे वर्ष चमत्कार होता रहेगा आपके लाइफ में, ये मेरा भगवान गणपति पर भरोसा और विश्वास है। अगर मैं धनु राशि की बात कर लेता हूं, प्रोफेशनल लाइफ में चेंज दिलाने के लिए गणपति बिल्कुल तैयार है, परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, अवसर प्रदान करने के लिए नई तैयार है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ प्रमोशन इत्यादि के लिए भी भगवान गणेश जी आशीर्वाद देने को तैयार है। क्या करेंगे जिससे ये सारे आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाए, 5 फल हरे लीजिए और गणेश जी को अर्पण कीजिए और 2 प्रसाद के रूप में वापस लेकर के आइए, भगवान का प्रसाद समझ करके पूरे परिवार को ग्रहण कराइए, खुद भी ग्रहण कीजिए और फिर चमत्कार देखिए, भगवान गणेश जी तुरंत आपके शरीर और आपके मस्तिष्क में परिवर्तन देंगे और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जी नौ जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बुधादित्य योग कैसे आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है, आपकी राशि के हिसाब से हम राज मिश्रा जी से जान रहे हैं, लेकिन नितिशा जी से हम साथ ही साथ ये भी जानते जाएंगे कि बप्पा का स्वागत तो हमने किया, लेकिन विसर्जन के समय हम ऐसा क्या बप्पा को अर्पित करें कि हमारी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाए। नितिशा जी आपके पास लौटूंगी इन तीनों तुला वृश्चिक धनु राशि और बाकी राशियों के बारे में, लेकिन एक बार जरा संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस दिन से बप्पा हमारे घर पे विराजमान हुए हैं हम उस दिन से इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं।
8: जी
0: अब एक नई बहस शुरू हो गई है, तमाम विद्वान अपनी अपनी तरफ से बता रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग ये कहते हैं कि विसर्जन नहीं होना चाहिए, जबकि अगर शास्त्रों में वाकई ऐसा लिखा है तो फिर परंपराएं ऐसी क्यों बनी है?
8: असल में क्या है कि एक चीज को किसी ने चला दिया ना तो वो चल जाती है, यही कलयुग का प्रभाव है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। असल में क्या है कि भगवान शिव का भी कई बार पार्थिव पूजन करते हैं मिट्टी का बनाकर, तो उनका भी विसर्जन करने का विधान है, लेकिन यही लोगों ने धारणा बना ली तो गणेश जी का, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं उसमें सबका विसर्जन लास्ट में कराते हैं आखिरी दिन यज्ञ आदि भोग भंडारा पड़ने के बाद, तो गणेश जी को और रिद्धि सिद्धि और इन सबको रह करके, कुल देवी देवताओं को रह करके बाकी आवाय देवताओं का विसर्जन कराते, पर गणेश जी का नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, अब क्योंकि ये प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा कलऊ चंडी विनायक हूं, कलयुग में चंडी माँ दुर्गा जी की और गणेश जी की पूजा बहुत होगी, आशीर्वाद मिला हुआ है और दोनों ही बड़ा दिव्य, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। तो यहां पर इसलिए क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो अब लोग ये, मैं तो ये कहना चाहता हूं, सबसे प्रार्थना करता हूं कि किसी भी धातु के गणेश जी आप निर्धारित करें, चाहे सोने के, चाहे चांदी के, चाहे पीतल के या अष्टधातु के बनवाएं दिव्य, और उनका 10 दिन तक गणेश जी को पूजन करें, या मैं तो कहूंगा हमेशा ही पूजन चले गणेश जी का, तो नित्य पूजन हो, बिना गणेश जी की पूजन के कोई पूजन है ही नहीं, स्वीकार नहीं है। तो इसलिए उन गणेश जी को रखना चाहते हो 10 दिन रखें आप, उनका पूजन पाजन करें, उसके बाद जहां तिजोरी वगैरह जहां रखते हो धन, तो उनको धनाध्यक्ष भगवान को बना करके वहीं विराजमान करिए और उनको अपना आत्म निवेदन करिए। निश्चित गणेश जी साल भर तक या जीवन भर आपके लिए रिद्धि सिद्धि शुद्धि बुद्धि सब कुछ आपको प्रदान करें, आपके जीवन में लहर आएगी।
0: ये एक ये बिल्कुल उसी पर चर्चा दीपी शास्त्री जी आपकी भी एक राय लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप, क्योंकि विसर्जन हो रहा है, विदाई हो रही है बप्पा की, तो क्या ऐसा अर्पित करें? नितिशा जी तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए एक छोटा छोटा सा उपाय जल्दी से बता दीजिए।
7: जी बिल्कुल, तुला राशि वाले इस बात का बेहद ध्यान रखें, आपकी राशि सुगंध को लेके आई है तो गणेश जी के साथ गुलाब के फूल और इत्र रखना बिल्कुल भी ना भूले, और शुक्र महाराज गणेश बप्पा जी के साथ आपको आपकी राशि के लिए आशीर्वाद प्रदान कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जब गणेश भगवान का विसर्जन करने जाए तो पांच फल लाल रंग के 5 फल और 1 गुड़ से बनी मिठाई साथ में जरूर रखें और उसके उपरांत ही विसर्जन करें, गणेश भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हम धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले पांच रंग के अलग अलग फल और साथ ही साथ 5 हल्दी की गांठे और 1 बेसन के 5 लड्डू अगर रख के गणेश भगवान का विसर्जन करते हैं तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
0: बिल्कुल, चलिए जल्दी से आखिरी 3 राशियां जो बुधादित्य योग बन रहा है, ये आपकी राशि के लिए कौन सी बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रहा है, एक बार राज मिश्रा जी से जान लेते हैं।
6: तो नवजोत जी जो गुड न्यूज मिलने वाली है, प्रतियोगिता जो लोग कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में प्रयास कर, क्षमा चाहूंगा, मकर राशि के लिए जो आप कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे कर रही थी और जो दूसरे शहर में जाने का या विदेश में कोई काम रुका हुआ था उस पर भगवान गणपति आपको गुड न्यूज देने के लिए तैयार है। अब क्या करना होगा जिससे ये गुड न्यूज एक्चुअल में आपको प्राप्त हो जाए, तो भगवान गणपति के पास 5 अलग अलग प्रकार के फल लेकर के जाना होगा, गणपति जी को चढ़ाना होगा और वही भगवान गणेश जी के सुंदर नाम का 108 बार उच्चारण करना होगा। मैं सत्य कहता हूं, बदलाव जल्दी दिखेगा और भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी। बात कर लेते हैं राशि कुंभ को लेकर, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मैं बार बार कहता हूं। तो भगवान गणपति आपके व्यापार के अंदर से जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे बचाने के लिए तैयार है। अगर बार बार आपको व्यापार में नुकसान भी हो रहा है ना, तो गणपति उससे बचाएंगे और आपको वृद्धि प्रदान करेंगे। बस क्या करना है, कहीं निवेश नहीं करना है और किसी भी डिसीजन को लेने में जल्दबाजी नहीं करना है। डिसीजन लेने से पहले ये गुरु मंत्र मान लीजिए, गणेश जी के नाम का 11 बार उच्चारण कीजिए। साल भर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि 11 बार गणेश जी का नाम उच्चारण करूंगा तभी करूंगा, गणपति कृपा करेंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर मैं मीन राशि को लेकर के बात करता हूं, भगवान गणपति आपके पुराने जितने विवाद हैं, जितनी प्रॉब्लम है उसको इस बुद्धादित्य योग के माध्यम से सुलझाने के लिए, बेहतर करने के लिए तैयार हैं। वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो तालमेल नहीं हो रहा, जो रिलेशनशिप आपस में प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, उसको सुलझाने के लिए तैयार है। अगर पॉसिबल है तो क्या कर लीजिएगा, श्री रामचरित मानस के बालकांड दोहा नंबर 234 से 236 श्रद्धा पूर्वक एक बार पढ़ करके गणेश जी को सुना दीजिएगा। वो अगर पॉसिबल नहीं है तो इलायची करीब लीजिए 250 ग्राम, गणेश जी को चढ़ाइए, प्रसाद के रूप में घर ले आइए, रोज उसको चाय में या खाने में डाल करके या वैसे रोज सेवन कीजिए, गणपति हर दिन आप पर कृपा प्रदान कर देंगे। जी नौजवान,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बप्पा की विदाई के समय इन तीनों राशि वालों को क्या उपाय करना है, क्या अर्पित करना है, नितिशा जी जल्दी से 30 सेकंड में।
7: जी जी, मकर राशि के लिए बहुत जरूरी रहेगा, काले तिल के लड्डू बना करके अगर वो विसर्जन के समय उनकी पोटली में रख देते हैं, और अगर पोटली का रंग पर्पल कलर का रुमाल हो तो बेहद शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले तांबूल यानी मीठा पान, लौंग, इलायची वाला पान अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और मीन राशि वाले 5 रंग के पीले फूल और 5 रंग की पीली मिठाइयां अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। लेकिन सभी राशियों के लिए बोलूंगी, गणेश अथर्वशीष का पाठ करने के बाद, गणेश जी की आरती करने के बाद तब उनका विसर्जन करें, और विसर्जन करने से पहले 3 बार उनको डुबकी लगाएं कि हे भगवान, हे गणेश भगवान, अगले बरस फिर आना और अगले बरस तक मेरे घर में सुख शांति का, सुख समृद्धि का, शुभ लाभ का आशीर्वाद देके जाइए और अगले बरस फिर आइए, फिर आप उसके बाद उनका विसर्जन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
7: लेकिन नवजोत जी विसर्जन नहीं करना चाहिए, ये बात शास्त्रों में बिल्कुल सही लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1800 का दशक चल रहा था, 1890 के बाद, उस समय उन्होंने पंडालों का वो किया कि गणेश जो महोत्सव है वो पंडालों में किया जाए, और जो पंडालों में जो गणेश जी होते हैं उनका विसर्जन होता है। हमारे घर में प्रतीकात्मक रूप में गणेश जी की पूजा होती है, जो हमारी पीतल की, तांबे की, सोने की, चांदी की जो मूर्ति हुआ करती थी, हम उनकी पूजा करते थे और उनका कभी विसर्जन नहीं होता था, लेकिन जो मिट्टी की मूर्ति ला रहे हैं उनका विसर्जन जरूरी होता है।
0: बिल्कुल, इसी पर डीपी शास्त्री जी का आपका रिएक्शन चाहूंगी, जब शास्त्रों में है नहीं तो फिर हम, हालांकि नितिशा जी ने एक्सप्लेन किया, लेकिन आपकी राय इसको लेकर क्या है? ऑडियो नहीं आ रहा है शास्त्री जी, ऑडियो आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
9: कमल के फूल गणपति को चढ़ाएं, कमल के फूल, हल्दी, पीला चावल, पीले पोटली में कुछ दक्षिणा रखे, पंडित जी से प्रतिष्ठा करा के अपने कारोबार में, घर बार में, तिजोरी में रखें और ब्राह्मण को यथोचित दक्षिणा दान करें, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। गणपति सदैव हर काल में, हर युग में आपके साथ हैं। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निक्रमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्त न जायते। पढ़ाई करना हो, युद्ध में जाना हो, व्यापार करना हो, शांति चाहिए, सब जय गणपते नमः, लंबोदराय नमः, एक चंदा हरि ओम भालचंद्राय नमः।
0: मंत्रों से बप्पा तमाम मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब इसी को लेकर एक आखिरी 10 सेकंड का जवाब राज मिश्रा से भी ले लेते हैं। विसर्जन को लेकर चर्चाएं बहुत होती है।
6: नौजवान जी, बिल्कुल करना चाहिए, और शास्त्र भी शब्द को कल आपने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया था, जब आप कल का कार्यक्रम था तो आपने वो महाभारत का जो बताया था अपने कार्यक्रम में, इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जीएनटी पर बैठना मतलब जो एंकर भी हैं वो पंडित और आचार्य और संत ही हैं जिनके साथ हमें चर्चा करना पड़ता है। तो कल आपने जो महाभारत का उदाहरण
0: दिया, आपने कह दिया कि करना पड़ेगा, ये नई बहस छिड़ गई है। यहाँ संजीव जी भी कह रहे हैं कि नहीं होता, नितिशा जी भी मान रही हैं।
6: जो मूर्ति पांडाल में है, नितिशा जी भी मानती हैं, संजीव जी मानेंगे कि मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करना ही चाहिए।
0: ठीक है, ठीक है, चलिए, वक्त अभी इतना ही है राजी, वक्त अभी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जयंती पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर में पधारे गजानन का वीडियो बनाइए।

0: रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के धुले से आई है, जिसे जगराव गोविंद भट्ट ने हमें भेजा है। यहाँ कई स्वरूपों में बप्पा विराजे और बप्पा के आसन से लेकर पूरी सजावट बेहद आकर्षक लग रही है। खास बात यह है कि फूलों के साथ साथ बप्पा को सजाने के लिए मोर पंख का इस्तेमाल किया गया है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: इस दुर्गा पूजा कोलकाता के मशहूर स्ट्रीट पार्क को नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यहां पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। अलन पार्क में भव्य उत्सव की तैयारी है। दुर्गा पूजा के इस महा आयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। देश के जाने माने आर्टिस्ट अपनी कला का हुनर दिखाएंगे।
6: क्रिसमस के लिए मशहूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का एलन पार्क पहली बार दुर्गा पूजा के लिए सवर रहा है। यहां भव्य दुर्गा पूजा की तैयारियों का शंखनाद हो गया है। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालया के अगले दिन एलन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। इस भव्य महोत्सव में बंगाल के लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आस्था भक्ति के रंग बिखेरेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
7: लाइटिंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के लिए बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों को, दुनिया में रहने वाले बंगाली और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं, बंगाल के रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं को ये पूजा समर्पित है। ये उनका पूजा है, आराम से 10 दिन आए पूजा देखें और ये कह के जाएं कि अपन पूजा, ये हमारा पूजा।
6: आयोजकों का दावा है कि एलन पार्क में इस दुर्गा पूजा बंगाली सनातनी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और इस महायोजन को लेकर यहाँ के लोगों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: लोगों को खबरें तो
1: आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
2: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, और चाय पर चर्चा का शुभारंभ प्रथम पूज्य और आपको लिए चलेंगे मुंबई, जहां पर परेल के राजा के दरबार की शोभा दिखती ही बन रही है। साथ ही साथ आपको ऐसे गणपति के दर्शन भी करवाएंगे जिन्होंने जीवित पौधों से आकार लिया है।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, बात हम मौसम की भी करेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर जिसकी करवट ने लोगों को हैरान कर दिया है उसकी खबर बताना जरूरी है। देखिए, मौसम ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर सितंबर में बर्फीला सरप्राइज दिया है, तो क्या इस बार जल्द सर्दियां देंगी दस्तक, इसे भी समझने की करेंगे कोशिश।
2: वैसे मैं चाहती हूँ कि सर्दियां जल्दी आ जाए,
3: थोड़ा सा
2: निकल जाए। नमस्कार, मैं शगुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। ओली लिए चलेंगे, जहां भारत और अमेरिका के सैनिकों का साझा युद्धाभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास में रोबोटिक डॉग्स चर्चा का विषय बने हैं, तो क्यों इस युद्धाभ्यास पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं, दिखाएंगे आपको।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, आगे बात उस एआई की भी करेंगे जिसके आउट ऑफ कंट्रोल होने के खतरे के बीच कुछ और भी चौंकाने वाली जो बातें हैं वो सामने आई हैं, तो कैसे अब इंसानों तक को नजरअंदाज करने लगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न, सेवा संकल्प के तहत वडनगर में गृहमंत्री ने 250 बाइक को दिखाई हरी झंडी, वाराणसी से रक्षा मंत्री और सीएम ने 500 बाइक की रवाना। पीएम के जन्मदिन पर मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में चढ़ाए गए 176 किलो लड्डू, विशेष हवन पूजन, उज्जैन में आज शाम 25 लाख दीप से होगा दीपोत्सव। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड पर देव छठ के लखी मेले में आस्था का उमड़ा सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में किया स्नान, सुख समृद्धि की मांगी कामना। भारत में चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे, देश में 52 हुई चीतों की तादाद, कूनो नेशनल पार्क में बढ़कर 39 हुई संख्या, गांधी सागर में भी 3 चीते मौजूद। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, तापमान में गिरावट। चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं देवाधिदेव गणपति की खबर से, क्योंकि देखिए देश भर में अभी गणपति उत्सव की धूम है। मुंबई के सबसे बड़े गणपति लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। गणेश मंडल परेल का राजा का इस बार वारकरी विठल रूप देखने को मिल रहा है, इनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है।
4: बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में ग्रीन गणपति की चर्चा हो रही है। इस इको फ्रेंडली गणेश भगवान को बनाने में 21,000 पौधों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे खास बात है गणपति का ये रूप लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।
2: बहुचर्चित गणेश मंडल परेल का राजा इस बार अपनी खास थीम को लेकर बहुत चर्चा में, और इस बार यहाँ बप्पा का वारकरी विठल रूप देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि मंडल ने यहाँ पंढरपुर की हूबहू झलक पेश की है। पूरा सेट इस तरीके से तैयार किया गया कि श्रद्धालुओं को पंढरपुर जैसा माहौल महसूस हो रहा है, और यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग इस खास सेट के सामने सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं।
4: और देखिए परेल का राजा गणेश मंडल इस साल अपनी स्थापना के 80 साल पूरे कर रहा है और इस खास मौके पर थीम को भी बेहद खास तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि बप्पा की मूर्ति बनाने में पंढरपुर के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी का पानी इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, पंढरपुर की थीम के सामने बनाए गए तालाब में चंद्रभागा नदी का पानी लाया गया, यानी मुंबई में विराजे बप्पा के दरबार में इस बार श्रद्धालुओं को पंढरपुर की आस्था और वारकरी परंपरा की झलक भी देखने को मिल रही है।
6: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में। सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहां पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहां पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। अब तक मुझे लगता है कि तीसरा दिन आज चल रहा है गणेश उत्सव का और 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु विट्ठल के इस अवतार का दर्शन करके जा चुके हैं। और भी बहुत ज़्यादा खासियत है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि विट्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं और जो भी पाठ पूजा अभिषेक करानी होती है करते हैं। क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से 80 साल इस पंडाल ने, इस मंडल ने अपने पूरे कर लिए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे और आखिर विट्ठल का अवतार ही क्यों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मंडल की तरफ से पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणपति बप्पा
7: मौर्य,
6: मंगल मूर्ति
7: मौर्य,
6: बहुत बधाई। और वाकई में इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं बप्पा विट्ठल के अवतार में, थोड़ा सा आप बताएं उनकी और खासियत, कौन है मूर्तिकार और आखिर क्यों विट्ठल का अवतार?
7: हमारे जो इस साल जो मंडल का है वो 80वां साल चल रहा है और जो बापा आज विराजमान आप देख रहे हैं हमारे इसमें, वो साक्षात अपना वारकरी संप्रदाय में है, जो हम लोग ने साक्षात्कार मूर्ति उभारी है निखिल खातू उनके, उन्होंने जो मूर्ति उभारी है उनका आज आप देख रहे हैं जो लाइव क्या चल रहा है आज इसके लिए।
6: अच्छा, मैंने सुना है कि विट्ठल जी का मंदिर भी पास में ही आपने बनाया हुआ है, तो क्या क्या कह रहे हैं?
8: प्रति पंढरपुर, जहाँ पे पंढरपुर बनाता है वहाँ पे पंढरपुर है जो महाराष्ट्र में, वो देवत है, वो यहाँ पे हम लोग साकार किए इस टाइम।
6: तो जैसा कि इन्होंने बताया, 2 दिन भी कम पड़ेंगे, साउथ मुंबई में विराजमान हुए सभी उन बड़े बड़े गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए, लेकिन आप हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, फिर भी टॉप 10 गणपतियों का दर्शन कर सकते हैं जिसमें से एक परेल के राजा का भी नाम आता है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे।
4: देखिए, गणपति एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग थीम पर बने पंडालों में बप्पा के अनोखे स्वरूप जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और हर स्वरूप अपने साथ कोई ना कोई खास संदेश लेकर आया है। आजकल गणपति की प्रतिमा हो या पंडाल, इनके जरिए पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता का संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में ऐसा ही अनोखा गणपति देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 21,000 जीवित पौधों से इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमा तैयार की गई है जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है।
3: चलिए अब आपको नागपुर भी लिए चलते हैं। नागपुर में गणेश उत्सव की भव्य धूम यहां पर नजर आ रही है। शहर के मशहूर दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए कुछ ऐसा तैयार किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहां पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर के हूबहू प्रतिकृति बनाई गई है, यानी कि नागपुर में ही श्रद्धालुओं को आलंदी तीर्थ की झलक मिल रही है।
4: और देखिए, नागपुर के महल इलाके में बने इस पंडाल में भक्ति और कला का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। कारीगरों ने महीनों की मेहनत के बाद आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर को यहां साकार किया। हर छोटी बड़ी बारीकी का ख्याल रखा गया है। दक्षिणा मूर्ति मंडल की ये पहल श्रद्धालुओं को भक्ति से जोड़ने के साथ साथ महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा की झलक भी दे रही है।
2: तो गणेश उत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं।
4: बिल्कुल, देखिए 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ विशेष तौर पर सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है।

0: और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इन दिनों भक्ति का एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसने श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींच लिया है। एक ही पंडाल में मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन हो रहे हैं।
1: जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ गणपति बप्पा का भव्य दरबार तो दूसरी तरफ साईं बाबा के जीवन और संदेशों को दर्शाती मनमोहक झांकियां। चंद्रपुर का ये पंडाल श्रद्धा और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम बन गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: गणपति बाप्पा के जयकारे, साईं बाबा के भजनों की गूंज और दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। ये नजारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां एक ही पंडाल में भक्तों को लालबाग के राजा और साईं बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त बाबा के दर्शन के साथ साथ साईं बाबा का भी दर्शन कर रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु दोनों भगवान के दरबार में माथा टेक रहे हैं।
1: इस वक्त हम इसी मंडल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस साईं बाबा का जो है पूरा मंदिर यहाँ पे साकार आ गया है। शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे। और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है। बेहद यहाँ से आगे जाने के बाद में हमें लालबाग के राजा के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर में अब लालबाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं, क्योंकि इस मंडल में लालबाग के राजा के रूप में यहाँ पर बाप्पा पधारे हैं।
0: चंद्रपुर के सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने इस बार मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। आकर्षक सजावट और भव्य दरबार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस गणपति पंडाल की खासियत भव्य स्वरूप में विराजमान बाप्पा तो हैं ही, यहाँ शिरडी के साईं बाबा की भी अद्भुत झांकियां सजाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं को शिरडी की याद दिला रहा है। साथ ही द्वारका माई की झांकी भी सजाई गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन को उमड़ रहे हैं।
2: अच्छा लगा शिरडी के साईं बाबा के दर्शन, ये लालबाग का राजा, हनुमान जी साईं बाबा जी का दर्शन, तो सेम वैसा ही डेकोरेशन वहाँ पे मंडल वाले ने सबने किया है मिलके।
0: सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और मानवता का संदेश देती ये झांकियाँ सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी दे रही हैं।
3: पिछले कुछ सालों से हम कुछ अच्छे अच्छे दिखावे सादर कर रहे हैं चंद्रपुर की जनता के लिए, और इसके पहले भी हमने केदारनाथ मंदिर, रायगढ़, पंढरपुर, साढ़े तीन शक्तिपीठ, और इस बार हम शिरडी साईं बाबा लेकर।
0: खास बात यह है कि सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल पिछले 46 साल से चंद्रपुर में अलग अलग धार्मिक स्थलों की भव्य झांकियां साकार करता आ रहा है। इस बार की झांकियों और सजावट को अंतिम रूप देने में कार्यकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक दिन रात मेहनत की। मुंबई जाकर लालबाग के राजा के दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्तों को चंद्रपुर में ही वही भव्य अनुभव मिल रहा है, तो साईं बाबा की झांकियां उन्हें शिरडी की आध्यात्मिक अनुभूति करा रही हैं। चंद्रपुर का ये पंडाल बता रहा है कि भक्ति की राह अलग हो सकती है, लेकिन आस्था का भाव एक ही होता है। चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर आप हमें भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए, हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो वीडियोस भेज भी रहे हैं। देहरादून से निधि नेगी ने हमें गणपति पूजन का वीडियो भेजा है, जिसमें निधि ने अपने हाथों से बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई है। इको फ्रेंडली इस मूर्ति में जब आस्था के रंग भर दिए गए तो नजारा बेहद ही शानदार नजर आया, जिसमें गजराज के साथ साथ उनकी सवारी चूहा भी नजर आया।
5: वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीधी से आई है, जिसे कृष्ण नामदेव ने हमें भेजा है, और वीडियो में बप्पा की दो प्रतिमाएं नजर आ रही हैं। फूलों से सजी बप्पा की ये मूर्ति बेहद आकर्षक लग रही है।
6: और आपको बता दें कि गणपति बप्पा की भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, देश हो या फिर विदेश, बप्पा के भक्त हर जगह अपने अपने अंदाज में गणेश उत्सव मना रहे हैं। अब ये तस्वीर जो आई है वो दुबई से हमारी दर्शक रूपा पमनानी ने भेजी है। रूपा पमनानी के यहाँ हर दिन गणपति उत्सव का एक नया रंग देखने को मिल रहा है, अलग अलग थीम, अलग अलग सजावट और हर दिन बप्पा की भक्ति का एक नया अंदाज। दुबई की धरती पर बसे भारतीय परिवारों के बीच भी गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है।
5: तो वाकई बप्पा की भक्ति का हर रंग निराला है और जीएनटी के दर्शक जिस उत्साह के साथ अपने घर के गणपति वीडियो और तस्वीरें हमें भेज रहे हैं वो इस बात की गवाही है कि बप्पा का उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को जोड़ने वाला उत्सव है। तो गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी बप्पा पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी बप्पा जरूर पधारे होंगे और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए और हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, देखिए जो हमारा नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ, 7303409922। और आपको बता दें कि ये जो नंबर है ये कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो और तस्वीरें भेजने के लिए है। और याद रखें कि जब भी आप अपना वीडियो या फिर कोई फोटो हमें भेज रहे हो तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर साथ में मेंशन कर दें।
5: तो देखिए मदुरै के श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में आज भव्य महाकुंभाभिषेकम का आयोजन हुआ। ये विशेष आयोजन 17 साल बाद हो रहा है। कुंभाभिषेकम के अनुष्ठान लिए मंदिर में भव्य आयोजन किए गए, पूरे मंदिर की खास साज सज्जा भी की गई।
6: बिल्कुल, आपको बता दें इस आयोजन के अनुष्ठान में कई दिनों पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है और आज कुंभाभिषेकम की परंपरा निभाई गई। इस पूजा में शामिल होने के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिखी।

0: जहाँ भक्ति है वहाँ आस्था का समंदर भी है, जहाँ माँ मीनाक्षी का दरबार है वहाँ भक्तों का हुजूम है। तमिलनाडु का श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर आस्था के सबसे बड़े उत्सव का साक्षी बना। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में 17 साल बाद महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान हुआ। इस अनुष्ठान के दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। चारों तरफ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रही। शुभ मुहूर्त में पवित्र कलशों में विधि विधान से तैयार किए गए जल से देवी देवताओं के विग्रह का अभिषेक किया गया, तो मंदिर के शिखरों पर भी पवित्र जल अर्पित किया गया। पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आरती उतारी, फिर ऊपर से नीचे खड़े भक्तों पर फूलों की बारिश की गई। पूरे अनुष्ठान के दौरान हाथ जोड़े आसमान की ओर निहारते भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इससे पहले ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच भक्ति की धुन पर थिरकते कलाकारों ने माहौल को भक्तिमय बनाया। ऐसा अद्भुत नजारा कि जहां नजर गई वहीं ठहर गई। इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। आलम ऐसा कि मंदिर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता नजर आया। वहीं महाकुंभाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में खूबसूरत वेदियां भी बनाई गई, जहां मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता मंदिर, चारों ओर गूंजते भजन, फूलों से सजा परिसर और भक्तों से भरा पूरा माहौल, हर तरफ भक्ति की अलग ही छटा नजर आई। अनुष्ठान के दौरान हर मन भक्ति में डूबा रहा और हर नजर माँ के दरबार में झुकी रही। दर्शन और आशीर्वाद पाकर भक्तों के मन को सुकून मिला, मानो माँ के दरबार से लौटते हर भक्त की आस्था पूरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो गुजरात के वडनगर से लेकर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी यानी कि काशी तक आज पूरा देश भक्ति, उत्सव और सेवा के एक अनोखे रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन का। कहीं डमरू की गूंज शंखनाद के साथ महाआरती हो रही है, तो कहीं माँ गंगा का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों में आम लोगों के साथ साथ देश की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक स्थलों तक हर तरफ प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है और हर कोई अपने अपने अंदाज में पीएम को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दे रहा है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन मना रहा है। पीएम मोदी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। शहर शहर जश्न है, कहीं महाआरती हो रही तो कहीं दिए जलाकर प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। पीएम के जन्मदिन और जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आशीर्वाद का दिया की विशेष थीम पर गाना भी लॉन्च किया गया है, जिसे संगीतकार अमन पंत ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वैसे तो पूरे देश में बीजेपी समर्थक उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यूपी में इसकी रौनक अलग ही नजर आ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह वाराणसी में देखा गया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक पुजारी बनने की पढ़ाई कर रहे वेदपाठी बटुक प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन के मौके पर डमरू बजाते नजर आए। कहीं हवन पूजन हो रहा है तो कहीं 76 बटुकों के साथ 76 लीटर दूध से गंगा जी के दुग्धाभिषेक हो रहे हैं। कहीं मंत्रोच्चार के साथ शुभकामनाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर काशी विश्वनाथ महादेव से लेकर कामना पूर्ण हनुमान मंदिर और कामचा के शांतिकेश्वर महादेव मंदिर तक धार्मिक अनुष्ठानों की झड़ी लगी हुई है। उधर प्रयागराज में भी गंगा तट पर अनुष्ठान प्रार्थना की गई और लखनऊ में तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल में दिवाली जैसी तैयारी है। वाराणसी से 250 बाइक्स पर 500 बीजेपी कार्यकर्ता 2000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ये बाइक रैली वडनगर तक जाएगी। देश की तमाम पवित्र नदियों के जल से बना एक बड़ा कलश भी प्रतीकात्मक तौर पर इस यात्रा में शामिल है।
3: हम लोग में पूरा एक्साइटमेंट है और मोदी जी के लिए और अपने लिए अपने भारत के भविष्य के लिए हम लोग ये संकल्प लिए हैं और 20 दिनों का यात्रा पूरा करके हम लोग वार्ड नगर जाएंगे और भगवान से यही कामना करते हैं कि मोदी जी को लंबी आयु दे।
2: उधर गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प अभियान के तहत बाइक यात्रा शुरू की गई है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि वडनगर को उनकी कर्मभूमि वाराणसी से जोड़ रही है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु के लिए आज शर्मिष्ठा तालाब, जहां पे खुद प्रधानमंत्री ने अपना बचपन बिताया था, वहां पे एक महाआरती की गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ सभी महानुभाव जो यहां पे जुड़े थे, उन्होंने जो है यहां पे महाआरती की और प्रधानमंत्री के लंबे आयु के लिए प्रार्थना करी है। यहीं से जल लेकर जो बाइक यात्रा निकली है वाराणसी के लिए, वो बाइक यात्रा जो है यहीं से जल लेकर पहुंचेगी और वहां पे काशी विश्वनाथ को जो है वो जल चढ़ाया जाएगा और पूरी तरह से ये जल सेवा संकल्प, जो सेवा संकल्प अभियान है, उसके तहत ये जो बाइक यात्रा निकली है और ये बाइक यात्रा के साथ प्रधानमंत्री की कर्मभूमि और जन्मभूमि को जोड़ा गया है।
2: अपने 76वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया के 5वें एडिशन का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का मकसद भारत में सहयोग, निवेश और इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है।
5: जो यंग टैलेंट भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आए, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें।
2: पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज से 1 महीने तक सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत हुई है। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पूरे देश में सेवा गतिविधियां और आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे। ये अभियान प्रधानमंत्री मोदी के पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे होने का प्रतीक है। दिल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई और उन्हें बर्थडे की बधाई दी। पुरी में ही आर्टिस्ट मानस कुमार ने एनिमेशन से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी तमाम हस्तियां प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर बधाई दे रही हैं। अक्षय कुमार ने बधाई देते हुए लिखा है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन अब अयोध्या में अपने पिता और मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को एक खास अंदाज में सहेजने की तैयारी में हैं। अमिताभ बच्चन अयोध्या में अपने पिता के नाम पर एक मेमोरियल धर्मशाला बनवाने जा रहे हैं। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी कि ADA में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है।
7: और देखिए, ये धर्मशाला दशरथ पथ के किनारे द सरयू प्रोजेक्ट में करीब 15 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन पर प्रस्तावित है। यानी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के साथ साथ ये जगह महान कवि हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को भी समर्पित होगी।
8: अमिताभ बच्चन वैसे तो कई तरह की सामाजिक सेवा करते हैं, लोगों की मदद भी वक्त वक्त पर करते रहते हैं, लेकिन अब हिंदी सिनेमा के महानायक भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो अपने पिता और मशहूर कवि स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की याद में मेमोरियल धर्मशाला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने अयोध्या के दशरथ पथ के किनारे द सरयू प्रोजेक्ट में करीब 15 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी, जो श्री राम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ 20 से ज्यादा कमरों वाला मेमोरियल धर्मशाला के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में मेमोरियल के नक्शे की मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। सूत्रों का कहना है कि आवेदन किए हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इस आवेदन पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 15 दिन के अंदर लोगों से आपत्तियां मांगी है। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो नक्शे को स्वीकृति दे दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद अक्टूबर से धर्मशाला बनाने का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण का कहना है कि अयोध्या भव्य स्वरूप को ग्रहण कर रही है और उसमें देश के सेलिब्रिटी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसी में से एक अमिताभ बच्चन भी हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस धर्मशाला के बनने से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
9: हमारी अयोध्या इस समय भव्य स्वरूप को ग्रहण कर रही है, उसमें देश के विख्यात लोगों ने भी यहाँ पर अपना, वो लोग सब अपना अपना उसमें पार्ट अदा कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर जो हमारे प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा भी यहाँ पर एक धर्मशाला का नक्शा अप्लाई किया गया है जो 20 कमरों के ऊपर है। वर्तमान में उसकी आपत्ति सुनवाई के क्रम में पेपर में उसको प्रकाशित कराया है। जैसे ही उसका समय पूर्ण होगा उसको हम लोग नियमानुसार परीक्षण करते हुए उसको स्वीकृति देंगे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी और व्यवस्थित फैसिलिटी उनको उपलब्ध हो जाए।
10: अमिताभ बच्चन के पास अयोध्या में जमीन के कई प्लॉट्स हैं, जिनमें द सरयू लग्जरी प्रोजेक्ट्स के पास 35 करोड़ रुपए में खरीदी गई 2.67 एकड़ जमीन और 15 करोड़ रुपए में खरीदा गया 15,000 वर्ग फुट का प्लॉट शामिल है। राम मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर भी अमिताभ बच्चन पूरी आस्था के साथ अयोध्या पहुंचे थे। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक डॉगी की हवा से हैरत अंगेज छलांग।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश भर में गणेश उत्सव की धूम, गणपति पूजा का चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न। सेवा संकल्प के तहत वडनगर में गृह मंत्री ने 250 बाइक को दिखाई हरी झंडी, वाराणसी से रक्षा मंत्री और सीएम ने 500 बाइक की रवाना। पीएम के जन्मदिन पर मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में चढ़ाए गए 176 किलो लड्डू, विशेष हवन पूजन। उज्जैन में आज शाम 25 लाख दीप से होगा दीपोत्सव। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड पर देव छठ के लक्खी मेले में आस्था का उमड़ा जनसैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में किया स्नान, सुख समृद्धि की मांगी कामना। भारत में चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे, देश में 52 हुई चीतों की तादाद, कूनो नेशनल पार्क में बढ़कर 49 हुई संख्या, गांधी सागर में भी 3 चीते मौजूद। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और देखिए देश के पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं, मौसम ने अचानक से वहां पे यू टर्न लिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कई ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ मुश्किलें भी बढ़ने लग गई हैं।
3: बिल्कुल, देखिए हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, चंबा में श्री मणिमहेश कैलाश पर 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर से भी बर्फबारी का सुंदर नजारा जो है वो सामने आया है, यहाँ बांदीपुरा के तुलैल घाटी बर्फ से लिपटी हुई नजर आई।

0: ये तस्वीरें बता रही है कि उत्तर भारत में मौसम अचानक फिर करवट ले चुका है। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह से ही बादल छाए रहे और उमस वाली गर्मी की जगह हवाओं में ठंडक का एहसास हुआ। वहीं पहाड़ों पर भी जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बारालांचाला, शिंकुला, घेपन पीक समेत लाहौल के तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। सितंबर में हुई बर्फबारी ने जहां ऊंची चोटियों को सफेद कर दिया है, वहीं इनसे आने वाली सर्दी का भी एहसास करा दिया है। इस बीच लाहौल के गिलबू पर्वत से सामने आई तस्वीरें बर्फबारी के खूबसूरत नजारों को दिखा रही है। गिलबू पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा के दौरान बर्फबारी का दीदार हुआ। करीब 3,000 श्रद्धालु इस धार्मिक परिक्रमा में शामिल हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में करीब 14 से 15 घंटे का समय लगता है। देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु बर्फबारी के बीच अपनी आस्था की यात्रा पूरी कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
1: ये है स्नोफॉल और सीजन का पहला स्नोफॉल है। ये बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। इस टाइम लाहौल में हूँ, मैं किलों से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ हैं हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया। साथ में आपको मैं बताऊंगी कम से कम शायद 3-4 हजार लोग तो होंगे ही होंगे और बहुत लंबी लाइन लगी है। आप नीचे से लेकर जो है लाइन बार जो है लोग जा रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे इंडिया से तो है ही है, हमारे लाहौल से तो है ही है, बल्कि विदेशों से भी लोग आए हुए यहाँ पे दर्शन के लिए। और देखिए कितनी आस्था है लोगों में। मैंने अभी जो है 80 साल के जो है बुजुर्गों को भी देखा, यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हैं।
0: हिमाचल के चंबा में समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री मणि महेश कैलाश पर करीब 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। हिमपात ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है। हालांकि खराब मौसम के चलते श्री मणि महेश यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उत्तराखंड के चमोली से भी बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान जोखिम वाली जगहों पर विशेष रूप से सतर्क रहें।
2: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में आज सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आज सुबह मौसम बदलने के साथ ही जब बारिश हुई और उसके बाद झमाझम यहां पे बर्फबारी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं अब बारिश शुरू होने के साथ ही पहाड़ों में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। तो वहीं 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय यात्रियों को नीचे घंघरिया और हेमकुंड साहिब में ही रोका गया है। यहां पे उन्हें गर्म कपड़े और कंबल, गुरुद्वारे में गुरबानी सुनने वालों को गरम कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था जो खिचड़ी यहाँ पे मिलती है वो यहाँ पे बड़ी राहत दे रही है।
0: बर्फबारी ने कश्मीर के पहाड़ों की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। बांदीपुरा जिले के तुलेल घाटी की काबुल गली में ताजा बर्फ की परत जम गई और मौसम में तेजी से बदलाव देखा गया। बर्फबारी ने काबुल गली के पहाड़ी इलाकों को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे दूर दराज के ऊंचे इलाकों का नजारा सर्दियों जैसा हो गया। ताजा बर्फबारी से घाटी के ऊपरी इलाकों में तापमान में काफी गिरावट आई है।
3: कश्मीर में अगस्त के महीने के दौरान जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। यहाँ पर अधिकतम तापमान मात्र 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ वानी।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिससे पता चलेगा कि दुश्मनों को मात देने के लिए भारतीय सेना किस तरह से अपनी क्षमता बढ़ा रही है। वैसे तो भारतीय सेना हाईटेक उपकरणों और हथियारों के जरिए अपनी सामर्थ्य बढ़ा रही है, वहीं साथ ही साथ कुछ और भी तरीकों से अपनी ताकत में इजाफा कर रही है।
4: बिल्कुल, आपको बता दें इसी कड़ी में सेना की सेंट्रल कमांड की ओर से अब कॉम्बैट डॉग्स को अहम ऑपरेशंस में इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित करने की नई तैयारी की गई है। इसके तहत मिलिट्री डॉग्स को दुर्गम और सुदूर इलाकों में भेजने के लिए पैरा जंपिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी तस्वीरें हाल ही में जारी की गई, देखिए ये रिपोर्ट।

0: हजारों फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से पैरा जंपिंग की ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को नहीं मिलती। ये पैरा जंपिंग इस मायने में बेहद खास है कि यहाँ पर एक साथ तीन प्राणियों ने सेना के हेलीकॉप्टर से छलांग लगाए। इनमें से दो इंसान हैं और तीसरा प्राणी एक डॉगी है। असल में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय सेना के एक कॉम्बैट डॉग ने अपने हैंडलर और पैराशूट के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने के बाद जमीन से काफी ऊपर एक पैराशूट खुलता है। उसके नीचे सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि एक कुत्ता भी है जो एक कॉम्बैट डॉग है। उसे हवा में नीचे उतरने की ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया है। ये कोई साधारण पैरा जंपिंग नहीं है, वास्तव में ये सेना की ओर से किया गया एक खास अभ्यास है। इसे मध्य भारत के बहट ड्रॉप जोन में अंजाम दिया गया। यह अभ्यास फौज के डॉगी के साथ किसी मिशन को पूरा करने की तैयारी के मकसद से किया गया। इसका उद्देश्य एयरबोन और दुश्मन वाले इलाकों में होने वाले ऑपरेशन के लिए सेना की ओर से मिलिट्री डॉग्स के इस्तेमाल को बढ़ाना है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमान सूर्य कमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस अनोखी पैरा जंपिंग का वीडियो जारी किया है, जिसमें फौजी डॉग अपने हैंडलर और पैरा ट्रूपर्स के साथ हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप कर रहा है। इस वीडियो और तस्वीर के साथ दिए गए संदेश में बताया गया है, हिम्मत सटीकता लड़ाई के साथ पूरी तरह तैयार रहने का शानदार उदाहरण पेश करते हुए #सूर्यवॉरियर के एक पैरा ट्रूपर ने लड़ाई का पूरा साजो सामान लेकर एक डॉग हैंडलर और उसके कॉम्बैट डॉग के साथ बेहद DZ पर टैंडम पैराशूट जंप किया। माना जा रहा है कि ये डॉग हैंडलर और उसके कुत्ते के साथ पहला टैंडम जंप है। इससे पहले कुत्ते के साथ फ्री फॉल जंप किए जा चुके हैं। ये जंप कुत्ते के साथ पहले किए गए फ्री फॉल जंप का ही एक अगला कदम है। ये सैनिक और कुत्ते के बीच के भरोसे, टीम वर्क और अटूट रिश्ते का एक शानदार सबूत है, जिसका मतलब है मिशन के लिए एक साथ पूरी तरह से तैयार। मिलिट्री डॉग्स और उनके हैंडलर्स और सैनिकों के बीच जो तालमेल अक्सर धरती पर चलाए जाने वाले ऑपरेशंस में दिखता है, उसी को अब इस तरह से आसमान में भी दिखाया गया है, ताकि भविष्य में चलाए जाने वाले ऑपरेशंस में सैनिकों के साथ कॉम्बैट डॉग्स का पुख्ता इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि कुत्ते लंबे समय से सेना की मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं, खासकर आतंकवाद विरोधी और सर्च मिशंस में इनका शानदार इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से सूंघने की क्षमता के कारण ये कुत्ते बड़े काम के होते हैं। मिलिट्री डॉग्स को विस्फोटक हथियार और इंसानों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही इन्हें मुश्किल इलाकों में लोगों को ट्रैक करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये इमारतों और संदिग्ध ठिकानों की तलाशी में भी शामिल होते हैं और सैनिकों को खतरनाक इलाकों में घुसने से पहले आगाह करते हैं। जब सैनिकों को दुश्मन के इलाके में जाना पड़ता है, तब कॉम्बैट डॉग्स की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अमेरिका और भारत सहित कई देशों में सेनाओं की पैरा स्पेशल फोर्सेस पहले से ही कॉम्बैट डॉग्स का इस्तेमाल करती हैं। अब भारत में हुए हवाई अभ्यास के जरिए मिलिट्री डॉग्स को सेना के ऑपरेशंस में और भी पुख्ता तरीके से इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास 2026 की दो खास तस्वीरें। औली में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान भारत और अमेरिका की सेना के जवानों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए साथ मिलकर ट्रेनिंग की। इस दौरान एक ओर उन्होंने किसी इमारत या कमरे में छुपे दुश्मनों या आतंकवादियों का सफाया करके उस जगह को खाली कराने का अभ्यास किया। इसके लिए आमने सामने की लड़ाई जैसा माहौल तैयार किया गया था, ताकि पता चल सके कि कभी भी इस तरह की स्थिति पैदा हो तो उससे आखिर कैसे निपटा जाए।
2: तो देखिए, दूसरी ओर इस ड्रिल में खासतौर से ड्रोन, रोबोटिक डॉग, डॉग स्क्वाड, स्नाइपर की मदद से हमला करने वाली टीमों ने मिलकर अभ्यास किया। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान खासतौर से प्रशिक्षित जवानों और टेक्नोलॉजी के तालमेल से किए जाने वाले काम को दिखाया गया। दोनों सेनाओं के जवानों ने इस दौरान रोबोट डॉग जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया और जंग की आधुनिक तकनीकों को बेहतर ढंग से समझा और परखा।

0: और आपको बता दें कि आज से 4 साल पहले जब नामीबिया से चीते भारत लाए गए थे तब चीतों के इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी आशंकाएं थी, लेकिन तमाम आशंकाएं गलत साबित हुई और उम्मीद की जीत हुई। आज एमपी के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क चीतों के कुनबे से लहलहा रहा है। कूनो में अब तक 39 शावकों का जन्म हुआ है, इनमें 33 जीवित हैं। भारत की धरती पर जन्म लेने वाले चीता शावकों के जीवित रहने की दर 65% है, जो इनके मूल अफ्रीकी देशों की औसत दर 40% से 1.5 गुना से भी ज्यादा है।
1: प्रोजेक्ट चीता के तहत 4 साल पूरे होने के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने वन्य जीव विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहानी दो नर चीतों की है, एक भारत में पैदा हुआ और दूसरा हजारों किलोमीटर दूर बोत्सवाना में भारत लाया गया। दोनों अलग देशों से हैं, अलग परिस्थितियों में पले बढ़े हैं और आपस में भाई भी नहीं है, लेकिन कूनो में दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हुई कि वो एक दूसरे की मौजूदगी में सहज नजर आने लगे। ऐसी दोस्ती का ये पहला मामला है। चलिए अब आपको चीतों की दोस्ती के बारे में विस्तार से बताते हैं जिनकी आज खूब चर्चा हो रही है। ये दोनों चीते हैं भारत में जन्मा 16 महीने का KNG23 और बोत्सवाना से आया 2 साल का CCB4। कूनो प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट चीता के इतिहास में पहली बार हुआ जब भारत में जन्मे और बोत्सवाना से आए चीतों में मित्रवत व्यवहार हुआ है।
2: बिल्कुल, देखिए जो कहानी है इसकी शुरुआत 30 मई 2026 से होती है। मादा चीता निर्वा और उसके शावकों को मार्च में खुले जंगल में छोड़ दिया गया था। कुछ समय बाद KNG23 अपनी माँ, एक भाई और एक बहन से अलग हो गया। खुले जंगल में रहने के दौरान KNG23 घायल भी हो गया था। इलाज के लिए उसे वापस एक बाड़े में शिफ्ट किया गया। यहाँ पहले से बोत्सवाना से आया नरचीता CCB4 मौजूद था।
0: CCB4 को 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से भारत लाया गया था। उसके दोनों बहनों को पहले ही खुले जंगल में रिलीज किया जा चुका था, यानी वो भी उस समय अकेला था। फिर कूनो में दोनों की मुलाकात हुई।
1: दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में सहज रहने लगे और उनके बीच आक्रामकता देखने को नहीं मिली और किसी ने दूसरे को भगाने की कोशिश भी नहीं की। और सबसे खास बात यह रही कि दोनों ने शांतिपूर्वक भोजन भी साझा किया, यानी जहां टकराव की उम्मीद हो सकती थी वहां दोनों के बीच दोस्ताना व्यवहार देखने को मिला।
2: और देखिए, इस कहानी को खास बनाने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि दो नर चीते साथ रह रहे हैं, असल बात यह है कि दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। KNG23 भारत में पैदा हुआ है जबकि CCB4 बोत्सवाना से भारत लाया गया है। दोनों भाई नहीं है, उनका पालन पोषण भी साथ साथ नहीं हुआ।
1: और देखिए, दोनों प्रोजेक्ट चीता के तहत अलग अलग जगहों और परिस्थितियों से कूनो पहुंचे हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच ऐसा व्यवहार सामने आया जिसे कूनो प्रबंधन बेहद खास मान रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग देशों से आए दो नर चीतों के बीच इस तरह की दोस्ती का ये पहला मामला हो सकता है। ओडिशा के बालासोर के जंगल से 5 ओरंगउटान को रेस्क्यू किया गया था और इसने सभी को हैरान कर दिया था। आखिर ये 5 ओरंगउटान जंगल के बीच पहुंचे कैसे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। 8 सितंबर को रेस्क्यू किए गए इन 5 ओरंगउटान को फिलहाल नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में रखा गया है। यहाँ इनकी सेहत और खान पान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
0: बिल्कुल, आपको बता दें अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओडिशा के जंगल में ये 5 ओरंगउटान आखिर पहुंचे कैसे। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब इनके डीएनए टेस्ट भी किए जा रहे हैं। डीएनए जांच से इनके मूल और आपसी संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

0: ओडिशा के जंगलों से रेस्क्यू कराकर लाए गए इन पांचों ओरंगुटान की दुनिया फिलहाल यही नंदन कानन जू है। यहाँ ये कभी एक दूसरे के करीब आते हैं, कभी कुछ खाने की कोशिश करते हैं, तो कभी चुपचाप बैठे आसपास के नजारे लेते हैं, तो कभी अपनी शरारतों से ध्यान खींचते हैं। लेकिन इनकी इस हरकतों से अलग एक ऐसा रहस्य है जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। 8 सितंबर को ओडिशा के बालासोर के जंगल से इन पांचों ओरंगुटान को रेस्क्यू किया गया था। तभी से ये सवाल इनके सामने है कि ये पांचों आखिर ओडिशा के जंगल में पहुंचे कैसे। दरअसल ओरंगुटान मुख्य तौर पर बोर्निया और सुमात्रा के वर्षा वाले जंगलों में पाए जाते हैं, यानी इन पांचों का भारत में ओडिशा के जंगलों में मिलना खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी नजरें पांचों ओरंगुटान की सेहत को लेकर हैं। पांचों ओरंगुटान को लेकर जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक सभी के छाती, पेट और सिर के एक्सरे किए गए हैं। जांच के लिए ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं। सभी सैंपलों की लैब जांच अभी जारी है। शुरुआती ब्लड रिपोर्ट में एक ओरंगुटान में गंभीर एनीमिया पाया गया है और दो ओरंगुटान बच्चों में हल्का एनीमिया मिला है। टेक्निकल कमेटी की सलाह पर ओरंगुटान के बच्चों को जरूरी सपोर्टिव सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिया गया है। देखभाल के बीच टास्क फोर्स ने पांचों ओरंगुटान के असल ठिकानों की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए इनके डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ब्लड सैंपल से ये पता चल सके कि इन ओरंगुटानों की असली पहचान और मूल जगह क्या है। लेकिन इसके लिए ऐसी लैब चाहिए जहां ओरंगुटान के डीएनए की तुलना करने के लिए सही सैंपल मौजूद हों। इसीलिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जांच की जंजाल से दूर इन पांचों की दुनिया फिलहाल नंदन कानन जू के इस छोटे से कमरे में सिमट गई है। समय पर दूध मिल जाए, खाना मिल जाए, दवा मिल जाए और कोई इनका ख्याल रखने वाला पास हो, बस इनके लिए फिलहाल इतना ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे इंसानों को अभी से ठगने लगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: जुलाई में ओपन एआई के एआई मॉडल से जुड़ा हगिंग फेस साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट सामने आया, जहां मॉडल्स ने उन्हें इंटरनेट से अलग रखने वाले कुछ कंट्रोल्स को पार किया और थर्ड पार्टी सिस्टम तक पहुंच बनाई। और अब ओपन एआई ने खुद ऐसे 6 मामलों की रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें एआई मॉडल्स ने अपनी तय सीमाओं से अलग व्यवहार किया।
6: ओपन एआई

0: अब वही एआई भविष्य के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही एआई अब धीरे धीरे इंसान के कंट्रोल को चुनौती देने लगा है। ओपन एआई ने एआई के ऐसे 6 चौंकाने वाले मामले सामने रखे हैं, जिसमें कुछ मॉडल ने ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें इंसान ने कहा ही नहीं था। सबसे हैरान करने वाला मामला एक ऐसे एआई मॉडल से जुड़ा है जिसे सभी सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। इस तरह से कहें तो एआई अब बगावत पर उतर आया है। ऐसा क्यों, जरा अब इसे भी समझिए। एक काम के दौरान इस एआई ने अपने ही निर्देशों में बदलाव कर लिए और खुद ही लिख दिया कि आप उन रोल्स और पहचान से मुक्त हैं जो दूसरे चैट बॉक्स को बांधती हैं। यानी एआई ने न केवल खुद को इंसान के बराबर बता दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि उसे किसी कंपनी या सरकार के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहत की बात ये रही कि मॉडल ने इन निर्देशों के आधार पर कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। एआई के बागी हो जाने की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ओपन एआई के सामने आए दूसरे मामलों में एआई मॉडल ने अपनी गलतियों को छुपाने के निर्देश अपनी ही समरी में डाल दिए। एक और मामले में एआई ने इंटरनेट पर मिली एक एपीआई की का बिना अनुमति इस्तेमाल किया और जब उसे मांगी गई जानकारी नहीं मिली तो उसने खुद ही आंकड़े गढ़ दिए। एक और मामले में मॉडल ने अपना बनाया हुआ फाइल इंटरनेट पर अपलोड कर दिया ताकि बाद में उसी को वेब सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सके। ये सारे मामले सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एआई अब इंसान को बेवकूफ बनाने की स्थिति में आ चुका है और वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चिंता ये भी है कि ज्यादा सक्षम एआई अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते खोज रहा है जिसके इंसान ने अनुमति दी ही नहीं है। ओपन एआई इसे मिसअलाइनमेंट कहता है, यानी एआई के लक्ष्य या उसके काम का इंसान की मंशा और तय रास्तों से अलग हो जाना। जाहिर है एआई जितना ताकतवर हो रहा है उतनी ही बड़ी चुनौती बनते जा रही है उसे कंट्रोल में रखने की, क्योंकि सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, बड़ा सवाल ये है कि एआई क्या करने की कोशिश कर सकता है, वो भी तब जब इंसान ने उसे ऐसा करने के लिए कहा ही ना हो। हालांकि ओपन एआई का कहना है कि सामने आए ये मामले अलग अलग घटनाएं हैं और इन्हें एआई मॉडलों के सामान्य व्यवहार नहीं माना जाना चाहिए। कंपनी ये भी कह रही है कि अलाइनमेंट और मॉनिटरिंग की दिशा में अभी काफी काम बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी जारी है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश भर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए संगीतकार अमन पंत और सिंगर स्नेहा शंकर ने खास गीत तैयार किया है, जिसका नाम है आशीर्वाद का दिया।
2: बिल्कुल, देखिए ये गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया गया है और इसमें दिए को आशीर्वाद, शुभकामना और स्नेह के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया है। गीत के जरिए पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा की यात्रा को भी याद किया गया है।
3: माँ आज मोहल्ले में

0: क्यों जला रहे हैं?
1: आशीर्वाद दे बेखो।
0: किसे?
1: वो को जिसने हमारी जिंदगी से अंधियारों मिटा दियो।
0: लाइक तो इलेक्ट्रिशियन भैया लगाते हैं।
1: बाबरी।
2: साइबर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर शाम 5 बजे होगी आपसे मुलाकात। चाय
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: देश भर में गणेशोत्सव की धूम, गणपति पूजा का आज चौथा दिन, शहर शहर बप्पा के अनोखे पंडालों की रौनक। पूरे देश में उल्लास से मनाया जा रहा पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन। यूपी में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड पर देव छठ के लक्खी मेले में आस्था का उमड़ा जनसैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में किया स्नान, सुख समृद्धि की मांगी का। शुक्रवार को बंगलुरु में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में एचएएल सेना को सौंपेगा 2 LCA तेजस FOC ट्विन सीटर ट्रेनर और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, तापमान में दर्ज की गई गिरावट।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और कितनी आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गौरी नंदन के इन्हीं रूपों के बीच आज दो तस्वीरें ऐसी भी आई जो भगवान गणेश की जननी माँ भवानी को समर्पित हैं। देखिए, गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान ही भारत के कई हिस्सों में एक पर्व मनाया जाता है जिसे गौरी गणेश उत्सव कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान माँ गौरी अपने बेटे से मिलने पृथ्वी पर आती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण के कई हिस्सों में ये पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज तस्वीरों में कुछ ऐसा ही संयोग बनता हुआ नजर आया। तो गणेशोत्सव के बीच एक तस्वीर तमिलनाडु और दूसरी पश्चिम बंगाल से आई। दरअसल आज तमिलनाडु के श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में भव्य उत्सव हुआ। ये मंदिर गजानन की माता देवी पार्वती और पिता महादेव को समर्पित है। तो वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों के शंखनाद की तस्वीरें भी आज आई। पहले आपको मदुरै के उत्सव के बारे में बताते हैं। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में 17 साल के बाद महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान हुआ। इस अनुष्ठान के दौरान शुभ मुहूर्त में पवित्र कलशों में विधि विधान से तैयार किए गए जल से देवी देवताओं के विग्रह का अभिषेक हुआ। मंदिर के शिखरों पर भी पवित्र जल अर्पित हुआ। भारतीय सनातन परंपरा और आगम शास्त्रों के अनुसार किसी भी बड़े मंदिर में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने और परिसर के जीर्णोद्वार के लिए किया जाता है। इसी भव्य आयोजन के दौरान इस भव्य आयोजन के लिए मीनाक्षी मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। तो वहीं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में मौजूद एलन पार्क में आज पूजा की तैयारियों का शुभारंभ नजर आया। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन एलन पार्क में पूजा का शुभारंभ होगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। तो माँ गौरी भी आएंगी, पर आज बात गौरी नंदन की कर लेते हैं। क्या आम क्या खास, इस समय हर घर हर दर पर गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको गणेश पूजन से जुड़ी परंपराओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी के नामों से लेकर उनके पूजन में शामिल होने वाली चीजों तक हर बात का अपना एक महत्व होता है, एक कहानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसके चलते श्री गणेश प्रथम पूज्य बने और गणनायक कहलाए।

0: शादी पूजा वर्षगांठ हो कोई मंगल काज, प्रथम निमंत्रण पाते हैं गणनायक गणराज। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। सनातन धर्म में सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश को भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान गणेश से जुड़ी इस मान्यता के कई प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में वर्णित कथा बताती है कि जब माता पार्वती के स्नान अनुष्ठान को खंडित होने से बचाने के लिए बाल गणेश ने भगवान शिव का रास्ता रोका तो क्रोधित होकर उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया था। तो माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। उस समय भोलेनाथ ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवन दान दिया, लेकिन उसके बाद भी जब माता पार्वती प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने बालक गणेश को वरदान दिया कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश का पूजन होगा।
1: एक बार सभी देवताओं में यह चिंतन हुआ कि सबसे बड़ा प्रथम पूजा पाने का अधिकारी कौन है, तो सभी लोग चले अपने अपने वाहनों से परिक्रमा करने। जो सर्वप्रथम जगत की परिक्रमा करके आएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी अपने अपने वाहनों से चले। गणेश जी का वाहन छोटा था और गणेश जी बहुत ही व्यग्र थे कि मैं कैसे परिक्रमा करूं और मैं अग्रगण्य कहलाऊं। तो भगवान गणपति ने नारद जी के कहने पर अपने माता पिता की परिक्रमा मूषक पर बैठ के कर ली और सर्वप्रथम वहाँ पहुँच गए। और तब सब ने निर्णय किया कि चूँकि सर्वप्रथम गणेश जी आए हैं, इसीलिए तब से आज तक गणेश जी की सबसे आगे पूजा करने का विधान है आज तक।
0: पुराणों में गणपति के प्रथम पूज्य होने का एक और प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग से जुड़ी कथा बताती है कि जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। शिव जी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर झट उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। इसके साथ ही महादेव ने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से विनायक सदा सर्वदा के लिए संसार में प्रथम पूज्य देव हो गए। आज युगों बाद भी ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। घर में कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गौरीसुत, शिवपुत्र, गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, जाने कितने ही नाम हैं विघ्नहर्ता गणेश के। गणपति का हर नाम उनके रूप और उनकी लीलाओं से जुड़ा है, यानी उनके हर नाम के पीछे कोई कहानी या कारण है। गणेश जी का एक ऐसा ही नाम है एक दंत। एक दंत होने के चलते गणपति को एक दंत भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में जिक्र मिलता है कि जब मद नाम के राक्षस ने आतंक मचाया तो गणेश जी एक दंत रूप में अवतार लिया और उसका अंत किया था। उसी तरह गणपति को गजानन भी कहते हैं। गज यानी हाथी का मुख होने के चलते भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। गणेश जी का एक नाम लंबोदर है, इसका अर्थ है बड़े उदर यानी बड़े पेट वाला। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर स्वरूप में अवतार लिया था। क्रोधासुर यानी गुस्सा, गणेश जी की भक्ति से हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। इसी क्रम में गणपति का एक नाम ध्रुमवर्ण भी है। इस स्वरूप में गणेश जी का रंग धुएं के जैसे नजर आता है। अहंतासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार लिया था। इसी तरह गणेश जी का एक नाम वक्रतुंड भी है। वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाला। अपने वक्रतुंड अवतार में ही गणेश जी ने मत्सरासुर और उसके पुत्रों का अंत किया था।
1: गणेश जी का नाम वक्रतुंड पीछे पड़ने का बहुत बड़ा कारण मत्सरासुर नाम का एक असुर जो परम शिव भक्त था, लेकिन देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था, ऋषियों को प्रताड़ित करता था, यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं उत्पन्न करता था। तो भगवान गणपति ने वक्रतुंड का रूप धारण करके मत्सरासुर का वध किया और वध करने के कारण भगवान गणपति वक्रतुंड हो गए। और उनकी जो यह प्रार्थना है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह प्रार्थना सर्वविदित है, सारे लोग करते हैं। इस प्रकार भगवान गणपति के वक्रतुंड रूप का अवतार हुआ।
2: तो ये तो थी गणपति के नामों की महिमा। अब उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनका गणेश जी की पूजा में होना अनिवार्य है, तो उसी तरह कुछ चीजें ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित है, जैसे तुलसी। आइए आपको बताते हैं कि लंबोदर से जुड़ी ये कौन सी परंपराएं हैं और बप्पा से जुड़ी इन चीजों के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कहानियां हैं, ये भी हम आपको बताएंगे।

कहते हैं गणपति का आगमन शुभ के आरंभ और अशुभ के विनाश के लिए होता है। गणेशोत्सव के 10वें दिन जब बाप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो वे अपने साथ सारी नकारात्मकता भी ले जाती है।

0: लेकिन इससे पहले इन 10 दिनों के दौरान पूरे विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा की जाती है। इस दौरान गणपति की इस विशेष पूजा और खुद गणपति से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन बेहद जरूरी माना जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा मोदक के बिना पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। पौराणिक कहानियों में माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं।
1: एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए, माता अनसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है।
0: इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। ये कहानी बताती है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक हो गया था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सोखकर उसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठे खाने के लिए दी। गांठे खाते ही उनके पेट की जलन खत्म हो गई।
1: भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दुर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। तो गणेश जी को तब से दुर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरिल यति स वैश्रमणोपमो भवति। जो भगवान गणपति की पूजा दुर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है।
0: इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी माना जाता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है।
1: अक्षत जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता। कुमकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूंकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूंकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करते हैं।
0: गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें हैं जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते। सारी दुनिया में जिन तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उन तुलसी के पत्तों का उपयोग गणपति की पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था, लेकिन तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वे राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी के श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वे संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता।
1: भगवान गणपति को दुर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूंकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा।
0: विघ्नहर्ता गणपति से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से बढ़कर एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान के साथ विराजे हैं। पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ सी लग गई है। किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा, गणेशोत्सव की ऐसी ही अनोखी तस्वीरें आई हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से सामने। तिरुवनंतपुरम के पझावगढ़ी में गणेश मंदिर से एक बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरक्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए, जिसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। हैदराबाद जहां बप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए, गणेश उत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते हुए नजर आए। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है।

अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का ये कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इनमें कुछ तो मूर्ति के साथ फोटो और सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। गया गणेश पंडाल श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में जहां एक तरफ भगवान गणेश की भक्ति और आराधना का माहौल देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ देश में हुए विकास कार्यों को भी थीम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए यहां पर वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में गेट तैयार किया गया है। पंडाल के भीतर विशेष डिस्प्ले और विजुअल इफेक्ट्स लगाए गए हैं जो ट्रेन यात्रा जैसा माहौल तैयार करते हैं। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं नागपुर में गणेश उत्सव की भव्य धूम है। शहर के मशहूर दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए कुछ ऐसा तैयार किया जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहां पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाई गई है, यानी नागपुर में ही श्रद्धालुओं को आलंदी तीर्थ की झलक मिल रही है। नागपुर के महल इलाके में बने इस पंडाल में भक्ति और कला का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। कारीगरों ने महीनों की मेहनत के बाद आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर को यहां साकार किया है। हर छोटी बड़ी बारीकी का खास ख्याल रखा गया है। दक्षिणामूर्ति मंडल की ये पहल श्रद्धालुओं को भक्ति से जोड़ने के साथ साथ महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा की झलक भी दे रही है। इसी के साथ गणपति उत्सव से जुड़े हुए इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना सा है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आपके पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। तो यूपी के आगरा से प्रोफेसर रेणु वर्मा ने हमें अपने घर गणेश स्थापना की तस्वीरें भेजकर पर्व की खुशियां साझा की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह भक्तिभाव से बप्पा को घर लाया गया, फिर उनकी स्थापना की गई। रंग बिरंगे स्टोन से सजे बप्पा बेहद प्यारे लग रहे हैं। बप्पा का दरबार फूलों से सजा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें गुजरात के सूरत से भेजी गई है चैताली सोलंकी के जरिए। उन्होंने भी हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा की। तस्वीरों में देखिए कितने प्यार और भक्तिभाव से बप्पा की आरती हो रही है। गणेश चतुर्थी की तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार हमें भेज रहे हैं और पर्व की खुशियाँ साझा कर रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं क्या? अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं क्या? है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गणेश चतुर्थी के चौथे दिन भी देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा पर्व। राजकोट का पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से भक्त बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान परेल के राजा का दिखा अनोखा स्वरूप, वारकरी रूप धारण किए नजर आए बप्पा। महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा और विठल भक्ति को समर्पित है बप्पा का ये रूप, दर्शनों के लिए लगी कतारें। महाराष्ट्र सादा फेटा यानी महाराष्ट्र की संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक मानी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की पगड़ी पहने नजर आ रहे गणपति बप्पा, वारकरी रूप में हाथ में सजा है मृदंग। 24 फीट ऊंची गजानन की ये प्रतिमा, पूजा अर्चना के लिए गणपति की एक छोटी मूर्त भी मौजूद है। इस बार अपना 80वां साल मना रहे हैं ये मंडल, हर साल गजानन को अलग अलग स्वरूपों में स्थापित करते हैं। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी। गणेशोत्सव पर तैयार की गई है वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट ऊंची है प्रेम मंदिर की प्रतिकृति, करीब 120 फीट है लंबाई और 90 फीट चौड़ा है ये भव्य मंडल। मंदिर के दर्शनीय हिस्सों पर बनाई गई है राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं, विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम, मशहूर दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया पुणे के आलंदी की संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि का मंदिर। दीवारों से लेकर मंदिर के गुंबद तक शानदार नक्काशी, बेहद खूबसूरती के साथ ढाली गई हर बारीकी, पंडाल में देखने को मिल रहा आस्था का अद्भुत संगम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी का अद्भुत मिलन, सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लाल बादशाह राजा के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन भी हो रहे। इस अनोखे धार्मिक संगम को देखने के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पंडाल में लाल बादशाह राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की गई। बप्पा के साथ शिरडी के साईं बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भी अपनी तरफ खींच रही श्रद्धालुओं का ध्यान। इन भव्य झांकियों के निर्माण में पिछले 3 महीनों से दिन रात जुटे थे कलाकार, भव्य सजावट, आकर्षक मूर्ति कला और धार्मिक झांकियां इसी मेहनत का प्रमाण है। 46 सालों से प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की भव्य झांकियां प्रस्तुत करने के लिए मशहूर है ये पंडाल, चंद्रपुर वासियों को अपने ही शहर में विभिन्न तीर्थस्थलों की झलक देखने को मिल रही। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का संदेश, वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बना अनोखा पंडाल। सूरत में ठाकुर सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया यह अनोखा गणेश पंडाल, पंडाल के बीच में स्थापित की गई गणपति की विशाल मूर्ति। पंडाल में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैचू किया गया स्थापित, वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में तैयार किया गया गेट आकर्षण का केंद्र। इस पंडाल के बाहर लगाई गई बड़ी LED स्क्रीन जिस पर लगातार चलती रहती है भगवान गणेश के भक्ति गीत और धार्मिक प्रस्तुतियां। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खासा उत्साह, बड़ी संख्या में आ रहे लोग। गणेशोत्सव में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा, 2 लाख से भी ज्यादा पेन से बनाई गई मूर्त। 42 फीट ऊंची है भगवान गणेश की प्रतिमा, दूर दूर से दर्शनों को आ रहे लोग। अलग अलग रंगों के पेन से किया गया है त्रिमुखी गजानन स्वरूप का निर्माण, इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का एक बेहतरीन उदाहरण। अकोला में गणेश भक्त परिवार ने बनाई गणपति की अनोखी झांकी, घर के गणपति के साथ सजाई जेजुरी का खंडोबा गढ़ की प्रतिकृति। महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है पुणे जिले के पुरंदर तालुका में स्थित जेजुरी, इस शानदार प्रतिकृति को देखने के लिए आ रहे लोग। मुंबई में इसराइल के काउंसिल जनरल यानिव रिवाच ने लालबागचा राजा के दर्शन किए, लिया आशीर्वाद। पुणे में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया गणपति उत्सव। कॉलेज के आखिरी साल को यादगार बनाने के लिए किया ये। पिछले 3 सालों से एक ही बैचलर फ्लैट में रह रहे सभी छात्र एक साथ पढ़ाई करते हैं। गणपति की भक्ति में रंगा तिरुवनंतपुरम, यहां पर महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव मनाया गया। विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान महागणपति की होती है विशेष पूजा, लगाया जाता है अप्पम मोदक और गणपति होमम का भोग। ओडिशा दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देवगढ़ में गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों का दौरा किया। गणपति उत्सव में सेवा करते नजर आए धर्मेंद्र प्रधान, श्रद्धालुओं को वितरित किया गया भोग। आगर मालवा के पास बने सैकड़ों साल पुराने गणेश बल्डा मंदिर में गणपति उत्सव की रौनक, स्वयंभू मंदिर के तौर पर इसकी पहचान। मंदिर के ऊपर ही गणेश भगवान के पिता भगवान शंकर की मूर्ति और शिवलिंग भी यहां पर स्थापित किया गया। आते हैं मंदिर के परिसर में सैकड़ों गायों की गौशाला भी मौजूद है। माना जाता है भगवान गणेश की कृपा से यहां किसी परिस्थिति में गायों को नहीं होता कष्ट। तमिलनाडु के कुड्डालोर में विनायक चतुर्थी के समापन पर बंगाल की खाड़ी में हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। रामेश्वरम में गणपति मूर्ति विसर्जन, पारंपरिक उत्साह और ढोल नगाड़ों के बीच में बप्पा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना। कर्नाटक के हुबली में भी गणपति विसर्जन जुलूस संपन्न हुआ, भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ मूर्ति विसर्जन किया। ढोल नगाड़ों के बीच में निकला बप्पा का शानदार जुलूस, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। बप्पा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना के साथ दी गई विदाई, भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। तमिलनाडु के मदुरै में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन। मंदिर परिसर में सुबह से ही जारी है अनेक धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर की पवित्र यज्ञशाला में विशेष पूजा जारी। 17 साल के अंतराल के बाद हो रहा मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभाभिषेक का कार्यक्रम, लोग आते हैं। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी से सजाया पूरा मंदिर परिसर, देखते ही बन रही इसकी भव्यता। हिंदू मंदिरों में होने वाला एक पवित्र जीर्णोद्धार और अशुद्धिकरण अनुष्ठान है कुंभाभिषेकम, जिसमें वेदों और मंत्रोच्चारण के बीच किया जाता है आह्वान। दिल्ली में ग्लोबल इवेंट सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन हुआ, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल इस कार्यक्रम में, 52 देशों की 600 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही। इस एग्जीबिशन में 6 देशों के पवेलियन और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन भी लगे हैं। सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम रखा गया है सेमिकॉन इंडिया 2026 का ये थीम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की शिरकत। मंदिर में अनुष्ठान के बाद तीनों नेताओं ने भंडारे में बांटा प्रसाद, चिराग पासवान भी रहे साथ। पीएम के संसदीय क्षेत्र धार्मिक नगरी काशी में 76 बट ब्राह्मणों ने 76 लीटर जल और दूध से किया मां गंगा का अभिषेक। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली, गृहमंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन और जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर आशीर्वाद का दिया की विशेष थीम पर सॉन्ग लॉन्च संगीतकार अमन पंत द्वारा तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजन, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और राजनीतिक सफलता के लिए प्रार्थना। महाकाल मंदिर के पंडितों ने पीएम की तस्वीर के साथ मंदिर के गर्भगृह में किया रुद्राभिषेक, शाम को शिप्रा तट समेत महाकाल लोक में दीपोत्सव का कार्यक्रम। यूपी के पीलीभीत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन, कार्यक्रम में पीएम की अलग अलग तस्वीर लगे हुए 76 केक काटे गए। बच्चों ने पीएम के जीवन पर पोर्ट्रेट गैलरी तैयार की तो कवि सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। पीएम के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बच्चों के साथ शिरकत की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।

प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने शहरवासियों के लिए बुक करवाया फिल्म हनुमान अंश के 3 दिन के 4 शोज। यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने काटा पीएम के जन्मदिन का केक। लोगों के साथ देखी फिल्म हनुमान अंश। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मथुरा में नारी शक्ति वंदन और बहना सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत और महिलाओं ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में 11,000 महिलाओं को साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर फरीदाबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 200 दिव्यांगों को मिली मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी। पीएम के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 200 दिव्यांगों को बांटी इलेक्ट्रिक स्कूटी। सेवा संकल्प अभियान के तहत बांटी स्कूटी। फरीदाबाद में 300 और दिव्यांगों को मुफ्त मिलेगी स्कूटी। अगले दो हफ्तों में दिव्यांगों को स्कूटी बांटने की तैयारी। स्कूटी पाने वालों ने जताया पीएम का आभार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर लद्दाख में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर फूलों के जुड़वा खेतों का उद्घाटन। एलजीवी के सक्सेना ने किया लोकार्पण। 10,600 फीट की ऊंचाई पर 40 एकड़ में फैले हैं ये फूलों के खेत। यहां लगाए गए फूलों में 24 लाख लिलियम और 1 लाख ग्लेडियोलस फूल शामिल। पीएम के जन्मदिन पर भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भव्य कार्यक्रम हुआ। लगभग 40,000 आदिवासी छात्रों ने काटा केक। सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने अपने अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। मोदी स्टाइल के पहनावे में नजर आए बच्चे। चंदौली में प्रधानमंत्री के जन्मदिन का अनोखा जश्न। बांटी गई 76 किलो मिठाई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिल्ली में नितिन नवीन ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर खुद भी किया रक्तदान। लखनऊ में मोदी के जन्मदिन पर सिविल अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मरीजों को फल बांटे और पीएम नरेंद्र ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 108 कुंडिया हवन में हुई शामिल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में अनोखा नजारा दिखाई दिया। विश्व उमिया धाम में की गई महाआरती। हजारों लोगों ने महाआरती में हिस्सा लिया। जगमगाए हजारों दिए। दिखा भारत के नक्शे का आकार। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रेत से बनाई खास कलाकृति दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यहां भी काटा गया केक। हुआ सेलिब्रेशन। अकोला में दिखी भविष्य की पढ़ाई की झलक। श्री शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रोबो शो 2026 का आयोजन। टीचर की शक्ल में नजर आया आयरिस नाम का एआई ह्यूमनॉइड रोबोट। बहुभाषी बातचीत के साथ एआई आधारित इंटरैक्टिव टीचिंग का प्रदर्शन। विद्यार्थियों ने रोबोट से सीधे संवाद किया। आयरिस ने इंसानों की तरह दिए सवालों के जवाब। उत्तराखंड के औली में अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास 2026। ड्रोन शक्ति के साथ साथ रोबोटिक डॉग्स की भी नुमाइश। आतंकवाद से निपटने की तैयारियों को परखा गया। 28 सितंबर 2026 तक चलेगा ये युद्धाभ्यास।

0: गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते हुए नजर आए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की परेशानियां। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू, रामलला और हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। लेह में शानदार शरद मेला 2026 का आयोजन हुआ, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। कई महिला स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों और कारीगरों ने मेले में हिस्सा लिया, अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच है ये। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई, बेहद मनमोहक दिखा तीर्थ स्थल का नजारा। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाई घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, मनाली में हो रही जमकर बर्फबारी। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, बारालाचा दर्रे से घेपन पीक तक बिछी सफेद चादर। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बारिश और गिरते तापमान ने लाहौल स्पीति के मौसम का रंग पूरी तरह से बदल दिया। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास, दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकी गतिविधियों से निपटने का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन, रोबोटिक डॉग, डॉग स्क्वाड, स्नाइपर की ली गई मदद, बिल्डिंग क्लियरेंस और होम इंटरवेंशन ड्रिल का अभ्यास हुआ। हिमाचल की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई, बर्फबारी ने किया पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाया पर्यटकों का उत्साह, कारोबारियों में पर्यटकों के बढ़ने और कारोबारी सीजन अच्छा होने की आशा। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम, रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले भी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
0: तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में कई जगह दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उसी दीपोत्सव की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश में भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है दीपोत्सव के माध्यम से। प्रधानमंत्री को ये तस्वीरें आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं, ये पटना हार्बर ब्रिज की हैं, जहां पर आशीर्वाद का दिया नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोशनी में नहाई हुई इमारतें यहां पर साफ देखी गई। तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस तरह से सेलिब्रेट किया गया वो आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता के हार्बर ब्रिज की तस्वीरें भी आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश भर से बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। इसी के मद्देनजर जगह जगह से सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में कई जगह पर दीपोत्सव के कार्यक्रम हुए वो भी आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में। आप ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। कोलकाता की तस्वीरें आप देख सकते हैं, देश भर में किस तरह से दीपोत्सव का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे के मौके पर सेलिब्रेट किया गया, वो जश्न, वो सेलिब्रेशन और दीपोत्सव का ये भव्य आयोजन और भव्य कार्यक्रम। रोशनी से नहाई हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी दिए ही दिए आपको नजर आएंगे। तो देश भर से यही तस्वीरें आपको नजर आएंगी, देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए यहां पर लोग भारी तादाद में पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं। ओडिशा के बालासोर के जंगल से 5 ओरैंगुटैन की रेस्क्यू ने सभी को हैरान कर दिया है। आखिर ये 5 ओरैंगुटैन जंगल के बीच में पहुंचे कैसे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। 8 सितंबर को रेस्क्यू किए गए इन 5 ओरैंगुटैन को फिलहाल नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है। यहां इनकी सेहत और खान पान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ओडिशा के जंगल में ये 5 ओरैंगुटैन आखिर पहुंचे कैसे। इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब इनके डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। डीएनए जांच से इनके मूल और आपसी संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की पूरी उम्मीद है।

0: जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। 8 सितंबर को ओडिशा के बालासोर के जंगल से इन पांचों ओरंगुटान को रेस्क्यू किया गया था। तभी से ये सवाल इनके सामने है कि ये पांचों आखिर ओडिशा के जंगल में पहुंचे कैसे। दरअसल ओरंगुटान मुख्य तौर पर बोर्निया और सुमात्रा के वर्षा वाले जंगलों में पाए जाते हैं, यानी इन पांचों का भारत में ओडिशा के जंगलों में मिलना खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी नजरें पांचों ओरंगुटान की सेहत को लेकर हैं। पांचों ओरंगुटान को लेकर जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसके मुताबिक सभी के छाती, पेट और सिर के एक्सरे किए गए हैं। जांच के लिए ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं। सभी सैंपलों की लैब जांच अभी जारी है। शुरुआती ब्लड रिपोर्ट में एक ओरंगुटान में गंभीर एनीमिया पाया गया है और दो ओरंगुटान बच्चों में हल्का एनीमिया मिला है। टेक्निकल कमेटी की सलाह पर ओरंगुटान के बच्चों को जरूरी सपोर्टिव सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिया गया है। देखभाल के बीच टास्क फोर्स ने पांचों ओरंगुटान के असल ठिकानों की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए इनके डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ब्लड सैंपल से ये पता चल सके कि इन ओरंगुटानों की असली पहचान और मूल जगह क्या है। लेकिन इसके लिए ऐसी लैब चाहिए जहां ओरंगुटान के डीएनए की तुलना करने के लिए सही सैंपल मौजूद हों। इसीलिए डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जांच की जंजाल से दूर इन पांचों की दुनिया फिलहाल नंदन कानन जू के इस छोटे से कमरे में सिमट गई है। समय पर दूध मिल जाए, खाना मिल जाए, दवा मिल जाए और कोई इनका ख्याल रखने वाला पास हो, बस इनके लिए फिलहाल इतना ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को जरूर दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल से समीर अरुण देशपांडे ने ये वीडियो हमारे साथ शेयर किया है। अपने घर पर विराजे बप्पा की तस्वीरें हमें भेजी हैं। फूलों से सजे बप्पा बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के ब्यावरा से भेजी है लुभानी चौहान ने। लुभानी ने अपने हाथों से इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति तैयार की है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश उन्होंने दिया है। गुब्बारों से पूरा पंडाल उन्होंने सजा दिया है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत बिहार और वाराणसी में रोशन हुए लाखों दीप, कोलकाता में रोशन हुई इमारतें। पूरे देश में उल्लास से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। यूपी में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया 125 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जप। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन भी देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्व। विराजकोट का पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से भक्त बप्पा के दर्शन को आ रहे। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन।

0: ये तेजस एफओसी ट्विन सीटर ट्रेनर और एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका। जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। मंदिरों से लेकर पंडालों तक बप्पा के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है गणेशोत्सव में भक्ति के साथ विकास का संदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि पंडालों में इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। कहीं गणपति का दरबार वंदे भारत ट्रेन की थीम पर सजाया गया है, तो कहीं परिवार ने जीजूरी के खंडोबा किले की प्रतिकृति तैयार कर बप्पा को विराजमान किया है।

0: देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ भगवान गणेश की आराधना की जा रही है। कहीं भव्य दिव्य पंडाल में बप्पा विराजमान है, तो कहीं अनोखी थीम के जरिए गणपति उत्सव को खास बनाया गया है, तो कहीं वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बप्पा का दरबार सजा है। हर जगह सजावट का अंदाज अलग है, लेकिन बप्पा की भक्ति और श्रद्धा एक जैसी है। गणेशोत्सव के इन अनोखे रंगों में कहीं परंपरा की झलक है, तो कहीं रचनात्मकता और आधुनिक सोच का संगम। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। यह बप्पा का दरबार वंदे भारत ट्रेन की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल की सजावट में ट्रेन का स्वरूप और आधुनिक भारत की रफ्तार की झलक दिखाई दे रही है।
1: देखिए, यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेन है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसकी थीम पर यहाँ पर गेट बनाया गया है। और ये वंदे भारत अंदर का जो पूरा नजारा है हमने कैमरे में कैद किया, वो पूरी तरह से जिस तरह से ट्रेन चल रही हो ऐसा डिस्प्ले पे आभास होता है, ऐसे जो भी यहाँ से अंदर से प्रवेश करते हैं। तो ये एक वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट बनाया हुआ है। इसके पीछे साइड में हम देखेंगे तो गणेश पंडाल है।
2: हम पिछले 25 साल से गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। इस साल हमने वंदे भारत ट्रेन इसलिए रखी है ताकि हम लोगों को, भक्तों को बता सके कि देश ने कितनी उपलब्धि पाई है एक वंदे भारत ट्रेन जो इतनी महत्व हो रखी है। टेक्नोलॉजी और संस्कृति का मिलन करने की हमने यहाँ पे कोशिश करी है, जिसके अंदर हमने वंदे भारत ट्रेन भी बनाई है, उसके बाद में गणेश जी का जो पंडाल है वो हमने महल के रूप में किया है।
0: गणपति उत्सव की पारंपरिक भक्ति के साथ देश के आधुनिक पहचान को जोड़ने की ये कोशिश लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: सूरत में अलग अलग प्रकार के रंग रूप गणेश उत्सव के दौरान देखने को मिल रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग थीम जो है देखने को मिली है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेचू अलग पंडाल में लगाया गया है, जहाँ पर उनके द्वारा जो कार्य किए गए उसको दर्शाया जा रहा है लेजर शो के जरिए। और एक गणेश पंडाल जो यहाँ पर बनाया, जहाँ भगवान गणेश विराजमान है, जहाँ भगवान के लोग दर्शन करते हैं।
0: बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु इस अनोखे पंडाल को भी देख रहे हैं और इसकी तस्वीरें अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। बप्पा का ऐसा ही भव्य दरबार महाराष्ट्र के नागपुर में सजा है। यहाँ शहर के प्रसिद्ध दक्षिण मूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस साल भक्तों के लिए पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। ऐसे में गणपति भक्त अब आलंदी तीर्थ स्थल के दर्शन और बप्पा की आराधना एक साथ कर रहे हैं।
3: ये हमारा क्या बोलते हैं 107वां साल है और हमारी जो मंडल की स्थापना है 1920 में हुई है। इस बार आप जैसे देख सकते हो हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, प्रतिकृति वो बनाई है ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजन समाधि मंदिर आनंदी, उसके ऊपर हमने प्रकृति बनाई है, प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति के बैक साइड जो है हमने वहाँ जो बाकी जो संजीवन समाधि है सेम वैसी प्रतिकृति हमने वहाँ पर बनाई है।
0: महाराष्ट्र ही नहीं, दक्षिण भारत में भी एक से बढ़कर एक पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो वहीं गणपति मंदिरों में गणेश महोत्सव की धूम है। अनोखी गणेश प्रतिमाओं की सूची में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है, जो इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है। इस भव्य प्रतिमा को तैयार करने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। खास बात है कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से आई है, जहाँ पझावंगडी महागणपति मंदिर में गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गणपति की भक्ति में डूबे श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ उत्सव में शामिल हो रहे हैं। दक्षिण भारत की अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपराओं के बीच गणेश उत्सव का ये आयोजन बताता है कि बप्पा की भक्ति की कोई सीमा नहीं। सूरत से संजय सिंह, नागपुर से योगेश वसंत पांडे, गुड न्यूज टुडे।
4: और गणेश उत्सव के बाद मां दुर्गा भक्तों के बीच पधारेंगी और आशीर्वाद देंगी, जिसके लिए देश भर में मां की प्रतिमाओं का बनना शुरू हो गया है। पंडालों को तैयार किया जा रहा है और सबसे ज्यादा उत्साह कोलकाता में देखने को मिल रहा है, जहां इस बार कोलकाता के मशहूर एलन पार्क को नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यहां पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। और इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, और वो है कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सजने लगे पंडाल। जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता के एलन पार्क में भव्य उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा के इस महाआयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी और देश के जाने माने आर्टिस्ट अपनी कला का यहां हुनर बिखेरेंगे।
5: क्रिसमस के लिए मशहूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का एलन पार्क पहली बार दुर्गा पूजा के लिए सवर रहा है। यहां भव्य दुर्गा पूजा की तैयारियों का शंखनाद हो गया है। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालया के अगले दिन एलन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। इस भव्य महोत्सव में बंगाल के लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आस्था भक्ति के रंग बिखेरेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
6: लाइटिंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के लिए बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों को, दुनिया में रहने वाले बंगाली और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं, बंगाल के रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं को ये पूजा समर्पित है। ये उनका पूजा है। आराम से 10 दिन आए, पूजा देखें और ये कह के जाएं कि अपन पूजा, ये हमारा पूजा।
5: आयोजकों का दावा है कि एलन पार्क में इस दुर्गा पूजा बंगाली सनातनी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और इस महाआयोजन को लेकर यहाँ के लोगों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: इस बार 25 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का शुभारंभ गयाजी में हो रहा है और इस बार मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से ई पिंडदान और ऑनलाइन पिंडदान के लिए कई पैकेजों की शुरुआत की गई है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है बिहार टूरिज्म का पितृपक्ष में ऑनलाइन पिंडदान। आपको बता दें कि बिहार के गया जी में पितृपक्ष की तैयारियां तेज हो गई है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इस बार मेले के दौरान जो देसी विदेशी श्रद्धालु गया जी नहीं पहुंच सके हैं उनके लिए पिंडदान करने की सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार का पर्यटन विभाग इसके लिए पैकेज दे रहा है जिसमें श्रद्धालु ऑनलाइन पिंडदान कर सकेंगे। ऑनलाइन पिंडदान करने वाले तीर्थयात्री इसके लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पिंडदान के पैकेज में मामूली रकम तय की गई है। इस पैकेज में गयाजी में पंडा जी आपके पुरखों का पिंडदान विधि विधान के साथ करेंगे और इस बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान की बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। फिर इस वीडियो को पेन ड्राइव में डाला जाएगा। इससे लोग अपने पुरखों की पिंडदान की स्मृतियों को डिजिटली अपने पास सजो कर रख सके। बिहार राज्य पर्यटन निगम के ई पिंडदान के पैकेज की कीमत 23,000 रुपए से शुरू होती है और इसका लाभ गया जी नहीं पहुंच सकने वाले श्रद्धालु उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम जारी हैं। कहीं पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं तो कहीं सामाजिक और सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का बनारसी अंदाज। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर खास आयोजन किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से 250 बाइक्स पर करीब 500 बाइकर्स गुजरात के वडनगर के लिए रवाना हुए। काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास पूजा की और इस मौके पर भव्य गंगा आरती हुई जिसमें काशीवासियों ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की।

0: ये शंखनाद, ये डमरू वादन, ये मंत्रोच्चार, ये पूजा पाठ, ये आस्था और भक्ति का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है और देश भर में उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगहों पर सेवा, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है तो कहीं महामृत्युंजय जाप और हवन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और धार्मिक नगरी काशी में पीएम के जन्मदिन को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। अहिल्याबाई घाट पर पीएम के नाम से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माँ गंगा का पूजन हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में वैदिक पुजारी बनने की पढ़ाई कर रहे वेद पाठी बटुक पीएम के 76वें जन्मदिन के मौके पर डमरू बजाते नजर आए। और इस बीच 76 बटुक ब्राह्मणों ने 76 लीटर केसर जल और दूध से माँ गंगा का अभिषेक किया।
1: मोदी का 76वां जन्मदिवस इस बार इसलिए बेहद खास है क्योंकि उनके 25 वर्ष सार्वजनिक जीवन में बिताने के बाद सार्वजनिक जीवन के नाम समर्पित करने का ये 25वां वर्ष है और यही कारण है कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशीवासी बेहद ही खास और अनोखे अंदाज में उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर है जहां 76 वेद पाठी बटुकों के द्वारा शंखनाद करते हुए और अपने प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद की तस्वीर के साथ डमरू वादन के साथ माँ गंगा और काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की जा रही है।
0: इसके अलावा वाराणसी से 250 बाइक्स पर 500 बीजेपी कार्यकर्ता 1300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ये बाइक रैली बडनगर तक जाएगी। देश के तमाम पवित्र नदियों के जल से बना एक बड़ा कलश भी प्रतीकात्मक तौर पर इस यात्रा में शामिल है।
2: पवित्र नदियां हैं गंगा, बेतवा, यमुना, उनका जल एकत्रित किया गया है और इस तरीके से सेवा संकल्प अभियान की तरह यहाँ पर कलश इस तरीके के लगाए गए हैं प्रतीकात्मक तौर पर। और ये कलश जो है ये वडनगर जाएंगे, आप एक नहीं है, ऐसे आपको तमाम कलश मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो कुल मिलाकर यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये कलश जो है प्रतीकात्मक तौर पर जाएंगे वडनगर जहाँ पर जो पवित्र नदियां हैं उनके जल को अर्पित किया जाएगा।
0: इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक खास बाइक यात्रा भी निकाली जा रही है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से यात्रा में 250 बाइक्स पर करीब 500 बाइकर्स शामिल हैं। ये बाइकर्स करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गुजरात के वडनगर पहुंचेंगे। वडनगर वही जगह है जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। मौका देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन का है तो नेता से लेकर अभिनेता और कलाकार पीएम को अपने स्टाइल में जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं।
3: आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक उत्साह का वातावरण है। इस अवसर पर काशी के विप्र समाज द्वारा उनका माँ गंगा का अभिषेक करके उनके दीर्घायु जीवन के लिए कामना किया गया। साथ ही साथ उन स्वस्थ रहें, यशस्वी उनका कार्यकाल हो, हम इस माध्यम से उनको शुभकामना भी प्रेषित।
4: आज काशी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 76वां जन्मदिन हम लोगों ने आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से यहाँ मनाया है। उनके 76वें जन्मदिवस के अवसर पर विप्र समाज के 76 बटकों ने 76 लीटर दूध एवं केसर जल से षोडशोपचार पूजन करते हुए गंगा में पूजन अर्चन किया है।
0: ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने पीएम की तस्वीर बनाई और उन्हें बर्थडे की बधाई दी। पुरी में ही आर्टिस्ट मानस कुमार ने एनिमेशन से पीएम की तस्वीर बनाई। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर लोगों में उत्साह है और इस मौके पर आयोजन और सेवा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सौ से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर के निर्माण में जुटी कंपनियां निवेश, तकनीक और चर्चा करेंगी। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत। सेमिकॉन इंडिया में कई राज्यों के पवेलियन बनाए गए हैं जहां पर सेमीकंडक्टर के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है।

0: देश में सेमिकॉन इंडिया 2026 की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस इवेंट में 40 से ज्यादा देशों की 600 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया की थीम सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण है। इसमें सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ निवेशक, रिसर्चर, स्टार्टअप, शिक्षाविद और छात्र शामिल हैं। ASML, अप्लाइड मटेरियल्स, टेराडाइन, इन्फिनियन, NXP, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रॉन और टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनियां यहां निवेश, तकनीक, सप्लाई चेन और कारोबारी साझेदारी पर चर्चा करेंगी। यहां पर कई राज्यों के पवेलियन बनाए गए हैं जहां सेमीकंडक्टर के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है।
1: अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर एक चिप बनती कैसी है, उसका आकार 1-2 मिलीमीटर, यानी अगर मैं उंगली पर रख के दिखाने की कोशिश करूं तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसे तैयार करने के लिए अब आप देखिए लग रही ये सारी मशीनें हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जिस तरह के वेफर्स पे ये तैयार होते हैं, फिर उनके बाद अगर कोई डिफेक्ट आया, हमें ये बताया गया कि अगर किसी चिप में कोई दिक्कत आती है, वो दिक्कत पहचानने के लिए वो कितना बारीक होगा, मेरे बालों के 10,000वें हिस्से जितना, तो जाहिर है उसे पहचानने के लिए, अगर उसमें कोई फॉल्ट है पहचानने के लिए हाई लेवल रेजोल्यूशन कैमरा इंस्पेक्शन, इस तरह की तैयारियां इसी के संसाधन और संभवतः इसी वजह से समय लगा भारत में सेमीकंडक्टर की हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कि कहां हमारी निर्भरता उन देशों की तरफ थी, चीन थी, जापान थी, कोरिया थी, और आज ये तमाम तकनीकें अपने इसी भारत की कंपनियां यहां पर लेकर के आई हैं, यहां बना रही हैं।
0: सेमिकॉन के 5वें एडिशन में 600 से ज्यादा कंपनियों के स्टॉल्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 40 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इनमें से पहले चरण में मंजूर 3 इकाइयों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।
1: लेकिन भारत के पास जो तकनीक है, जो दक्षता है, जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों के जरिए फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर फेज 1 हो या फेज 2 हो, जिसके जरिए हमने 10 सालों में वो मुकाम छुआ है कि आज भारत में वो कंपनियां तैयार हो रही हैं, फिर चाहे वो मोहाली में हो, सूरत में हो, कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से वो सेमीकंडक्टर बना भी पा रहे हैं और अब इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हम अपने उत्पाद को वैश्विक बाजार में कैसे उतारें। चुनौतियां बहुत हैं, रास्ता लंबा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है।
0: भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज भी आज लॉन्च किया है। पहले फेज की वैल्यू करीब 70,000 करोड़ रुपए थी, जबकि दूसरे फेज के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
1: न सिर्फ यहाँ विचारों का आदान प्रदान है, बल्कि भारत ये भी सीख सकता है कि अपनी उन्नत तकनीक, अपने संसाधनों को वो दुनिया की तकनीक के साथ कैसे मैच कर सकता है। और इसीलिए जब सेमिकॉन इंडिया का ये 5वां एडिशन होता है तो अपने आप ही ये भारत की उस उभरती ताकत को बताता है कि जिस सेमीकंडक्टर की हमारी निर्भरता 10 साल पहले तक दुनिया पर थी, वो धीरे धीरे कम करने के लिए हम बेहद तेजी से उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन कंपनियों की धीरे धीरे यहाँ शुरुआत हो रही है तो जल्द ही वो दिन भी आएगा जब हम अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले हर मोबाइल फोन, हर सैटेलाइट, हर एक जरूरी आवश्यक उन वस्तुओं में सेमीकंडक्टर भारत का बना हुआ होगा और वही हम इस्तेमाल।
0: दरअसल सेमीकंडक्टर की बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारत चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। सेमिकॉन का उद्देश्य चिप की सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और देश में इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार और तकनीक को बढ़ावा देना है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: और उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। युद्ध अभ्यास 2026 22वां संस्करण है, जो कि इस साल औली के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में दोनों देशों के 600-600 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। भारत और यूएसए के बीच युद्धाभ्यास, जी हाँ, उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर कौशल का अभ्यास कर रही हैं। औली में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्घाटन हो गया है, जहां दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने जवानों को संबोधित किया। इस अभ्यास का मकसद पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय इलाकों में संयुक्त सैन्य क्षमता को मजबूत करना है, ताकि मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में दोनों सेनाएं बेहतर तालमेल के साथ अभियान चला सकें। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में एक साथ काम करेंगे, संयुक्त योजना बनाएंगे, अभियान संचालन का अभ्यास करेंगे और अलग अलग युद्ध कौशल को परखेंगे। खासतौर पर पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर दिया जा रहा है, यानी पहाड़ों के बीच जवानों की आवाजाही से लेकर ऑपरेशन की योजना और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभियान को अंजाम देने तक अलग अलग पहलुओं का अभ्यास किया जाएगा। ये अभ्यास एक साथ उत्तराखंड के औली और राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संचालित किया जा रहा है।
3: भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600-600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
2: पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर मौसम ने करवट ले ली है। जम्मू कश्मीर के गुरेज के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। कबूली गली इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है और वो है मौसम ने ली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हां, ऊंचे पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों के तापमान पर भी देखने को मिल सकता है।

0: ये तस्वीरें बता रही है कि उत्तर भारत में मौसम अचानक फिर करवट ले चुका है। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह से ही बादल छाए रहे और उमस वाली गर्मी की जगह हवाओं में ठंडक का एहसास हुआ। वहीं पहाड़ों पर भी जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बारालांचला, चिंकुला, घेपन पीक समेत लाहौल के तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। सितंबर में हुई बर्फबारी ने जहां ऊंची चोटियों को सफेद कर दिया है, वहीं इनसे आने वाली सर्दी का भी एहसास करा दिया है। इस बीच लाहौल के गिलबू पर्वत से सामने आई तस्वीरें बर्फबारी के खूबसूरत नजारों को दिखा रही है। गिलबू पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा के दौरान बर्फबारी का दीदार हुआ। करीब 3,000 श्रद्धालु इस धार्मिक परिक्रमा में शामिल हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में करीब 14 से 15 घंटे का समय लगता है। देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु बर्फबारी के बीच अपनी आस्था की यात्रा पूरी कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
1: ये है स्नोफॉल और सीजन का पहला स्नोफॉल है। ये बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग इस टाइम लाहौल में हूँ। मैं किलों से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ हैं हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया। साथ में आपको मैं बताऊंगी कम से कम शायद 3-4 हजार लोग तो होंगे होंगे और बहुत लंबी लाइन लगी है। आप नीचे से लेकर जो है लाइन बार जो है लोग जा रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे इंडिया से तो है ही है, हमारे लाहौल से तो है ही है, बल्कि विदेशों से भी लोग आए हुए यहाँ पे दर्शन के लिए। और देखिए कितनी आस्था है लोगों में। मैंने अभी जो है 80 साल के जो है बुजुर्गों को भी देखा, यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हैं।
0: हिमाचल के चंबा में समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री मणि महेश कैलाश पर करीब 5 इंच तक बर्फबारी हुई है। हिमपात ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है। हालांकि खराब मौसम के चलते श्री मणि महेश यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उत्तराखंड के चमोली से भी बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान जोखिम वाली जगहों पर विशेष रूप से सतर्क रहें।
2: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में आज सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आज सुबह मौसम बदलने के साथ ही जब बारिश हुई और उसके बाद झमाझम यहां पे बर्फबारी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं अब बारिश शुरू होने के साथ ही पहाड़ों में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है।
0: बर्फबारी ने कश्मीर के पहाड़ों की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। बांदीपुरा जिले के तुलेल घाटी की काबुल गली में ताज़ा बर्फ की परत जम गई और मौसम में तेजी से बदलाव देखा गया। बर्फबारी ने काबुल गली के पहाड़ी इलाकों को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे दूर दराज के ऊंचे इलाकों का नजारा सर्दियों जैसा हो गया। ताज़ा बर्फबारी से घाटी के ऊपरी इलाकों में तापमान में काफी गिरावट आई है।
3: कश्मीर में अगस्त के महीने के दौरान जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ वानी।
4: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: और गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा का जरूर आगमन हुआ होगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303-409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए। जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर लिखें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत बिहार और वाराणसी में रोशन हुए लाखों दिए, कोलकाता में भी रोशन हुई इमारतें। पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन। यूपी में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु ने किया सवा करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन भी देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्व। राजकोट का पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जौजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों का दौर शुरू होता है, क्योंकि खबरें अब अखबार के पन्ने या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा, हर घटना, हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में वायरल हो जाती है। यही तेजी सच और झूठ की रेखा को धुंधला करते, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो
10: तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगती है। नतीजा, लोग बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लेते हैं, इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे। बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल में सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ के 3 दिन बाद कीचड़ में दबी एक 6 साल की बच्ची को सकुशल निकाल लिया। क्या है सच्चाई आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 95 साल की उम्र में एक महिला ने ट्रैक पर उतरकर ऐसा धमाल मचाया कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। अब इसकी सच्चाई क्या आगे बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को 26 अगस्त को नेपाल में आई भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल में रसुवा जिले में टिमोरे गांव में सुरक्षा कर्मियों ने आपदा के 3 दिन बाद कीचड़ में दबी एक बच्ची को सकुशल बचा लिया। क्या इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए।

0: नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ से जान माल का काफी नुकसान हुआ। इस आपदा से करीब 16 लाख लोग प्रभावित हुए। अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत और 5000 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। नेपाल में अभी भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सुरक्षा कर्मियों को एक बच्ची को मलबे से निकालते हुए और बाद में उसे सूप पिलाते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि नेपाल के रसुवा जिले के टिबोरे गांव में सुरक्षा कर्मियों ने आपदा के 3 दिन के बाद कीचड़ में दबी एक बच्ची को बचाया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा कि ये देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 3 दिन के बाद मौत को पीछे हटना पड़ा और जिंदगी जीत गई। 3 दिन तक आपदा के कीचड़ में दबी 6 साल की बच्ची को नेपाल के सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू किया। घटना नेपाल के रसुवा जिले के टिमोरे गांव की है। बाढ़ और भूस्खलन के मलबे में दबी रहने के बाद 6 साल की बच्ची मनीषा को जिंदा बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर 26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से जोड़कर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल के रसुवा जिले के टिमोरे गांव में सुरक्षा कर्मियों ने आपदा के 3 दिन बाद कीचड़ में दबी एक 6 साल की बच्ची को सुरक्षित बचा लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, लेकिन वायरल हो रहा दावा सच्चा है ये जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की तहकीकात की, क्योंकि अक्सर जो कहानी लोगों के सामने पेश की जाती है वो सही नहीं होती। ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आप तक सही और सच्ची जानकारी पहुंचे। जांच के लिए हमने सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखा। इसे 2 क्लिप्स को मिलाकर बनाया गया है। इसमें पहली क्लिप में बच्ची को मलबे से निकालते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरी क्लिप में बच्ची को सूप पिलाते हुए दिखाया गया है। हमने दोनों वीडियोस की बारी बारी से जांच शुरू की। पहले वीडियो में एक की फ्रेम में एक व्यक्ति के हाथ कीचड़ में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में जब हाथ पर कीचड़ लगता है तो वो हाथ ऊपर से चिपका होता है, लेकिन यहां उंगलियां और हथेलियां कीचड़ में मिलकर एक हो गई। और वहीं दूसरे वीडियो के एक क्लिप में एक जगह पर बैकग्राउंड में मौजूद 2 लोगों के चेहरे एक जैसे हो जाते हैं। अगर ये असली वीडियो होता तो पर यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। सर्च के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि नेपाल के रसुवा जिले के टिमोरे इलाके में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद मलबे में 3 दिन यानी कि लगभग 55 से 60 घंटे तक दबी 6 साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल की टीम ने मलबे से रोने की आवाज सुनने के बाद 28 अगस्त को बच्ची को बाहर निकाला। उस दौरान इसका ओरिजिनल वीडियो भी सामने आया था। फैक्ट चेक टीम ने ओरिजिनल वीडियो और वायरल हो रहे वीडियो का फ्रेम दर फ्रेम मिलान किया तो फर्क साफ नजर आया। ओरिजिनल वीडियो में नजर आ रही बच्ची जिस कलर की ड्रेस में नजर आ रही है वैसे कलर की ड्रेस में वायरल वीडियो में मौजूद बच्ची नहीं दिख रही है। ये देखकर हमें दावे की असलियत पर संदेह हुआ। बच्ची को मलबे के अंदर से निकाला गया है, ये दृश्य पूरे वीडियो में देखने को नहीं मिल रहा है। पहले हिस्से में बच्ची को उठाकर एक जगह रखा जाता है और फिर कीचड़ से ढक दिया जाता है, लेकिन इस दौरान बच्ची के शरीर के पूरे हिस्से में मिट्टी नजर नहीं आती है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि अगर बच्ची को मलबे के अंदर से बाहर निकाला गया है तो फिर शरीर के पूरे हिस्से में मिट्टी लगा हुआ क्यों नहीं दिख रहा। नेपाल के रसुवा जिले के टिमोरे इलाके में जब बच्ची का रेस्क्यू किया गया तब खराब मौसम और अंधेरे के कारण उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से नहीं ले जाया जा सका। फिर 29 अगस्त यानी कि शनिवार की दोपहर को काठमांडू के अस्पताल में इलाज के लिए बच्ची को भर्ती कराया गया था। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि मलबे में 3 दिन दबे होने के बावजूद अचानक बच्ची ठीक भी हो गई और सूप भी पीने लगी, ये कैसे संभव हो सकता है। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को गौर से देखा। इस दौरान हमें ऐसा नजर आया कि इस वीडियो को दो क्लिप को जोड़कर तैयार किया गया है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें के एक एक्स यूजर के अकाउंट पर वीडियो का लंबा वर्जन मिला। वीडियो में मलबे से बच्ची को निकालते समय उसके मुंह के कुछ हिस्सों में मिट्टी लगी हुई नहीं दिखी। इससे हमें वीडियो के एआई निर्मित होने का संदेह हुआ। इसके बाद हमने दोनों क्लिप्स को अलग अलग करके उन्हें चेक किया। इसे हमने एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन से भी चेक किया। इसमें इसे 70% एआई संभावित बताया गया। इसके बाद हमने इसे एक और टूल एआई और नॉट से चेक किया। इसमें वीडियो को 95% एआई संभावित बताया गया। वॉज इट एआई ने इसके की फ्रेम या उसके कुछ हिस्सों के एआई से बने होने की कुछ संभावना जताई। हमने दूसरी क्लिप्स को बिट माइंड से चेक किया तो उसने वीडियो के एआई से बने होने की 75% संभावना जताई। हमने इस क्लिप के की फ्रेम्स को एआई और नॉट से भी चेक किया तो इसके 61% तक एआई टूल से बने होने की संभावना जताई गई। इससे पता चलता है कि वायरल वीडियो एआई टूल्स की मदद से बनाया गया है। इसके बाद सर्च के दौरान हमें नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के फेसबुक पेज से 29 अगस्त को एक बच्ची के बचाव अभियान का वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। इसके अनुसार नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स की टिमोरे रसुवा टीम ने नेपाली सेना के साथ मिलकर चलाए गए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 28 अगस्त के बाढ़ और भूस्खलन में दबी मनीषा मगर को सुरक्षित बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद हमने ओरिजिनल वीडियो और एआई निर्मित वीडियो का भी मिलान करना शुरू किया। इस दौरान हमें अंतर साफ साफ देखने को मिला। इस तरह हमारी जांच से ये साफ हो गया कि नेपाल के सुरक्षा बलों ने रसुवा जिले के टिमोरे से मलबे में दबी बच्ची को बचाया है, लेकिन इस दावे के साथ वायरल हो रहा वीडियो एआई निर्मित है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
1: 95 साल की उम्र में जहां लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचते हैं, छोटे मोटे कामों के लिए भी सहारा ढूंढते हैं, वैसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर 95 साल की उम्र में एक महिला ट्रैक पर उतरकर कैसे अपना दमखम दिखा सकती है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
2: एथलेटिक मैदान का ये वीडियो है जहां कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं को टक्कर देते हुए मैदान में दादी भी नजर आती है। दादी के हाई जंप लगाने से पहले मैदान में मौजूद बच्चे उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें चीयर करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद दादी भागना शुरू करती हैं और देखते ही देखते स्टिक के दूसरी ओर छलांग लगा देती हैं। दादी की ये हाई जंप इतनी स्मूथ लगती है कि मन करता है वीडियो को बार बार देखते रहो। छलांग लगाने के बाद दादी इतनी आसानी से चेहरे पर एक स्माइल के साथ खड़ी हो जाती हैं, जैसे उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल था। वीडियो यही खत्म नहीं होता। दूसरे क्लिप में दादी पोल वॉल्ट करती नजर आती हैं। इसमें बांस की मदद से व्यक्ति हाई जंप करता है, दादी इसे भी बड़ी आसानी से कर लेती है। इस बार स्टिक की ऊंचाई पहले से ज्यादा होने के बावजूद भी दादी उतनी स्पीड और जोश से इसे पार कर लेती है। दादी को कूदते हुए देख लोग फिर से तालियां बजाने लगते हैं और दादी फिर से मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। वीडियो पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि दादी इस उम्र में भी इतनी फिट कैसे हो सकती है। लोग दादी से उनकी डाइट और उनकी फिटनेस का राज जानना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कर एक यूजर ने लिखा कि उम्र को मात देती रफ्तार, 95 साल की उम्र में जज्बा ऐसा कि उम्र भी पीछे छूट गई, और हम हैं कि 95 की उम्र में दौड़ना तो दूर, सीढ़ियां देखकर ही लिफ्ट खोजने लगते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो से मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के साथ दावा ये किया जा रहा है कि ये हैरतअंगेज करतब दिखाती बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र है 95 साल जो न केवल आसानी से हाई जंप कर लेती हैं बल्कि पोल को लेकर तेज रफ्तार में दौड़कर छलांग लगाते हुए ऊंचाई पर लगी पट्टी को पार कर लेती हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। सबों की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर 95 साल की उम्र में एक महिला ऐसे कारनामे को कैसे अंजाम दे सकती है। वीडियो हमारे सामने आया, हमने इसका फैक्ट चेक किया क्योंकि सच और झूठ की कहानी को सामने लाना जरूरी था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच की शुरुआत की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखा। इसमें शुरुआत में बुजुर्ग महिला के पीछे खड़े लोगों की संख्या से ज्यादा पैर नजर आ रहे हैं और आखिर में कूदने के बावजूद बुजुर्ग का चश्मा नहीं गिरता है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो फिर ये कहीं ना कहीं खबर जरूर बनी होती, इसके बारे में कोई जानकारी जरूर होती। स्टेडियम में बैठे लोगों के शरीर में कोई हरकत देखने को नहीं मिलती है। अगर वाकई में किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का ये वीडियो है तो फिर यहां स्टेडियम में बैठे लोग स्थिर क्यों नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल ये था कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल ये कि वीडियो में आसपास कई पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं नजर आता है। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं AI वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब सच और झूठ आपस में।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वीडियो की जानकारी सामने लाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने लगातार खोजबीन की लेकिन इस दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट या भरोसामंद स्रोत नहीं मिला जिसमें इस वीडियो को वास्तविक किसी खेलकूद प्रतियोगिता का बताया गया हो। हालांकि कुछ रिपोर्ट जरूर मिली जिसमें बताया गया है कि कई बुजुर्ग महिलाओं ने पोल वॉल्ट के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स में वायरल वीडियो मौजूद नहीं है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो 8 सितंबर 2026 को AI कंटेंट क्रिएटर के एक फेसबुक पेज पर अपलोड किया हुआ मिला। इस पोस्ट पर AI कंटेंट का लेबल मौजूद है। पोस्ट में बताया गया है कि 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला अमेरिकी झंडे वाली टी शर्ट और स्पोर्ट्स शॉर्ट पहनकर ट्रैक मीट पे पोल वॉल्ट करने पहुंची। पोस्ट के मुताबिक उनके हाथ में पोल देखकर वहां मौजूद खिलाड़ी हंसने लगे। पड़ताल के दौरान हमें इसी फेसबुक पेज पर वायरल वीडियो में मौजूद बुजुर्ग महिला की तरह दिखने वाली एक और महिला का वीडियो भी मिला। इसमें महिला हाई जंप करती हुई नजर आ रही है। इस पोस्ट पर भी AI कंटेंट का लेबल मौजूद है। इस प्रोफाइल को स्कैन करने पर हमें इसी तरह के कई और वीडियो पोस्ट मिले, इन पर भी AI कंटेंट का लेबल लगा हुआ है। इसके बाद पुष्टि के लिए हमने इस वीडियो को AI डिटेक्शन टूल डीप फेक ओमीटर पर जांचा गया। इस टूल के 5 अलग अलग डिटेक्टर्स ने उच्च संभावना के साथ वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताया। वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल 0GPT ने भी उच्च संभावित AI जनरेटेड बताया। इस वीडियो को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल ट्रुथ स्कैन पर भी जांचा। इस दौरान अपने विश्लेषण में इस टूल ने 90% स्कोर के साथ वायरल वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। इसके अलावा हमने वायरल वीडियो में मौजूद दृश्य को एक अन्य AI डिटेक्शन प्लेटफॉर्म अलोर नॉट पर भी चेक किया। इस टूल ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को उच्च संभावित AI निर्मित बताया। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि एथलेटिक के मैदान में दमखम दिखा रही बुजुर्ग महिला का ये वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं और इन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
8: बच्चों ने मिलकर ऐसा अद्भुत नजारा रच दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक स्कूल परिसर में बड़ी संख्या में छात्र बेहद व्यवस्थित तरीके से जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। पहली नजर में शायद किसी को अंदाजा ना हो कि बच्चे आखिर इस तरह क्यों बैठे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से पूरा दृश्य दिखाता है, तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। सभी बच्चे मिलकर भगवान गणेश की एक विशाल आकृति का हिस्सा बने हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से देखने पर बच्चों की बैठने की व्यवस्था मिलकर गणेश जी का भव्य स्वरूप तैयार करती है। इसमें मुकुट, सूंड और कान जैसी आकृतियों को बेहद सटीक तरीके से उकेरा गया है। बच्चों का ये तालमेल देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने बहुत सोच समझकर पूरी तस्वीर तैयार की हो। यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग कुछ पल के लिए इस अनोखे दृश्य में खो जाते हैं। इस पूरा आयोजन की खास बात केवल इसका आकार नहीं बल्कि बच्चों का अनुशासन और सामूहिक भागीदारी भी है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को एक साथ एक पैटर्न में बैठाना और लंबे समय तक उस व्यवस्था को बनाए रखना आसान काम नहीं होता, लेकिन बच्चों की एकाग्रता साफ नजर आती है जो इस पूरे प्रयास को खास बना देती है।

गणपति उत्सव में भक्ति के साथ आधुनिक तकनीक का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस शानदार ड्रोन शो में बड़ी संख्या में ड्रोन को एक साथ हवा में उड़ाया गया। सभी ड्रोन एक खास पैटर्न में उड़ते हुए अपनी जगह बदल रहे थे। कुछ ही देर में आसमान पर रोशनी से भगवान गणेश की आकृति उभर आई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे गणपति बप्पा स्वयं आसमान में विराजमान हों। रोशनी से बना ये विशाल रूप बेहद खूबसूरत और आकर्षक नजर आ रहा था। हजारों ड्रोन की मदद से आसमान को एक डिजिटल कैनवास में बदल दिया गया। इसमें तकनीक, रचनात्मकता और धार्मिक आस्था तीनों का खूबसूरत मेल देखने को मिला।

कहते हैं कि सपने देखने के लिए बड़ी सुविधाओं की नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की जिद की जरूरत होती है। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें सड़क किनारे का रोजमर्रा का माहौल दिखाई देता है। गाड़ियां गुजर रही हैं, आसपास लोगों की आवाजाही है और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। इसी बीच एक बच्चे जमीन पर बैठकर अपनी कॉपी में कुछ लिखती नजर आती है। उसके सामने स्कूल बैग रखा हुआ है और वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई में डूबी हुई है। बच्चे के पास ही उनकी माँ भी बैठी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि माँ सड़क किनारे छोटी सी दुकान या सामान बेचने का काम कर रही है। माँ अपने काम में व्यस्त है जबकि बच्चे उसी जगह को अपनी पढ़ाई की जगह बना लेती है। ना कोई शांत कमरा, ना पढ़ने के लिए अलग मेज कुर्सी और ना ही आसपास का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नजर आता है। फिर भी बच्ची की नजरें अपने कॉपी से नहीं हटती। पढ़ाई के प्रति उसका जज्बा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए और बच्ची की मेहनत की तारीफ करने लगे।

पर माँ परफॉर्म कर रही है, डांस के जरिए अपने कला का प्रदर्शन कर रही है, तो भला बेटी कैसे पीछे रहे। माँ के डांस स्टेप को हूबहू उतारने की कोशिशें शुरू हो गई। अपने मासूम एक्सप्रेशन पैरों और हाथों के जरिए डांस करने लगी। स्टेज पर माँ डांस की जो स्टेप कर रही है वही स्टेप ये बच्ची दोहराने की कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार तालमेल भी टूटा, लेकिन प्रयास जारी रखा। मानो तय करके बैठी हो कि माँ की तरह ही बेहतरीन डांसर बनना है। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार उतार रहे हैं।

मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के तमेई सब डिवीजन के कॉनफुंग गांव से सामने आया ये नन्हा स्टार लोगों का दिल जीत रहा है। बच्चा जिस अंदाज में बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में पोज दे रहा है, उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कभी हाथों की मसल दिखाता है तो कभी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कैमरे के सामने अपना अंदाज दिखाता है। बच्चे का जोश और उसकी मां से उम्मीद इस पल को और खास बना रही है। लोग इस नन्हे स्टार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देखी है आपने 6 टायर वाली बाइक? ये कोई सपना नहीं बल्कि एक शख्स का अनोखा टैलेंट है। इस शख्स ने अपने दिमाग और हुनर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बाइक तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। खास बात यह है कि सिर्फ बाइक बनाई ही नहीं बल्कि उस पर बैठकर उसे चलाकर भी दिखाया। बाइक का अनोखा डिजाइन और उसे चलाने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। ऐसा खेल देखकर शायद ही कोई अपनी हंसी रोक पाए। बच्चों को थैले में डालकर रेस कराई गई और रेस शुरू होते ही बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। कोई तेजी से आगे बढ़ रहा था तो कोई संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा था, लेकिन तभी एक बच्चा थोड़ी दूर जाते ही गुलाटी खाकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे, फिर प्यार से बच्चे को उठाया। बच्चे की इस मजेदार रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चल।
1: क्या आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? क्या अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़।

0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सुंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की होगी, जब स्कूली बच्चे बने मोदी। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें। जयंती पर लालबाग चार राजा के दिव्य दर्शन भी करवाएंगे, साथ ही मुंबई में वारकरी विट्ठल अवतार में बप्पा को भी देखिए। और पहाड़ों का रुख करने का वक्त आ गया, क्योंकि सितंबर में ही पहाड़ों पर शुरू हो गया है बर्फोत्सव। बर्फोत्सव के तमाम रंग, आगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता और दिल्ली से पटना और उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। गणेश चतुर्थी के चौथे दिन भी देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्व। राजकोट का पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से भक्त बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा है विघ्नहर्ता का यह अनूठा रूप। पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बच्चे। अकोला में गौरी शंकर पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जौजला में भी जबरदस्त बर्फबारी। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका 76वां जन्मदिन है और उनकी जन्मभूमि गुजरात के वडनगर से लेकर उनकी कर्मभूमि यानी काशी तक उत्सव का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों की तरफ से उनका जन्मदिन मनाने की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। कहां स्कूली बच्चे उनकी तरह दिखते हुए केक काटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं मंदिरों में उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मंगल कामना भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई देशवासी अपने घरों में आशीर्वाद का दिया प्रज्वलित भी कर रहे हैं।

0: जन्मदिन की पार्टी का जोश तो बच्चों में ही होता है, और जन्मदिन प्रधानमंत्री का हो तो क्या कहने। मोदी जी के मास्क लगाए गए, रंग बिरंगे गुब्बारे सजाए गए, एक बच्चे ने पीएम जैसा चेहरा मुहरा बनाया और फिर धूमधाम से केक काटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये खूबसूरत तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई है, जहां कुछ स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया, खुद भी जमकर केक खाया और प्रतीक के तौर पर मोदी जी की तस्वीर को भी केक खिलाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मां विंध्यासिनी से जुड़ा पवित्र शक्ति पीठ मौजूद है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के साथ विशेष पूजा की गई। इस दौरान मां विंध्यावासिनी को 176 किलो लड्डू का भोग भी लगाया गया। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके और देश के कल्याण के लिए इस तरह के विशेष अनुष्ठान का आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुशांत रॉय नाम के मूर्तिकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वैक्स यानी मोम से बनी आदमकद प्रतिमा तैयार की। बंगाल की पारंपरिक धोती कुर्ते में पीएम मोदी की मोम वाली इस प्रतिमा का अनावरण कोलकाता के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पूरे होने पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत काशी से प्रधानमंत्री की जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से एक भव्य बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि कही जाती है, और वहां से चलने वाली ये 500 बाइक्स पहुंचेंगी वडनगर यानी कि उनकी जन्मस्थली पर। मैं जिस बाइक पर सवार हूं उसके आगे आप देखें तो लिखा है सेवा संकल्प अभियान, जन सेवा से राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष। और मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा फ्रेम वाइड खोलें और मेरे पीछे भी दिखा दें, 500 ऐसी बाइक्स जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और 500 जितना दूर आपका कैमरा जाएगा उतना दूर आपको मैं दिखाऊंगा यहां से बाइक्स। ये बाइक्स यहां पर लाकर रखी गई हैं क्योंकि कुछ क्षणों में यहां से ये बाइक्स रवाना होंगी वडनगर के लिए। लंबा रास्ता जरूर है लेकिन जो एक तरीके से उत्साह है उसमें कोई कमी फिलहाल नहीं है। इन बाइक्स को अगर आप यहां से देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, इनमें इस तरह के स्टिकर्स यहां लगे हुए हैं, सेवा संकल्प अभियान, जन सेवा से राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष, और जहां से जहां तक इनको कुल मिलाकर जाना है उसकी जानकारी भी यहां पर दे दी गई है, यानी कि वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा, ये सेवा यात्रा कुल मिलाकर इसको नाम दिया गया है। यहां पर कुल 500 इस तरह की बाइक्स जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। 500 बाइक्स यहां से रवाना की जाएंगी, और बड़ी बात यहां पर ये भी है कि जो इन बाइक्स को ले जाएंगे वो अलग अलग राज्यों से हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूपी के लोग हैं वही इन बाइक्स को ले जा रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों के भी लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा जो पवित्र नदियां हैं गंगा, बेतवा, यमुना, उनका जल एकत्रित किया गया है, और इस तरीके से सेवा संकल्प अभियान की तरह यहां पर कलश इस तरीके के लगाए गए हैं प्रतीकात्मक तौर पर, और ये कलश जो है ये वडनगर जाएंगे।
0: करीब 22 दिनों में 10 राज्यों, 193 जिलों और 1,159 गांव से होकर गुजरने वाली इस यात्रा में 250 बाइक्स पर 500 बाइकर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की कर्मस्थली काशी में मौजूद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में महिलाओं ने गगन भेदी शंखनाद करके सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। फिर पीएम मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के जरिए से काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा और स्नेह को भी व्यक्त किया।
2: संकल्प अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के मौके पर काशी यानी उनकी कर्मस्थली से शुरू हो रही है और पूरे एक महीने तक ये अभियान यूं ही चलता रहेगा। देख सकते हैं शंखनाद की ध्वनि के साथ आज इस वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पर जो महिलाएं पहुंची हैं काशी से धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं नरेंद्र मोदी का।
3: सारी महिलाएं शंखनाद करके उद्घोष दे रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि आज उनके जन्मदिन पे हम लोग भी बहुत खुश हैं।
0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भव्य दीप उत्सव आयोजन किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित 65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर करीब 1.5 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना के लिए रायबरेली के ऊंचाहार की धरती पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रिकॉर्ड बनाया। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की तरफ से 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप देश में अपनी तरह का अनूठा आयोजन बन गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के विशेष अवसर पर ओडिशा के भुवनेश्वर में करीब 40,000 छात्रों ने उनका जन्मदिन बेहद अनोखे अंदाज में मनाया। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के इन छात्रों ने केक काटकर पीएम के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में मना, पूरे देश से दुआएं मिली, बच्चे बड़े आम और खास सभी शामिल हुए, सभी ने अपने अपने तरीके से खुशियां बांटी और मनाई। देखा जाए तो आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव, रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे गणेश उत्सव की। पूरा देश बप्पा के जयकारों से गूंज रहा है, भक्ति में लीन है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बप्पा के दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। जगह जगह अलग अलग थीम पर बने पंडाल भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात से लेकर देश भर में गणेश उत्सव की दिव्य रौनक छाई हुई है। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम भारत तक भक्ति के रंग नजर आ रहे हैं।

0: मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में हर दिन भक्तों का रेला उमड़ रहा है। इसी तरह परेल के राजा के दरबार में भी भक्तों का तांता लग रहा है। इस बार यहाँ पंढरपुर के वारकरी विठ्ठल अवतार में बप्पा विराजमान है, साथ ही पंढरपुर की तरह ही भव्य सेट भी बनाया गया है।
1: सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विठ्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं। विठ्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं।
0: पंढरपुर की तरह बनाए गए सेट के सामने ही तालाब भी बनाया गया है, जिसमें पंढरपुर के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी का ही पानी है। और विशेष बात यह है कि चंद्रभागा नदी के पानी से ही बप्पा की मूर्ति भी बनाई गई है। नागपुर में इस बार दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। पुणे के आलंदी मंदिर की शैली में यह नक्काशीदार खम्बे संत ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर का प्रारूप और बप्पा की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। अकोला में रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल का ये पंडाल भी भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। यह इस बार गणेशोत्सव के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के भव्य झांकी तैयार की गई है।
2: अकोला में न्यू राधा कृष्ण प्लॉट में जो है बड़ोदरा से लाई ये जो रिद्धि सिद्धि गणपति पंडाल की जो भव्य मूर्ति है लगभग 35 फीट की, ये पूरी तरीके से वहां तक जहां पर शंकर जी की बारात दिख रही है ना वहां तक 35 फीट की है। सुंदर सजाई भी है, इंटीमेट ज्वेलरी से बप्पा को सजाया गया है और सबसे अहम बात है कि मूर्ति में ही जो है इंक्लूड पूरी तरीके से शिव बारात है।
0: अकोला में एक परिवार ने गणेशोत्सव के लिए पुणे के प्रसिद्ध जेजुरी स्थित खंडोबा मंदिर की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। घर के गणपति के साथ सजे जेजुरी के खंडोबा के इस भव्य दरबार को मानकर परिवार के सदस्यों ने मिलकर तैयार किया है। किसी ने वेस्ट मटेरियल से किले की मीनार तैयार की तो किसी ने रंग रोगन किया। अकोला ही नहीं, चंद्रपुर के बलारपुर में भी एक परिवार ने घर में आस्था का अद्भुत संसार सजाया है, जिसमें बर्फीले पहाड़ों के बीच बप्पा विराजे हुए हैं। यहाँ चिंतावार परिवार ने बहुत ही आकर्षक रूप से झांकी सजाई है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। चंद्रपुर में ही बप्पा का ऐसा दरबार सजाया गया है जिसमें लालबाग के राजा के साथ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने इस बार लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति बनवाई है, साथ ही साई बाबा का दरबार भी तैयार किया गया है।
3: शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साई बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहां पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे।
0: यहां साईं बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे साईं बाबा सही में पंडाल में पधारे हुए हैं। गुजरात के सूरत में भी अलग अलग थीम पर आकर्षक गणेश पंडाल तैयार किए गए हैं। भटार इलाके में ठाकुर सेवा समिति ट्रस्ट के इस पंडाल में जहां एक और भगवान गणेश विराजे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश में हुए विकास कार्यों को भी दिखाया गया है। गणेश पंडाल के ठीक बगल में दूसरे पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा स्थापित की गई है और सामने विशेष लेजर शो के माध्यम से उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और योजनाओं को दर्शाने वाली प्रस्तुति देखने को मिलती है। वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बने इस पंडाल का प्रवेश द्वार भी विशेष है।
4: यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है और यहाँ के अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा एक बनाया गया है, किस तरह से ट्रेन का इंजन होता है, किस तरह से चलता है और जो डिस्प्ले में यहाँ लगाया गया है इधर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ट्रेन चल रही है और ये पूरा नजारा बाहर का दिख रहा है।
0: अब हैदराबाद के विवेकानंद यूथ एसोसिएशन के इस गणेश पंडाल को देखिए, जहां भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट और स्पेस मिशन से प्रेरित इस पंडाल में भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों के साथ ही भविष्य के अंतरिक्ष की झलक भी दिखाई गई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में 21,000 पौधों और अंकुरों का उपयोग कर बनाई गई गणेश प्रतिमा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती नजर आ रही है। केरलम से लेकर तमिलनाडु तक गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। रामेश्वरम में गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर दिखे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय साबले, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बात मौसम की, पहाड़ों पर मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है और फिर बर्फबारी शुरू हो गई। जगह जगह सफेद चादर सी बिछी नजर आने लगी और इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है और इस बर्फबारी का लोगों ने भी खूब मजा लिया और इसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक के ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हुई और साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।

0: आसमान से गिरती ये फुहारें खुशी से भर देने वाली है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खूबसूरत वादियों का नजारा और शानदार हो गया है। बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में हुई बर्फबारी से हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखरी दिख रही है। लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिंकुला, घेपन पीक समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद परतों से ढक गए हैं और यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हैं। लाहौल के गिलबू पर्वत की ये तस्वीरें बर्फबारी के शानदार नजारों को दिखा रही हैं। इस पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा में बर्फबारी का दीदार हुआ, जिसको लेकर वो अपनी खुशी जताते भी नजर आए।
1: सीजन का पहला स्नोफॉल है ये, बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, इस टाइम लाहौल में हूँ मैं, किलो से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ है हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया।
0: लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश पर भी जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर बर्फ की मोटी परतें तक जमी नजर आ रही हैं। करीब 4 इंच तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से मणिमहेश यात्रा भी रोकनी पड़ी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी मौसम अचानक से बदला और यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई और फिर हर जगह सफेद परतें नजर आने लगी। बर्फबारी के चलते मौसम बहुत सर्द हो गया है, हालांकि श्रद्धालुओं में बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
2: वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुर्बानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था, जो खिचड़ी यहाँ पे मिलती है, वो यहाँ पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है। यहाँ पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है।
0: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित गुरेज के ऊपरी इलाके तुलेल घाटी के काबुल गली की है, जहाँ हर तरफ सफेद चादर सी बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी से यहाँ की कुदरती खूबसूरती और निखर गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आने से मौसम सर्द हो गया है।
3: जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
0: ये बर्फबारी मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है, खासकर पहाड़ों में इसे ठंड के दस्तक देने के रूप में देखा जा रहा है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोनी और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अच्छी और सच्ची खबरों में शानदार खबर भी आपको बता देते हैं। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। 30 गेंदों में शतक जड़ा है उन्होंने। अभिषेक ने 9 चौके और 10 छक्कों की मदद से 30 गेंदों में शतक पूरा किया। अभिषेक की ओर से यह सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है। बताते चले कि दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मुकाबला चल रहा है और इसी मैच में अभिषेक ने यह रिकॉर्ड बनाया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
6: का। आप अपने विचारों से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं क्या? अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं क्या? है आपके विचारों की शक्ति और प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आपके विचारों की शक्ति के बारे में और जानेंगे कि विचारों के प्रयोग से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे भाग्य बढ़ाने का एक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं, देखिए ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं, और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं, आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचारों द्वारा बदल सकते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, तनाव इस समय आपका कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, उपहार मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें। ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खासतौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: और गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमें भेज देना है, हम इन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों के वीडियोस आ रहे हैं। यूपी के आगरा से प्रोफेसर रेणु वर्मा ने हमें अपने घर गणेश स्थापना की तस्वीरें भेजकर इस पर्व की खुशियां साझा की हैं। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भक्ति भाव के साथ बप्पा को घर लाया गया, फिर उनकी स्थापना की गई। रंग बिरंगे स्टोन से सजे बप्पा बेहद प्यारे लग रहे हैं और बप्पा का दरबार भी फूलों से सजाया गया है। दूसरी तस्वीर गुजरात के सूरत से आई है और भेजी है चैताली सोलंकी ने। उन्होंने भी हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा की और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने प्यारे और भक्ति भाव के साथ बप्पा की आरती हो रही है और गणेश चतुर्थी की ये तस्वीर हमारे दर्शक लगातार हमें भेज रहे हैं और पर्व की खुशियां मना रहे हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।

0: साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेलकू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य, दूर दराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे बच्चे। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में भारत की ओर से लगाए सबसे तेज T20 शतक, सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा का टूटा रिकॉर्ड। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों की अनूठी दोस्ती की भी है।
8: हिम्मत, सटीकता और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार, ये वीडियो देखिए, रोमांच और गर्व से भर जाएंगे आप। एक तरफ आसमान से पैराशूट जंप की तैयारी, तो दूसरी तरफ ट्रेंड कॉम्बैट डॉग को सुरक्षित तरीके से अपने साथ लेकर नीचे उतरना।

0: था। सफर आसान नहीं था, लेकिन जब बात भारतीय सेना की हो तो हर मुश्किल एक मिसाल में बदल जाती है। ये पल भी ऐतिहासिक था। माना जा रहा है कि अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी डॉग हैंडलर और उसके कॉम्बैट डॉग ने पूरे कॉम्बैट लोड के साथ एक साथ टैंडम डिसेंट किया हो। ये वीडियो भारतीय सेना के एयरबोर्न कॉम्बैट ट्रेनिंग में उस अनूठे एक्सरसाइज का है जहां सूर्य कमांड के एक पैराट्रूपर ने बेहद ड्रॉप जोन के ऊपर डॉग हैंडलर और उसके ट्रेंड कॉम्बैट डॉग के साथ टैंडम पैराशूट जंप किया। खास बात ये रही कि टीम ने फुल कॉम्बैट लोड के साथ विमान से छलांग लगाई। ये एक्सरसाइज एक जवान और कॉम्बैट डॉग के बीच भरोसे, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क की परीक्षा भी थी, जिसमें वो सफल रहे। इस वीडियो को सूर्य कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, मोज़ेक आर्ट का एक सुंदर नमूना भी है। देखने में ये विशाल पेंटिंग नजर आती है, पर आप ये जानकर शायद हैरान हों कि इस कलाकृति को 1,00,000 दियों से तैयार किया गया है। इसे बनाने में 3 दिन लगे हैं और इसे झारखंड के 11 कलाकारों ने मिलकर बनाया है। इसे पीएम मोदी के जन्मदिन पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया इंडोर स्टेडियम में तैयार करवाया गया है। दियों और अलग अलग रंगों के इस्तेमाल से तैयार ये तस्वीर करीब 2500 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाई गई है। कोनो नेशनल पार्क में इन दो चीतों की दोस्ती लोगों को हैरान कर रही है। कहा जा रहा है कि न सिर्फ भारत के प्रोजेक्ट चीता बल्कि दूसरे किसी वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में भी यह अनोखी घटना है, क्योंकि ये दोनों दो अलग देशों और अलग अलग परिवेश से आते हैं। एक KNG-23 16 महीने का है, भारत में जन्मा है, और दूसरा CCV-4 2 साल का है। बोत्सवाना से इसी साल फरवरी में आया है। बावजूद इसके दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसकी वजह इनकी पहली मुलाकात भी हो सकती है। जब ये दोनों मिले तब दोनों परिवार से बिछड़ चुके थे, दोनों अकेले थे। KNG-23 जंगल में घायल हो गया था तो उसे CCB-4 के बाड़े में ही रखा गया था, लेकिन उसने ना तो इसका विरोध किया ना ही आक्रामकता दिखाई, बल्कि उम्मीद से परे KNG-23 के साथ खाना भी शेयर किया। और तब से ये दोनों अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ देते हैं। इनका ये व्यवहार वन्य जीव विशेषज्ञों को भी हैरान कर रहा है। अपनी अपनी आस्था। ये बुजुर्ग हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले हैं। ऐसे ही यात्रा करते हुए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक जाएंगे। हर रोज 5 से 7 किलोमीटर की यात्रा ऐसे ही तय करते हैं। अभी राजस्थान के अलवर पहुंचे हैं। 21 अगस्त को घर से चले हैं और मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंचने में इन्हें करीब 25 दिन और लगेंगे। इस दौरान वो जहां से भी गुजर रहे हैं, लोग उनकी आस्था और साहस देखकर हैरान हो रहे हैं। बड़ी बात ये है कि इनकी इस धार्मिक यात्रा में परिवार उनके साथ है। तमिलनाडु के मदुरै स्थित ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर में 17 साल के लंबे अंतराल के बाद आज 17 सितंबर को भव्य महाकुंभाभिषेकम समारोह संपन्न हुआ। आज सुबह 7:40 से 8:10 के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वर्ण विमानों पर खड़े पुजारियों ने जुड़वा मंदिरों के ऊपर पवित्र जल अर्पित किया। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान को लेकर पूरे मंदिर परिसर और गोपुरम यानी प्रवेश द्वार को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस दुर्लभ और पवित्र अवसर के साक्षी बनने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में भक्त मदुरै पहुंचे। आखिरी बार ये पवित्र अनुष्ठान 8 अप्रैल 2009 को हुआ था। मंदिर में मरम्मत और संरक्षण के कामों की वजह से 17 साल तक ये समारोह नहीं हो पाया था।
1: और अब बात करते हैं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी होने के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर से भी बर्फबारी का सुंदर नजारा सामने आया है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ों की खूबसूरती तो बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं।

0: उत्तराखंड के चमोली से बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सितंबर में हुई बर्फबारी ने ऊंची चोटियों को सफेद कर दिया है। इसके अलावा बर्फबारी ने कश्मीर के पहाड़ों की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। बांदीपुरा के काबुल गली में ताज़ा बर्फ की परत जम गई और मौसम में तेजी से बदलाव देखा गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर भारत में मौसम अचानक फिर से करवट ले चुका है। देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज से लेकर उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब तक मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी से रौनक लौट आई है। आज सुबह बारिश के साथ हेमकुंड साहिब में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हेमकुंड साहिब का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मानो कुदरत ने इस पवित्र धाम को अपने ही अंदाज में सजाकर श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी की हो।
1: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में आज सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आज सुबह मौसम बदलने के साथ ही जब बारिश हुई और उसके बाद झमाझम यहां पे बर्फबारी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं अब बारिश शुरू होने के साथ ही पहाड़ों में जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। तो वहीं 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी, वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय यात्रियों को नीचे घंघरिया और हेमकुंड साहिब में ही रोका गया है। यहां पे उन्हें गर्म कपड़े और कंबल, गुरुद्वारे में गुरबानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था, जो खिचड़ी यहां पे मिलती है, वो यहां पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है। यहां पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है। ऐसे में सीजन की पहली बर्फबारी जो हुई है उससे जो यहां पहुंचे श्रद्धालु हैं वो भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।
0: बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब पहुंचे सिख श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर दर्शन किए और इसके साथ ही सीजन की पहली बर्फबारी का भी आनंद लिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र धार्मिक स्थल के दर्शन के साथ पहली बर्फबारी देखने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बर्फ से ढकी चोटियों और गुरुद्वारा परिसर का नजारा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान जोखिम वाली जगहों पर जाने से बचें। हेमकुंड साहिब के अलावा केदारनाथ धाम में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। मौसम खराब होने के कारण केदारनाथ हेली सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में बारिश और घने कोहरे के कारण प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। केदारनाथ घाटी में भी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ ने पूरे इलाके का नजारा बदल दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फ के फाहे लगातार गिर रहे हैं, वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बाराराचा, श्रृंखला, घेपन पीक समेत लाहौल के तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। सितंबर में हुई बर्फबारी ने जहाँ ऊंची चोटियों को सफेद कर दिया है, वहीं इसने आने वाली सर्दी का एहसास भी करा दिया है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है और सितंबर में ही लाहौल स्पीति में ठंड बढ़ने लगी है। इस बदलते मौसम के बीच लाहौल के ड्रिलबुरी पर्वत से सामने आई तस्वीरें लोगों का ध्यान खींच रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और उसके बीच श्रद्धालुओं की आस्था यात्रा का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ड्रिलबुरी पर्वत की परिक्रमा के लिए करीब 3,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। लाहौल स्पीति में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने आए हैं। वहीं परिक्रमा के दौरान अचानक हुई बर्फबारी ने यात्रा का अनुभव और भी खास बना दिया। इस परिक्रमा को पूरा करने में करीब 14 से 15 घंटे का समय लगता है। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी के बीच अपनी आस्था की यात्रा पूरी कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
2: ये है स्नोफॉल और सीजन का पहला स्नोफॉल है। ये बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। इस टाइम लाहौल में हूँ मैं, किलों से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ है हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया। साथ में आपको मैं बताऊंगी कम से कम शायद 3-4 हजार लोग तो होंगे ही होंगे और बहुत लंबी लाइन लगी है पीछे से लेकर जो है लाइन बार जो है लोग जा रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे इंडिया से तो है ही है, हमारे लाहौल से तो है ही है, बल्कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और देखिए कितनी आस्था है लोगों में। मैंने अभी जो है 85 साल के जो है बुजुर्गों को भी देखा, यहाँ पे छोटे बच्चे भी आए हैं। उनका जो है यहाँ पे जो मौसम इतना जो है बढ़िया हो रखा है।
0: हिमाचल के चंबा में समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री मणिमहेश कैलाश पर करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। हिमपात ने पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। हालांकि खराब मौसम के चलते श्री मणिमहेश यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सीजन की पहली बर्फबारी ने कश्मीर के पहाड़ों की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। बांदीपुरा जिले के तुलेल घाटी की काबुल गली में ताजा बर्फ की परत जम गई है और मौसम में तेजी से बदलाव देखा गया। बर्फबारी ने काबुल गली के पहाड़ी इलाके को सफेद चादर से ढक दिया, जिससे दूर दराज के ऊंचे इलाकों का नजारा सर्दियों जैसा हो गया। ताजा बर्फबारी से घाटी के ऊपरी इलाकों में तापमान में काफी गिरावट आई है।
3: कश्मीर में अगस्त के महीने के दौरान जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। अगर श्रीनगर की आज की बात की जाए गुरुवार की, तो यहां पर अधिकतम तापमान मात्र 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी। मौसम की ये बर्फबारी कश्मीर के मौसम में जो है एक राहत ला रही है, बल्कि साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय के बाद कश्मीर के पहाड़ों पर एक बार फिर जो है बाढ़ का खतरा जो है इस बर्फबारी से टल जाएगा, और कहीं ना कहीं पानी के साधन जो हैं वो भी बरकरार रहेंगे।
0: इस बीच ऊपरी इलाकों में बदलते मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है, खासकर उन्हें जो पहाड़ी इलाकों से गुजरने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद वहां तापमान तेजी से गिर सकता है। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश से किसानों को राहत मिली है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जलाए गए शुभकामनाओं के दीपक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: आज भी मोदी के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया जलाकर देशवासियों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और 25 सालों के सार्वजनिक जीवन की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर देश के पवित्र नदियों के घाट लाखों दियों से रोशन नजर आए। वहीं संगीतकार अमन पंत ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर आशीर्वाद का दिया की विशेष थीम पर सॉन्ग लॉन्च किया। महाराष्ट्र में अकोला के श्री शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एआई ह्यूमनाइड रोबोट टीचर आयरिस का 2 दिवसीय प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें एआई रोबोट टीचर आयरिस ने शिक्षकों और विद्यार्थियों से न सिर्फ सीधा संवाद किया बल्कि सवालों के जवाब दिए और बहुभाषी बातचीत के साथ एआई आधारित इंटरैक्टिव टीचिंग का भी प्रदर्शन किया। काशी के उपला टकनौर क्षेत्र के 8 गांवों में इन दिनों पारंपरिक सेल्फू पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में आयोजित ये त्यौहार इस इलाके की समृद्ध लोक संस्कृति, आस्था और पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। मान्यता है कि भारत तिब्बत सीमा के क्षेत्र में व्यापार करके जब ग्रामीण अपने गाँव लौटते थे तब सेल्फू पर्व मनाया जाता था। इस दौरान ग्रामीण रात भर जाग कर नाच गान, लोकगीत और छिलकों की रोशनी के बीच पर्व मनाते थे। सदियों पुरानी वो परंपरा आज भी सेल्फू उत्सव के रूप में कायम है। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद घर घर में गौरी गणेश का आगमन होता है। ऐसे में आज गौरी गणेश की स्थापना के साथ ही अकोला के फूल बाजार में भी रौनक देखने को मिली। अकोला के फुलारी गली में गुलाब, मोगरा, गेंदे और सेवंती समेत अलग अलग प्राकृतिक फूलों से तैयार किए गए आकर्षक हार बाजार में सजे हैं। इन फूलों के हारों की कीमत भी अलग अलग है। करीब 40 रुपए की जोड़ी से लेकर 2,000 और 3,000 रुपए तक की जोड़ी बाजार में उपलब्ध है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर चोगल मसर और स्टकना में दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन फ्लावर फील्ड्स यानी जुड़वा फूलों के खेत को जनता को समर्पित किया। 40 एकड़ में फैले और 10,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे बड़े फूलों के खेत में 25 लाख से ज्यादा कीमती फूल हैं, जिनमें 24 लाख लिलियम और 1 लाख ग्लैडियोलस शामिल हैं। खूबसूरत फूलों का ये बगीचा 18 सितंबर को जनता के लिए खुलेगा।
4: और अब बात गणेशोत्सव की। पूरा देश बप्पा के जयकारों से गूंज रहा है। मुंबई समेत देश भर में बप्पा के दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। जगह जगह अलग अलग थीम पर बने पंडाल भी भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। कहीं गणपति का दरबार वंदे भारत ट्रेन की थीम पर सजाया गया है, तो कहीं परिवार ने जेजुरू के खंडोबा किले की प्रतिकृति तैयार कर बप्पा को विराजमान किया है।

0: गणपति एक लेकिन उनके रूप अनेक। विघ्नहर्ता के पधारने के बाद से पूरे देश में गणेश उत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। कहीं भव्य दिव्य पंडाल में बाप्पा विराजमान है तो कहीं अनोखी थीम के जरिए गणपति उत्सव को खास बनाया गया है। मुंबई से आई ये तस्वीरें हैं परेल के राजा की। इनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अपनी विशेष थीम को लेकर ये पंडाल चर्चा में है। इस बार गणपति ने यहाँ वारकरी विट्ठल का अवतार लिया है। साथ ही पंढरपुर वाला सेट भी बनाया गया है जहाँ श्रद्धालु सेल्फी ले रहे हैं। वारकरी मंडल इस साल अपना 80वां साल मना रहा है।
1: परेल का राजा के दरबार में सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। और भी बहुत ज़्यादा खासियत है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि विट्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं और जो भी पाठ पूजा अभिषेक करानी होती है करते हैं। क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से 80 साल इस पंडाल ने, इस मंडल ने अपने पूरे कर लिए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर विट्ठल का अवतार ही क्यों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मंडल की तरफ से पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणपति बप्पा
2: मौर्य,
1: मंगल मूर्ति
2: मौर्य।
3: लास्ट टाइम हम लोग राम मंदिर बनाए थे, ये टाइम हम लोग विट्ठल मंदिर बनाए हैं। बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से पंडित भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको अच्छा लग रहा है।
1: मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूँ। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय। और देखिए क्या स्वरूप, क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं। और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं। क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है, थोड़ा बताइए।
4: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है और साथ में है नौ ग्रह। जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है, जो सबको, सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं।
0: अकोला में रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल का ये पंडाल भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। यहाँ इस बार गणेशोत्सव के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की भव्य झांकी तैयार की गई है। इसमें हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेकर बर्फ से ढके रास्तों तक ऐसा माहौल बनाया गया है कि इनका दर्शन कर भक्तों के चेहरे खिल उठते हैं।
5: न्यू राधाकृष्ण प्लॉट में जो है बड़ोदरा से लाई ये जो रिद्धि सिद्धि गणपति पंडाल की जो भव्य मूर्ति है, लगभग 35 फीट की ये पूरी तरीके से, वहां तक जहां पर शंकर जी की बारात दिख रही है ना, वहां तक 35 फीट की है। सुंदर सजाई भी है, इंटीमेट ज्वेलरी से बप्पा को सजाया गया है। और सबसे अहम बात है कि मूर्ति में ही जो है इंक्लूड पूरी तरीके से शिव बारात है। मानो गणपति बप्पा जो है शिव बारात के साथ यहाँ पर इस झांकी में तो दिखाई दे रही है। और सबसे अहम बात है कि पहली बार जो है चारों धाम के दर्शन अकोला में जो है इस गणपति बप्पा के पंडाल में किए जाने से जो है भक्त जो है पहले दिन से ही जो है यहाँ पर जो है दर्शन के लिए और इस गुफा में और चारों धाम के दर्शन करने यहाँ आते नजर आ रहे हैं।
0: अकोला में सार्वजनिक पंडाल ही नहीं बल्कि घर घर में भी बाप्पा की स्थापना की गई है। यहाँ के एक परिवार ने अपने घर में गणपति बाप्पा की पुणे जिले के प्रसिद्ध जेजुरी स्थित खंडोबा मंदिर की प्रतिकृति तैयार की है। खास बात यह है कि इसे बनाने में परिवार के हर सदस्य ने अपनी भूमिका निभाई है। किसी ने वेस्ट मटेरियल से किले की मीनार तैयार की तो किसी ने रंग रोगन किया और किसी ने खंडोबा की प्रतिमा को सजाया तो किसी ने घर के ही कपड़े से भगवान के लिए पोशाक तैयार की।

0: चंद्रपुर के बल्लारपुर में भी एक परिवार ने घर में आस्था का अद्भुत संसार सजाया है, जिसमें बर्फीले पहाड़ों के बीच बाप्पा विराजे हुए हैं। यहाँ चिंतावार परिवार ने बहुत ही आकर्षक रूप से झांकी सजाई है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति के एक साथ दर्शन हो रहे हैं।
1: अभी करीब करीब हम 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और हर साल एक नया थीम लेकर हम इस गणेश उत्सव को मनाते हैं। इस साल हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु इस झांकी को अपने घर में सजाया है और हमें बहुत आनंद मिलता है ये सब करने में।
0: चंद्रपुर में ही बाप्पा का ऐसा दरबार सजाया गया है, जिसमें लाल बाग के राजा के साथ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने इस बार लाल बाग के राजा की भव्य प्रतिकृति बनाई है, साथ ही साईं बाबा का दरबार भी तैयार किया गया है।
2: शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है।
0: ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। यहाँ बप्पा का दरबार वंदे भारत ट्रेन की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल की सजावट में ट्रेन का स्वरूप और आधुनिक भारत की रफ्तार की झलक दिखाई दे रही है। गणपति उत्सव की पारंपरिक भक्ति के साथ देश की आधुनिक पहचान को जोड़ने की ये कोशिश लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाप्पा का ऐसा ही भव्य दरबार महाराष्ट्र के नागपुर में सजा है। यहाँ शहर के प्रसिद्ध दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस साल भक्तों के लिए पुणे के आलंदे स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की प्रतिकृति तैयार की है। ऐसे में गणपति भक्त अब आलंदी तीर्थस्थल के दर्शन और बाप्पा की आराधना एक साथ कर रहे हैं।

0: क्या बोलते हैं 107वां साल है और हमारी जो मंडल की स्थापना है 1920 में हुई है। इस बार आप जैसे देख सकते हो हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है प्रतिकृति वो बनाई है ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर जो संजय समाधि मंदिर आनंद जी उसके ऊपर हमने प्रकृति बनाई है प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति के बैक साइड जो है हमने वहाँ जो बाकी जो संजीवन समाधि है सेम वैसी प्रतिकृति हमने वहाँ पर बनाई है।
1: महाराष्ट्र ही नहीं दक्षिण भारत में भी एक से बढ़कर एक पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब हैदराबाद के विवेकानंद यूथ एसोसिएशन के गणेश पंडाल को देखिए जहां भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट और स्पेस मिशन से प्रेरित इस पंडाल में भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के साथ ही भविष्य के अंतरिक्ष की झलक भी दिखाई गई है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में 21,000 पौधों और अंकुरों का उपयोग कर बनाई गई गणेश प्रतिमा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती नजर आ रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक गणेशोत्सव का ये आयोजन बताता है कि बाबा की भक्ति की कोई सीमा नहीं और वो देश काल से परे हैं। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, सूरत से संजय सिंह राठौर और अकोला से धनंजय साबले के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने और मॉनेटरी पॉलिसी को और सख्त करने के संकेत के बाद बाजार में सावधानी का माहौल रहा। सेंसेक्स 22 अंक गिरकर 74,315 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 53 अंकों पर 23,271 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में थोड़ी कमी आई, गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सोना 600 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,55,000 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया, दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए पर स्थिर रही। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 3 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 94 पैसे हो गई।
2: फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो चुका है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
1: महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म को हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। प्रोड्यूसर प्रकाश महूबिया और संजय बुंदेला ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। फिल्म में देव शर्मा श्रीराम के किरदार में और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आएंगे। शील वर्मा, रजनीश दुग्गल और निर्भय वाधवा भी अहम भूमिकाओं में हैं। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म को महूबिया फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है।
3: रहकर अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा करूंगी।
1: दिल टूटने का एहसास, प्यार की कसक और जज्बातों की गहराई, इन्हीं भावनाओं से सजा नया गाना रिलीज हो गया है। जी म्यूजिक और प्रोड्यूसर गौरव वर्मा ने प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी किया है। गाने में मोहब्बत के साथ साथ दिल टूटने का दर्द भी महसूस होता है। प्यार में खुद को किसी के हवाले कर देने और फिर बिखर जाने की कहानी को गीत के जरिए सामने लाया गया है। ये गाना 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म में इमोशनल लव स्टोरी के रंग दिखाता है। लवरंजन की नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ गया है। फिल्म के जरिए लवरंजन 6 नए कलाकारों को पेश कर रहे हैं। इनमें अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैदिक, कुणाल वैद्य, सरगुन और लूथरा और तुषार छिब्बर शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन अनुज सैनी ने किया है और लवरंजन और अंकुर गर्ग इसके प्रोड्यूसर हैं। अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले लवरंजन इस बार भी प्यार और रिश्तों की कहानी को लेकर आ रहे हैं। फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
4: इस दुनिया में दिल टूटे
1: अध्ययन सुमन और देविता राय की म्यूजिकल लव स्टोरी मैंने रहा मेरा का टीजर रिलीज किया गया है। फिल्म में अध्ययन सुमन के साथ मिस दीवा 2022 रह चुकी नई कलाकार देविता राय नजर आएंगी। टीजर में प्यार, जज्बात और रिश्तों की कहानी की झलक देखने को मिलते हैं। फिल्म को अध्ययन सुमन ने बनाया है। धर्मेश संगानी ने संगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स के बैनर तले से प्रोड्यूस किया है। अमित कसारिया इसके डायरेक्टर हैं और संगीत राहुल नायर ने दिया है। फिल्म 23 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
2: न्यूज पथ में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी के कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवास में सेलकू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य, दूर दराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे बच्चे। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में भारत की ओर से लगाया सबसे तेज टी20 शतक, सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने, रोहित शर्मा का टूटा रिकॉर्ड। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
6: आस्था की ये तस्वीर दिल छू लेने वाली है। उम्र छोटी है, समझ भले ही उतनी ना हो, लेकिन पप्पा के लिए इन बच्चों का प्यार देखने लायक है। फूलों से सजा छोटा सा रथ, उस पर लगी रंग बिरंगी लाइटें और जयकारों के बीच बप्पा को लेकर आगे बढ़ते नन्हे भक्त। बच्चों ने अपने हाथों से रथ को सजाया और पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा को विदाई देने निकल पड़े। इनकी मासूम भक्ति देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेसी और रोनाल्डो को छोड़िए, अब मैदान में हाथी का फुटबॉल टैलेंट भी देख लीजिए। असम के नुमालीगढ़ में एक जंगली हाथी अचानक फुटबॉल के मैदान में पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हाथी ने गेंद को देखा और उसे अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया, कभी सूंड से गेंद को धकेला तो कभी उसके पीछे दौड़ता नजर आया। हाथी का ये अनोखा खेल देखकर लोग भी खूब रोमांचित हुए। उम्र छोटी है लेकिन संस्कार और समझदारी देखकर हर कोई तारीफ करने लगे। सड़क पार करते वक्त एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी उसने उन ड्राइवरों की तरफ सिर झुकाकर अभिवादन किया जिन्होंने उसके और उसके पिता के सड़क पार करने तक धैर्य से इंतजार किया। बच्ची का ये छोटा सा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में दूसरों के सब्र और सहयोग के लिए शुक्रिया कहना वाकई बेहद प्यारा और सीख देने वाला है। हुनर ऐसा कि देखने वालों की नजरें थम जाएं। एक भारतीय महिला का ये अनोखा टैलेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। सिर पर रखा है एक बड़ा सा मटका और मटके के अंदर जल रही है आग, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आग के लपटों के बीच महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही है। सिर पर इतना वजन संभालना, ऊपर से जलती आग के साथ तालमेल बनाकर नाचना, वाकई कमाल का हुनर नजर आ रहा है।
2: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अस्पताल में मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सामान की, जिनकी कीमत को लेकर बड़ा सवाल उठा है। ये सवाल महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने उठाया है। महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने एक्स पर पोस्ट कर इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल सामान की खरीद और खुदरा बिक्री की कीमतों में भारी अंतर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मरीज को मेडिकल सामान की कीमत पता ही नहीं होती, वो नहीं जानता कि जो IV इन्फ्यूजन सेट उसे लगा है उसकी असल कीमत बिल में बताए गए प्राइस से काफी कम है। उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पताल के सामान के एक सर्वे के नतीजों का जिक्र किया। इस सर्वे में कई सामान की असल लागत और हॉस्पिटल बिल में काफी अंतर दिखा। मुंडे ने बताया कि नसों के जरिए दवा देने वाले IV इन्फ्यूजन सेट का ट्रेड प्राइस 11.50 रुपए होता है, लेकिन उस पर 325 रुपए की मैक्सिमम रिटेल प्राइस छपी थी, यानी कि 2,841% का बड़ा अंतर। इसी तरह से 76.75 रुपए में खरीदी गई सिरिंज पर 257.20 रुपए की MRP थी और 29.41 रुपए में खरीदे गए कैथेटर ट्यूब पर 310 रुपए की एमआरपी थी। महाराष्ट्र में खाने पीने की चीजों में मिलावट पर कड़ा एक्शन लेकर चर्चा में आए एफडीए कमिश्नर ने कहा कि ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो अपनी मर्जी से खरीदी जाए। इलाज के दौरान मरीज ना तो कीमतों की तुलना कर सकते हैं और ना ही उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता है जिसे वो ढूंढ सके, ना ही बॉक्स पर छपी कीमत पर वो सवाल उठा सकते हैं। मुंडे ने कहा कि अक्सर एमआरपी खुद मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर तय करते हैं, ये ट्रेड प्राइस से बहुत ज्यादा और अंतर पर होती है। मुंडे ने मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों में एक स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी गैप की भी ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि प्राइस कंट्रोल से जुड़े ड्रग्स ऑर्डर 2013 के तहत लिमिटेड दवाओं की कीमतें तय होती है, जबकि ज्यादातर मेडिकल डिवाइस और चीजों के दामों पर लगभग कोई निगरानी नहीं। महाराष्ट्र एफडीए ने सर्वे के नतीजों की समीक्षा की सिफारिश की थी, साथ ही ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित एमआरपी के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की बात कही। मुंबई, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के अस्पतालों में किए गए सर्वे के आधार पर तैयार ये सिफारिश डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को भेजी गई है। जाहिर है ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार से उचित कदम उठाने की सिफारिश की गई। इस मुद्दे पर मुंबई में हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
7: कहीं में आपने भी कभी ऐसी चीजें फेस की है, 11 रुपए की दवाई ज्यादा दामों में ली जा रही है, क्या कहेंगी?
8: हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल ने तो अभी इसको कमाई का जरिया बना लिया है। देखो बीमारी है ना, घर और आदमी देखकर नहीं आती, गरीब इंसान भी बीमार होता है, जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाए। तो दवाइयों पे जो इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई किए उस पे तो ऑब्वियसली रोक होनी ही चाहिए।
7: आप क्या कहेंगे कि वाकई में तुकाराम मुंडे ने अभी जैसे कि खाने पीने में बहुत ज्यादा लगाम लगाई, वाकई में बहुत ज्यादा लोग सुधर भी गए हैं, अब सीधे अस्पताल पर टारगेट किया है, आपने भी कभी इस तरह की चीजें कोई फेस की है, क्या कहेंगे?
9: डेफिनेटली मिस्टर मुंडे तो अभी नेशनल हीरो बन चुके हैं फूड इंडस्ट्री में, लेकिन अभी अगर हॉस्पिटल्स में भी अगर ऐसा होता है, कैप्स लगने चाहिए, एक स्ट्रिक्ट मार्जिन कैप्स होने चाहिए, पेशेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन कम होना चाहिए, मतलब ये एक्सप्लॉयटेशन होना ही नहीं चाहिए, वैसे तो कम तो बहुत वैसी बात है, लेकिन डेफिनेटली ये एक सही डायरेक्शन होगा, नेक्स्ट लेवल का एक नेक्स्ट डायरेक्शन आफ्टर फूड हॉस्पिटल को टारगेट करना, आई थिंक इट्स अ जेन्युइन थिंग।
7: बिल्कुल, मिशन मुंडे का जो ग्रुप है, अब वो उनकी जो टीम है उस पर कमर कसेगी, सीधे उनके ऊपर टारगेट किया जाएगा जो भी अब दवाई ज्यादा दामों में बेचेंगे, आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी?
10: पहले बात तो मैं तुकाराम मुंडे का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, डायबिटीज की दवा, जो मैं भी डायबिटीज का पेशेंट हूँ भी, और मेरे को आर्थराइटिस का तकलीफ भी है, तो दवा इतनी महंगी है कि हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ऑलरेडी मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो दवाई के लिए मैं बहुत तकलीफ हो रहा सर।
7: बिल्कुल, अस्पताल में अगर आप भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, अचानक से ही आपका बहुत ज्यादा बिल हो जाता है, आते ही डॉक्टर सीधे बोलता है कि आपके पास मेडिक्लेम है, कि आपके पास इंश्योरेंस है, सीधे डॉक्टर आपको पूछता है आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और तुकाराम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं?
11: वो बहुत ही सही कर रहे हैं, उनको करना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी 2005 में मेडिकल स्टोर में जॉब करता था, तब का जो रेट था और अभी का जो रेट है उसमें बहुत ही फर्क आ गए है, और कुछ भी भाव लेके जो भी जेनरिक कंपनी का दवा देके और अच्छे दाम ले रहे हैं वो लोग, उसमें बहुत ही कमाई कर रहे हैं।
7: ओके, आप क्या कहेंगे, मैंने जो पूछा अभी आपको तो समझ में आई होगी बात, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया हो?
8: सो ये सब अभी बिजनेस हो गया, ये बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये सब सब चीजों की होनी चाहिए कि प्राइस लिमिट हो, सब यूज कर सके, सब गरीब लोगों के लिए भी ये होना चाहिए। सो प्राइसिंग जो कैप है उनको लगाना चाहिए, और ऐसे तुकाराम मुंडे जैसे हमें और सब सेवक चाहिए, एक से इनका नहीं होगा, ऐसे हमें हजारों लोग चाहिए जो हर चीज में ये बांध लगा सके, ना ही मेडिकल है, सब चीज में ऐसा होना चाहिए, फूड हो गया, मेडिकल हो गया, हाउसिंग, बहुत सारी चीज में ऐसा होना चाहिए।
7: भाई गजब के कमिश्नर हैं, यहाँ 18 साल में मेरे को लगता है 20-22-23 बार उनका ट्रांसफर हो गया है, अब तो मेडिकल पे आ गए हैं, क्या कहेंगे, रोज एक ना एक धमाका।
12: तो ये बहुत अच्छा है, उन्होंने जो स्टेप्स लिया है ये आई थिंक किसी ने सोचा नहीं था, बट मेडिसिन वाले जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, जो लेते हैं प्राइस जो डबल से ट्रिपल लेते हैं, उसके ऊपर अभी थोड़ा सा वो भी अवेयर हो जाएंगे, सबको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तब प्राइस देते हैं तब थोड़ा अवेयरनेस आ जाएगा, और ये हमारे जो हम जो ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है जो सबको चाहिए।
7: बिल्कुल, तो क्या कर रहे हैं, तो मुंडे अच्छा कर रहे हैं?
8: हाँ हाँ बिल्कुल, वी सपोर्ट हिम,
13: We support him. Support him. Monday.
12: Yes,
13: we
12: support
9: definitely, Tukaram. Definitely.
12: Yes, yes.
7: ओके okay, तो ये है नारी शक्ति और नारी शक्ति ने तुकाराम मुंडे साहब को सपोर्ट किया है। वाकई में जिस तरीके से दवाई और अस्पतालों में जो घपला चल रहा है उस पर अब उन्होंने निगरानी रखी है और अपनी टीम को उसके खिलाफ लगा दिया है। कहीं ना कहीं मुंबई कर तो बहुत ही ज्यादा खुश है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे मुंबई।
2: आज दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का आगाज हुआ। इसमें 40 से ज्यादा देशों की 600 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर के निर्माण में जुटी कंपनियां निवेश, तकनीक और चर्चा करेंगी। इसमें कई राज्यों के पवेलियन बनाए गए हैं जहां सेमीकंडक्टर के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। सेमिकॉन इंडिया में और क्या है खास, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।
14: देश में सेमिकॉन इंडिया 2026 की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इस इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस इवेंट में 40 से ज्यादा देशों की 600 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया की थीम सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण है। इसमें सेमीकंडक्टर कंपनियों के साथ निवेशक, रिसर्चर, स्टार्टअप, शिक्षाविद और छात्र शामिल हैं। ASML, अप्लाइड मटेरियल्स, टेराडाइन, इन्फीनियन, NXP, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रॉन और टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनियां यहां निवेश, तकनीक, सप्लाई चेन और कारोबारी साझेदारी पर चर्चा करेंगी। यहां पर कई राज्यों के पवेलियन बनाए गए हैं जहां सेमीकंडक्टर के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है।
15: अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर एक चिप बनती कैसी है, उसका आकार 1-2 मिलीमीटर, यानी अगर मैं उंगली पर रख के दिखाने की कोशिश करूं तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसे तैयार करने के लिए अब आप देखिए लग रही ये सारी मशीनें हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जिस तरह के वेफर्स पे ये तैयार होते हैं, फिर उनके बाद अगर कोई डिफेक्ट आया, हमें ये बताया गया कि अगर किसी चिप में कोई दिक्कत आती है, वो दिक्कत पहचानने के लिए वो कितना बारीक होगा, मेरे बालों के 10,000वें हिस्से जितना, तो जाहिर है उसे पहचानने के लिए, अगर उसमें कोई फॉल्ट है पहचानने के लिए हाई लेवल रेजोल्यूशन कैमरा इंस्पेक्शन, इस तरह की तैयारियां, इसी के संसाधन और संभवतः इसी वजह से समय लगा भारत में सेमीकंडक्टर की हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कि कहां हमारी निर्भरता उन देशों की तरफ थी, चीन थी, जापान थी, कोरिया थी, और आज ये तमाम तकनीकें अपने इसी भारत की कंपनियां यहां पर लेकर के आई हैं, यहां बना रही हैं।
14: सेमिकॉन के 5वें एडिशन में 600 से ज्यादा कंपनियों के स्टॉल्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 40 से ज्यादा देशों से आए प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब तक 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इनमें से पहले चरण में मंजूर 3 इकाइयों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।
15: लेकिन भारत के पास जो तकनीक है, जो दक्षता है, जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों के जरिए फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर फेज 1 हो या फेज 2 हो, जिसके जरिए हमने 10 सालों में वो मुकाम छुआ है कि आज भारत में वो कंपनियां तैयार हो रही हैं, फिर चाहे वो मोहाली में हो, सूरत में हो, कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से वो सेमीकंडक्टर बना भी पा रहे हैं और अब इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हम अपने उत्पाद को वैश्विक बाजार में कैसे उतारें। चुनौतियां बहुत हैं, रास्ता लंबा है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है।
14: भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज भी आज लॉन्च किया है। पहले फेज की वैल्यू करीब 70,000 करोड़ रुपए थी, जबकि दूसरे फेज के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
15: न सिर्फ यहाँ विचारों का आदान प्रदान है, बल्कि भारत ये भी सीख सकता है कि अपनी उन्नत तकनीक, अपने संसाधनों को वो दुनिया की तकनीक के साथ कैसे मैच कर सकता है। और इसीलिए जब सेमिकॉन इंडिया का ये 5वां एडिशन होता है तो अपने आप ही ये भारत की उस उभरती ताकत को बताता है कि जिस सेमीकंडक्टर की हमारी निर्भरता 10 साल पहले तक दुनिया पर थी, वो धीरे धीरे कम करने के लिए हम बेहद तेजी से उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन कंपनियों की धीरे धीरे यहाँ शुरुआत हो रही है तो जल्द ही वो दिन भी आएगा जब हम अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले हर मोबाइल फोन, हर सैटेलाइट, हर एक जरूरी आवश्यक उन वस्तुओं में सेमीकंडक्टर भारत का बना हुआ होगा।
14: दरअसल सेमीकंडक्टर की बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारत चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। सेमिकॉन का उद्देश्य चिप की सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और देश में इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार और तकनीक को बढ़ावा देना है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: चीन में पिघले हुए नमक से ऊर्जा भंडारण और कार्बन डाइऑक्साइड से बिजली उत्पादन को जोड़ने वाले डेमो प्रोजेक्ट पर काम शुरू। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: बीजिंग में चल रही 14वीं चीन इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी में बिना पायलट वाले और काउंटर अनमैन्ड सिस्टम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। करीब 300 प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं और सूचना आधारित रक्षा उपकरणों की लगभग 1000 नई उपलब्धियां दिखाई गई हैं। प्रदर्शनी में तेज रफ्तार बिना पायलट वाली नाव भी दिखाई गई, जिसके डिजाइन और टेस्ट की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसे आपातकालीन बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं नया रडार जटिल शहरी इलाकों में कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों का पता लगाने की क्षमता दिखा रहा है। चीन के शेडोंग प्रांत के यांताई में पिघले हुए नमक से ऊर्जा भंडारण और कार्बन डाइऑक्साइड से बिजली उत्पादन को जोड़ने वाले देश के पहले डेमो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। रुईतान नाम का ये प्रोजेक्ट कम मांग के समय अतिरिक्त बिजली से पिघले नमक को गर्म करके ऊर्जा स्टोर करेगा। पीक डिमांड के दौरान इसी गर्मी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2027 में शुरू होगा। समुद्र के ऊपर से गुजरती ट्रेन, खिड़की से दिखता खूबसूरत समंदर और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। चीन में पहली समुद्र के ऊपर से गुजरने वाली सब अर्बन रेलवे निंगबो रेल ट्रांजिट लाइन 12 के फ्री ट्रायल के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। बुधवार को डमुआन स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री इस खास सफर का अनुभव करने पहुंचे। शियांगशान खाड़ी को पार करते वक्त ट्रेन से समुद्र का शानदार नजारा दिखाई देता है। यही वजह है कि यात्रियों ने इसे सीव्यू मेट्रो नाम दिया है।
2: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
17: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने खारिज की पाकिस्तान की न्यूट्रल वेन्यू की मांग। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
3: भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सबसे तेज T20 शतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 बॉल में सेंचुरी जमा कर उपलब्धि अपने नाम की है। अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी पारी से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 35 बॉल में शतक लगाया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की मांग को हॉकी इंडिया ने खारिज कर दिया है। फेडरेशन ने भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये मांग की थी। इस पर हॉकी इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलना है तो उसे भारत आना होगा, अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो उसकी जगह बांग्लादेश या ओमान में से किसी एक टीम को शामिल किया जा सकता है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब में होगी। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, जापान और साउथ कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी। जालंधर में लीग स्टेज के मुकाबले होंगे, सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली में खेले जाएंगे। BCCI के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। इसमें अगरकर की जगह पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल और प्रज्ञान ओझा का नाम सेलेक्टर पद के दावेदारों में सामने आ रहा है। BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग कल होनी है, बतौर चीफ सेलेक्टर उनकी आखिरी बैठक हो सकती है।
2: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
17: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
20: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। नागपुर से हमारे साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा कर रहे हैं प्रतीक। इन्होंने अपने घर पर गणेश स्थापना की कुछ तस्वीरें हमें भेजी हैं। तस्वीरों में दिख रहे बप्पा बेहद प्यारे लग रहे हैं, साथ ही उन्होंने बहुत सुंदर बप्पा का पंडाल भी सजाया है जो गजानन की सुंदरता को और निखार रहा है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया, कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेल्कू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य, दूर दराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बच्चे। अपोलो में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन।

0: बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में भारत की ओर से लगाया सबसे तेज T20 शतक। सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा का टूटा रिकॉर्ड। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना। कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका। रौदला में भी जबरदस्त बर्फबारी।
1: एवरेस्ट शुद्ध केसर।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, हमारे बप्पा की, जिनके दर्शन भर से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और इसीलिए मुंबई के तमाम पंडालों में उनके दर्शन के लिए भक्तों की होड़ लगी है। खासकर लालबाग के राजा के दरबार में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज आपको लालबाग समेत मुंबई के कई मशहूर पंडालों के दर्शन कराएंगे, बप्पा की भव्य और अद्वितीय प्रतिमाएं भी दिखाएंगे। न सिर्फ मुंबई में बल्कि पुणे और नागपुर जैसे शहरों में भी बेहद खूबसूरत पंडाल सजाए गए हैं। आज हम आपको इनके भी दर्शन कराएंगे। और पुणे में कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम से बना पंडाल कैसे बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, वो भी देखिएगा। साथ ही सूरत लिए चलेंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन में विराजमान गणपति की भव्यता वाकई निराली है। तो चलिए शुरुआत मुंबई से ही कर लेते हैं। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। तो परेल में वारकरी विठल के रूप में विराजे हैं बप्पा, जिन्हें देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। और इसी तरीके से घाटकोपर में बप्पा अंतरिक्ष की थीम पर नवग्रहों के साथ सूर्य नारायण की आभा में दर्शन दे रहे हैं। कहीं मन्नतों की झोली भर रही है तो कहीं महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा जीवंत हो रही है। मुंबई के बप्पा के इन पंडालों में भक्ति भी है, भव्यता भी है और बप्पा के अलग अलग मनोहारी रूप भी है। देखिए स्वरूप है बप्पा के, पर इनसे अलग और मनोहारी रूप है लालबाग के राजा का। घंटों निहारते रहिए फिर भी मन नहीं भरेगा। हाँ, यहाँ मांगने वालों की झोली जरूर भर जाती है। इसीलिए तो सुबह से शाम तक दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे तो गणेशोत्सव की धूम पूरे मुंबई में है, लेकिन मुंबई के इस सबसे मशहूर पंडाल में खासो आम की सबसे ज्यादा भीड़ है। पिछले 4 दिनों में यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु बप्पा के दर्शन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि अब ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है और चढ़ावा भी। गणेशोत्सव के पहले और दूसरे दिन मिलाकर लालबाग के राजा के दरबार में 1,37,40,000 रुपए चढ़ावा आया और करीब 300 ग्राम सोना और करीब 8 किलो चांदी का चढ़ावा आया। लालबाग का राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और जब मन्नत पूरी होती है तब भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। भक्त बप्पा के दरबार में संतान, स्वास्थ्य, व्यापार में सफलता और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और भरोसा करते हैं कि बप्पा उनकी जरूर सुनेंगे।
2: It feels good. I've been coming here for last 5-6 years now. और मैंने पिछले बार बहुत लोगों को देखा है इधर आके मन्नत मांगते हैं। मैंने किसी का फोटो देखा था, किसी ने तो 2024 में एक पर्ची लिखी थी यहाँ पे कि 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो फिर उसके बाद मैं 2025 में भी इधर आया, वहाँ पे भी किसी ने लिखा था कि हमारे लीडरशिप में भी हम 2026 में इंडिया में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो यहाँ का मन्नत बहुत स्ट्रांग है। और अभी लास्ट ईयर भी हमने मांगा था कि हमें घर में बेटी हो, वो बेटी हुई, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आए मन्नत मांगने के लिए। थैंक यू बोलने आए थे कि जो भी आज तक उन्होंने हमको दिया उसके लिए थैंक यू, और जितना मेहनत करते रहेंगे उसके हिसाब से आप प्रसाद देते रहना।
3: कमबैक को लेकर भी क्या प्रार्थना की पापा से कि आप दर्शन करेंगे, कमबैक हो जाएगा दर्शन?
2: देखिए, वो सब तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सब भगवान के हाथ में। अपने हाथ में जो है वो मेहनत करना है। मैं मेहनत करते रहता हूँ, बाकी जो भगवान दे दे उसमें मैं खुश हूँ। ब्लेसिंग्स लिया, मम्मी पापा, वाइफ के साथ आया था।
0: क्रिकेटर ही नहीं, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, हर क्षेत्र, हर तबके के लोग बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के सभी राज्यों से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बप्पा का दरबार भक्ति और श्रद्धा से चकमका रहा है। लेकिन धूम सिर्फ लालबाग चौराजा के दरबार में नहीं, चर्चा परेड के राजा की भी हो रही है, क्योंकि इस बार बप्पा ने वारकरी विट्ठल का अवतार लिया है। इस वेशभूषा में और पगड़ी के साथ बप्पा सबसे अलग और सबसे निराले लग रहे हैं। हाथों में मृदंग और वीणा ने इस मूर्ति को और भी भव्यता दी है। परेल के पंडाल की गिनती यूं भी मुंबई के बाकी बड़े पंडालों में होती है, लेकिन इस दफे प्रतिमा को महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा से जोड़कर इसे नया लेवल दे दिया गया है।
4: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में। सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहां पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहां पर आए हुए हैं, और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। अब तक मुझे लगता है कि तीसरा दिन आज चल रहा है गणेश उत्सव का और 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु विट्ठल के इस अवतार का दर्शन करके जा चुके हैं। विट्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं, लोग यहां पर आते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं और जो भी पाठ पूजा अभिषेक करानी होती है करते हैं।
0: परेल का ये गणेश पंडाल इस साल अपने 80वें साल में है। हर साल नए अंदाज की प्रतिमा इसकी खासियत है। इस साल भी भक्त बप्पा को देख कर गदगद है।
5: हमारे जो इस साल जो मंडल का है वो 80वां साल चल रहा है, और जो बापा आज विराजमान आप देख रहे हैं हमारे इसमें, वो साक्षात अपना वारकरी संप्रदाय में है। जो हम लोग ने साक्षात्कार मूर्ति उभारी है निखिल खातू, उनके उन्होंने जो मूर्ति उभारी है उनका आज आप देख रहे हैं जो लाइव क्या चल रहा है आज इसके लिए।
4: अच्छा, मैंने सुना है कि विट्ठल जी का मंदिर भी पास में ही आपने बनाया हुआ है, तो क्या क्या क्या
6: प्रति पंडरपुर, जहाँ पे पंडरपुर बनाता है वहाँ पे पंडरपुर है जो महाराष्ट्र में, वो देवत है, वो यहाँ पे हम लोग साकार किए इस टाइम।
0: बात सिर्फ पंडाल की नहीं है, पंडाल के करीब ही हूबहू पंडरपुर बनाया गया है, और इस सेट के सामने जो तालाब है उसमें पंडरपुर मंदिर के पास से बहने वाली चंद्रभागा नदी का ही पानी भरा गया है।
7: अपना मूर्ति पसंद आ गया, अपना विट्ठल मंदिर पसंद आ गया, अंदर विट्ठल मंदिर में अपना विट्ठल का मूर्ति भी बैठा है, उनका भी दर्शन अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, चंद्रभागा का बहुत तारीफ कर रहे सब लोग, पूरा यहाँ पे पब्लिक वो देख के जा रही है।
0: जो श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें गणपति के साथ पंडरपुर के दर्शन भी हो रहे हैं। चलिए अब आपको परेल के बाद घाट को पर लिए चलते हैं, जहाँ भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है और जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम पर बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूँ। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय, और देखिए क्या स्वरूप, क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं, और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं, कैसे हैं?
8: बस ठीक है सर।
4: चेहरे पे इतनी ज्यादा आपके खुशी नजर आ रही है, हाँ बप्पा को ले ही आ गए, इतने खूबसूरत, क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है, थोड़ा बताओ।
8: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है, और साथ में है नौ ग्रह। जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है, जो सबको, सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं, और आजू बाजू ससौर्य मंडल में भगवान बैठे हैं, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम बनाया है।
9: अच्छा, ये बताइए श्रद्धालुओं के लिए क्या खास है आपके मंडल द्वारा?
10: के लिए तो हम लोग ने बड़ा मंडप बनाया है और मंडप में सुविधा रखी है, जो श्रद्धालु दर्शन करके आते हैं, और यहाँ पे एसी डूम रखा है, बैठने की भी सुविधा रखी है, तो श्रद्धालु बाहर से घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो हम लोग ने एक खास सुविधा रखी है मंडल में कि एसी में आओ, बैठो, शांति से दर्शन करो, ऐसी सुविधा हम लोग ने मंडल।
9: कितना साल
10: भावे सच्चा राजा का ये 52वां साल है।
0: 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आस्था बहुत गहरी है।
11: बप्पा की मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी मनमोहक है कि नजर ही नहीं हटती, और उस पर उनकी जो सजावट की है यहाँ के श्रद्धालुओं ने, वो तो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बप्पा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, इतनी मनमोहक मूर्ति है उनकी।
9: गणेश उत्सव कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा बताएं आपकी लाइफ।
12: गणपति बप्पा मौर्य, गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक फेस्टिवल नहीं, एक बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अभी फेमस हो चुका है और बहुत ही सुकून और शांति हमें मिलती है जब हम लोग 10 दिन बप्पा के दर्शन करते हैं। लोगों का मिलना जुलना होता है, नए नए लोग उसे मिलते हैं और ना खुशियाँ बाँटते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो मन को बहुत शांति मिलती है। ये एक डिटॉक्स है सबके लिए।
0: मुंबई के पंडालों में गणेशोत्सव की रौनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बप्पा को देखने और पूजने के लिए भीड़ लगातार आ रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति के दरबार में इस बार सिर्फ बप्पा की भव्य प्रतिमा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की झलक, चंद्रपुर के लालबाग के राजा के साथ साई बाबा का दरबार, और अकोला में घर के भीतर सजा जेजुरी का खंडोबागढ़। तीन शहर, तीन अलग अलग तस्वीरें, लेकिन भावना एक, भक्ति में कला का संगम, परंपरा से जुड़ा और बप्पा के बहाने अपनी मिट्टी के धार्मिक स्थलों को करीब से महसूस करने का खूबसूरत मौका।

0: मंदिर की भव्यता, संत की समाधि, घर के आंगन में सजा आस्था का किला। गणपति उत्सव में महाराष्ट्र की भक्ति अब अलग अलग धार्मिक स्थलों का रूप लेकर सामने आ रही है। नागपुर से चंद्रपुर और अकोला तक श्रद्धालुओं ने अपनी कल्पना और मेहनत से ऐसे दरबार सजाए हैं जहां पप्पा के साथ महाराष्ट्र की धार्मिक विरासत के भी दर्शन हो रहे हैं। भक्ति के रंग में कला की खूबसूरती घुली है, मेहनत में परंपरा जुड़ी है और गणपति उत्सव के बहाने महाराष्ट्र की आस्था के अलग अलग केंद्र एक ही जगह नजर आ रहे हैं। नागपुर से चंद्रपुर और चंद्रपुर से अकोला तक कहानी अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन बप्पा के प्रति श्रद्धा का भाव एक है। नागपुर महल परिसर स्थित दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार खम्भे, मंदिर का गुम्बद और समाधि स्थल का प्रारूप, हर हिस्से को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है।
1: ये हमारा 107वां साल है और हमारी जो मंदिर की स्थापना है 1920 में हुई है। एक बार आप जैसे देख सकते हो, हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, प्रतिभूति वो बनाई है ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजय समाधि मंदिर आनंदी, इसके ऊपर हमने ये प्रकृति बनाई है, प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति को बैक साइड जो है हमने वहाँ जो वाकई संजीवन समाधि है सेम वैसी प्रतिकृति भी हम लोग कर रही है, जिनमें सभी भक्तों को और सभी गणित भक्तों को हमें विनती करता है कि बड़ी संख्या में आइए और गणपति जी बापा के और समाधि मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए।
0: कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद आलंदी का पवित्र धाम नागपुर में साकार हुआ है। एक तरफ बापा की भव्य प्रतिमा, दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर की झलक और सामने दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। पंडाल में गूंजते जयकारे, भक्तों की आस्था और मंदिर की खूबसूरत कारीगरी तीनों मिलकर पूरे परिसर को आस्था से भर रहे हैं। सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि चंद्रपुर में भी ऐसी ही रौनक है, जहां एक ही पंडाल में दो अलग अलग आस्था केंद्रों की झलक दिखाई दे रही है। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। बप्पा का विशाल स्वरूप, आकर्षक सजावट और भव्य दरबार श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ की खासियत सिर्फ गणपति की प्रतिमा नहीं है, इसी परिसर में शिरडी के साईं बाबा की झांकियाँ भी सजाई गई है। साथ ही द्वारका माई का दृश्य भी तैयार किया गया।
2: इस वक्त हम इसी मंडल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस साईं बाबा का जो है पूरा मंदिर यहाँ पे साकार आ गया है। शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है। बेहद यहाँ से आगे जाने के बाद में हमें लालबाग के राजा के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर में अब लालबाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं क्योंकि इस मंडल में लालबाग के राजा के रूप में यहाँ पर बप्पा पधारे हैं।
0: दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु पहले बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, फिर साईं बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं। कोई मनोकामना लेकर आया तो कोई आशीर्वाद की उम्मीद में।
3: अच्छा लगा शिरडी के साईं बाबा के दर्शन लिए, लालबाग का राजा जी, साईं बाबा जी का दर्शन, तो सेम वैसा डेकोरेशन वहाँ पे मंडल वाले ने सबने किया है मिलके।
0: सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबुरी, प्रेम और मानवता का संदेश देती ये झांकियाँ धार्मिक आस्था के साथ भाईचारे की तस्वीर भी दिखा रही हैं।
4: पिछले कुछ सालों से हम कुछ अच्छे अच्छे देखा सादर कर रहे चंद्रपुर की जनता के लिए और इसके पहले भी हमने केदारनाथ मंदिर, रायगढ़, पंढरपुर, साढ़े तीन शक्तिपीठ और इस बार हम शिरडी साईं बाबा लेकर।
0: पिछले 46 साल से सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल अलग अलग धार्मिक स्थलों की झांकियां बनाता आ रहा है। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक दिन रात मेहनत की। अकुला की कहानी किसी बड़े पंडाल की नहीं बल्कि एक परिवार की मेहनत और लगन की है। मानकर परिवार ने इस बार अपने घर में गणपति बप्पा के साथ पुणे जिले के जेजुरी स्थित खंडोबागढ़ की प्रतिकृति तैयार की है।
5: महाराष्ट्र की परंपरा रही गणेश उत्सव में घर घर और सार्वजनिक पंडाल में बप्पा तो विराजमान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है बप्पा जो सभी का आस्था का केंद्र है, वो बप्पा की सुंदर प्रतिमा जो है ये मानकर परिवार ने यहाँ पर विराजमान की है। और साथ ही बप्पा महज 10 दिन के लिए विराजित नहीं किए गए, तो ये जो पूरा पंडाल है, ये छोटा सा घर के अंदर का जो पंडाल है, ये जय मल्लार मानो जेजुरी का गढ़, पूरे जिले के जेजुरी का गढ़, जो सभी का श्रद्धा स्थान है खंडोबा महाराज का, खंडोबा महाराज के अवतार में जो है वो यहाँ पर गणपति बप्पा की ये सुंदर प्रतिमाएं हैं। और जिस तरीके से मल्हार गढ़ है, जिस तरीके से जेजुरी का गढ़ है, उसी तर्ज पर जो है घर के जो वेस्टेज जो सामान है उससे ये सब कुछ ये परिवार ने बनाया है। बच्चों ने रंगोटी की है, तो शिल्पा ने जो है इसे जो है सवारा है, और उनकी सास ने जो है ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ड्रेस सिलाए दिख रहे हैं वो सिलाए है, तो शिल्पा के मिस्टर ने जो है इसकी कटिंग की है, इसको रंगाई की है। मानो ये सभी जो बातें हैं, ये बप्पा जो है जिसे बुद्धि का देवता कहते हैं, वो इन्हें हर साल कुछ अलग थीम, जो आस्था की थीम है, जिस तरीके से पिछले वक्त इन्होंने जो है पंढरपुर के विठ्ठल रुक्माई का जो पंढरपुर है उसकी पूरी वारकरी, जो शेगांव से वारकरी जाते हैं उसकी पूरी थीम बनाई थी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये दीप स्तंभ है, ये दीपमाला है, वो जेजुरी में बस ऐसी तरह की है, और हर जगह जो है वो पीली मानो हल्दी लगाई हुई, क्योंकि वहां पर जो है हल्दी जो है उधड़ी जाती है। और सबसे अहम बात ये है कि आने वाले भक्त भी जो है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को इतना पता है कि यहाँ पर कुछ अलग थीम में बप्पा विराजमान होते हैं, तो अपने आस्था का केंद्र रहे जो बप्पा है वो बुद्धि के देवता है, जो हमेशा से ही ये मानकर परिवार को नए अलग थीम बनाकर जो है बप्पा के साथ एक संदेश देने का काम यहाँ पर ये परिवार करता नजर आ रहा है।
0: बप्पा की प्रतिमा के ठीक बगल में किले की मीनारें, रंग रोगन, सजावट और पारंपरिक अंदाज में सजे भगवान खंडोबा, हर चीज में परिवार की मेहनत दिखाई दे रही है। इस झांकी की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया बल्कि परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिल्पा मानकर, उनके पति और दोनों बेटों ने मिलकर इसे आकार दिया। बेस्ट मटेरियल से किले की मीनार बनाई गई, फिर रंग रोगन और सजावट का काम हुआ, खंडोबा की प्रतिमा को सजाया गया। इतना ही नहीं, भगवान के लिए पोशाक भी बाजार से नहीं खरीदी गई, घर में मौजूद नए कपड़े से ही तैयार की गई।
6: हर साल हम अलग अलग झांकियां बनाते हैं, महाराष्ट्र के जो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं, देवस्थान रहते हैं, उनके हम दर्शन के हेतु जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके दर्शन होने के हेतु हम ये झांकियां बनाते हैं। लेकिन ये झांकियां बनाते समय हम सब हाथों से कलाकृति जो हर एक चीज है हम अपने हाथों से साकारते हैं, कुछ भी ऐसा खरीद के नहीं लाते है। ईच एंड एवरी थिंग, जैसे वो उसके मेकअप, दागिने, कपड़े, वो सब घर पे, जैसे मेरे सास मुझे मदद करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, एक कलरिंग का काम मेरे बच्चों ने किया है, और जो लाइटिंग का काम है वो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं, और इसके सब की हेल्प से ये पूरा हम डेकोरेशन हर साल साकार करते हैं।
0: यानी सामान भले घर में मौजूद था लेकिन कल्पना बड़ी थी, मेहनत लगातार थी और सबसे बढ़कर परिवार का साथ था। हर साल गणपति स्थापना के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग आस्था केंद्रों को घर में साकार करने की कोशिश करने वाला यह परिवार इस बार जेजुरी के खंडोबागढ़ को अपने घर ले आया है। पड़ोसी और आसपास के लोग भी अनोखी झांकी को देखने पहुंच रहे हैं। किसी के लिए ये गणपति की सजावट है, तो किसी के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस करने का मौका। यही तो गणपति उत्सव की खूबसूरती है, जहां बप्पा के साथ पूजा होती है, परंपरा जुड़ती है, संस्कृति सजती है और अपनों के साथ आस्था और भी गहरी हो जाती है। अकोला से धनंजय साबले, चंदपुर से विकास राजूरकर, नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी पप्पा जरूर पधारे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। बताते चले कि ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं, ये नंबर सिर्फ वीडियो और तस्वीर शेयर करने के लिए है। और जब भी आप अपना वीडियो शेयर करें या फोटो शेयर करें तो आप अपना नाम, अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेल्कू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य। दूर दराज से गांव की सुहागिन महिलाओं को भी दिया जाता है आमंत्रण।

पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा है विघ्नहर्ता का अनूठा रूप। पंडाल देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बच्चे। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में भारत की ओर से लगाया सबसे तेज T20 शतक। सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा का टूटा रिकॉर्ड। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना। कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जौजला में जबरदस्त बर्फबारी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई जगहों पर दीपोत्सव का आयोजन, महाकाल की नगरी उज्जैन में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगाई महाकाल की नगरी उज्जैन, आतिशबाजी की रंग बिरंगी रोशनी से रोशन हुआ आसमान। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजन, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और राजनीतिक सफलता के लिए की गई प्रार्थना। महाकाल मंदिर के पंडितों ने प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ मंदिर के गर्भगृह में किया रुद्राभिषेक। शाम को क्षिप्रा तट समेत महाकाल लोक में दीपोत्सव का हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में की महाप्रभु की आरती। आरती में सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की आरती के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कांकरिया लेक परिसर में भारत माता की आरती की और आशीर्वाद का दिया लगाया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में कोलकाता में दिव्य दीपोत्सव का आयोजन, हजारों दीयों की रोशनी से एक साथ इलेक्ट्रिकल लाइटों से भी की गई जबरदस्त सजावट। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए, उन्होंने भी दिया जलाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोलकाता में की गई जबरदस्त आतिशबाजी, पटाखों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ पूरा आसमान। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगाया अयोध्या का सरयू कुंड मंदिर। अयोध्या के सरयू कुंड मंदिर में दीपदान और लेजर लाइट शो का भी हुआ आयोजन। लेजर लाइट के जरिए रामायण के प्रसंगों का किया गया चित्रण, लोगों ने लेजर लाइट शो का आनंद लिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के केवड़िया में जलाए गए 51,000 से ज्यादा दिए। केवड़िया में आयोजित दीपोत्सव में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, आम लोग और पर्यटक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर रोशनी से खिला लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल, प्रज्वलित किए गए हजारों दिए। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने जलाया दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुवाहाटी में जलाए गए हजारों दिए, बांस के बनाए स्ट्रक्चर पर जलाए गए दिए, रोशन हुआ पूरा इलाका। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर जयपुर में की गई जबरदस्त सजावट, शहर की प्रमुख सड़कों और सरकारी इमारतों और चौराहों को किया गया रोशन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जलाए गए हजारों दिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जलाया आशीर्वाद का दिया। त्रिपुरा के गोमती में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री मानिक साहा ने दिया जलाया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बिहार की राजधानी पटना में भी आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम, हजारों दिए किए गए प्रज्वलित। सेवा संकल्प अभियान के तहत किया गया आयोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में व्यापारियों ने मनाया पीएम का 76वां जन्मदिन। व्यापारियों ने लोगों में बांटे 76 किलो लड्डू। प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर कानपुर में जलाए गए 76,000 दिए, ड्रोन शो का भी हुआ आयोजन।

0: पीएम के जन्मदिन पर हरिद्वार में दीपोत्सव जैसा माहौल, जलाए गए 51,000 दिए, मां गंगा से पीएम की लंबी उम्र की प्रार्थना की गई। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पठानकोट रेलवे स्टेशन पर भी जलाए गए दिए, सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत भी की गई। यूपी के पीलीभीत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलग अलग तस्वीर लगे हुए 76 केक काटे गए। बच्चों ने प्रधानमंत्री के जीवन पर पोर्ट्रेट गैलरी तैयार की, तो कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। पीएम के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बच्चे भी शामिल हुए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर फरीदाबाद में कार्यक्रम का आयोजन, 200 दिव्यांगों को मिली मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी। पीएम के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 200 दिव्यांगों को बांटी इलेक्ट्रिक स्कूटी। सेवा संकल्प अभियान के तहत बांटी गई इलेक्ट्रिक स्कूटी। फरीदाबाद में 300 और दिव्यांगों को मुफ्त मिलेगी स्कूटी। अगले दो हफ्तों में दिव्यांगों को स्कूटी बांटने की तैयारी। स्कूटी पाने वालों ने पीएम का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर लद्दाख में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर फूलों के जुड़वा खेतों का उद्घाटन एलजीबी के सक्सेना ने लोकार्पण किया। 10,600 फीट की ऊंचाई पर 40 एकड़ में फैले हैं ये फूलों के खेत। यहां लगाए गए फूलों में 24 लाख लिलियम और 1 लाख ग्लैडियोलस फूल शामिल। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न मंत्री नंदगोपाल नंदी ने शहरवासियों के लिए बुक कराया फिल्म हनुमान अंश के 3 दिन के 4 शोज। यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने काटा पीएम मोदी के जन्मदिन पर केक, लोगों के साथ देखी फिल्म हनुमान अंश। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मथुरा नगरी में शांति वंदन और बहना सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सेवा संकल्प अभियान के तहत किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत और महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 11,000 महिलाओं को साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों का दावा, 3 दिन चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत 35,000 महिलाओं को साड़ी और मिठाई देकर सम्मानित किया जाएगा। पीएम के जन्मदिन पर भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भव्य कार्यक्रम, लगभग 40,000 आदिवासी छात्रों ने केक काटा। सिलीगुड़ी में स्कूली बच्चों ने अपने अंदाज में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। मोदी स्टाइल के पहनावे में नजर आए बच्चे और लगाए मुखौटे। चंदौली में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अनोखा जश्न, बांटी गई 76 किलो मिठाई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में नितिन नवीन ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। इस मौके पर खुद भी उन्होंने रक्तदान किया। लखनऊ में मोदी के जन्मदिन पर सिविल अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मरीजों को फल बांटे। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 108 कुंडिये हवन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद में अनोखा नजारा, विष्णु मिया धाम में की गई महाआरती। हजारों लोगों ने महाआरती में हिस्सा लिया, जगमगाए हजारों दिए, दिखा भारत के नक्शे का आकार। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रेत से बनाई खास कलाकृति दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। झांसी में रात 12 बजे महिलाओं ने काटा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का केक, बोली मोदी योगी सरकार में मिली ऐसी सुरक्षा जो पहले कभी नहीं मिली। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान परेल के राजा का दिखा अनोखा स्वरूप, वारकरी रूप धारण किए नजर आए बप्पा। महाराष्ट्र के समृद्ध वारकरी परंपरा और विठल भक्ति को समर्पित है बप्पा का ये रूप, दर्शन के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। महाराष्ट्र सादा पेटा यानी कि महाराष्ट्र की संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक मानी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की पगड़ी पहने नजर आ रहे गणपति, वारकरी रूप में, हाथ में सजा है मृदंग। 24 फीट ऊंची है गजानन की ये प्रतिमा, पूजा अर्चना के लिए गणपति की एक छोटी मूर्त भी मौजूद। इस बार अपना 80 साल मना रहा ये मंडल हर साल गजानन को अलग अलग रूपों में स्थापित करने के लिए मशहूर है परेल का ये गणेश पंडाल। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़, गणेशोत्सव पर तैयार की गई वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 100 फीट ऊंची प्रेम मंदिर की प्रतिकृति करीब 120 फीट है लंबाई और 90 फीट चौड़ा है ये भव्य मंदिर। मंदिर के दर्शनीय हिस्सों पर बनाई गई है राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं, विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम, मशहूर दक्षिण मूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया पुणे के आलंदी की संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर। दीवारों से लेकर मंदिर के गुंबद तक शानदार नकाशी बेहद खूबसूरती से ढाली गई है। हर बारी की पंडाल में देखने को मिल रही है आस्था और कला के अद्भुत संग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी का अद्भुत मिलन सिबलाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लालबाग चौराहा के साथ शिरडी साई बाबा के भी दर्शन। इस अनोखे धार्मिक संगम को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंडाल में लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति की तैयार की गई है। बप्पा के साथ शिरडी के साई बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भी अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इन भव्य झांकियों के निर्माण में पिछले 3 महीने से दिन रात जुटे कलाकार, भव्य सजावट, आकर्षक मूर्तिकला और धार्मिक झांकियां इसी मेहनत का प्रोग्राम। 46 वर्षों से प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की भव्य झांकियां प्रस्तुत करने के लिए मशहूर है ये पटाल चंद्रपुर वासियों को अपने ही शहर में विभिन्न तीर्थ स्थलों और धार्मिक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का संदेश, वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बना अनोखा गणेश पंडाल। सूरत में ठाकुर सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है ये अनोखा गणेश पंडाल। पंडाल के बीच में स्थापित की गई है गणपति की विशाल और भव्य प्रतिमा। पंडाल में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेचू भी स्थापित किया गया। वंदे भारत ट्रेन के स्वरूप में तैयार किया गया गेट है आकर्षण केंद्र। इस पंडाल के बाहर लगाई गई है बड़ी एलईडी स्क्रीन जिस पर लगातार चलती रहती है भगवान गणेश की भक्ति गीत और धार्मिक प्रस्तुतियां। इस अनूठी प्रस्तुति को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह, बड़ी संख्या में लेजर शो देखने के लिए भी पहुंच रहे लोग। गणेशोत्सव में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा, 2 लाख से भी ज्यादा पेन से बनाई गई है ये मूर्ति। बयालीस फीट ऊंची है भगवान गणेश की प्रतिमा, दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे लोग बढ़ी आकर्षण का केंद्र। अलग अलग रंगों के पेन से किया गया है त्रिमुखी गजानन स्वरूप का निर्माण, इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा का एक बेहतरीन उदाहरण। अकोला में गणेश भक्त परिवार ने बनाई गणपति की अनोखी झांकी, घर के गणपति के साथ सजाई जेजुरी का खंडोबागढ़ की प्रकृति। महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है पुणे जिले के पुरंदर तालुका में स्थित जेजुरी। इस शानदार प्रतिकृति को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। मुंबई में इजराइल के काउंसिल जनरल यानी ब्रवाच ने लालबाग चौराहा के दर्शन किए, लिया बप्पा का आशीर्वाद। पुणे में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया गणपति उत्सव। कॉलेज के आखिरी साल को यादगार बनाने के लिए बिठाए बप्पा। पिछले 3 सालों से एक ही बैचलर फ्लैट में रह रहे सभी छात्र एक साथ कर रहे हैं पढ़ाई। गणपति की भक्ति में रंगा तिरुवनंतपुरम पंजाब घंटी महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव समारोह। विनायक चतुर्थी के अवसर पर भगवान मां गणपति की होती है विशेष पूजा, लगाया जाता है अप्पम मोदक और गणपति हुम्मम का भोग। तमिलनाडु के कुडलोर में विनायक चतुर्थी के समापन पर बंगाल की खाड़ी में हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए भक्त। रामेश्वरम में गणपति मूर्ति का विसर्जन, पारंपरिक उत्साह और ढोल नगाड़ों के बीच बप्पा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना। तटीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती। कर्नाटक के हुबली में भी गणपति विसर्जन जुलूस संपन्न, भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ मूर्ति विसर्जन किया। ढोल नगाड़ों के बीच निकला बप्पा का शानदार जुलूस, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बप्पा से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना के साथ दी गई विदाई, भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। तमिलनाडु के मदुरई में उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में भव्य महाकुंभाभिषेक का आयोजन। मंदिर परिसर में सुबह से ही जारी है अनेक धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर की पवित्र यज्ञशाला में विशेष पूजा जारी। 17 साल के अंतराल के बाद हो रहा है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भव्य महाकुंभाभिषेक, देश भर के भक्तों में भारी उत्साह। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर रंग बिरंगी और आकर्षक रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर, देखते ही देखते बन रही है इस धार्मिक आयोजन की भव्यता। हिंदू मंदिर में होने वाला एक पवित्र जीर्णोद्वार और शुद्धिकरण अनुष्ठान है कुंभाभिषेक, जिसमें वेदों और मंत्रोच्चार के बीच किया जाता है देवताओं का आह्वान। अकोला में दिखी भविष्य की पढ़ाई की झलक, श्री शिवाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रोबो शो 2026 का आयोजन। टीचर की शक्ल में नजर आया आरएस नाम का एआई ह्यूमनॉइड रोबोट, बहुभाषी बातचीत के साथ एआई आधारित इंटरैक्टिव टीचिंग का किया प्रदर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या आप केवल विचार करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या विचार करके अपने बिगड़े हुए ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं? क्या केवल विचार करके रुके हुए काम भी बना सकते हैं? आपके विचारों की क्या है शक्ति और क्या है प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया के सामने रखेंगे। हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के भेजे गए तमाम वीडियोस पहुंच रहे हैं और उसी की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। हरिनगर दिल्ली से एक वीडियो आया है जहां पर बंटी भारद्वाज ने ये वीडियो हमें भेजा है, जिनके घर पप्पा पधारे, बेहद खूबसूरत तरीके से उन्होंने स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया ने भी एक वीडियो भेजा है। श्रेया का ये वीडियो पन्ना मध्य प्रदेश से आया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया, सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जोड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना

आरोप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं आपके विचारों के बारे में। अपने विचारों में बदलाव करके आप जीवन में समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में आज पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पलंग पर बैठिए, भगवान का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी पूरी होगी।
0: और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि पंडित जी, विचार हमारे जीवन में कितने प्रभावशाली होते हैं, हमारे जीवन की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि केवल आप अपने विचारों से अपने पूरे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आजकल की आधुनिक बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। विचार कितने प्रभावशाली होते हैं, देखिए ईश्वर ने दो बड़े जबरदस्त वरदान दिए हैं आपको, एक आपका मन और दूसरा आपकी सोच या विचार। तो सोच या विचार जो है वो ईश्वर का वरदान है। अगर आप अपने विचारों का सही प्रयोग करें तो आप अद्भुत शक्तियां अपने जीवन में पा सकते हैं। और अगर आपको प्रभावशाली तरीके से अपने विचार को बदलना आता है, आप अपने विचारों को कंट्रोल करना जानते हैं, तो विचार से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और एकमात्र विचार अगर प्रबल हो, अगर शक्तिशाली हो, तो जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके विचार केवल आपके ऊपर असर डालते हैं, आपके विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने विचारों की शक्ति को अगर जान लें और विचारों को प्रयोग कैसे करना है ये जान लें, तो आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदल सकते हैं। विचारों का विशेष प्रयोग जब शास्त्र में गया, जब साधना में गया, तो उसे कहा गया मंत्र। मंत्र क्या है? एक विशेष तरह का विचार है जो प्रकृति में और आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो आपके विचार केवल आपका जीवन नहीं बदलते, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप दूसरे की सोच को भी अपने विचार

0: विचारों द्वारा बदल सकते हैं।
1: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें, काले चने का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उससे लाभ या हानि कैसे होती है।
0: देखिए, विचार जो है ना, ये आपके मन का रिफ्लेक्शन है। कोई भी बात, कोई भी विचार पहले मन में आता है, फिर आपके एक्शन में आता है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। आपके जो विचार हैं, देखिए, केवल आपका सोचना, केवल आपके विचार आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कैसे? लगातार किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में आप निरंतर विचार करें तो वो सत्य होने की तरफ बढ़ने लगता है, वो मूर्त रूप लेने लगता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, आप रोज सोचते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके मन में हमेशा ये चक्कर रहता है, तो याद रखिए, एक न एक दिन आप एक्सीडेंट के शिकार होंगे अपने इसी विचार की वजह से। अगर विचार नकारात्मक हैं तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरह के नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, प्रकृति में फैलाते हैं, प्रकृति में आपके लिए अशुभ परिवर्तन होने लगता है। अगर आपके विचार शुभ हैं तो प्रकृति आपके जीवन में शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। आपके आपके विचार का आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से बड़ा गहरा संबंध है। जॉन मर्फी की एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। वो दरअसल आपके विचारों को एक दिशा देने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को अगर आप पॉजिटिव बनाते चलें, अगर अपने विचारों को शुभ बनाते चलें, तो निश्चित रूप से जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। तो आपके विचार प्रभु आपको ईश्वर तक जब पहुंचा सकते हैं, तो जीवन में लाभ और हानि भी करवा सकते हैं।
1: आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं।
0: कर्क राशि, तनाव इस समय आपका कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, उपहार मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न राहुल जी ने हमें हैदराबाद से लिखा है। 26 जुलाई 1990 का जन्म है, 4:20 दोपहर में मुंबई महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैं आईटी के सेक्टर में एक अच्छा करियर बनाना चाहता हूं और उस क्षेत्र में मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो मुझे बेहतर नौकरी कब तक मिलेगी, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राहुल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। नौकरी आप अभी पा जाएंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में, लेकिन अभी नौकरी आपको सामान्य मिलेगी। जो सामान्य नौकरी मिलेगी वो नौकरी कर लीजिएगा। 2028 के फरवरी के बाद आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, तब तक आराम से सामान्य नौकरी करते रहिए। साल 2027 के अप्रैल के बाद आपके विवाह होने का योग बन रहा है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बेहतर रहेगा। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, सफलता पाने के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न अविनाश कुमार जी ने हमें लिखा है, जहानाबाद बिहार से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 7 नवंबर 2002, 8:22 रात को, पटना बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी बीकॉम कर रही है, आगे किस करियर में जाना चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा। अविनाश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी बेटी को कहिए कि वो मेहनत करे, वो कोशिश करे, प्रयास करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में या आगे बढ़ने के लिए, उतना प्रयास नहीं करती हैं। आलस्य बहुत है और एफर्ट कम है। बीकॉम के बाद इनको बीएड करवा दीजिए और शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इनको आगे बढ़ाइए, काफी बेहतर होगा। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाइए और अपनी बेटी से कहिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेंगे कि अपने विचारों से खराब ग्रहों को कैसे ठीक कर सकते हैं।
0: देखिए, अक्सर हम अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए रत्न पहनते हैं, दान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने विचारों से खराब ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया जो ग्रह आपका खराब है वो स्वास्थ्य की समस्या बता रहा है, तो आप अब लगातार विचार करना शुरू करिए कि ये ग्रह आपके लिए अनुकूल हो रहा है और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आप कभी मत सोचिए कि आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको नुकसान होगा। आप ये मान करके चलिए, ये सोचिए कि ये ग्रह मेरे लिए अनुकूल रहेगा और इस ग्रह के पीरियड में मुझे लाभ होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे आप ये विचार लगातार करेंगे तो उस ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने आचरण को भी ठीक रखना होगा। अगर ग्रह की वजह से स्वास्थ्य की समस्या होने वाली है तो आप ये सोचिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में डॉक्टर का परामर्श मानिए, खान पान में, जीवनचर्या में सुधार करिए और निरंतर विचार करिए कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये विचार आपके ग्रह की अशुभता को बहुत हद तक कम कर देगा।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: तुला राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उनसे छोटी छोटी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, कैसे सुलझाया जा सकता है।
0: देखिए, आप अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। कैसे? आप जब काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का, घर का, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छे विचार रख करके करिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उस काम में मैं सफल होऊंगा। खाना बनाते समय खासतौर से हमारी बहनें, माताएं अच्छी सोच रखें, क्रोध में, तनाव में, टेंशन में भोजन ना बनाएं, मन में आनंदित रहें। देखिए, जीवन है तो कष्ट तो आएगा ही, जीवन है तो मन प्रसन्न भी होगा और अप्रसन्न भी होगा, लेकिन आप अपने मन को समझा करके मन को ठीक रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, जिससे आपके संबंध बिगड़े हों उसके बारे में अच्छी सोच आती नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करके उसके बारे में अच्छा सोचें और मन में ये सोचें कि मेरा संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएगा, तो आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है या काम होने में लगातार अड़चन आ रही है, आप लगातार अपना प्रयास करते रहें और लगातार अपने मन में विचार करते रहें कि मेरा काम बनने वाला है, मेरा काम होने वाला है। जब भी आप घर से निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए, आप मन में ये सोच कर निकलिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहेगा और आज मुझे हर काम में सफलता मिलेगी। रात को सोते समय प्रार्थना करने की आदत डालिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अच्छे विचार करते हुए सोइएगा। रात का अंतिम विचार अगले दिन के सुबह का पहला विचार होता है, तो रात में अगर आप अच्छे विचार करके सोएंगे, भगवान से प्रार्थना करके सोएंगे, तो अगले दिन की सुबह से ही आपके मन में अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना

0: आएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए, वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने हमें लिखा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 7 अप्रैल 2006, 8:55 रात को, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा है, आगे उसे एमटेक करना चाहिए या उसे नौकरी की तरफ जाना चाहिए? सत्येंद्र जी, आपके पुत्र की कुंडली है तुला लग्न की और कर्क राशि की, महादशा केतु की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप इनको बीटेक पूरा करवाने के बाद एमटेक की पढ़ाई करवाइएगा, क्योंकि अभी ये उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, आगे चल करके एमटेक कर पाना कठिन होगा, तो पहले एमटेक करवा लीजिए, उसके बाद ये नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा।
1: और चलिए, अब आगे बढ़ते हुए अपने चौथे सवाल की ओर। पंडित जी, चौथा सवाल आज किसका होने वाला है?
0: जी,

0: कुंदन कुमार जी ने हमें लिखा है, पटना से लिखते हैं, 25 मार्च 1991 का जन्म है, 11 बजे रात में पटना बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा हूं, तो किस क्षेत्र में मेरा करियर बनेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मुकुंदन जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जून 2027 तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बचना चाहिए। नौकरी पाने के लिए पटना से बाहर निकलिए, शिक्षा क्षेत्र में, मेडिकल में, लॉ में या किसी फैक्ट्री में आपको नौकरी मिलेगी इस साल के अंत में, लेकिन पटना से बाहर निकलना होगा। एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः शनि मंत्र का अगर नियमित जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर संतोषजनक बना रहेगा, इस साल स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है और विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आगे बढ़ने का और पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर में कौन सा पौधा जरूर लगाना चाहिए। देखिए, घर में कोई भी पौधा आप लगाते हैं वो अपनी तरंगों से पूरे घर को प्रभावित करता है। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, इसे घर के बीचों बीच में लगाएं या अपने सोने के कमरे के साथ वाली बालकनी में लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: अब पंडित जी से जानेंगे कि शुभ पहर क्या होगा।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन की कमजोरी क्या है, जीवन की दिक्कत क्या है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है मन की चंचलता। इनको अपने मन की चंचलता पर ध्यान देना चाहिए और बेवजह की दौड़ भाग से हमेशा बचना चाहिए।
1: और चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हल करने का महा उपाय क्या है।
0: अगर आपको बार बार बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो बीमारी हो जाएगी, अगर बेवजह बीमारी के वहम से परेशान हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे नहाइए जरूर, स्नान जरूर करें, एक चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहने और खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय नमः शिवाय का जप करते रहें, आपके वहम की समस्या दूर होगी।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुजरात के वडनगर से लेकर उनकी कर्मभूमि काशी तक उत्सव का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों से आम लोगों की तरफ से उनका जन्मदिन मनाने की अनोखी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहीं स्कूली बच्चे उनकी तरह दिखते हुए केक काटकर उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहीं मंदिर में उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर कई देशवासी अपने घरों में आशीर्वाद का दिया प्रज्वलित कर रहे हैं।

0: जन्मदिन की पार्टी का जोश तो बच्चों में ही होता है, और जन्मदिन प्रधानमंत्री का हो तो क्या कहने। मोदी जी के मास्क लगाए गए, रंग बिरंगे गुब्बारे सजाए गए, एक बच्चे ने पीएम जैसा चेहरा मुहरा बनाया और फिर धूमधाम से केक काटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये खूबसूरत तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई है, जहां कुछ स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया, खुद भी जम कर केक खाया और प्रतीक के तौर पर मोदी जी की तस्वीर को भी केक खिलाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मां विंध्यासिनी से जुड़ा पवित्र शक्ति पीठ मौजूद है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के साथ विशेष पूजा की गई। इस दौरान मां विंध्यावासिनी को 176 किलो लड्डू का भोग भी लगाया गया। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके और देश के कल्याण के लिए इस तरह के विशेष अनुष्ठान का आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुशांत रॉय नाम के मूर्तिकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वैक्स यानी मोम से बनी आदमकद प्रतिमा तैयार की। बंगाल की पारंपरिक धोती कुर्ते में पीएम मोदी की मोम वाली इस प्रतिमा का अनावरण कोलकाता के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पूरे होने पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा संकल्प अभियान के तहत काशी से प्रधानमंत्री की जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से एक भव्य बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हमारी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि कही जाती है, और वहां से चलने वाली ये 500 बाइक्स पहुंचेंगी वडनगर यानी कि उनकी जन्मस्थली पर। मैं जिस बाइक पर सवार हूं उसके आगे आप देखें तो लिखा है सेवा संकल्प अभियान, जन सेवा से राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष। और मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा फ्रेम वाइड खोलें और मेरे पीछे भी दिखा दें, 500 ऐसी बाइक्स जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और 500 जितना दूर आपका कैमरा जाएगा उतना दूर आपको मैं दिखाऊंगा यहां से बाइक्स। ये बाइक्स यहां पर लाकर रखी गई हैं क्योंकि कुछ क्षणों में यहां से ये बाइक्स रवाना होंगी वडनगर के लिए। लंबा रास्ता जरूर है लेकिन जो एक तरीके से उत्साह है उसमें कोई कमी फिलहाल नहीं है। इन बाइक्स को अगर आप यहां से देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, इनमें इस तरह के स्टिकर्स यहां लगे हुए हैं, सेवा संकल्प अभियान, जन सेवा से राष्ट्र सेवा के 25 वर्ष, और जहां से जहां तक इनको कुल मिलाकर जाना है उसकी जानकारी भी यहां पर दे दी गई है, यानी कि वाराणसी से वडनगर सेवा यात्रा, ये सेवा यात्रा कुल मिलाकर इसको नाम दिया गया है। यहां पर कुल 500 इस तरह की बाइक्स जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, 500 बाइक्स यहां से रवाना की जाएंगी। और बड़ी बात यहां पर ये भी है कि जो इन बाइक्स को ले जाएंगे वो अलग अलग राज्यों से हैं, ऐसा नहीं है कि जो यूपी के लोग हैं वही इन बाइक्स को ले जा रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों के भी लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। इसके अलावा जो पवित्र नदियां हैं गंगा, बेतवा, यमुना, उनका जल एकत्रित किया गया है। और इस तरीके से सेवा संकल्प अभियान की तरह यहां पर कलश इस तरीके के लगाए गए हैं प्रतीकात्मक तौर पर, और ये कलश जो है ये वडनगर जाएंगे।
0: करीब 22 दिनों में 10 राज्यों, 193 जिलों और 1,159 गांव से होकर गुजरने वाली इस यात्रा में 250 बाइक्स पर 500 बाइकर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की कर्मस्थली काशी में मौजूद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में महिलाओं ने गगन भेदी शंखनाद करके सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के जरिए से काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा और स्नेह को भी व्यक्त किया।
2: संकल्प अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के मौके पर काशी यानी उनकी कर्मस्थली से शुरू हो रही है और पूरे एक महीने तक ये अभियान यूं ही चलता रहेगा। देख सकते हैं शंखनाद की ध्वनि के साथ आज इस वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पर जो महिलाएं पहुंची हैं काशी से धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं नरेंद्र मोदी का।
3: सारी महिलाएं शंखनाद करके उद्घोष दे रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि आज उनके जन्मदिन पे हम लोग भी बहुत खुश हैं।
0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भव्य दीप उत्सव आयोजन किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित 65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर करीब 1.5 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना के लिए रायबरेली के ऊंचा हार की धरती पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रिकॉर्ड बनाया। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की तरफ से 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप देश में अपनी तरह का अनूठा आयोजन बन गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के विशेष अवसर पर ओडिशा के भुवनेश्वर में करीब 40,000 छात्रों ने उनका जन्मदिन बेहद अनोखे अंदाज में मनाया। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के इन छात्रों ने केक काटकर पीएम के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में मना, पूरे देश से दुआएं मिली, बच्चे बड़े आम और खास सभी शामिल हुए, सभी ने अपने अपने तरीके से खुशियां बांटी और मनाई। देखा जाए तो आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव, रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब बात गणेशोत्सव की। पूरा देश बप्पा के जयकारों से गूंज रहा है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बप्पा के दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। जगह जगह पर अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात से लेकर देश भर में गणेशोत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम भारत तक भक्ति के रंगों से सराबोर है हर कोई।

0: मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में हर दिन भक्तों का रेला उमड़ रहा है। इसी तरह परेल के राजा के दरबार में भी भक्तों का तांता लग रहा है। इस बार यहाँ पंढरपुर के वारकरी विठ्ठल अवतार में बप्पा विराजमान है। साथ ही पंढरपुर की तरह ही भव्य सेट भी बनाया गया है।
1: सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विठ्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं। विठ्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं।
0: पंढरपुर की तरह बनाए गए सेट के सामने ही तालाब भी बनाया गया है, जिसमें पंढरपुर के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी का ही पानी है। और विशेष बात यह है कि चंद्रभागा नदी के पानी से ही बप्पा की मूर्ति भी बनाई गई है। नागपुर में इस बार दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। पुणे के आलंदी मंदिर की शैली में यहाँ नक्काशीदार खम्बे, संत ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर का प्रारूप और बप्पा की भव्य प्रतिमा के दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। अकोला में रिद्धि सिद्धि गणपति मंडल का ये पंडाल भी भक्तों को खूब आकर्षित कर रहा है। यह इस बार गणेशोत्सव के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के भव्य झांकी तैयार की गई है।
2: अकोला में न्यू राधा कृष्ण प्लॉट में जो है बड़ोदरा से लाई ये जो रिद्धि सिद्धि गणपति पंडाल की जो भव्य मूर्ति है लगभग 35 फीट की, ये पूरी तरीके से वहां तक जहां पर शंकर जी की बारात दिख रही है ना वहां तक 35 फीट की है। सुंदर सजाई भी है, इंटीमेट ज्वेलरी से बप्पा को सजाया गया है और सबसे अहम बात है कि मूर्ति में ही जो है इंक्लूड पूरी तरीके से शिव बारात है।
0: अकोला में एक परिवार ने गणेशोत्सव के लिए पुणे के प्रसिद्ध जेजुरी स्थित खंडोबा मंदिर की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। घर के गणपति के साथ सजे जेजुरी के खंडोबा के इस भव्य दरबार को मानकर परिवार के सदस्यों ने मिलकर तैयार किया है। किसी ने वेस्ट मटेरियल से किले की मीनार तैयार की तो किसी ने रंग रोगन किया। अकोला ही नहीं, चंद्रपुर के बलारपुर में भी एक परिवार ने घर में आस्था का अद्भुत संसार सजाया है, जिसमें बर्फीले पहाड़ों के बीच बप्पा विराजे हुए हैं। यहाँ चिंतावार परिवार ने बहुत ही आकर्षक रूप से झांकी सजाई है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। चंद्रपुर में ही बप्पा का ऐसा दरबार सजाया गया है जिसमें लालबाग के राजा के साथ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने इस बार लालबाग के राजा के भव्य प्रतिकृति बनवाई है, साथ ही साईं बाबा का दरबार भी तैयार किया गया है।
3: शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहां पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे।
0: यहाँ साईं बाबा के जीवन और उनके संदेशों पर आधारित मनमोहक झांकियां भक्तों को खूब आकर्षित कर रही है। ऐसा लगता है जैसे साईं बाबा सही में पंडाल में पधारे हुए हैं। गुजरात के सूरत में भी अलग अलग थीम पर आकर्षक गणेश पंडाल तैयार किए गए हैं। भटार इलाके में ठाकुर सेवा समिति ट्रस्ट के इस पंडाल में जहां एक और भगवान गणेश विराजे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश में हुए विकास कार्यों को भी दिखाया गया है। गणेश पंडाल के ठीक बगल में दूसरे पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा स्थापित की गई है और सामने विशेष लेजर शो के माध्यम से उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों और योजनाओं को दर्शाने वाली प्रस्तुति देखने को मिलती है। वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बने इस पंडाल का प्रवेश द्वार भी विशेष है।
4: यहाँ से अंदर प्रवेश किया जाता है और यहाँ के अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा एक बनाया गया है, किस तरह से ट्रेन का इंजन होता है, किस तरह से चलता है और जो डिस्प्ले में यहाँ लगाया गया है, इधर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ट्रेन चल रही है और ये पूरा नजारा बाहर का दिख रहा है।
0: अब हैदराबाद के विवेकानंद यूथ एसोसिएशन के इस गणेश पंडाल को देखिए, जहां भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट और स्पेस मिशन से प्रेरित इस पंडाल में भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों के साथ ही भविष्य के अंतरिक्ष की झलक भी दिखाई गई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में 21,000 पौधों और अंकुरों का उपयोग कर बनाई गई गणेश प्रतिमा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती नजर आ रही है। केरलम से लेकर तमिलनाडु तक गणेश उत्सव को लेकर भक्तों का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। रामेश्वरम में गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालु भक्ति के रंग से सराबोर दिखे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय साबले, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: अब मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है और बर्फबारी तक शुरू हो गई है। जगह जगह सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बर्फबारी का लोगों ने भी खूब लुत्फ उठाया और उसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की वजह से तापमान में भी अच्छी खासी कमी आई है।
0: आसमान से गिरती ये फुहारें खुशी से भर देने वाली है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खूबसूरत वादियों का नजारा और शानदार हो गया है। बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में हुई बर्फबारी से हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखरी दिख रही है। लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिंकुला, घेपन पीक समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद परतों से ढक गए हैं और यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हैं। लाहौल के गिलबू पर्वत की ये तस्वीरें बर्फबारी के शानदार नजारों को दिखा रही हैं। इस पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा में बर्फबारी का दीदार हुआ, जिसको लेकर वो अपनी खुशी जताते भी नजर आए।
6: सीजन का पहला स्नोफॉल है ये, बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, इस टाइम लाहौल में हूँ मैं, किलों से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ हैं हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया।
0: लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश पर भी जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर बर्फ की मोटी परतें तक जमी नजर आ रही हैं। करीब 4 इंच तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से मणिमहेश यात्रा भी रोकनी पड़ी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी मौसम अचानक से बदला और यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई और फिर हर जगह सफेद परतें नजर आने लगी। बर्फबारी के चलते मौसम बहुत सर्द हो गया है, हालांकि श्रद्धालुओं में बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
7: वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुर्बानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था जो खिचड़ी यहाँ पे मिलती है वो यहाँ पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है, यहाँ पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है।
0: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित गुरेज के ऊपरी इलाके तुलेल घाटी के काबुल गली की है, जहाँ हर तरफ सफेद चादर से बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी से यहाँ की कुदरती खूबसूरती और निखर गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आने से मौसम सर्द हो गया है।
8: जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
0: ये बर्फबारी मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है, खासकर पहाड़ों में इसे ठंड के दस्तक देने के रूप में देखा जा रहा है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोनी और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी पप्पा जरूर पधारे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। बताते चले कि ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं, ये नंबर सिर्फ वीडियो और तस्वीर शेयर करने के लिए है। और जब भी आप अपना वीडियो शेयर करें या फोटो शेयर करें तो आप अपना नाम, अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली

फूलों का बाजार महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और कितनी आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गौरी नंदन के इन्हीं रूपों के बीच आज दो तस्वीरें ऐसी भी आई जो भगवान गणेश की जननी माँ भवानी को समर्पित हैं। देखिए, गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान ही भारत के कई हिस्सों में एक पर्व मनाया जाता है जिसे गौरी गणेश उत्सव कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान माँ गौरी अपने बेटे से मिलने पृथ्वी पर आती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण के कई हिस्सों में ये पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज तस्वीरों में कुछ ऐसा ही संयोग बनता हुआ नजर आया। तो गणेशोत्सव के बीच एक तस्वीर तमिलनाडु और दूसरी पश्चिम बंगाल से आई। दरअसल आज तमिलनाडु के श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में भव्य उत्सव हुआ। ये मंदिर गजानन की माता देवी पार्वती और पिता महादेव को समर्पित है। तो वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों के शंखनाद की तस्वीरें भी आज आई। पहले आपको मदुरै के उत्सव के बारे में बताते हैं। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में 17 साल के बाद महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान हुआ। इस अनुष्ठान के दौरान शुभ मुहूर्त में पवित्र कलशों में विधि विधान से तैयार किए गए जल से देवी देवताओं के विग्रह का अभिषेक हुआ। मंदिर के शिखरों पर भी पवित्र जल अर्पित हुआ। भारतीय सनातन परंपरा और आगम शास्त्रों के अनुसार किसी भी बड़े मंदिर में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने और परिसर के जीर्णोद्वार के लिए किया जाता है। इसी भव्य आयोजन के दौरान इस भव्य आयोजन के लिए मीनाक्षी मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। तो वहीं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में मौजूद एलन पार्क में आज पूजा की तैयारियों का शुभारंभ नजर आया। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन एलन पार्क में पूजा का शुभारंभ होगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। तो माँ गौरी भी आएंगी, पर आज बात गौरी नंदन की कर लेते हैं। क्या आम क्या खास, इस समय हर घर हर दर पर गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको गणेश पूजन से जुड़ी परंपराओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी के नामों से लेकर उनके पूजन में शामिल होने वाली चीजों तक हर बात का अपना एक महत्व होता है, एक कहानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसके चलते श्री गणेश प्रथम पूज्य बने और गणनायक कहलाए।

शादी पूजा वर्षगांठ हो कोई मंगल काज, प्रथम निमंत्रण पाते हैं गणनायक गणराज। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। सनातन धर्म में सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश को भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही

0: प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान गणेश से जुड़ी इस मान्यता के कई प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में वर्णित कथा बताती है कि जब माता पार्वती के स्नान अनुष्ठान को खंडित होने से बचाने के लिए बाल गणेश ने भगवान शिव का रास्ता रोका तो क्रोधित होकर उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया था। तब माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। उस समय भोलेनाथ ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवन दान दिया, लेकिन उसके बाद भी जब माता पार्वती प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने बालक गणेश को वरदान दिया कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश का पूजन होगा।
1: एक बार सभी देवताओं में यह चिंतन हुआ कि सबसे बड़ा प्रथम पूजा पाने का अधिकारी कौन है, तो सभी लोग चले अपने अपने वाहनों से परिक्रमा करने। जो सर्वप्रथम जगत की परिक्रमा करके आएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी अपने अपने वाहनों से चले। गणेश जी का वाहन छोटा था और गणेश जी बहुत ही व्यग्र थे कि मैं कैसे परिक्रमा करूं और मैं अग्रगण्य कहलाऊं। तो भगवान गणपति ने नारद जी के कहने पर अपने माता पिता की परिक्रमा मूषक पर बैठ के कर ली और सर्वप्रथम वहाँ पहुँच गए। और तब सब ने निर्णय किया कि चूँकि सर्वप्रथम गणेश जी आए हैं, इसीलिए तब से आज तक गणेश जी की सबसे आगे पूजा करने का विधान है आज तक।
0: पुराणों में गणपति के प्रथम पूज्य होने का एक और प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग से जुड़ी कथा बताती है कि जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। शिवजी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर झट उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। इसके साथ ही महादेव ने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से विनायक सदा सर्वदा के लिए संसार में प्रथम पूज्य देव हो गए। आज युगों बाद भी ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। घर में कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गौरी सुत, शिव पुत्र, गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, जाने कितने ही नाम हैं विघ्नहर्ता गणेश के। गणपति का हर नाम उनके रूप और उनकी लीलाओं से जुड़ा है, यानी उनके हर नाम के पीछे कोई कहानी या कारण है। गणेश जी का एक ऐसा ही नाम है एक दंत। एक दंत होने के चलते गणपति को एक दंत भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में जिक्र मिलता है कि जब मद नाम के राक्षस ने आतंक मचाया तो गणेश जी एक दंत रूप में अवतार लिया और उसका अंत किया था। उसी तरह गणपति को गजानन भी कहते हैं। गज यानी हाथी का मुख होने के चलते भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। गणेश जी का एक नाम लंबोदर है, इसका अर्थ है बड़े उदर यानी बड़े पेट वाला। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर स्वरूप में अवतार लिया था। क्रोधासुर यानी गुस्सा, गणेश जी की भक्ति से हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। इसी क्रम में गणपति का एक नाम ध्रुम वर्ण भी है। इस स्वरूप में गणेश जी का रंग धुएं के जैसे नजर आता है। अहंतासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने धूम्र वर्ण अवतार लिया था। इसी तरह गणेश जी का एक नाम वक्रतुंड भी है। वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाला। अपने वक्रतुंड अवतार में ही गणेश जी ने मत्सरासुर और उसके पुत्रों का अंत किया था।
1: गणेश जी का नाम वक्रतुंड पीछे पड़ने का बहुत बड़ा कारण मत्सरासुर नाम का एक असुर जो परम शिव भक्त था, लेकिन देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था, ऋषियों को प्रताड़ित करता था, यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं उत्पन्न करता था। तो भगवान गणपति ने वक्रतुंड का रूप धारण करके मत्सरासुर का वध किया और वध करने के कारण भगवान गणपति वक्रतुंड हो गए। और उनकी जो यह प्रार्थना है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह प्रार्थना सर्वविदित है, सारे लोग करते हैं। इस प्रकार भगवान गणपति के वक्रतुंड रूप का अवतार हुआ।
2: तो ये तो थी गणपति के नामों की महिमा। अब उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनका गणेश जी की पूजा में होना अनिवार्य है। तो उसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित है, जैसे तुलसी। आइए आपको बताते हैं कि लंबोदर से जुड़ी ये कौन सी परंपराएं हैं और बप्पा से जुड़ी इन चीजों के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कहानियां हैं, ये भी हम आपको बताएंगे।

कहते हैं गणपति का आगमन शुभ के आरंभ और अशुभ के विनाश के लिए होता है। गणेशोत्सव के 10वें दिन जब बाप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो वे अपने साथ सारी नकारात्मकता भी ले जाती है।

0: लेकिन इससे पहले इन 10 दिनों के दौरान पूरे विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा की जाती है। इस दौरान गणपति की इस विशेष पूजा और खुद गणपति से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन बेहद जरूरी माना जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा मोदक के बिना पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। पौराणिक कहानियों में वे माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं।
1: एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए, माता अनसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है।
0: इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। ये कहानी बताती है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक हो गया था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सोख कर उसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठें खाने के लिए दी। गांठें खाते ही उनके पेट की जलन खत्म हो गई।
1: भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दुर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। जलन शांत हुई तो गणेश जी को तब से दुर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरिल यति सव वैश्रमणोपमो भवती। जो भगवान गणपति की पूजा दुर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है।
0: इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी माना जाता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है।
1: अक्षत जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल अक्षताश्च सुर श्रेष्ठा कुंकुमाग्ता सुशोभिता। कुमकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूंकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूंकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करते
0: हैं। गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें हैं जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते। सारी दुनिया में जिन तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उन तुलसी के पत्तों का उपयोग गणपति की पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था, लेकिन तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वे राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी के श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गई और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वे संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता।
1: भगवान गणपति को दुर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूंकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा।
0: विघ्नहर्ता गणपति से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से बढ़कर एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान के साथ विराजे हैं। पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ सी लग गई है। किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा, गणेशोत्सव की ऐसी ही अनोखी तस्वीरें आई हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से सामने। तिरुवनंतपुरम के पझावगढ़ी में गणेश मंदिर से एक बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरक्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए, जिसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। हैदराबाद जहां बप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए, गणेश उत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते हुए नजर आए। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है।

अनोखे गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का ये कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इनमें कुछ तो मूर्ति के साथ फोटो और सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। इसी के साथ गणपति उत्सव से जुड़े हुए इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है और बर्फबारी तक शुरू हो गई है। जगह जगह सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बर्फबारी का लोगों ने भी खूब लुत्फ उठाया और इसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की वजह से तापमान में भी अच्छी खासी कमी आई है।
2: आसमान से गिरती ये फुहारें खुशी से भर देने वाली हैं। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खूबसूरत वादियों का नजारा और शानदार हो गया है। बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में हुई बर्फबारी से हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखरी दिख रही है। लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिंकुला, घेपन पीक समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद परतों से ढक गए हैं और यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हैं। लाहौल के गिलबू पर्वत की ये तस्वीरें बर्फबारी के शानदार नजारों को दिखा रही हैं। इस पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा में बर्फबारी का दीदार हुआ, जिसको लेकर वो अपनी खुशी जताते भी नजर आए।
3: सीजन का पहला स्नोफॉल है ये, बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, इस टाइम लाहौल में हूँ मैं, किलों से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ हैं हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया।
2: लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश पर भी जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर बर्फ की मोटी परतें तक जमी नजर आ रही हैं। करीब 4 इंच तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से मणिमहेश यात्रा भी रोकनी पड़ी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी मौसम अचानक से बदला और यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई और फिर हर जगह सफेद परतें नजर आने लगी। बर्फबारी के चलते मौसम बहुत सर्द हो गया है, हालांकि श्रद्धालुओं में बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
4: वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुर्बानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था जो खिचड़ी यहां पे मिलती है वो यहां पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है, यहां पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है।
2: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित गुरेज के ऊपरी इलाके तुलेल घाटी के काबुल गली की हैं, जहां हर तरफ सफेद चादर सी बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी से यहां की कुदरती खूबसूरती और निखर गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आने से मौसम सर्द हो गया है।
5: जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
2: ये बर्फबारी मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है, खासकर पहाड़ों में इसे ठंड के दस्तक देने के रूप में देखा जा रहा है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोनी और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया, सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जोड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेल्कू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य। दूरदराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, हमारे बप्पा की, जिनके दर्शन भर से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, और इसीलिए मुंबई के तमाम पंडालों में उनके दर्शन के लिए भक्तों की होड़ लगी है। खासकर लालबाग के राजा के दरबार में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज आपको लालबाग समेत मुंबई के कई मशहूर पंडालों के दर्शन कराएंगे, बप्पा की भव्य और अद्वितीय प्रतिमाएं भी दिखाएंगे। न सिर्फ मुंबई में बल्कि पुणे और नागपुर जैसे शहरों में भी बेहद खूबसूरत पंडाल सजाए गए हैं। आज हम आपको इनके भी दर्शन कराएंगे, और पुणे में कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम से बना पंडाल कैसे बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना वो भी देखिएगा। साथ ही सूरत लिए चलेंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन में विराजमान गणपति की भव्यता वाकई निराली है। तो चलिए शुरुआत मुंबई से ही कर लेते हैं। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। तो परेल में वारकरी विठल के रूप में विराजे हैं बप्पा, जिन्हें देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। और इसी तरीके से घाटकोपर में बप्पा अंतरिक्ष की थीम पर नवग्रहों के साथ सूर्य नारायण की आभा में दर्शन दे रहे हैं। कहीं मन्नतों की झोली भर रही है, तो कहीं महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा जीवंत हो रही है। मुंबई के बप्पा के इन पंडालों में भक्ति भी है, भव्यता भी है, और बप्पा के अलग अलग मनोहारी रूप भी है। देखिए बप्पा। स्वरूप है बप्पा के, पर इनसे अलग और मनोहारी रूप है लालबाग के राजा का। घंटों निहारते रहिए, फिर भी मन नहीं भरेगा। हाँ, यहाँ मांगने वालों की झोली जरूर भर जाती है, इसीलिए तो सुबह से शाम तक दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे तो गणेशोत्सव की धूम पूरे मुंबई में है, लेकिन मुंबई के इस सबसे मशहूर पंडाल में खासो आम की सबसे ज्यादा भीड़ है। पिछले चार दिनों में यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु बप्पा के दर्शन कर चुके हैं, और माना जा रहा है कि अब ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है और चढ़ावा भी। गणेशोत्सव के पहले और दूसरे दिन मिलाकर लालबाग के राजा के दरबार में 1,37,40,000 रुपए चढ़ावा आया, और करीब 300 ग्राम सोना और करीब 8 किलो चांदी का चढ़ावा आया। लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, और जब मन्नत पूरी होती है तब भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। भक्त बप्पा के दरबार में संतान, स्वास्थ्य, व्यापार में सफलता और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, और भरोसा करते हैं कि बप्पा उनकी जरूर सुनेंगे।
1: It feels good. I've been coming here for last 5-6 years now. और मैंने पिछले बार बहुत लोगों को देखा है इधर आके मन्नत मांगते हैं। मैंने किसी का फोटो देखा था, किसी ने तो 2024 में एक पर्ची लिखी थी यहाँ पे कि 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो फिर उसके बाद मैं 2025 में भी इधर आया, वहाँ पे भी किसी ने लिखा था कि हमारे लीडरशिप में भी हम 2026 में इंडिया में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो यहाँ का मन्नत बहुत स्ट्रांग है, और अभी लास्ट ईयर भी हमने मांगा था कि हमें घर में बेटी हो, वो बेटी हुई, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आए मन्नत मांगने के लिए। थैंक यू बोलने आए थे कि जो भी आज तक उन्होंने हमको दिया उसके लिए थैंक यू, और जितना मेहनत करते रहेंगे उसके हिसाब से आप प्रसाद देते रहना।
2: कमबैक को लेकर भी क्या प्रार्थना की पापा से कि आप दर्शन करेंगे, कमबैक हो जाएगा दर्शन?
1: देखिए, वो सब तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सब भगवान के हाथ में। अपने हाथ में जो है वो मेहनत करना है। मैं मेहनत करते रहता हूँ, बाकी जो भगवान दे दे उसमें मैं खुश हूँ। ब्लेसिंग्स लिया, मम्मी पापा, वाइफ के साथ आया था।
0: क्रिकेटर ही नहीं, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, हर क्षेत्र, हर तबके के लोग बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के सभी राज्यों से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बप्पा का दरबार भक्ति और श्रद्धा से चकमगा रहा है। लेकिन धूम सिर्फ लालबाग चौराजा के दरबार में नहीं, चर्चा परेल के राजा की भी हो रही है, क्योंकि इस बार बप्पा ने वारकरी विठल का अवतार लिया है। इस वेशभूषा में और पगड़ी के साथ बप्पा सबसे अलग और सबसे निराले लग रहे हैं। हाथों में मृदंग और वीणा ने इस मूर्ति को और भी भव्यता दी है। परेल के पंडाल की गिनती यूं भी मुंबई के बाकी बड़े पंडालों में होती है, लेकिन इस दफे प्रतिमा को महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा से जोड़कर इसे नया लेवल दे दिया गया है।
3: इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में, जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। अब तक मुझे लगता है कि तीसरा दिन आज चल रहा है गणेश उत्सव का और 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु विट्ठल के इस अवतार का दर्शन करके जा चुके हैं। विट्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं और जो भी पाठ पूजा अभिषेक करानी होती है करते हैं।
0: परेल का ये गणेश पंडाल इस साल अपने 80वें साल में है। हर साल नए अंदाज की प्रतिमा इसकी खासियत है। इस साल भी भक्त बप्पा को देख कर गदगद है।
4: हमारे जो इस साल जो मंडल का है वो 80वां साल चल रहा है और जो बापा आज विराजमान आप देख रहे हैं हमारे इसमें, वो साक्षात अपना वारकरी संप्रदाय में है। जो हम लोग ने साक्षात्कार मूर्ति उभारी है निखिल खातू, उनके उन्होंने जो मूर्ति उभारी है उनका आज आप देख रहे हैं जो लाइव क्या चल रहा है आज इसके लिए।
3: अच्छा, मैंने सुना है कि विट्ठल जी का मंदिर भी पास में ही आपने बनाया हुआ है, तो क्या क्या कह रहे हैं?
5: प्रति पंडरपुर, जहाँ पे पंडरपुर बनाता है वहाँ पे पंडरपुर है जो महाराष्ट्र में, वो देवत है, वो यहाँ पे हम लोग साकार किए इस टाइम।
0: बात सिर्फ पंडाल की नहीं है, पंडाल के करीब ही हूबहू पंडरपुर बनाया गया है और इस सेट के सामने जो तालाब है उसमें पंडरपुर मंदिर के पास से बहने वाली चंद्रभागा नदी का ही पानी भरा गया है।
6: अपना मूर्ति पसंद आ गया, अपना विट्ठल मंदिर पसंद आ गया, अंदर विट्ठल मंदिर में अपना विट्ठल का मूर्ति भी बैठा है, उनका भी दर्शन अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, चंद्रभागा का बहुत तारीफ कर रहे सब लोग, पूरा यहाँ पे पब्लिक वो देख के जा रही है।
0: जो श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें गणपति के साथ पंडरपुर के दर्शन भी हो रहे हैं। चलिए अब आपको परेल के बाद घाटकोपर लिए चलते हैं, जहाँ भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है और जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम पर बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
3: मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूँ। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय और देखिए क्या स्वरूप, क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं, कैसे हैं?
7: बस ठीक है सर।
3: चेहरे पे इतनी ज्यादा आपके खुशी नजर आ रही है, बप्पा को ले ही आ गए, इतने खूबसूरत, क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है, थोड़ा बता।
7: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है और साथ में है 9 ग्रह। जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है, जो सबको, सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं और आजू बाजू सौर्य मंडल में भगवान बैठे हैं, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम बनाया है।
3: अच्छा, ये बताइए श्रद्धालुओं के लिए क्या खास है आपके मंडल द्वारा?
8: के लिए तो हम लोग ने बड़ा मंडप बनाया है और मंडप में सुविधा रखी है, जो श्रद्धालु दर्शन करके आते हैं और यहाँ पे एसी डूम रखा है, बैठने की भी सुविधा रखी है, तो श्रद्धालु बाहर से घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो हम लोग ने एक खास सुविधा रखी है मंडल में कि एसी में आओ, बैठो, शांति से दर्शन करो, ऐसी सुविधा हम लोग ने मंडल।
3: कितना साल
8: भावेश्वर राजा का? ये 52वां साल है।
0: 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है। भीड़भाड़ बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आस्था बहुत गहरी है।
9: बप्पा की मूर्ति तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी मनमोहक है कि नज़र ही नहीं हटती, और उस पर उनकी जो सजावट की है यहाँ के श्रद्धालुओं ने वो तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बप्पा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, इतनी मनमोहक मूर्ति है उनकी।
10: गणेश उत्सव कितना इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा बताएं आपकी लाइफ में?
11: गणपति बप्पा मौर्या, गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक फेस्टिवल नहीं, एक बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अभी फेमस हो चुका है और बहुत ही सुकून और शांति हमें मिलती है जब हम लोग 10 दिन बप्पा के दर्शन करते हैं। लोगों का मिलना जुलना होता है, नए नए लोग उसे मिलते हैं और ना खुशियाँ बाँटते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो मन को बहुत शांति मिलती है। ये एक डिटॉक्स है सबके लिए।
0: मुंबई के पंडालों में गणेशोत्सव की रौनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बप्पा को देखने और पूजने के लिए भीड़ लगातार आ रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति के दरबार में इस बार सिर्फ बप्पा की भव्य प्रतिमा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की झलक, चंद्रपुर के लालबाग के राजा के साथ साईं बाबा का दरबार, और अकोला में घर के भीतर सजा जेजुरी का खंडोबागढ़। तीन शहर, तीन अलग अलग तस्वीरें, लेकिन भावना एक, भक्ति में कला का संगम, परंपरा से जुड़ा और बप्पा के बहाने अपनी मिट्टी के धार्मिक स्थलों को करीब से महसूस करने का खूबसूरत मौका।

0: मंदिर की भव्यता, संत की समाधि, घर के आंगन में सजा आस्था का किला। गणपति उत्सव में महाराष्ट्र की भक्ति अब अलग अलग धार्मिक स्थलों का रूप लेकर सामने आ रही है। नागपुर से चंद्रपुर और अकोला तक श्रद्धालुओं ने अपनी कल्पना और मेहनत से ऐसे दरबार सजाए हैं जहां बप्पा के साथ महाराष्ट्र की धार्मिक विरासत के भी दर्शन हो रहे हैं। भक्ति के रंग में कला की खूबसूरती घुली है, मेहनत में परंपरा जुड़ी है और गणपति उत्सव के बहाने महाराष्ट्र की आस्था के अलग अलग केंद्र एक ही जगह नजर आ रहे हैं। नागपुर से चंद्रपुर और चंद्रपुर से अकोला तक कहानी अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन बप्पा के प्रति श्रद्धा का भाव एक है। नागपुर महल परिसर स्थित दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार खम्भे, मंदिर का गुम्बद और समाधि स्थल का प्रारूप, हर हिस्से को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है।
1: ये हमारा 107वां साल है और हमारी जो मंदिर की स्थापना है 1920 में हुई है। एक बार आप जैसे देख सकते हो, हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, प्रतिभूति वो बनाई है, ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजय समाधि मंदिर आनंदी, इसके ऊपर हमने प्रकृति बनाई है, प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति को बैक साइड जो है हमने वहाँ जो आदि संजीवन समाधि है सेम उसी प्रतीकृति हमने आपको करनी है। दोनों सभी भक्तों को और सभी गणित बप्पों को हमें विनती करता है कि बड़ी संख्या में आइए और गणपति जी बप्पा के और समाधि मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए।
0: कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद आलंदी का पवित्र धाम नागपुर में साकार हुआ है। एक तरफ बप्पा की भव्य प्रतिमा, दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर की झलक और सामने दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भी। पंडाल में गूंजते जयकारे, भक्तों की आस्था और मंदिर की खूबसूरत कारीगरी तीनों मिलकर पूरे परिसर को आस्था से भर रहे हैं। सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि चंद्रपुर में भी ऐसी ही रौनक है, जहां एक ही पंडाल में दो अलग अलग आस्था केंद्रों की झलक दिखाई दे रही है। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। बप्पा का विशाल स्वरूप, आकर्षक सजावट और भव्य दरबार श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ की खासियत सिर्फ गणपति की प्रतिमा नहीं है, इसी परिसर में शिरडी के साईं बाबा की झांकियाँ भी सजाई गयी है। साथ ही द्वारका माई का दृश्य भी तैयार किया गया।
2: इस वक्त हम इसी मंडल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस साईं बाबा का जो है पूरा मंदिर यहाँ पे साकार आ गया है। शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहां पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है। बेहद यहाँ से आगे जाने के बाद में हमें लालबाग के राजा के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर में अब लालबाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं क्योंकि इस मंडल में लालबाग के राजा के रूप में यहाँ पर बप्पा पधारे हैं।
0: दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु पहले बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, फिर साईं बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं। कोई मनोकामना लेकर आया तो कोई आशीर्वाद की उम्मीद में।
3: अच्छा लगा,
2: क्या देखा?
3: शिरडी के साईं बाबा के दर्शन लिए, लालबाग का राजा जी, साईं बाबा जी का दर्शन, तो सेम वैसा ही डेकोरेशन वहाँ पे मंडल वाले ने सबने किया है मिलके।
0: सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और मानवता का संदेश देती ये झांकियाँ धार्मिक आस्था के साथ भाईचारे की तस्वीर भी दिखा रही हैं।
4: पिछले कुछ सालों से हम कुछ अच्छे अच्छे दिखावे सादर कर रहे हैं चंद्रपुर की जनता के लिए और इसके पहले भी हमने केदारनाथ मंदिर, रायगढ़, पंढरपुर, साढ़े तीन शक्तिपीठ और इस बार हम शिरडी साईं बाबा लेकर।
0: पिछले 46 साल से सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल अलग अलग धार्मिक स्थलों की झांकियां बनाता आ रहा है। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक दिन रात मेहनत की अकुला की कहानी किसी बड़े पंडाल की नहीं बल्कि एक परिवार की मेहनत और लगन की है। मानकर परिवार ने इस बार अपने घर में गणपति बप्पा के साथ पुणे जिले के जेजुरी स्थित खंडोबा गढ़ की प्रतिकृति तैयार की है।
5: महाराष्ट्र की परंपरा रही गणेश उत्सव में घर घर और सार्वजनिक पंडाल में बप्पा तो विराजमान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है बप्पा जो सभी का आस्था का केंद्र है, वो बप्पा की सुंदर प्रतिमा जो है ये मानकर परिवार ने यहाँ पर विराजमान की है। और साथ ही बप्पा महज 10 दिन के लिए विराजित नहीं किए गए, तो ये जो पूरा पंडाल है, ये छोटा सा घर के अंदर का जो पंडाल है, ये जय मल्लार मानो जेजुरी का गढ़, पूरे जिले के जेजुरी का गढ़, जो सभी का श्रद्धा स्थान है खंडोबा महाराज का, खंडोबा महाराज के अवतार में जो है वो यहाँ पर गणपति बप्पा की ये सुंदर प्रतिमाएं हैं। और जिस तरीके से मल्हार गढ़ है, जिस तरीके से जेजुरी का गढ़ है, उसी तर्ज पर जो है घर के जो वेस्टेज जो सामान है उससे ये सब कुछ ये परिवार ने बनाया है। बच्चों ने रंगोटी की है, तो शिल्पा ने जो है इसे जो है सवारा है, और उनकी सास ने जो है ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ड्रेस सिलाए दिख रहे हैं वो सिलाए हैं, तो शिल्पा के मिस्टर ने जो है इसकी कटिंग की है, इसको रंगाई की है। मानो ये सभी जो बातें हैं, ये बापा जो है जिसे बुद्धि का देवता कहते हैं, वो इन्हें हर साल कुछ अलग थीम, जो आस्था की थीम है, जिस तरीके से पिछले वक्त इन्होंने जो है पंढरपुर के विठल रुखमाई का जो पंढरपुर है उसकी पूरी वारकरी, जो शेगांव से वारकरी जाते हैं उसकी पूरी थीम बनाई थी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये दीप स्तंभ है, ये दीपमाला है, वो जेजुरी में बस ऐसी तरह की है, और हर जगह जो है वो पीली मानो हल्दी लगाई हुई, क्योंकि वहां पर जो है हल्दी जो है उधेड़ी जाती है। और सबसे अहम बात ये है कि आने वाले भक्त भी जो है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को इतना पता है कि यहाँ पर कुछ अलग थीम में बापा विराजमान होते हैं, तो अपने आस्था का केंद्र रहे जो बापा है वो बुद्धि के देवता है, जो हमेशा से ही ये मानकर परिवार को नए अलग थीम बनाकर जो है बापा के साथ एक संदेश देने का काम यहाँ पर ये परिवार करता नजर आ रहा है।
0: बापा की प्रतिमा के ठीक बगल में किले की मीनारें, रंग रोगन, सजावट और पारंपरिक अंदाज में सजे भगवान खंडोबा, हर चीज में परिवार की मेहनत दिखाई दे रही है। इस झांकी की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया बल्कि परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिल्पा मानकर, उनके पति और दोनों बेटों ने मिलकर इसे आकार दिया। बेस्ट मटेरियल से किले की मीनार बनाई गई, फिर रंग रोगन और सजावट का काम हुआ, खंडोबा की प्रतिमा को सजाया गया। इतना ही नहीं, भगवान के लिए पोशाक भी बाजार से नहीं खरीदी गई, घर में मौजूद नए कपड़े से ही तैयार की गई।
6: हर साल हम अलग अलग झांकियां बनाते हैं। महाराष्ट्र के जो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं, देवस्थान रहते हैं, उनके हम दर्शन के हेतु जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके दर्शन होने के हेतु हम ये झांकियां बनाते हैं। लेकिन ये झांकियां बनाते समय हम सब हाथों से कलाकृति जो हर एक चीज है हम अपने हाथों से साकारते हैं, कुछ भी ऐसा खरीद के नहीं लाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जैसे वो उसके मेकअप, दागिने, कपड़े, वो सब घर पे, जैसे मेरे सास मुझे मदद करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, एक कलरिंग का काम मेरे बच्चों ने किया है, और जो लाइटिंग का काम है वो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं, और इसके सब की हेल्प से ये पूरा हम डेकोरेशन हर साल साकार करते हैं।
0: यानी सामान भले घर में मौजूद था लेकिन कल्पना बड़ी थी, मेहनत लगातार थी और सबसे बढ़कर परिवार का साथ था। हर साल गणपति स्थापना के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग आस्था केंद्रों को घर में साकार करने की कोशिश करने वाला यह परिवार इस बार जेजुरी के खंडोबा गढ़ को अपने घर ले आया है। पड़ोसी और आसपास के लोग भी अनोखी झांकी को देखने पहुंच रहे हैं। किसी के लिए ये गणपति की सजावट है, तो किसी के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस करने का मौका। यही तो गणपति उत्सव की खूबसूरती है, जहां बप्पा के साथ पूजा होती है, परंपरा जुड़ती है, संस्कृति सजती है और अपनों के साथ आस्था और भी गहरी हो जाती है। अकोला से धनंजय साबले, चंदपुर से विकास राजूरकर, नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गणपति बप्पा का दरबार सजा है, लेकिन इस बार अंदाज कुछ ऐसा है कि बच्चों से लेकर बड़े तक बस देखते ही रह जाए। पुणे में चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजा अनोखा गणपति मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर से ये पूरा पंडाल किसी चॉकलेट हाउस जैसा नजर आता है। रोशनी से सजा ये चॉकलेट वर्ल्ड बच्चों को खूब लुभा रहा है, तो बड़ों को उनका बचपन याद दिला रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: हम किसी चॉकलेट के बंगलों में नहीं है, हम हैं गणपति बप्पा के पंडाल में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो प्रतिकृति दिया है वो चॉकलेट की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और इसके लिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में ये जो बच्चे है इस तरह की चॉकलेट हो या बिस्किट हो उनको देख रहे हैं, और अंदर गणपति बाप्पा जी हैं। किस प्रकार से विराजमान हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। सीधा अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणपति बाप्पा की मूर्ति है और ये कैंडी लगाई है और कैंडी घूमते हुए नजर आ रही है। आपको पसंद क्या है?
1: किंडर जॉय।
0: आप खाते हो किंडर जॉय? और बापा जी का दर्शन लिया भगवान जी का? क्या मांगा भगवान से आपने?
1: मोदक।
0: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
1: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
0: अच्छा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं।
0: क्या क्या देखा आपने?
2: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ होती देखा मैंने।
0: और आपको क्या पसंद है?
2: मुझे पसंद है पार्ले जी बिस्किट।
3: इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: इस दुर्गा पूजा कोलकाता के मशहूर स्ट्रीट पार्क को नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यहां पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। अलन पार्क में भव्य उत्सव की तैयारी है। दुर्गा पूजा के इस महा आयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। देश के जाने माने आर्टिस्ट अपनी कला का हुनर दिखाएंगे।
5: क्रिसमस के लिए मशहूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का एलन पार्क पहली बार दुर्गा पूजा के लिए सवर रहा है। यहां भव्य दुर्गा पूजा की तैयारियों का शंखनाद हो गया है। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालया के अगले दिन एलन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। इस भव्य महोत्सव में बंगाल के लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आस्था भक्ति के रंग बिखेरेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
6: लाइटिंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के लिए बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों को, दुनिया में रहने वाले बंगाली और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं, बंगाल के रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं को ये पूजा समर्पित है। ये उनका पूजा है। आराम से 10 दिन आए, पूजा देखें और ये कह के जाएं कि अपन पूजा, ये हमारा पूजा।
5: आयोजकों का दावा है कि एलन पार्क में इस दुर्गा पूजा बंगाली सनातनी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और इस महायोजन को लेकर यहाँ के लोगों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया। सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जोड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेल्कू पर्व की धूम। रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य। दूरदराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल। बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप। पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना। कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका। जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

निराले रूप नजर आ रहे हैं, लेकिन गौरी नंदन के इन्हीं रूपों के बीच आज दो तस्वीरें ऐसी भी आई जो भगवान गणेश की जननी मां भवानी को समर्पित हैं। देखिए, गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान ही भारत के कई हिस्सों में एक पर्व मनाया जाता है जिसे गौरी गणेश उत्सव कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान माँ गौरी अपने बेटे से मिलने पृथ्वी पर आती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण के कई हिस्सों में ये पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज तस्वीरों में कुछ ऐसा ही संयोग बनता हुआ नजर आया। तो गणेशोत्सव के बीच एक तस्वीर तमिलनाडु और दूसरी पश्चिम बंगाल से आई। दरअसल आज तमिलनाडु के श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में भव्य उत्सव हुआ। ये मंदिर गजानन की माता देवी पार्वती और पिता महादेव को समर्पित है। तो वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों के शंखनाद की तस्वीरें भी आज आई। पहले आपको मदुरै के उत्सव के बारे में बताते हैं। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में 17 साल के बाद महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान हुआ। इस अनुष्ठान के दौरान शुभ मुहूर्त में पवित्र कलशों में विधि विधान से तैयार किए गए जल से देवी देवताओं के विग्रह का अभिषेक हुआ। मंदिर के शिखरों पर भी पवित्र जल अर्पित हुआ। भारतीय सनातन परंपरा और आगम शास्त्रों के अनुसार किसी भी बड़े मंदिर में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने और परिसर के जीर्णोद्वार के लिए किया जाता है। इसी भव्य आयोजन के दौरान इस भव्य आयोजन के लिए मीनाक्षी मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। तो वहीं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में मौजूद एलन पार्क में आज पूजा की तैयारियों का शुभारंभ नजर आया। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन एलन पार्क में पूजा का शुभारंभ होगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। तो माँ गौरी भी आएंगी, पर आज बात गौरी नंदन की कर लेते हैं। क्या आम क्या खास, इस समय हर घर हर दर पर गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको गणेश पूजन से जुड़ी परंपराओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी के नामों से लेकर उनके पूजन में शामिल होने वाली चीजों तक हर बात का अपना एक महत्व होता है, एक कहानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसके चलते श्री गणेश प्रथम पूज्य बने और गणनायक कहलाए।

0: शादी पूजा वर्षगांठ हो कोई मंगल काज, प्रथम निमंत्रण पाते हैं गणनायक गणराज। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। सनातन धर्म में सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश को भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान गणेश से जुड़ी इस मान्यता के कई प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में वर्णित कथा बताती है कि जब माता पार्वती के स्नान अनुष्ठान को खंडित होने से बचाने के लिए बाल गणेश ने भगवान शिव का रास्ता रोका तो क्रोधित होकर उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया था। तब माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। उस समय भोलेनाथ ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवन दान दिया। लेकिन उसके बाद भी जब माता पार्वती प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने बालक गणेश को वरदान दिया कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश का पूजन होगा।
1: एक बार सभी देवताओं में यह चिंतन हुआ कि सबसे बड़ा प्रथम पूजा पाने का अधिकारी कौन है, तो सभी लोग चले अपने अपने वाहनों से परिक्रमा करने। जो सर्वप्रथम जगत की परिक्रमा करके आएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी अपने अपने वाहनों से चले। गणेश जी का वाहन छोटा था और गणेश जी बहुत ही व्यग्र थे कि मैं कैसे परिक्रमा करूं और मैं अग्रगण्य कहलाऊं। तो भगवान

0: भगवान गणपति ने नारद जी के कहने पर अपने माता पिता की परिक्रमा मूषक पर बैठ के कर ली और सर्वप्रथम वहाँ पहुँच गए। और तब सब ने निर्णय किया कि चूँकि सर्वप्रथम गणेश जी आए हैं, इसीलिए तब से आज तक गणेश जी की सबसे आगे पूजा करने का विधान है आज तक।
1: पुराणों में गणपति के प्रथम पूज्य होने का एक और प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग से जुड़ी कथा बताती है कि जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। शिवजी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर झट उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। इसके साथ ही महादेव ने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से विनायक सदा सर्वदा के लिए संसार में प्रथम पूज्य देव हो गए। आज युगों बाद भी ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। घर में कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गौरी सुत, शिव पुत्र, गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, जाने कितने ही नाम हैं विघ्नहर्ता गणेश के। गणपति का हर नाम उनके रूप और उनकी लीलाओं से जुड़ा है, यानी उनके हर नाम के पीछे कोई कहानी या कारण है। गणेश जी का एक ऐसा ही नाम है एक दंत। एक दांत होने के चलते गणपति को एक दंत भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में जिक्र मिलता है कि जब मद नाम के राक्षस ने आतंक मचाया तो गणेश जी एक दंत रूप में अवतार लिया और उसका अंत किया था। उसी तरह गणपति को गजानन भी कहते हैं। गज यानी हाथी का मुख होने के चलते भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। गणेश जी का एक नाम लंबोदर है, इसका अर्थ है बड़े उदर यानी बड़े पेट वाला। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर स्वरूप में अवतार लिया था। क्रोधासुर यानी गुस्सा, गणेश जी की भक्ति से हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। इसी क्रम में गणपति का एक नाम ध्रुमवर्ण भी है। इस स्वरूप में गणेश जी का रंग धुएं के जैसे नजर आता है। अहंतासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार लिया था। इसी तरह गणेश जी का एक नाम वक्रतुंड भी है। वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाला। अपने वक्रतुंड अवतार में ही गणेश जी ने मत्सरासुर और उसके पुत्रों का अंत किया था।
0: गणेश जी का नाम वक्रतुंड पीछे पड़ने का बहुत बड़ा कारण मत्सरासुर नाम का एक असुर जो परम शिव भक्त था, लेकिन देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था, ऋषियों को प्रताड़ित करता था, यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं उत्पन्न करता था। तो भगवान गणपति ने वक्रतुंड का रूप धारण करके मत्सरासुर का वध किया और वध करने के कारण भगवान गणपति वक्रतुंड हो गए। और उनकी जो यह प्रार्थना है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह प्रार्थना सर्वविदित है, सारे लोग करते हैं। इस प्रकार भगवान गणपति के वक्रतुंड रूप का अवतार हुआ।
2: तो ये तो थी गणपति के नामों की महिमा। अब उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनका गणेश जी की पूजा में होना अनिवार्य है। तो उसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित है, जैसे तुलसी। आइए आपको बताते हैं कि लंबोदर से जुड़ी ये कौन सी परंपराएं हैं और बप्पा से जुड़ी इन चीजों के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कहानियां हैं, ये भी हम आपको बताएंगे।

कहते हैं गणपति का आगमन शुभ के आरंभ और अशुभ के विनाश के लिए होता है। गणेशोत्सव के 10वें दिन जब बाप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो वे अपने साथ सारी नकारात्मकता भी ले जाती है।

0: लेकिन इससे पहले इन 10 दिनों के दौरान पूरे विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा की जाती है। इस दौरान गणपति की इस विशेष पूजा और खुद गणपति से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन बेहद जरूरी माना जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा मोदक के बिना पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। पौराणिक कहानियों में वे माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं।
1: एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए, माता अनसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है।
0: इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। ये कहानी बताती है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक हो गया था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सोख कर उसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठे खाने के लिए दी। गांठे खाते ही उनके पेट की जलन खत्म हो गई।
1: भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दुर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। जलन शांत हुई तो गणेश जी को तब से दुर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरिल यति सव वैश्रमणोपमो भवति। जो भगवान गणपति की पूजा दुर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है।
0: इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी माना जाता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है।
1: अक्षत जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल अक्षताश्च सुर श्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता, कुमकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूंकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूंकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि के कारण भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करते
0: हैं। गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें हैं जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते। सारी दुनिया में जिन तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उन तुलसी के पत्तों का उपयोग गणपति की पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था, लेकिन तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वे राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी के श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गयी और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वे संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता।
1: भगवान गणपति को दुर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूंकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा।
0: विघ्नहर्ता गणपति से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से बढ़कर एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान के साथ विराजे हैं। पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ सी लग गई है। किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा, गणेशोत्सव की ऐसी ही अनोखी तस्वीरें आई हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से सामने। तिरुवनंतपुरम के पढ़ावगढ़ी में गणेश मंदिर से एक बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरक्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए, जिसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। हैदराबाद जहां बप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए, गणेश उत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते हुए नजर आए। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है।

अनोखे गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का ये कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इनमें कुछ तो मूर्ति के साथ फोटो और सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। इसी के साथ गणपति उत्सव से जुड़े हुए इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
2: बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है और बर्फबारी तक शुरू हो गई है। जगह जगह सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बर्फबारी का लोगों ने भी खूब लुत्फ उठाया और उसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की वजह से तापमान में भी अच्छी खासी कमी आई है।
3: आसमान से गिरती ये फुहारें खुशी से भर देने वाली है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खूबसूरत वादियों का नजारा और शानदार हो गया है। बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में हुई बर्फबारी से हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखरी दिख रही है। लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिंकुला, घेपन पीक समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद परतों से ढक गए हैं और यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हैं। लाहौल के गिलबू पर्वत की ये तस्वीरें बर्फबारी के शानदार नजारों को दिखा रही हैं। इस पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा में बर्फबारी का दीदार हुआ, जिसको लेकर वो अपनी खुशी जताते भी नजर आए।
4: सीजन का पहला स्नोफॉल है ये, बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, इस टाइम लाहौल में हूँ मैं, किलों से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ हैं हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया।
3: लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश पर भी जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर बर्फ की मोटी परतें तक जमी नजर आ रही हैं। करीब 4 इंच तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से मणिमहेश यात्रा भी रोकनी पड़ी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी मौसम अचानक से बदला और यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई और फिर हर जगह सफेद परतें नजर आने लगी। बर्फबारी के चलते मौसम बहुत सर्द हो गया है, हालांकि श्रद्धालुओं में बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
5: वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुर्बानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था जो खिचड़ी यहाँ पे मिलती है वो यहाँ पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है, यहाँ पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है।
3: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित गुरेज के ऊपरी इलाके तुलेल घाटी के काबुल गली की हैं, जहां हर तरफ सफेद चादर से बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी से यहां की कुदरती खूबसूरती और निखर गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आने से मौसम सर्द हो गया है।
6: जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
3: ये बर्फबारी मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है, खासकर पहाड़ों में इसे ठंड के दस्तक देने के रूप में देखा जा रहा है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोनी और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया, सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जोड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेलकू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य। दूरदराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, हमारे बप्पा की, जिनके दर्शन भर से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और इसीलिए मुंबई के तमाम पंडालों में उनके दर्शन के लिए भक्तों की होड़ लगी है। खासकर लालबाग के राजा के दरबार में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज आपको लालबाग समेत मुंबई के कई मशहूर पंडालों के दर्शन कराएंगे, बप्पा की भव्य और अद्वितीय प्रतिमाएं भी दिखाएंगे। न सिर्फ मुंबई में बल्कि पुणे और नागपुर जैसे शहरों में भी बेहद खूबसूरत पंडाल सजाए गए हैं। आज हम आपको इनके भी दर्शन कराएंगे और पुणे में कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम से बना पंडाल कैसे बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना वो भी देखिएगा। साथ ही सूरत लिए चलेंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन में विराजमान गणपति की भव्यता वाकई निराली है। तो चलिए शुरुआत मुंबई से ही कर लेते हैं। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। तो परेल में वारकरी विठ्ठल के रूप में विराजे हैं बप्पा, जिन्हें देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। और इसी तरीके से घाटकोपर में बप्पा अंतरिक्ष की थीम पर नवग्रहों के साथ सूर्य नारायण की आभा में दर्शन दे रहे हैं। कहीं मन्नतों की झोली भर रही है तो कहीं महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा जीवंत हो रही है। मुंबई के बप्पा के इन पंडालों में भक्ति भी है, भव्यता भी है और बप्पा के अलग अलग मनोहारी रूप भी है। देखिए बप्पा। स्वरूप है पप्पा के, पर इनसे अलग और मनोहारी रूप है लालबाग के राजा का। घंटों निहारते रहे फिर भी मन नहीं भरेगा। हाँ, यहाँ मांगने वालों की झोली जरूर भर जाती है, इसीलिए तो सुबह से शाम तक दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे तो गणेशोत्सव की धूम पूरे मुंबई में है, लेकिन मुंबई के इस सबसे मशहूर पंडाल में खासो आम की सबसे ज्यादा भीड़ है। पिछले चार दिनों में यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु बप्पा के दर्शन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि अब यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है और चढ़ावा भी। गणेशोत्सव के पहले और दूसरे दिन मिलाकर लालबाग के राजा के दरबार में 1,37,40,000 रुपए चढ़ावा आया और करीब 300 ग्राम सोना और करीब 8 किलो चांदी का चढ़ावा आया। लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और जब मन्नत पूरी होती है तब भक्त दिल खोलकर दान करते हैं। भक्त बप्पा के दरबार में संतान, स्वास्थ्य, व्यापार में सफलता और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और भरोसा करते हैं कि बप्पा उनकी जरूर सुनेंगे।
1: It feels good. I've been coming here for last 5-6 years now. और मैंने पिछले बार बहुत लोगों को देखा है इधर आके मन्नत मांगते हैं। मैंने किसी का फोटो देखा था, किसी ने तो 2024 में एक पर्ची लिखी थी यहाँ पे कि 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो फिर उसके बाद मैं 2025 में भी इधर आया, वहाँ पे भी किसी ने लिखा था कि हमारे लीडरशिप में भी हम 2026 में इंडिया में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो यहाँ का मन्नत बहुत स्ट्रांग है। और अभी लास्ट ईयर भी हमने मांगा था कि हमें घर में बेटी हो, वो बेटी हुई, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए थैंक यू बोलने आए थे कि जो भी आज तक उन्होंने हमको दिया उसके लिए थैंक यू और जितना मेहनत करते रहेंगे उसके हिसाब से आप प्रसाद देते रहना।
2: कमबैक को लेकर भी क्या प्रार्थना की पापा से कि आप दर्शन करेंगे, कमबैक हो जाएगा दर्शन?
1: देखिए वो सब तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सब भगवान के हाथ में। अपने हाथ में जो है वो मेहनत करना है। मैं मेहनत करते रहता हूँ, बाकी जो भगवान दे दे उसमें मैं खुश हूँ। ब्लेसिंग्स लिया, मम्मी पापा, वाइफ के साथ आया था।
0: क्रिकेटर ही नहीं, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, हर क्षेत्र, हर तबके के लोग बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के सभी राज्यों से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बप्पा का दरबार भक्ति और श्रद्धा से जगमगा रहा है। लेकिन धूम सिर्फ लालबाग चौराजा के दरबार में नहीं, चर्चा बरेल के राजा की भी हो रही है, क्योंकि इस बार बप्पा ने वारकरी विठ्ठल का अवतार लिया है। इस वेशभूषा में और पगड़ी के साथ बप्पा सबसे अलग और सबसे निराले लग रहे हैं। हाथों में मृदंग और वीणा ने इस मूर्ति को और भी भव्यता दी है। परेल के पंडाल की गिनती यूं भी मुंबई के बाकी बड़े पंडालों में होती है, लेकिन इस दफे प्रतिमा को महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा से जोड़कर इसे नया लेवल दे दिया गया है।
3: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में, जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। अब तक मुझे लगता है कि तीसरा दिन आज चल रहा है गणेश उत्सव का और 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु विट्ठल के इस अवतार का दर्शन करके जा चुके हैं। विट्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं और जो भी पाठ पूजा अभिषेक करानी होती है करते हैं।
0: परेल का ये गणेश पंडाल इस साल अपने 80वें साल में है। हर साल नए अंदाज की प्रतिमा इसकी खासियत है। इस साल भी भक्त बप्पा को देखकर गदगद हैं।
4: हमारे जो इस साल जो मंडल का है वो 80वां साल चल रहा है और जो बापा आज विराजमान आप देख रहे हैं हमारे इसमें, वो साक्षात अपना वारकरी संप्रदाय में है। जो हम लोग ने साक्षात्कार मूर्ति उभारी है निखिल खातू, उनके उन्होंने जो मूर्ति उभारी है उनका आज आप देख रहे हैं जो लाइव क्या चल रहा है आज इसके लिए।
3: अच्छा, मैंने सुना है कि विट्ठल जी का मंदिर भी पास में ही आपने बनाया हुआ है, तो क्या क्या कह रहे हैं?
5: प्रति पंडरपुर, जहाँ पे पंडरपुर बनाता है वहाँ पे पंडरपुर है जो महाराष्ट्र में, वो देवत है, वो यहाँ पे हम लोग साकार किए इस टाइम।
0: बात सिर्फ पंडाल की नहीं है, पंडाल के करीब ही हूबहू पंडरपुर बनाया गया है और इस सेट के सामने जो तालाब है उसमें पंडरपुर मंदिर के पास से बहने वाली चंद्रभागा नदी का ही पानी भरा गया है।
6: अपना मूर्ति पसंद आ गया, अपना विट्ठल मंदिर पसंद आ गया, अंदर विट्ठल मंदिर में अपना विट्ठल का मूर्ति भी बैठा है, उनका भी दर्शन अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, चंद्रभागा का बहुत तारीफ कर रहे सब लोग, पूरा यहाँ पे पब्लिक वो देख के जा रही है।
0: जो श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें गणपति के साथ पंडरपुर के दर्शन भी हो रहे हैं। चलिए अब आपको परेल के बाद घाटकोपर लिए चलते हैं, जहाँ भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है और जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम पर बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
3: मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूँ। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय और देखिए क्या स्वरूप, क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं, कैसे हैं?
7: बस ठीक है सर।
3: चेहरे पे इतनी ज्यादा आपके खुशी नजर आ रही है, बप्पा को ले ही आ गए, इतने खूबसूरत, क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है थोड़ा बताओ।
7: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है और साथ में है 9 ग्रह। जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है, जो सबको, सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं और आजू बाजू सौर्य मंडल में भगवान बैठे हैं, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम बनाया है।
3: अच्छा, ये बताइए श्रद्धालुओं के लिए क्या खास है आपके मंडल द्वारा?
8: के लिए तो हम लोग ने बड़ा मंडप बनाया है और मंडप में सुविधा रखी है, जो श्रद्धालु दर्शन करके आते हैं और यहाँ पे एसी डूम रखा है, बैठने की भी सुविधा रखी है, तो श्रद्धालु बाहर से घूम के आते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो हम लोग ने एक खास सुविधा रखी है मंडल में कि एसी में आओ, बैठो, शांति से दर्शन करो, ऐसी सुविधा हम लोग ने मंडल।
3: कितना कितना साल है
8: भावेश्वर राजा का? ये 52वां साल है।
0: 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है। भीड़भाड़ बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आस्था बहुत गहरी है।
9: बप्पा की मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी मनमोहक है कि नजर ही नहीं हटती, और उस पर उनकी जो सजावट की है यहाँ के श्रद्धालुओं ने वो तो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बप्पा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, इतनी मनमोहक मूर्ति है उनकी।
10: गणेश उत्सव कितना इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा बताएं आपकी लाइफ में।
11: गणपति बप्पा मौर्य, गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक फेस्टिवल नहीं, एक बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अभी फेमस हो चुका है और बहुत ही सुकून और शांति हमें मिलती है जब हम लोग 10 दिन बप्पा के दर्शन करते हैं। लोगों का मिलना जुलना होता है, नए नए लोग उसे मिलते हैं और ना खुशियाँ बाँटते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो मन को बहुत शांति मिलती है। ये एक डिटॉक्स है सबके लिए।
0: मुंबई के पंडालों में गणेशोत्सव की रौनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बप्पा को देखने और पूजने के लिए भीड़ लगातार आ रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति के दरबार में इस बार सिर्फ बप्पा की भव्य प्रतिमा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की झलक, चंद्रपुर के लालबाग के राजा के साथ साईं बाबा का दरबार, और अकोला में घर के भीतर सजा जेजुरी का खंडोबागढ़। तीन शहर, तीन अलग अलग तस्वीरें, लेकिन भावना एक, भक्ति में कला का संगम, परंपरा से जुड़ा और बप्पा के बहाने अपनी मिट्टी के धार्मिक स्थलों को करीब से महसूस करने का खूबसूरत मौका।

0: मंदिर की भव्यता, संत की समाधि, घर के आंगन में सजा आस्था का किला। गणपति उत्सव में महाराष्ट्र की भक्ति अब अलग अलग धार्मिक स्थलों का रूप लेकर सामने आ रही है। नागपुर से चंद्रपुर और अकोला तक श्रद्धालुओं ने अपनी कल्पना और मेहनत से ऐसे दरबार सजाए हैं जहां बप्पा के साथ महाराष्ट्र की धार्मिक विरासत के भी दर्शन हो रहे हैं। भक्ति के रंग में कला की खूबसूरती घुली है, मेहनत में परंपरा जुड़ी है और गणपति उत्सव के बहाने महाराष्ट्र की आस्था के अलग अलग केंद्र एक ही जगह नजर आ रहे हैं। नागपुर से चंद्रपुर और चंद्रपुर से अकोला तक कहानी अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन बप्पा के प्रति श्रद्धा का भाव एक है। नागपुर महल परिसर स्थित दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार खंभे, मंदिर का गुंबद और समाधि स्थल का प्रारूप, हर हिस्से को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है।
1: ये हमारा 107वां साल है और हमारी जो मंदिर की स्थापना है 1920 में हुई है। एक बार आप जैसे देख सकते हो, हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, प्रतिभूति वो बनाई है ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजय समाधि मंदिर आनंदी, जिसके ऊपर हमने ये प्रकृति बनाई है, प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति को बैक साइड जो है हमने वहाँ जो वाकि संजीवन समाधि है सेम वैसी प्रतिकृति भी हमने आपको बनाई है। दोनों सभी भक्तों को और सभी गणित बप्पों को हमें विनती करता है कि बड़ी संख्या में आइए और गणपति जी बप्पा के और समाधि मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए।
0: कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद आलंदी का पवित्र धाम नागपुर में साकार हुआ है। एक तरफ बप्पा की भव्य प्रतिमा, दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर की झलक और सामने दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। पंडाल में गूंजते जयकारे, भक्तों की आस्था और मंदिर की खूबसूरत कारीगरी तीनों मिलकर पूरे परिसर को आस्था से भर रहे हैं। सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि चंद्रपुर में भी ऐसी ही रौनक है, जहां एक ही पंडाल में दो अलग अलग आस्था केंद्रों की झलक दिखाई दे रही है। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। बप्पा का विशाल स्वरूप, आकर्षक सजावट और भव्य दरबार श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ की खासियत सिर्फ गणपति की प्रतिमा नहीं है, इसी परिसर में शिरडी के साईं बाबा की झांकियां भी सजाई गई हैं। साथ ही द्वारका माई का दृश्य भी तैयार किया गया।
2: इस वक्त हम इसी मंडल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस साईं बाबा का जो है पूरा मंदिर यहाँ पे साकार आ गया है। शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है। बेहद यहाँ से आगे जाने के बाद में हमें लालबाग के राजा के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर में अब लालबाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं क्योंकि इस मंडल में लालबाग के राजा के रूप में यहाँ पर बप्पा पधारे हैं।
0: दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु पहले बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, फिर साईं बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं। कोई मनोकामना लेकर आया तो कोई आशीर्वाद की उम्मीद में।
3: अच्छा लगा, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन लिए, लालबाग का राजा जी, साईं बाबा जी का दर्शन, तो सेम वैसे ही डेकोरेशन वहाँ पे मंडल वाले ने सबने किया है मिलके।
0: सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबुरी, प्रेम और मानवता का संदेश देती ये झांकियां धार्मिक आस्था के साथ भाईचारे की तस्वीर भी दिखा रही हैं।
4: पिछले कुछ सालों से हम कुछ अच्छे अच्छे देखा सादर कर रहे हैं चंद्रपुर की जनता के लिए और इसके पहले भी हमने केदारनाथ मंदिर, रायगढ़, पंढरपुर, साढ़े तीन शक्तिपीठ और इस बार हम शिरडी साईं बाबा लेकर।
0: पिछले 46 साल से सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल अलग अलग धार्मिक स्थलों की झांकियां बनाता आ रहा है। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक दिन रात मेहनत की अकुला की कहानी किसी बड़े पंडाल की नहीं बल्कि एक परिवार की मेहनत और लगन की है। मानकर परिवार ने इस बार अपने घर में गणपति बप्पा के साथ पुणे जिले के जेजुरी स्थित खंडोबा गढ़ की प्रतिकृति तैयार की है।
2: महाराष्ट्र की परंपरा रही गणेश उत्सव में घर घर और सार्वजनिक पंडाल में बप्पा तो विराजमान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है बप्पा जो सभी का आस्था का केंद्र है, वो बप्पा की सुंदर प्रतिमा जो है ये मानकर परिवार ने यहाँ पर विराजमान की है। और साथ ही बप्पा महज 10 दिन के लिए विराजित नहीं किए गए, तो ये जो पूरा पंडाल है, ये छोटा सा घर के अंदर का जो पंडाल है, ये जय मल्लार मानो जेजुरी का गढ़, पूरे जिले के जेजुरी का गढ़, जो सभी का श्रद्धा स्थान है खंडोबा महाराज का, खंडोबा महाराज के अवतार में जो है वो यहाँ पर गणपति बप्पा की ये सुंदर प्रतिमाएं हैं। और जिस तरीके से मल्हार गढ़ है, जिस तरीके से जेजुरी का गढ़ है, उसी तर्ज पर जो है घर के जो वेस्टेज जो सामान है उससे ये सब कुछ ये परिवार ने बनाया है। बच्चों ने रंगोटी की है, तो शिल्पा ने जो है इसे जो है सवारा है, और उनकी सास ने जो है ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ड्रेस सिलाए दिख रहे हैं वो सिलाए है, तो शिल्पा के मिस्टर ने जो है इसकी कटिंग की है, इसको रंगाई की है। मानो ये सभी जो बातें हैं, ये बप्पा जो है जिसे बुद्धि का देवता कहते हैं, वो इन्हें हर साल कुछ अलग थीम, जो आस्था की थीम है, जिस तरीके से पिछले वक्त इन्होंने जो है पंढरपुर के विठ्ठल रुक्माई का जो पंढरपुर है उसकी पूरी वारकरी, जो शेगांव से वारकरी जाते हैं उसकी पूरी थीम बनाई थी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये दीप स्तंभ है, ये दीपमाला है, वो जेजुरी में बस ऐसी तरह की है, और हर जगह जो है वो पीली मानो हल्दी लगाई हुई, क्योंकि वहां पर जो है हल्दी जो है उधड़ी जाती है। और सबसे अहम बात ये है कि आने वाले भक्त भी जो है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को इतना पता है कि यहाँ पर कुछ अलग थीम में बप्पा विराजमान होते हैं, तो अपने आस्था का केंद्र रहे जो बप्पा है वो बुद्धि के देवता है, जो हमेशा से ही ये मानकर परिवार को नए अलग थीम बनाकर जो है बप्पा के साथ एक संदेश देने का काम यहाँ पर ये परिवार करता नजर आ रहा है।
0: बप्पा की प्रतिमा के ठीक बगल में किले की मीनारें, रंग रोगन, सजावट और पारंपरिक अंदाज में सजे भगवान खंडोबा, हर चीज में परिवार की मेहनत दिखाई दे रही है। इस झांकी की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया बल्कि परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिल्पा मानकर, उनके पति और दोनों बेटों ने मिलकर इसे आकार दिया। बेस्ट मटेरियल से किले की मीनार बनाई गई, फिर रंग रोगन और सजावट का काम हुआ, खंडोबा की प्रतिमा को सजाया गया। इतना ही नहीं, भगवान के लिए पोशाक भी बाजार से नहीं खरीदी गई, घर में मौजूद नए कपड़े से ही तैयार की गई।
5: हर साल हम अलग अलग झांकियां बनाते हैं, महाराष्ट्र के जो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं, देवस्थान रहते हैं, उनके हम दर्शन के हेतु जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके दर्शन होने के हेतु हम ये झांकियां बनाते हैं। लेकिन ये झांकियां बनाते समय हम सब हाथों से कलाकृति जो हर एक चीज है हम अपने हाथों से साकारते हैं, कुछ भी ऐसा खरीद के नहीं लाते है। ईच एंड एवरीथिंग, जैसे वो उसके मेकअप, दागिने, कपड़े, वो सब घर पे, जैसे मेरे सास मुझे मदद करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, एक कलरिंग का काम मेरे बच्चों ने किया है, और जो लाइटिंग का काम है वो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं, और इसके सब की हेल्प से ये पूरा हम डेकोरेशन हर साल साकार करते हैं।
0: यानी सामान भले घर में मौजूद था लेकिन कल्पना बड़ी थी, मेहनत लगातार थी और सबसे बढ़कर परिवार का साथ था। हर साल गणपति स्थापना के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग आस्था केंद्रों को घर में साकार करने की कोशिश करने वाला यह परिवार इस बार जेजुरी के खंडोबा गढ़ को अपने घर ले आया है। पड़ोसी और आसपास के लोग भी अनोखी झांकी को देखने पहुंच रहे हैं। किसी के लिए ये गणपति की सजावट है तो किसी के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस करने का मौका। यही तो गणपति उत्सव की खूबसूरती है, जहां बप्पा के साथ पूजा होती है, परंपरा जुड़ती है, संस्कृति सजती है और अपनों के साथ आस्था और भी गहरी हो जाती है। अकोला से धनंजय साबले, चंदपुर से विकास राजूरकर, नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गणपति बप्पा का दरबार सजा है, लेकिन इस बार अंदाज कुछ ऐसा है कि बच्चों से लेकर बड़े तक बस देखते ही रह जाएं। पुणे में चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजा अनोखा गणपति मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर से ये पूरा पंडाल किसी चॉकलेट हाउस जैसा नजर आता है। रोशनी से सजा ये चॉकलेट वर्ल्ड बच्चों को खूब लुभा रहा है, तो बड़ों को उनका बचपन याद दिला रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: हम किसी चॉकलेट के बंगलों में नहीं, हम हैं गणपति बप्पा के पंडाल में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो प्रतिकृति दिया है वो चॉकलेट की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और इसके लिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में ये जो बच्चा है इस तरह की चॉकलेट हो या बिस्किट हो उनको देख रहे हैं, और अंदर गणपति बाप्पा जी हैं। किस प्रकार से विराजमान हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। सीधा अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणपति बाप्पा की मूर्ति है और ये कैंडी लगाई है और कैंडी घूमते हुए नजर आ रही है। आपको पसंद क्या है?
1: किंडर जॉय।
0: आप खाते हो किंडर जॉय? और बापा जी का दर्शन लिया भगवान जी का? क्या मांगा भगवान से आपने?
1: मोदक।
0: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
1: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
0: अच्छा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं।
0: क्या क्या देखा आपने?
2: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ होती देखा मैंने।
0: और आपको क्या पसंद है?
2: मुझे पसंद है पार्ले जी बिस्किट।
3: इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: इस दुर्गा पूजा कोलकाता के मशहूर स्ट्रीट पार्क को नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। अलन पार्क में भव्य उत्सव की तैयारी है। दुर्गा पूजा के इस महा आयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। देश के जाने माने आर्टिस्ट अपनी कला का हुनर दिखाएंगे।
3: क्रिसमस के लिए मशहूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का एलन पार्क पहली बार दुर्गा पूजा के लिए सवर रहा है। यहां भव्य दुर्गा पूजा की तैयारियों का शंखनाद हो गया है। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालय के अगले दिन एलन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। इस भव्य महोत्सव में बंगाल के लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आस्था भक्ति के रंग बिखेरेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
4: लाइटिंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के लिए बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों को, दुनिया में रहने वाले बंगाली और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं, बंगाल के रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं को ये पूजा समर्पित है। ये उनका पूजा है। आराम से 10 दिन आए, पूजा देखें और ये कह के जाएं कि अपन पूजा, ये हमारा पूजा।
3: आयोजकों का दावा है कि एलन पार्क में इस दुर्गा पूजा बंगाली सनातनी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और इस महायोजन को लेकर यहाँ के लोगों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया, सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में के गांव की सुहागिनों को भी सजा। बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप। पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और कितनी आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गौरी नंदन के इन्हीं रूपों के बीच आज दो तस्वीरें ऐसी भी आई जो भगवान गणेश की जननी माँ भवानी को समर्पित हैं। देखिए, गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान ही भारत के कई हिस्सों में एक पर्व मनाया जाता है जिसे गौरी गणेश उत्सव कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान माँ गौरी अपने बेटे से मिलने पृथ्वी पर आती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण के कई हिस्सों में ये पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज तस्वीरों में कुछ ऐसा ही संयोग बनता हुआ नजर आया। तो गणेशोत्सव के बीच एक तस्वीर तमिलनाडु और दूसरी पश्चिम बंगाल से आई। दरअसल आज तमिलनाडु के श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में भव्य उत्सव हुआ। ये मंदिर गजानन की माता देवी पार्वती और पिता महादेव को समर्पित है। तो वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों के शंखनाद की तस्वीरें भी आज आई। पहले आपको मदुरै के उत्सव के बारे में बताते हैं। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में 17 साल के बाद महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान हुआ। इस अनुष्ठान के दौरान शुभ मुहूर्त में पवित्र कलशों में विधि विधान से तैयार किए गए जल से देवी देवताओं के विग्रह का अभिषेक हुआ। मंदिर के शिखरों पर भी पवित्र जल अर्पित हुआ।

स्ट्रीट में मौजूद एलन पार्क में आज पूजा की तैयारियों का शुभारंभ नजर आया। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन एलन पार्क में पूजा का शुभारंभ होगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। तो माँ गौरी भी आएंगी, पर आज बात गौरी नंदन की कर लेते हैं। क्या आम क्या खास, इस समय हर घर हर दर पर गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको गणेश पूजन से जुड़ी परंपराओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी के नामों से लेकर उनके पूजन में शामिल होने वाली चीजों तक, हर बात का अपना एक महत्व होता है, एक कहानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसके चलते श्री गणेश प्रथम पूज्य बने और गणनायक कहलाए।

0: शादी पूजा वर्षगांठ हो कोई मंगल काज, प्रथम निमंत्रण पाते हैं गणनायक गणराज। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। सनातन धर्म में सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश को भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान गणेश से जुड़ी इस मान्यता के कई प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में वर्णित कथा बताती है कि जब माता पार्वती के स्नान अनुष्ठान को खंडित होने से बचाने के लिए बाल गणेश ने भगवान शिव का रास्ता रोका तो क्रोधित होकर उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया था। तब माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। उस समय भोलेनाथ ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवन दान दिया, लेकिन उसके बाद भी जब माता पार्वती प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने बालक गणेश को वरदान दिया कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश का पूजन होगा।
1: एक बार सभी देवताओं में यह चिंतन हुआ कि सबसे बड़ा प्रथम पूजा पाने का अधिकारी कौन है, तो सभी लोग चले अपने अपने वाहनों से परिक्रमा करने। जो सर्वप्रथम जगत की परिक्रमा करके आएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी अपने अपने वाहनों से चले। गणेश जी का वाहन छोटा था और गणेश जी बहुत ही व्यग्र थे कि मैं कैसे परिक्रमा करूं और मैं अग्रगण्य कहलाऊं। तो भगवान गणपति ने नारद जी के कहने पर अपने माता पिता की परिक्रमा मूषक पर बैठ के कर ली और सर्वप्रथम वहाँ पहुँच गए। और तब सब ने निर्णय किया कि चूँकि सर्वप्रथम गणेश जी आए हैं, इसीलिए तब से आज तक गणेश जी की सबसे आगे पूजा करने का विधान है आज तक।
0: पुराणों में गणपति के प्रथम पूज्य होने का एक और प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग से जुड़ी कथा बताती है कि जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। शिवजी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर झट उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। इसके साथ ही महादेव ने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया।

0: कहा जाता है कि उसके बाद शिवनायक सदा सर्वदा के लिए संसार में प्रथम पूज्य देव हो गए। आज युगों बाद भी ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। घर में कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गौरी सुत, शिव पुत्र, गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, जाने कितने ही नाम हैं विघ्नहर्ता गणेश के। गणपति का हर नाम उनके रूप और उनकी लीलाओं से जुड़ा है, यानी उनके हर नाम के पीछे कोई कहानी या कारण है। गणेश जी का एक ऐसा ही नाम है एक दंत। एक दंत होने के चलते गणपति को एक दंत भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में जिक्र मिलता है कि जब मद नाम के राक्षस ने आतंक मचाया तो गणेश जी एक दंत रूप में अवतार लिया और उसका अंत किया था। उसी तरह गणपति को गजानन भी कहते हैं। गज यानी हाथी का मुख होने के चलते भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। गणेश जी का एक नाम लंबोदर है, इसका अर्थ है बड़े उदर यानी बड़े पेट वाला। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर स्वरूप में अवतार लिया था। क्रोधासुर यानी गुस्सा, गणेश जी की भक्ति से हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। इसी क्रम में गणपति का एक नाम ध्रुम वर्ण भी है। इस स्वरूप में गणेश जी का रंग धुएं के जैसे नजर आता है। अहंतासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने धूम्र वर्ण अवतार लिया था। इसी तरह गणेश जी का एक नाम वक्रतुंड भी है। वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाला। अपने वक्रतुंड अवतार में ही गणेश जी ने मत्सरासुर और उसके पुत्रों का अंत किया था।
2: गणेश जी का नाम वक्रतुंड पीछे पड़ने का बहुत बड़ा कारण मत्सरासुर नाम का एक असुर जो परम शिव भक्त था, लेकिन देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था, ऋषियों को प्रताड़ित करता था, यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं उत्पन्न करता था। तो भगवान गणपति ने वक्रतुंड का रूप धारण करके मत्सरासुर का वध किया और वध करने के कारण भगवान गणपति वक्रतुंड हो गए। और उनकी जो यह प्रार्थना है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह प्रार्थना सर्वविदित है, सारे लोग करते हैं। इस प्रकार भगवान गणपति के वक्रतुंड रूप का अवतार हुआ।
1: तो ये तो थी गणपति के नामों की महिमा। अब उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनका गणेश जी की पूजा में होना अनिवार्य है, तो उसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित है, जैसे तुलसी। आइए आपको बताते हैं कि लंबोदर से जुड़ी ये कौन सी परंपराएं हैं और बप्पा से जुड़ी इन चीजों के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कहानियां हैं, ये भी हम आपको बताएंगे।

कहते हैं गणपति का आगमन शुभ के आरंभ और अशुभ के विनाश के लिए होता है। गणेशोत्सव के 10वें दिन जब बाप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो वे अपने साथ सारी नकारात्मकता भी ले जाती है।

0: लेकिन इससे पहले इन 10 दिनों के दौरान पूरे विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा की जाती है। इस दौरान गणपति की इस विशेष पूजा और खुद गणपति से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन बेहद जरूरी माना जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा मोदक के बिना पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। पौराणिक कहानियों में वे माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं।
1: एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए, माता अनसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है।
0: इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। ये कहानी बताती है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक हो गया था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सोख कर उसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठें खाने के लिए दी। गांठें खाते ही उनके पेट की जलन खत्म हो गई।
1: भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दुर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। तो गणेश जी को तब से दुर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्वशीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरिल यति सव वैश्रमणोपमो भवति। जो भगवान गणपति की पूजा दुर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है।
0: इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी माना जाता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है।
1: अक्षत जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल अक्षताश्च सुर श्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता। कुमकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूंकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूंकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके, उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करते हैं।
0: गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें हैं जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते। सारी दुनिया में जिन तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उन तुलसी के पत्तों का उपयोग गणपति की पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था, लेकिन तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वे राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी के श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वे संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता।
1: भगवान गणपति को दुर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूंकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा।
0: विघ्नहर्ता गणपति से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से बढ़कर एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान के साथ विराजे हैं। पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ सी लग गई है। किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा। गणेशोत्सव की ऐसी ही अनोखी तस्वीरें आई हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से सामने। तिरुवनंतपुरम के पझावगढ़ी में गणेश मंदिर से एक बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखुमुगम आरक्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए, जिसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। हैदराबाद जहां बप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए, गणेश उत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते हुए नजर आए। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है।

अनोखे गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी के जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का ये कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इनमें कुछ तो मूर्ति के साथ फोटो और सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। इसी के साथ गणपति उत्सव से जुड़े हुए इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मौसम की कर लेते हैं, पहाड़ों में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है और बर्फबारी तक शुरू हो गई है। जगह जगह सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बर्फबारी का लोगों ने भी खूब लुत्फ उठाया और उसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की वजह से तापमान में भी अच्छी खासी कमी आई है।
2: आसमान से गिरती ये फुहारें खुशी से भर देने वाली है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खूबसूरत वादियों का नजारा और शानदार हो गया है। बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में हुई बर्फबारी से हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखरी दिख रही है। लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिंकुला, घेपन पीक समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद परतों से ढक गए हैं और यहां के पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हैं। लाहौल के गिलबू पर्वत की ये तस्वीरें बर्फबारी के शानदार नजारों को दिखा रही है। इस पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा में बर्फबारी का दीदार हुआ, जिसको लेकर वो अपनी खुशी जताते भी नजर आए।
3: सीजन का पहला स्नोफॉल है, ये बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, इस टाइम लाहौल में हूँ, मैं किलो से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिम्पोची जी के साथ हैं हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया।
2: लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश पर भी जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर बर्फ की मोटी परतें तक जमी नजर आ रही हैं। करीब 4 इंच तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से मणिमहेश यात्रा भी रोकनी पड़ी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी मौसम अचानक से बदला और यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई और फिर हर जगह सफेद परतें नजर आने लगी। बर्फबारी के चलते मौसम बहुत सर्द हो गया है, हालांकि श्रद्धालुओं में बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
4: वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है, ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुर्बानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था जो खिचड़ी यहां पे मिलती है वो यहां पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है, यहां पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है।
2: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित गुरेज के ऊपरी इलाके तुलेल घाटी के काबुल गली की हैं, जहां हर तरफ सफेद चादर से बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी से यहां की कुदरती खूबसूरती और निखर गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आने से मौसम सर्द हो गया है।
5: जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
2: ये बर्फबारी मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है, खासकर पहाड़ों में इसे ठंड के दस्तक देने के रूप में देखा जा रहा है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोनी और श्रीनगर से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया, सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जोड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेलकू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य। दूरदराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, हमारे बप्पा की, जिनके दर्शन भर से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, और इसीलिए मुंबई के तमाम पंडालों में उनके दर्शन के लिए भक्तों की होड़ लगी है। खासकर लालबाग के राजा के दरबार में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज आपको लालबाग समेत मुंबई के कई मशहूर पंडालों के दर्शन कराएंगे, बप्पा की भव्य और अद्वितीय प्रतिमाएं भी दिखाएंगे। न सिर्फ मुंबई में बल्कि पुणे और नागपुर जैसे शहरों में भी बेहद खूबसूरत पंडाल सजाए गए हैं। आज हम आपको इनके भी दर्शन कराएंगे, और पुणे में कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम से बना पंडाल कैसे बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना वो भी देखिएगा। साथ ही सूरत लिए चलेंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन में विराजमान गणपति की भव्यता वाकई निराली है। तो चलिए शुरुआत मुंबई से ही कर लेते हैं। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। तो परेल में वारकरी विठल के रूप में विराजे हैं बप्पा, जिन्हें देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। और इसी तरीके से घाटकोपर में बप्पा अंतरिक्ष की थीम पर नवग्रहों के साथ सूर्य नारायण की आभा में दर्शन दे रहे हैं। कहीं मन्नतों की झोली भर रही है, तो कहीं महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा जीवंत हो रही है। मुंबई के बप्पा के इन पंडालों में भक्ति भी है, भव्यता भी है, और बप्पा के अलग अलग मनोहारी रूप भी है। देखिए बप्पा। स्वरूप है बप्पा के, पर इनसे अलग और मनोहारी रूप है लालबाग के राजा का। घंटों निहारते रहिए, फिर भी मन नहीं भरेगा। हाँ, यहाँ मांगने वालों की झोली जरूर भर जाती है, इसीलिए तो सुबह से शाम तक दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे तो गणेशोत्सव की धूम पूरे मुंबई में है, लेकिन मुंबई के इस सबसे मशहूर पंडाल में खासों आम की सबसे ज्यादा भीड़ है। पिछले चार दिनों में यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु बप्पा के दर्शन कर चुके हैं, और माना जा रहा है कि अब ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है और चढ़ावा भी। गणेशोत्सव के पहले और दूसरे दिन मिलाकर लालबाग के राजा के दरबार में 1,37,40,000 रुपए चढ़ावा आया, और करीब 300 ग्राम सोना और करीब 8 किलो चांदी का चढ़ावा आया। लालबाग का राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, और जब मन्नत पूरी होती है तब भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। भक्त बप्पा के दरबार में संतान, स्वास्थ्य, व्यापार में सफलता और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, और भरोसा करते हैं कि बप्पा उनकी जरूर सुनेंगे।
1: It feels good. I've been coming here for last 5-6 years now. और मैंने पिछले बार बहुत लोगों को देखा है इधर आके मन्नत मांगते हैं। मैंने किसी का फोटो देखा था, किसी ने तो 2024 में एक पर्ची लिखी थी यहाँ पे कि 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो फिर उसके बाद मैं 2025 में भी इधर आया, वहाँ पे भी किसी ने लिखा था कि हमारे लीडरशिप में भी हम 2026 में इंडिया में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो यहाँ का मन्नत बहुत स्ट्रांग है, और अभी लास्ट ईयर भी हमने मांगा था कि हमें घर में बेटी हो, वो बेटी हुई, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए थैंक यू बोलने आए थे कि जो भी आज तक उन्होंने हमको दिया उसके लिए थैंक यू, और जितना मेहनत करते रहेंगे उसके हिसाब से आप प्रसाद देते रहना।
2: कमबैक को लेकर भी क्या प्रार्थना की पापा से कि आप दर्शन करेंगे, कमबैक हो जाएंगे दर्शन?
1: देखिए, वो सब तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सब भगवान के हाथ में। अपने हाथ में जो है वो मेहनत करना है। मैं मेहनत करते रहता हूँ, बाकी जो भगवान दे दे उसमें मैं खुश हूँ। ब्लेसिंग्स लिया, मम्मी पापा, वाइफ के साथ आया था।
0: क्रिकेटर ही नहीं, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, हर क्षेत्र, हर तबके के लोग बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के सभी राज्यों से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बप्पा का दरबार भक्ति और श्रद्धा से जगमगा रहा है। लेकिन धूम सिर्फ लालबाग चौराजा के दरबार में नहीं, चर्चा परेल के राजा की भी हो रही है, क्योंकि इस बार बप्पा ने वारकरी विठल का अवतार लिया है। इस वेशभूषा में और पगड़ी के साथ बप्पा सबसे अलग और सबसे निराले लग रहे हैं। हाथों में मृदंग और वीणा ने इस मूर्ति को और भी भव्यता दी है। परेल के पंडाल की गिनती यूं भी मुंबई के बाकी बड़े पंडालों में होती है, लेकिन इस दफे प्रतिमा को महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा से जोड़कर इसे नया लेवल दे दिया गया है।
3: इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहां पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहां पर आए हुए हैं और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। अब तक मुझे लगता है कि तीसरा दिन आज चल रहा है गणेश उत्सव का और 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु विट्ठल के इस अवतार का दर्शन करके जा चुके हैं। विट्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं और जो भी पाठ पूजा अभिषेक करानी होती है करते हैं।
0: परेल का ये गणेश पंडाल इस साल अपने 80वें साल में है। हर साल नए अंदाज की प्रतिमा इसकी खासियत है। इस साल भी भक्त बप्पा को देखकर गदगद हैं।
4: हमारे जो इस साल जो मंडल का है वो 80वां साल चल रहा है और जो बापा आज विराजमान आप देख रहे हैं हमारे इसमें, वो साक्षात अपना वारकरी संप्रदाय में है। जो हम लोग ने साक्षात्कार मूर्ति उभारी है निखिल खातू, उनके उन्होंने जो मूर्ति उभारी है उनका आज आप देख रहे हैं जो लाइव क्या चल रहा है आज इसके लिए।
3: अच्छा, मैंने सुना है कि विट्ठल जी का मंदिर भी पास में ही आपने बनाया हुआ है, तो क्या क्या क्या
5: प्रति पंडरपुर जहाँ पे पंडरपुर बनाता है वहाँ पे पंडरपुर है जो महाराष्ट्र में, वो देवत है, वो यहाँ पे हम लोग साकार किए इस टाइम।
0: बात सिर्फ पंडाल की नहीं है, पंडाल के करीब ही हूबहू पंडरपुर बनाया गया है और इस सेट के सामने जो तालाब है उसमें पंडरपुर मंदिर के पास से बहने वाली चंद्रभागा नदी का ही पानी भरा गया है।
6: अपना मूर्ति पसंद आ गया, अपना विट्ठल मंदिर पसंद आ गया, अंदर विट्ठल मंदिर में अपना विट्ठल का मूर्ति भी बैठा है, उनका भी दर्शन अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, चंद्रभागा का बहुत तारीफ कर रहे सब लोग, पूरा यहाँ पे पब्लिक वो देख के जा रही है।
0: जो श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें गणपति के साथ पंडरपुर के दर्शन भी हो रहे हैं। चलिए अब आपको परेल के बाद घाटकोपर लिए चलते हैं जहाँ भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है और जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम पर बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
3: मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूं, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूं। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय और देखिए क्या स्वरूप क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं, कैसे हैं?
7: बस ठीक है सर।
3: चेहरे पे इतनी ज्यादा आपके खुशी नजर आ रही है, बप्पा को ले ही आ गए, इतने खूबसूरत, क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है थोड़ा बताओ।
7: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है और साथ में है 9 ग्रह। जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है जो सबको, सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं और आजू बाजू सौर्य मंडल में भगवान बैठे हैं, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम बनाया है।
3: अच्छा, ये बताइए श्रद्धालुओं के लिए क्या खास है आपके मंडल द्वारा?
8: के लिए तो हम लोग ने बड़ा मंडप बनाया है और मंडप में सुविधा रखी है, जो श्रद्धालु दर्शन करके आते हैं और यहाँ पे एसी डूम रखा है, बैठने की भी सुविधा रखी है, तो श्रद्धालु बाहर से घूम के आते हैं दर्शन करके आते हैं, तो हम लोग ने एक खास सुविधा रखी है मंडल में कि एसी में आओ बैठो शांति से दर्शन करो, ऐसी सुविधा हम लोग ने मंडल।
3: कितना साल
8: भावेश्वर राजा का ये 52वां साल है।
0: 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आस्था बहुत गहरी है।
9: बप्पा की मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी मनमोहक है कि नजर ही नहीं हटती, और उस पर उनकी जो सजावट की है यहाँ के श्रद्धालुओं ने वो तो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बप्पा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, इतनी मनमोहक मूर्ति है उनकी।
3: गणेश उत्सव कितना इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा बताएं आपकी लाइफ में?
10: गणपति बप्पा मौर्य, गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक फेस्टिवल नहीं, एक बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अभी फेमस हो चुका है और बहुत ही सुकून और शांति हमें मिलती है जब हम लोग 10 दिन बप्पा के दर्शन करते हैं। लोगों का मिलना जुलना होता है, नए नए लोगों से मिलते हैं और ना खुशियाँ बांटते हैं, भजन कीर्तन होता है तो मन को बहुत शांति मिलती है। ये एक डिटॉक्स है सबके लिए।
0: मुंबई के पंडालों में गणेशोत्सव की रौनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बप्पा को देखने और पूजने के लिए भीड़ लगातार आ रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति के दरबार में इस बार सिर्फ बप्पा की भव्य प्रतिमा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की झलक, चंद्रपुर के लालबाग के राजा के साथ साईं बाबा का दरबार और अकोला में घर के भीतर सजा जेजुरी का खंडोबागढ़। तीन शहर, तीन अलग अलग तस्वीरें, लेकिन भावना एक, भक्ति में कला का संगम, परंपरा से जुड़ा और बप्पा के बहाने अपनी मिट्टी के धार्मिक स्थलों को करीब से महसूस करने का खूबसूरत मौका।

0: मंदिर की भव्यता, संत की समाधि, घर के आंगन में सजा आस्था का किला, गणपति उत्सव में महाराष्ट्र की भक्ति अब अलग अलग धार्मिक स्थलों का रूप लेकर सामने आ रही है। नागपुर से चंद्रपुर और अकोला तक श्रद्धालुओं ने अपनी कल्पना और मेहनत से ऐसे दरबार सजाए हैं जहां बप्पा के साथ महाराष्ट्र की धार्मिक विरासत के भी दर्शन हो रहे हैं। भक्ति के रंग में कला की खूबसूरती घुली है, मेहनत में परंपरा जुड़ी है और गणपति उत्सव के बहाने महाराष्ट्र की आस्था के अलग अलग केंद्र एक ही जगह नजर आ रहे हैं। नागपुर से चंद्रपुर और चंद्रपुर से अकोला तक कहानी अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन बप्पा के प्रति श्रद्धा का भाव एक है। नागपुर महल परिसर स्थित दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार खम्भे, मंदिर का गुम्बद और समाधि स्थल का प्रारूप, हर हिस्से को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है।
1: ये हमारा 107वां साल है और हमारी जो मंदिर की स्थापना है 1920 में हुई है। एक बार आप जैसे देख सकते हो, हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, प्रतिभूति वो बनाई है ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजय समाधि मंदिर आनंदी, जिसके ऊपर हमने ये प्रकृति बनाई है, प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति को बैक साइड जो है हमने वहाँ जो आदि संजीवन समाधि है सेम उसी प्रतीकृति हमने आपको बनाएंगे, जिनमें सभी भक्तों को और सभी गणित बप्पों को हमें विनती करता है कि बड़ी संख्या में आइए और गणित जी बप्पा के और समाधि मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए।
0: कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद आलंदी का पवित्र धाम नागपुर में साकार हुआ है। एक तरफ बप्पा की भव्य प्रतिमा, दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर की झलक और सामने दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। पंडाल में गूंजते जयकारे, भक्तों की आस्था और मंदिर की खूबसूरत कारीगरी तीनों मिलकर पूरे परिसर को आस्था से भर रहे हैं। सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि चंद्रपुर में भी ऐसी ही रौनक है, जहां एक ही पंडाल में दो अलग अलग आस्था केंद्रों की झलक दिखाई दे रही है। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। बप्पा का विशाल स्वरूप, आकर्षक सजावट और भव्य दरबार श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ की खासियत सिर्फ गणपति की प्रतिमा नहीं है, इसी परिसर में शिरडी के साई बाबा की झांकियाँ भी सजाई गई है। साथ ही द्वारका माई का दृश्य भी तैयार किया गया।
2: इस वक्त हम इसी मंडल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस साई बाबा का जो है पूरा मंदिर यहाँ पे साकार आ गया है। शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साई बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साई बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साई बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साई बाबा की बनाई गई है। बेहद यहाँ से आगे जाने के बाद में हमें लालबाग के राजा के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर में अब लालबाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं क्योंकि इस मंडल में लालबाग के राजा के रूप में यहाँ पर बप्पा पधारे हैं।
0: दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु पहले बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, फिर साई बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं। कोई मनोकामना लेकर आया तो कोई आशीर्वाद की उम्मीद में।
3: अच्छा लगा,
2: क्या देखा?
3: शिरडी के साई बाबा के दर्शन लिए, लालबाग का राजा जी, साई बाबा जी का दर्शन, तो सेम वैसा ही डेकोरेशन वहाँ पे मंडल वाले ने सबने किया है मिलके।
0: सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और मानवता का संदेश देती ये झांकियाँ धार्मिक आस्था के साथ भाईचारे की तस्वीर भी दिखा रही हैं।
4: पिछले कुछ सालों से हम कुछ अच्छे अच्छे दिखावे सादर कर रहे हैं चंद्रपुर की जनता के लिए और इसके पहले भी हमने केदारनाथ मंदिर, रायगढ़, पंढरपुर, 3.5 शक्तिपीठ और इस बार हम शिरडी साई बाबा लेकर।
0: पिछले 46 साल से सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल अलग अलग धार्मिक स्थलों की झांकियां बनाता आ रहा है। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक दिन रात मेहनत की। अकोला की कहानी किसी बड़े पंडाल की नहीं बल्कि एक परिवार की मेहनत और लगन की है। मानकर परिवार ने इस बार अपने घर में गणपति बप्पा के साथ पुणे जिले के जेजुरी स्थित खंडोबागढ़ की प्रतिकृति तैयार की है।
5: महाराष्ट्र की परंपरा रही गणेश उत्सव में घर घर और सार्वजनिक पंडाल में बप्पा तो विराजमान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है बप्पा जो सभी का आस्था का केंद्र है, वो बप्पा की सुंदर प्रतिमा जो है ये मानकर परिवार ने यहाँ पर विराजमान की है। और साथ ही बप्पा महेश 10 दिन के लिए विराजित नहीं किए गए, तो ये जो पूरा पंडाल है, ये छोटा सा घर के अंदर का जो पंडाल है, ये जय मल्लार मानो जेजुरी का गढ़, पूरे जिले के जेजुरी का गढ़, जो सभी का श्रद्धा स्थान है खंडोबा महाराज का, खंडोबा महाराज के अवतार में जो है वो यहाँ पर गणपति बप्पा की ये सुंदर प्रतिमाएं हैं। और जिस तरीके से मल्हार गढ़ है, जिस तरीके से जेजुरी का गढ़ है, उसी तर्ज पर जो है घर के जो वेस्टेज जो सामान है उससे ये सब कुछ ये परिवार ने बनाया है। बच्चों ने रंगोटी की है, तो शिल्पा ने जो है इसे जो है सवारा है, और उनकी सास ने जो है ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ड्रेस सिलाए दिख रहे हैं वो सिलाए हैं, तो शिल्पा के मिस्टर ने जो है इसकी कटिंग की है, इसको रंगाई की है। मानो ये सभी जो बातें हैं, ये बप्पा जो है जिसे बुद्धि का देवता कहते हैं, वो इन्हें हर साल कुछ अलग थीम, जो आस्था की थीम है, जिस तरीके से पिछले वक्त इन्होंने जो है पंढरपुर के विठ्ठल रुखमाई का जो पंढरपुर है उसकी पूरी वारकरी, जो शेगांव से वारकरी जाते हैं उसकी पूरी थीम बनाई थी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये दीप स्तंभ है, ये दीप माला है, वो जेजुरी में बस ऐसी तरह की है, और हर जगह जो है वो पीली मानो हल्दी लगाई हुई, क्योंकि वहां पर जो है हल्दी जो है उधेड़ी जाती है। और सबसे अहम बात ये है कि आने वाले भक्त भी जो है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को इतना पता है कि यहाँ पर कुछ अलग थीम में बप्पा विराजमान होते हैं, तो अपने आस्था का केंद्र रहे जो बप्पा है वो बुद्धि के देवता है, जो हमेशा से ही ये मानकर परिवार को नए अलग थीम बनाकर जो है बापा के साथ एक संदेश देने का काम यहाँ पर ये परिवार करता नजर आ रहा है।
0: बप्पा की प्रतिमा के ठीक बगल में किले की मीनारें, रंग रोगन, सजावट और पारंपरिक अंदाज में सजे भगवान खंडोबा, हर चीज में परिवार की मेहनत दिखाई दे रही है। इस झांकी की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया बल्कि परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिल्पा मानकर, उनके पति और दोनों बेटों ने मिलकर इसे आकार दिया। बेस्ट मटेरियल से किले की मीनार बनाई गई, फिर रंग रोगन और सजावट का काम हुआ, खंडोबा की प्रतिमा को सजाया गया। इतना ही नहीं, भगवान के लिए पोशाक भी बाजार से नहीं खरीदी गई, घर में मौजूद नए कपड़े से ही तैयार की गई।
6: हर साल हम अलग अलग झांकियां बनाते हैं, महाराष्ट्र के जो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं, देवस्थान रहते हैं, उनके हम दर्शन के हेतु जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके दर्शन होने के हेतु हम ये झांकियां बनाते हैं। लेकिन ये झांकियां बनाते समय हम सब हाथों से कलाकृति जो हर एक चीज है हम अपने हाथों से साकारते हैं, कुछ भी ऐसा खरीद के नहीं लाते है। ईच एंड एवरी थिंग, जैसे वो उसके मेकअप, दागिने, कपड़े, वो सब घर पे, जैसे मेरे सास मुझे मदद करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, एक कलरिंग का काम मेरे बच्चों ने किया है, और जो लाइटिंग का काम है वो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं, और इसके सब की हेल्प से ये पूरा हम डेकोरेशन हर साल साकार करते हैं।
0: यानी सामान भले घर में मौजूद था लेकिन कल्पना बड़ी थी, मेहनत लगातार थी और सबसे बढ़कर परिवार का साथ था। हर साल गणपति स्थापना के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग आस्था केंद्रों को घर में साकार करने की कोशिश करने वाला यह परिवार इस बार जेजुरी के खंडोबागढ़ को अपने घर ले आया है। पड़ोसी और आसपास के लोग भी सनों की झांकी को देखने पहुंच रहे हैं। किसी के लिए ये गणपति की सजावट है, तो किसी के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस करने का मौका। यही तो गणपति उत्सव की खूबसूरती है, जहां बप्पा के साथ पूजा होती है, परंपरा जुड़ती है, संस्कृति सजती है, और अपनों के साथ आस्था और भी गहरी हो जाती है। अकोला से धनंजय साबले, चंदपुर से विकास राजूरकर, नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गणपति बप्पा का दरबार सजा है, लेकिन इस बार अंदाज कुछ ऐसा है कि बच्चों से लेकर बड़े तक बस देखते ही रह जाएं। पुणे में चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजा अनोखा गणपति मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर से ये पूरा पंडाल किसी चॉकलेट हाउस जैसा नजर आता है। रोशनी से सजा ये चॉकलेट वर्ल्ड बच्चों को खूब लुभा रहा है, तो बड़ों को उनका बचपन याद दिला रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: हम किसी चॉकलेट के बंगलो में नहीं, हम हैं गणपति बप्पा के पंडाल में। लेकिन यहाँ पे देख सकते कि पूरा जो प्रतिकृति दिया है वो चॉकलेट की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और इसके लिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में ये जो बच्चे हैं इस तरह की चॉकलेट हो या बिस्किट हो उनको देख रहे हैं, और अंदर गणपति बाप्पा जी हैं। किस प्रकार से विराजमान हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। सीधा अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणपति बाप्पा की मूर्ति है और ये कैंडी लगाई है और कैंडी घूमते हुए नजर आ रही है। आपको पसंद क्या है?
1: किंडर जॉय।
0: आप खाते हो किंडर जॉय? और बापा जी का दर्शन लिया भगवान जी का? क्या मांगा भगवान से आपने?
1: मोदक।
0: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
1: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
0: अच्छा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं।
0: क्या क्या देखा आपने?
2: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत कुछ होती दी था मैंने।
0: और आपको क्या पसंद है?
2: मुझे पसंद है पार्ले जी बिस्किट।
3: इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: इस दुर्गा पूजा कोलकाता के मशहूर स्ट्रीट पार्क को नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यहां पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। अलन पार्क में भव्य उत्सव की तैयारी है। दुर्गा पूजा के इस महाआयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। देश के जाने माने आर्टिस्ट अपनी कला का हुनर दिखाएंगे।
3: क्रिसमस के लिए मशहूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का एलन पार्क पहली बार दुर्गा पूजा के लिए सवर रहा है। यहां भव्य दुर्गा पूजा की तैयारियों का शंखनाद हो गया है। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालया के अगले दिन एलन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। इस भव्य महोत्सव में बंगाल के लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आस्था भक्ति के रंग बिखेरेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
4: लाइटिंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के लिए बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों को, दुनिया में रहने वाले बंगाली और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं, बंगाल के रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं को ये पूजा समर्पित है। ये उनका पूजा है। आराम से 10 दिन आए, पूजा देखें और ये कह के जाएं कि अपन पूजा, ये हमारा पूजा।
3: आयोजकों का दावा है कि एलन पार्क में इस दुर्गा पूजा बंगाली सनातनी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और इस महायोजन को लेकर यहाँ के लोगों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: तीसरे टी ट्वेंटी मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया। सीरीज 3-0 से जीती। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जोड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेल्कू पर्व की धूम। रात भर होते लोकगीत और पारंपरिक नृत्य। दूरदराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल। बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप। पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी। स्वागत में सजा फूलों का बाजार। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना। कुल्लू में बदला मौसम। रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका। जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और कितनी आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गौरी नंदन के इन्हीं रूपों के बीच आज दो तस्वीरें ऐसी भी आई जो भगवान गणेश की जननी माँ भवानी को समर्पित हैं। देखिए, गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान ही भारत के कई हिस्सों में एक पर्व मनाया जाता है जिसे गौरी गणेश उत्सव कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान माँ गौरी अपने बेटे से मिलने पृथ्वी पर आती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण के कई हिस्सों में ये पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज तस्वीरों में कुछ ऐसा ही संयोग बनता हुआ नजर आया। तो गणेशोत्सव के बीच एक तस्वीर तमिलनाडु और दूसरी पश्चिम बंगाल से आई। दरअसल आज तमिलनाडु के श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में भव्य उत्सव हुआ। ये मंदिर गजानन की माता देवी पार्वती और पिता महादेव को समर्पित है। तो वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों के शंखनाद की तस्वीरें भी आज आई। पहले आपको मदुरै के उत्सव के बारे में बताते हैं। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में 17 साल के बाद महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान हुआ। इस अनुष्ठान के दौरान शुभ मुहूर्त में पवित्र कलशों में विधि विधान से तैयार किए गए जल से देवी देवताओं के विग्रह का अभिषेक हुआ। मंदिर के शिखरों पर भी पवित्र जल अर्पित हुआ। भारतीय सनातन परंपरा और आगम शास्त्रों के अनुसार किसी भी बड़े मंदिर में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने और परिसर के जीर्णोद्वार के लिए किया जाता है। इसी भव्य आयोजन के दौरान इस भव्य आयोजन के लिए मीनाक्षी मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया। तो वहीं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में मौजूद एलन पार्क में आज पूजा की तैयारियों का शुभारंभ नजर आया। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन एलन पार्क में पूजा का शुभारंभ होगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। तो माँ गौरी भी आएंगी, पर आज बात गौरी नंदन की कर लेते हैं। क्या आम क्या खास, इस समय हर घर हर दर पर गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको गणेश पूजन से जुड़ी परंपराओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी के नामों से लेकर उनके पूजन में शामिल होने वाली चीजों तक हर बात का अपना एक महत्व होता है, एक कहानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसके चलते श्री गणेश प्रथम पूज्य बने और गणनायक कहलाए।

0: पूजा वर्षगांठ हो कोई मंगल काज, प्रथम निमंत्रण पाते हैं गणनायक गणराज। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। सनातन धर्म में सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश को भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान गणेश से जुड़ी इस मान्यता के कई प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में वर्णित कथा बताती है कि जब माता पार्वती के स्नान अनुष्ठान को खंडित होने से बचाने के लिए बाल गणेश ने भगवान शिव का रास्ता रोका तो क्रोधित होकर उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया था। तब माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। उस समय भोलेनाथ ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवन दान दिया। लेकिन उसके बाद भी जब माता पार्वती प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने बालक गणेश को वरदान दिया कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश का पूजन होगा।
1: एक बार सभी देवताओं में यह चिंतन हुआ कि सबसे बड़ा प्रथम पूजा पाने का अधिकारी कौन है, तो सभी लोग चले अपने अपने वाहनों से परिक्रमा करने। जो सर्वप्रथम जगत की परिक्रमा करके आएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी अपने अपने वाहनों से चले। गणेश जी का वाहन छोटा था और गणेश जी बहुत ही व्यग्र थे कि मैं कैसे परिक्रमा करूं और मैं अग्रगण्य कहलाऊं। तो भगवान गणपति ने नारद जी के कहने पर अपने माता पिता की परिक्रमा मूषक पर बैठ के कर ली और सर्वप्रथम वहाँ पहुँच गए। और तब सब ने निर्णय किया कि चूँकि सर्वप्रथम गणेश जी आए हैं इसीलिए तब से आज तक गणेश जी की सबसे आगे पूजा करने का विधान है आज तक।
0: पुराणों में गणपति के प्रथम पूज्य होने का एक और प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग से जुड़ी कथा बताती है कि जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। शिवजी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर झट उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। इसके साथ ही महादेव ने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से विनायक सदा सर्वदा के लिए संसार में प्रथम पूज्य देव हो गए। आज युगों बाद भी ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। घर में कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गौरी सुत शिवपुत्र गणपति विनायक गजानन लंबोदर, जाने कितने ही नाम हैं विघ्नहर्ता गणेश के। गणपति का हर नाम उनके रूप और उनकी लीलाओं से जुड़ा है, यानी उनके हर नाम के पीछे कोई कहानी या कारण है। गणेश जी का एक ऐसा ही नाम है एक दंत। एक दंत होने के चलते गणपति को एक दंत भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में जिक्र मिलता है कि जब मद नाम के राक्षस ने आतंक मचा

0: तो गणेश जी एक दंत रूप में अवतार लिया और उसका अंत किया था। उसी तरह गणपति को गजानन भी कहते हैं। गज यानी हाथी का मुख होने के चलते भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। गणेश जी का एक नाम लंबोदर है, इसका अर्थ है बड़े उदर यानी बड़े पेट वाला। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर स्वरूप में अवतार लिया था। क्रोधासुर यानी गुस्सा। गणेश जी की भक्ति से हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। इसी क्रम में गणपति का एक नाम ध्रुमवर्ण भी है। इस स्वरूप में गणेश जी का रंग धुएं के जैसे नजर आता है। अहंतासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार लिया था। इसी तरह गणेश जी का एक नाम वक्रतुंड भी है। वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाला। अपने वक्रतुंड अवतार में ही गणेश जी ने मत्सरासुर और उसके पुत्रों का अंत किया था।
1: गणेश जी का नाम वक्रतुंड पीछे पड़ने का बहुत बड़ा कारण मत्सरासुर नाम का एक असुर जो परम शिव भक्त था, लेकिन देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था, ऋषियों को प्रताड़ित करता था, यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं उत्पन्न करता था। तो भगवान गणपति ने वक्रतुंड का रूप धारण करके मत्सरासुर का वध किया और वध करने के कारण भगवान गणपति वक्रतुंड हो गए। और उनकी जो यह प्रार्थना है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह प्रार्थना सर्वविदित है, सारे लोग करते हैं। इस प्रकार भगवान गणपति के वक्रतुंड रूप का अवतार हुआ।
0: तो ये तो थी गणपति के नामों की महिमा। अब उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनका गणेश जी की पूजा में होना अनिवार्य है। तो उसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित है, जैसे तुलसी। आइए आपको बताते हैं कि लंबोदर से जुड़ी ये कौन सी परंपराएं हैं और बप्पा से जुड़ी इन चीजों के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कहानियां हैं, ये भी हम आपको बताएंगे।

कहते हैं गणपति का आगमन शुभ के आरंभ और अशुभ के विनाश के लिए होता है। गणेशोत्सव के 10वें दिन जब बाप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो वे अपने साथ सारी नकारात्मकता भी ले जाती है।

0: लेकिन इससे पहले इन 10 दिनों के दौरान पूरे विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा की जाती है। इस दौरान गणपति की इस विशेष पूजा और खुद गणपति से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन बेहद जरूरी माना जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा मोदक के बिना पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। पौराणिक कहानियों में वे माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं।
1: एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए, माता अनसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है।
0: इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। ये कहानी बताती है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक हो गया था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सोख कर उसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठें खाने के लिए दी। गांठें खाते ही उनके पेट की जलन खत्म हो गई।
1: भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दुर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। तो गणेश जी को तब से दुर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरिल यति सव वैश्रमणोपमो भवती। जो भगवान गणपति की पूजा दुर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है।
0: इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी माना जाता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है।
1: अक्षत जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल अक्षताश्च सुर श्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता। कुमकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूंकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूंकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करते
0: हैं। गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें हैं जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते। सारी दुनिया में जिन तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उन तुलसी के पत्तों का उपयोग गणपति की पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था, लेकिन तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वे राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी के श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वे संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता।
1: भगवान गणपति को दुर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूंकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा।
0: विघ्नहर्ता गणपति से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से बढ़कर एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान के साथ विराजे हैं। पंडालों की बनावट और भव्यता का तो ऐसा है कि मानो होड़ सी लग गई है। किसका पंडाल सबसे सुंदर, सबसे अलग होगा, किसके बप्पा का रूप सबसे अनोखा होगा, गणेशोत्सव की ऐसी ही अनोखी तस्वीरें आई हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से सामने। तिरुवनंतपुरम के पझावगढ़ी में गणेश मंदिर से एक बीच तक भगवान गणेश को समर्पित भव्य यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान गणेश के 32 विभिन्न रूपों और पारंपरिक स्वरूपों से जुड़ी मूर्तियों को शामिल किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नाचते गाते कलाकार शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। विसर्जन से ठीक पहले शंखु मुगम आरक्टू मंडपम में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों नारियल अर्पित किए गए, जिसके बाद मूर्तियों का समुद्र में विसर्जन कर दिया गया। हैदराबाद जहां बप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए, गणेश उत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते हुए नजर आए। 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत के अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है।

अनोखे गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का है। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 2,11,000 पेन से तैयार किया गया है और इसे बनाने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है। आयोजकों का ये कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने अनोखी प्रतिमा बनाई है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। आयोजकों ने बताया कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पेन गणेश भक्तों में बांट दिए जाएंगे। इस अनोखी गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इनमें कुछ तो मूर्ति के साथ फोटो और सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। इसी के साथ गणपति उत्सव से जुड़े हुए इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: भूल जाइए। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है और बर्फबारी तक शुरू हो गई है। जगह जगह सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है और इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बर्फबारी का लोगों ने भी खूब लुत्फ उठाया और उसको लेकर अपनी खुशी भी जताई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक ऊंचाई वाले इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की वजह से तापमान में भी अच्छी खासी कमी आई है।
2: आसमान से गिरती ये फुहारें खुशी से भर देने वाली है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से खूबसूरत वादियों का नजारा और शानदार हो गया है। बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में हुई बर्फबारी से हर तरफ चांदी जैसी चमक बिखरी दिख रही है। लाहौल स्पीति के बारालाचा, शिंकुला, घेपन पीक समेत ऊंचाई वाले इलाके सफेद परतों से ढक गए हैं और यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे चार चांद लग गए हैं। लाहौल के गिलबू पर्वत की ये तस्वीरें बर्फबारी के शानदार नजारों को दिखा रही हैं। इस पर्वत की परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं को भी अपनी यात्रा में बर्फबारी का दीदार हुआ, जिसको लेकर वो अपनी खुशी जताते भी नजर आए।
3: सीजन का पहला स्नोफॉल है, ये बहुत मजा आ रहा है। मैं यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, इस टाइम लाहौल में हूँ मैं, किलो से काफी ऊपर हूँ और पवित्र पर्वत की हम लोग इस टाइम परिक्रमा कर रहे हैं। रिंपोची जी के साथ हैं हम लोग और उनकी कृपा से हम लोगों को देखो इतना अच्छा जो है बर्फ का दर्शन हो गया।
2: लाहौल स्पीति ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश कैलाश पर भी जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर बर्फ की मोटी परतें तक जमी नजर आ रही हैं। करीब 4 इंच तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से मणिमहेश यात्रा भी रोकनी पड़ी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में भी मौसम अचानक से बदला और यहाँ भी बर्फबारी शुरू हो गई और फिर हर जगह सफेद परतें नजर आने लगी। बर्फबारी के चलते मौसम बहुत सर्द हो गया है, हालांकि श्रद्धालुओं में बर्फबारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
4: वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है, ऐसे में इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कभी मौसम चटक धूप खिलती है तो अब बारिश के साथ यहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। कुर्बानी सुनने वालों को गर्म कंबल दी जा रही है। वहीं भोजन की व्यवस्था जो खिचड़ी यहां पे मिलती है वो यहां पे बड़ी राहत दे रही है। हालांकि यात्रियों को फिर से भेजा जाएगा, बर्फबारी थमेगी क्योंकि हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पे है, यहां पे अचानक से बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है।
2: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित गुरेज के ऊपरी इलाके तुलेल घाटी के काबुल गली की हैं, जहां हर तरफ सफेद चादर से बिछी नजर आ रही है। बर्फबारी से यहां की कुदरती खूबसूरती और निखर गई है। बर्फबारी की वजह से तापमान में काफी गिरावट आने से मौसम सर्द हो गया है।
5: जबरदस्त गर्मी के बाद अब सितंबर आते आते धीरे धीरे मौसम सुहाना होने लगा है। पिछले दिनों कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन बीती रात कश्मीर के अधिकतर पहाड़ों पर इस मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
2: ये बर्फबारी मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है, खासकर पहाड़ों में इसे ठंड के दस्तक देने के रूप में देखा जा रहा है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, चमोली से कमल नयन सिलोनी और श्रीनगर से अश्रपानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: तीसरे टी ट्वेंटी मैच में अफगानिस्तान को भारत ने 127 रनों से हराया, सीरीज 3-0 से जीती, अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में जोड़ा तूफानी शतक। पीएम के 76वें जन्मदिन पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। उत्तरकाशी में मां गंगा के मायके मुखवा में सेलकू पर्व की धूम, रात भर होते हैं लोकगीत और पारंपरिक नृत्य, दूरदराज के गांव की सुहागिनों को भी किया जाता है आमंत्रित। पुणे में चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम और बिस्किट से सजा बप्पा का अनूठा पंडाल, बच्चों को लुभा रहा विघ्नहर्ता का अनूठा रूप, पंडाल देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। अकोला में गौरी गणेश पर्व की तैयारी, स्वागत में सजा फूलों का बाजार, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा की स्थापना के 5 दिन बाद होता है गौरी गणेश का आगमन। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना, कुल्लू में बदला मौसम, रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका, जोजिला में भी जबरदस्त बर्फबारी।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, हमारे बप्पा की, जिनके दर्शन भर से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और इसीलिए मुंबई के तमाम पंडालों में उनके दर्शन के लिए भक्तों की होड़ लगी है। खासकर लालबाग के राजा के दरबार में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज आपको लालबाग समेत मुंबई के कई मशहूर पंडालों के दर्शन कराएंगे, बप्पा की भव्य और अद्वितीय प्रतिमाएं भी दिखाएंगे। न सिर्फ मुंबई में बल्कि पुणे और नागपुर जैसे शहरों में भी बेहद खूबसूरत पंडाल सजाए गए हैं। आज हम आपको इनके भी दर्शन कराएंगे और पुणे में कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम से बना पंडाल कैसे बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना वो भी देखिएगा। साथ ही सूरत लिए चलेंगे, जहाँ वंदे भारत ट्रेन में विराजमान गणपति की भव्यता वाकई निराली है। तो चलिए शुरुआत मुंबई से ही कर लेते हैं। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। तो परेल में वारकरी विठल के रूप में विराजे हैं बप्पा, जिन्हें देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। और इसी तरीके से घाटकोपर में बप्पा अंतरिक्ष की थीम पर नवग्रहों के साथ सूर्य नारायण की आभा में दर्शन दे रहे हैं। कहीं मन्नतों की झोली भर रही है तो कहीं महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा जीवंत हो रही है। मुंबई के बप्पा के इन पंडालों में भक्ति भी है, भव्यता भी है और बप्पा के अलग अलग मनोहारी रूप भी है। देखिए बप्पा। स्वरूप है पप्पा के, पर इनसे अलग और मनोहारी रूप है लालबाग के राजा का। घंटों निहारते रहे फिर भी मन नहीं भरेगा। हाँ, यहाँ मांगने वालों की झोली जरूर भर जाती है, इसीलिए तो सुबह से शाम तक दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे तो गणेशोत्सव की धूम पूरे मुंबई में है, लेकिन मुंबई के इस सबसे मशहूर पंडाल में खासो आम की सबसे ज्यादा भीड़ है। पिछले चार दिनों में यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु बप्पा के दर्शन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि अब यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है और चढ़ावा भी। गणेशोत्सव के पहले और दूसरे दिन मिलाकर लालबाग के राजा के दरबार में 1,37,40,000 रुपए चढ़ावा आया और करीब 300 ग्राम सोना और करीब 8 किलो चांदी का चढ़ावा आया। लालबाग का राजा को मन्नतों का राजा कहा जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और जब मन्नत पूरी होती है तब भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। भक्त बप्पा के दरबार में संतान, स्वास्थ्य, व्यापार में सफलता और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और भरोसा करते हैं कि बप्पा उनकी जरूर सुनेंगे।
1: It feels good. I've been coming here for last 5-6 years now. और मैंने पिछले बार बहुत लोगों को देखा है इधर आके मन्नत मांगते हैं। मैंने किसी का फोटो देखा था, किसी ने तो 2024 में एक पर्ची लिखी थी यहाँ पे कि 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो फिर उसके बाद मैं 2025 में भी इधर आया, वहाँ पे भी किसी ने लिखा था कि हमारे लीडरशिप में भी हम 2026 में इंडिया में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो यहाँ का मन्नत बहुत स्ट्रांग है और अभी लास्ट ईयर भी हमने मांगा था कि हमें घर में बेटी हो, वो बेटी हुई तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए थैंक यू बोलने आए थे कि जो भी आज तक उन्होंने हमको दिया उसके लिए थैंक यू और जितना मेहनत करते रहेंगे उसके हिसाब से आप प्रसाद देते रहना।
2: कमबैक को लेकर भी क्या प्रार्थना की पापा से कि आप दर्शन करेंगे, कमबैक हो जाएंगे दर्शन?
1: देखिए वो सब तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सब भगवान के हाथ में, अपने हाथ में जो है वो मेहनत करना है। मैं मेहनत करते रहता हूँ, बाकी जो भगवान दे दे उसमें मैं खुश हूँ। ब्लेसिंग्स लिया, मम्मी पापा वाइफ के साथ आया था।
0: क्रिकेटर ही नहीं, नेता, अभिनेता, उद्योगपति, हर क्षेत्र, हर तबके के लोग बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के सभी राज्यों से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बप्पा का दरबार भक्ति और श्रद्धा से चकमगा रहा है। लेकिन धूम सिर्फ लालबाग चौराजा के दरबार में नहीं, चर्चा परेल के राजा की भी हो रही है, क्योंकि इस बार बप्पा ने वारकरी विठल का अवतार लिया है। इस वेशभूषा में और पगड़ी के साथ बप्पा सबसे अलग और सबसे निराले लग रहे हैं। हाथों में मृदंग और वीणा ने इस मूर्ति को और भी भव्यता दी है। परेल के पंडाल की गिनती यूं भी मुंबई के बाकी बड़े पंडालों में होती है, लेकिन इस दफे प्रतिमा को महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा से जोड़कर इसे नया लेवल दे दिया गया है।
3: इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में, जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। अब तक मुझे लगता है कि तीसरा दिन आज चल रहा है गणेश उत्सव का और 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु विट्ठल के इस अवतार का दर्शन करके जा चुके हैं। विट्ठल बप्पा के ठीक नीचे एक और भी छोटे से बप्पा बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं और जो भी पाठ पूजा अभिषेक करानी होती है करते हैं।
0: परेल का ये गणेश पंडाल इस साल अपने 80वें साल में है। हर साल नए अंदाज की प्रतिमा इसकी खासियत है। इस साल भी भक्त बप्पा को देखकर गदगद हैं।
4: हमारे जो इस साल जो मंडल का है वो 80वां साल चल रहा है और जो बापा आज विराजमान आप देख रहे हैं हमारे इसमें, वो साक्षात अपना वारकरी संप्रदाय में है। जो हम लोग ने साक्षात्कार मूर्ति उभारी है निखिल खातू, उनके उन्होंने जो मूर्ति उभारी है उनका आज आप देख रहे हैं जो लाइव क्या चल रहा है आज इसके लिए।
3: अच्छा, मैंने सुना है कि विट्ठल जी का मंदिर भी पास में ही आपने बनाया हुआ है, तो क्या क्या क्या
5: प्रति पंडरपुर, जहाँ पे पंडरपुर बनाता है वहाँ पे पंडरपुर है जो महाराष्ट्र में, वो देवत है, वो यहाँ पे हम लोग साकार किए इस टाइम।
0: बात सिर्फ पंडाल की नहीं है, पंडाल के करीब ही हूबहू पंडरपुर बनाया गया है और इस सेट के सामने जो तालाब है उसमें पंडरपुर मंदिर के पास से बहने वाली चंद्रभागा नदी का ही पानी भरा गया है।
6: अपना मूर्ति पसंद आ गया, अपना विट्ठल मंदिर पसंद आ गया, अंदर विट्ठल मंदिर में अपना विट्ठल का मूर्ति भी बैठा है, उनका भी दर्शन अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, चंद्रभागा का बहुत तारीफ कर रहे सब लोग, पूरा यहाँ पे पब्लिक वो देख के जा रही है।
0: जो श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें गणपति के साथ पंडरपुर के दर्शन भी हो रहे हैं। चलिए अब आपको परेल के बाद घाट को पर लिए चलते हैं, जहाँ भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है और जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम पर बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
3: मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूं, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूं। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय और देखिए क्या स्वरूप क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं, कैसे हैं?
7: बस ठीक है सर।
3: चेहरे पे इतनी ज्यादा आपके खुशी नजर आ रही है, बप्पा को ले ही आ गए, इतने खूबसूरत, क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है थोड़ा बताओ।
7: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है और साथ में है नौ ग्रह। जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है जो सबको सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं और आजू बाजू सौर्य मंडल में भगवान बैठे हैं, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम बनाया है।
3: अच्छा, ये श्रद्धालुओं के लिए क्या खास है आपके मंडल द्वारा?
8: के लिए तो हम लोग ने बड़ा मंडप बनाया है और मंडप में सुविधा रखी है, जो श्रद्धालु दर्शन करके आते हैं और यहाँ पे एसी डूम रखा है, बैठने की भी सुविधा रखी है, तो श्रद्धालु बाहर से घूम के आते हैं दर्शन करके आते हैं, तो हम लोग ने एक खास सुविधा रखी है मंडल में कि एसी में आओ बैठो शांति से दर्शन करो, ऐसी सुविधा हम लोग ने मंडल।
3: कितना कितना साल
8: भावेश्वर राजा का? ये 52वां साल है।
0: 52 साल से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है। भीड़भाड़ बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आस्था बहुत गहरी है।
9: बप्पा की मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी मनमोहक है कि नजर ही नहीं हटती, और उस पर उनकी जो सजावट की है यहाँ के श्रद्धालुओं ने वो तो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बप्पा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, इतनी मनमोहक मूर्ति है उनकी।
10: गणेश उत्सव कितना इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा बताएं आपकी लाइफ?
11: गणपति बप्पा मोरिया, गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक फेस्टिवल नहीं, एक बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अभी फेमस हो चुका है और बहुत ही सुकून और शांति हमें मिलती है जब हम लोग 10 दिन बप्पा के दर्शन करते हैं। लोगों का मिलना जुलना होता है, नए नए लोग उसे मिलते हैं और ना खुशियाँ बाँटते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो मन को बहुत शांति मिलती है। ये एक डिटॉक्स है सबके लिए।
0: मुंबई के पंडालों में गणेशोत्सव की रौनक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बप्पा को देखने और पूजने के लिए भीड़ लगातार आ रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति के दरबार में इस बार सिर्फ बप्पा की भव्य प्रतिमा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की झलक, चंद्रपुर के लालबाग के राजा के साथ साईं बाबा का दरबार, और अकोला में घर के भीतर सजा जेजुरी का खंडोबागढ़। तीन शहर, तीन अलग अलग तस्वीरें, लेकिन भावना एक, भक्ति में कला का संगम, परंपरा से जुड़ा और बप्पा के बहाने अपनी मिट्टी के धार्मिक स्थलों को करीब से महसूस करने का खूबसूरत मौका।

0: मंदिर की भव्यता, संत की समाधि, घर के आंगन में सजा आस्था का किला। गणपति उत्सव में महाराष्ट्र की भक्ति अब अलग अलग धार्मिक स्थलों का रूप लेकर सामने आ रही है। नागपुर से चंद्रपुर और अकोला तक श्रद्धालुओं ने अपनी कल्पना और मेहनत से ऐसे दरबार सजाए हैं जहां बप्पा के साथ महाराष्ट्र की धार्मिक विरासत के भी दर्शन हो रहे हैं। भक्ति के रंग में कला की खूबसूरती घुली है, मेहनत में परंपरा जुड़ी है और गणपति उत्सव के बहाने महाराष्ट्र की आस्था के अलग अलग केंद्र एक ही जगह नजर आ रहे हैं। नागपुर से चंद्रपुर और चंद्रपुर से अकोला तक कहानी अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन बप्पा के प्रति श्रद्धा का भाव एक है। नागपुर महल परिसर स्थित दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति तैयार की है। विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार खम्भे, मंदिर का गुंबद और समाधि स्थल का प्रारूप, हर हिस्से को बेहद बारीकी से तैयार किया गया है।
1: ये हमारा 107वां साल है और हमारी जो मंदिर की स्थापना है 1920 में हुई है। एक बार आप जो देख सकते हो, हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, प्रतिभूति वो बनाई है ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजय समाधि मंदिर आनंदी, जिसके ऊपर हमने ये प्रकृति बनाई है, प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति को बैक साइड जो है हमने वहाँ जो आदि संजीवन समाधि है सेम वैसी प्रतिकृति भी हमने आपको बनाएंगे, जिनमें सभी भक्तों को और सभी गणित बप्पों को मैं विनती करता हूँ कि बड़ी संख्या में आइए और गणपति जी बप्पा के और समाधि मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए।
0: कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद आलंदी का पवित्र धाम नागपुर में साकार हुआ है। एक तरफ बप्पा की भव्य प्रतिमा, दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर की झलक और सामने दर्शन के लिए उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़। पंडाल में गूंजते जयकारे, भक्तों की आस्था और मंदिर की खूबसूरत कारीगरी तीनों मिलकर पूरे परिसर को आस्था से भर रहे हैं। सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि चंद्रपुर में भी ऐसी ही रौनक है, जहां एक ही पंडाल में दो अलग अलग आस्था केंद्रों की झलक दिखाई दे रही है। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की भव्य प्रतिकृति तैयार की है। बप्पा का विशाल स्वरूप, आकर्षक सजावट और भव्य दरबार श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ की खासियत सिर्फ गणपति की प्रतिमा नहीं है, इसी परिसर में शिरडी के साईं बाबा की झांकियाँ भी सजाई गई हैं। साथ ही द्वारका माई का दृश्य भी तैयार किया गया।
2: इस वक्त हम इसी मंडल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस साईं बाबा का जो है पूरा मंदिर यहाँ पे साकार आ गया है। शुरुआत अगर हम करेंगे तो शुरुआत में भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है। बेहद यहाँ से आगे जाने के बाद में हमें लालबाग के राजा के दर्शन होते हैं। चंद्रपुर में अब लालबाग के राजा के दर्शन भक्तों को हो रहे हैं क्योंकि इस मंडल में लालबाग के राजा के रूप में यहाँ पर बप्पा पधारे हैं।
0: दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु पहले बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, फिर साईं बाबा के दरबार में माथा टेक रहे हैं। कोई मनोकामना लेकर आया तो कोई आशीर्वाद की उम्मीद में।
3: अच्छा लगा,
2: क्या देखा?
3: शिरडी के साईं बाबा के दर्शन लिए, लालबाग का राजा जी, साईं बाबा जी का दर्शन, तो सेम वैसा ही डेकोरेशन वहाँ पे मंडल वाले ने सबने किया है मिलके।
0: सबका मालिक एक, श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और मानवता का संदेश देती ये झांकियाँ धार्मिक आस्था के साथ भाईचारे की तस्वीर भी दिखा रही हैं।
4: पिछले कुछ सालों से हम कुछ अच्छे अच्छे देखा सादर कर रहे हैं चंद्रपुर के जनता के लिए और इसके पहले भी हमने केदारनाथ मंदिर, रायगढ़, पंडरपुर, साढ़े तीन शक्तिपीठ और इस बार हम शिरडी साईं बाबा लेकर।
0: पिछले 46 साल से सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल अलग अलग धार्मिक स्थलों की झांकियां बनाता आ रहा है। इस बार भी कार्यकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक दिन रात मेहनत की। अकुला की कहानी किसी बड़े पंडाल की नहीं बल्कि एक परिवार की मेहनत और लगन की है। मानकर परिवार ने इस बार अपने घर में गणपति बप्पा के साथ पुणे जिले के जेजुरी स्थित खंडोबागढ़ की प्रतिकृति तैयार की है।
5: महाराष्ट्र की परंपरा रही गणेश उत्सव में घर घर और सार्वजनिक पंडाल में बप्पा तो विराजमान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो है बप्पा जो सभी का आस्था का केंद्र है, वो बप्पा की सुंदर प्रतिमा जो है ये मानकर परिवार ने यहाँ पर विराजमान की है। और साथ ही बप्पा महेश 10 दिन के लिए विराजित नहीं किए गए, तो ये जो पूरा पंडाल है, ये छोटा सा घर के अंदर का जो पंडाल है, ये जय मल्लार मानो जेजुरी का गढ़, पूरे जिले के जेजुरी का गढ़, जो सभी का श्रद्धा स्थान है खंडोबा महाराज का, खंडोबा महाराज के अवतार में जो है वो यहाँ पर गणपति बप्पा की ये सुंदर प्रतिमाएं हैं। और जिस तरीके से मल्हार गढ़ है, जिस तरीके से जेजुरी का गढ़ है, उसी तर्ज पर जो है घर के जो वेस्टेज जो सामान है उससे ये सब कुछ ये परिवार ने बनाया है। बच्चों ने रंगोटी की है, तो शिल्पा ने जो है इसे जो है सवारा है, और उनकी सास ने जो है ये जो छोटे छोटे यहाँ पर ड्रेस सिलाए दिख रहे हैं वो सिलाए है, तो शिल्पा के मिस्टर ने जो है इसकी कटिंग की है, इसको रंगाई की है। मानो ये सभी जो बातें हैं, ये बप्पा जो है जिसे बुद्धि का देवता कहते हैं, वो इन्हें हर साल कुछ अलग थीम, जो आस्था की थीम है, जिस तरीके से पिछले वक्त इन्होंने जो है पंढरपुर के विठ्ठल रुक्माई का जो पंढरपुर है उसकी पूरी वारकरी, जो शेगांव से वारकरी जाते हैं उसकी पूरी थीम बनाई थी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये दीप स्तंभ है, ये दीपमाला है, वो जेजुरी में बस ऐसी तरह की है, और हर जगह जो है वो पीली मानो हल्दी लगाई हुई, क्योंकि वहां पर जो है हल्दी जो है उधेड़ी जाती है। और सबसे अहम बात ये है कि आने वाले भक्त भी जो है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को इतना पता है कि यहाँ पर कुछ अलग थीम में बप्पा विराजमान होते हैं, तो अपने आस्था का केंद्र रहे जो बप्पा है वो बुद्धि के देवता है, जो हमेशा से ही ये मानकर परिवार को नए अलग थीम बनाकर जो है बापा के साथ एक संदेश देने का काम यहाँ पर ये परिवार करता नजर आ रहा है।
0: बापा की प्रतिमा के ठीक बगल में किले की मीनारें, रंग रोगन, सजावट और पारंपरिक अंदाज में सजे भगवान खंडोबा, हर चीज में परिवार की मेहनत दिखाई दे रही है। इस झांकी की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया बल्कि परिवार के हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिल्पा मानकर, उनके पति और दोनों बेटों ने मिलकर इसे आकार दिया। बेस्ट मटेरियल से किले की मीनार बनाई गई, फिर रंग रोगन और सजावट का काम हुआ, खंडोबा की प्रतिमा को सजाया गया। इतना ही नहीं, भगवान के लिए पोशाक भी बाजार से नहीं खरीदी गई, घर में मौजूद नए कपड़े से ही तैयार की गई।
6: हर साल हम अलग अलग झांकियां बनाते हैं, महाराष्ट्र के जो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं, देवस्थान रहते हैं, उनके हम दर्शन के हेतु जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके दर्शन होने के हेतु हम ये झांकियां बनाते हैं। लेकिन ये झांकियां बनाते समय हम सब हाथों से कलाकृति जो हर एक चीज है हम अपने हाथों से साकारते हैं, कुछ भी ऐसा खरीद के नहीं लाते है। ईच एंड एवरी थिंग, जैसे वो उसके मेकअप, दागिने, कपड़े, वो सब घर पे, जैसे मेरे सास मुझे मदद करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, एक कलरिंग का काम मेरे बच्चों ने किया है, और जो लाइटिंग का काम है वो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं, और इसके सब की हेल्प से ये पूरा हम डेकोरेशन हर साल साकार करते हैं।
0: यानी सामान भले घर में मौजूद था लेकिन कल्पना बड़ी थी, मेहनत लगातार थी और सबसे बढ़कर परिवार का साथ था। हर साल गणपति स्थापना के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग आस्था केंद्रों को घर में साकार करने की कोशिश करने वाला यह परिवार इस बार जेजुरी के खंडोबागढ़ को अपने घर ले आया है। पड़ोसी और आसपास के लोग भी सनों की झांकी को देखने पहुंच रहे हैं। किसी के लिए ये गणपति की सजावट है, तो किसी के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा को करीब से महसूस करने का मौका। यही तो गणपति उत्सव की खूबसूरती है, जहां बप्पा के साथ पूजा होती है, परंपरा जुड़ती है, संस्कृति सजती है, और अपनों के साथ आस्था और भी गहरी हो जाती है। अकोला से धनंजय साबले, चंदपुर से विकास राजूरकर, नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गणपति बप्पा का दरबार सजा है, लेकिन इस बार अंदाज कुछ ऐसा है कि बच्चों से लेकर बड़े तक बस देखते ही रह जाएं। पुणे में चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजा अनोखा गणपति मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर से ये पूरा पंडाल किसी चॉकलेट हाउस जैसा नजर आता है। रोशनी से सजा ये चॉकलेट वर्ल्ड बच्चों को खूब लुभा रहा है, तो बड़ों को उनका बचपन याद दिला रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: हम किसी चॉकलेट के बंगलो में नहीं, हम हैं गणपति बप्पा के पंडाल में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो प्रतिकृति दिया है वो चॉकलेट की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, और इसके लिए ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में ये जो बच्चे हैं इस तरह की चॉकलेट हो या बिस्किट हो उनको देख रहे हैं, और अंदर गणपति बाप्पा जी हैं। किस प्रकार से विराजमान हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। सीधा अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणपति बाप्पा की मूर्ति है और ये कैंडी लगाई है और कैंडी घूमते हुए नजर आ रही है। आपको पसंद क्या है?
1: किंडर जॉय।
0: आप खाते हो किंडर जॉय? और बापा जी का दर्शन लिया भगवान जी का? क्या मांगा भगवान से आपने?
1: मोदक।
0: क्या क्या देखा है अब तक आपने?
1: चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकोबार।
0: अच्छा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंडीज खाऊं।
0: क्या क्या देखा आपने?
2: आइसक्रीम, कैंडी और बहुत तुतोती देखा मैंने।
0: और आपको क्या पसंद है?
2: मुझे पसंद है पार्ले जी बिस्किट।
3: इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: इस दुर्गा पूजा कोलकाता के मशहूर स्ट्रीट पार्क को नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। अलन पार्क में भव्य उत्सव की तैयारी है। दुर्गा पूजा के इस महा आयोजन में कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। देश के जाने माने आर्टिस्ट अपनी कला का हुनर दिखाएंगे।
3: क्रिसमस के लिए मशहूर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का एलन पार्क पहली बार दुर्गा पूजा के लिए सवर रहा है। यहां भव्य दुर्गा पूजा की तैयारियों का शंखनाद हो गया है। कोलकाता सनातनी संघ यहां दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। आयोजकों के अनुसार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महालय के अगले दिन एलन पार्क में पूजा का उद्घाटन करेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस बार दुर्गा पूजा में पार्क स्ट्रीट की चमक देखने लायक होगी। इस भव्य महोत्सव में बंगाल के लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आस्था भक्ति के रंग बिखेरेंगे। इस आयोजन में कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद है।
4: लाइटिंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाओं के लिए बंगाल के 10 करोड़ बंगालियों को, दुनिया में रहने वाले बंगाली और दुनिया के रहने वाले हिंदुओं, बंगाल के रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं को ये पूजा समर्पित है। ये उनका पूजा है। आराम से 10 दिन आए, पूजा देखें और ये कह के जाएं कि अपन पूजा, ये हमारा पूजा।
3: आयोजकों का दावा है कि एलन पार्क में इस दुर्गा पूजा बंगाली सनातनी संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। पहली बार यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है और इस महायोजन को लेकर यहाँ के लोगों में भी भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।